0: शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनके उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणि ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणि ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में, और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नजर वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पपीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिव दत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि ने,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिससे जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई, हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकं मुने सा बभार तदाहारं दिव्यरत्न समन्वितं वलयानि महारानि शुद्धचामि करानि च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवं सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहाँ हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे। प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती। पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है। जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है। लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पाकर के हरी हो जाती हैं। कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है। चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है। और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे, भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कने धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में है, वो है पार्वती, वो है काली, वो है दुर्गा। तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में संघ, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे। स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र हितकर्ता परम शक्ति से संपन्न होकर उस समय समस्त देवों द्वारा प्रसन्नता से सेवित तथा फूलों की वर्षा को स्वीकार करते हुए वहां गए। अब देखिए यहाँ दिया है स्त्रियां उस समय नृत्य कर रही थी, यानी कि केवल आज के समय स्त्रियां नृत्य नहीं करती थी, उस समय भी स्त्रियां नृत्य कर रही थी। बीच में ये नृत्य आदि सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है कि बारात के साथ साथ स्त्रियां भी जाती थी और अब भी जा रही हैं और नृत्य गान सब जगह होता है। अब कहते हैं कि बड़े सम्मान के साथ शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। बारात के साथ आए यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्तया नीराजनम अथागरोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धिपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी। तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
0: वही विधि विधान,
1: वही विधि
0: मंत्रोच्चारण द्वारा,
1: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है। और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
0: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
1: जी,
0: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
1: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि बरवधु भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
0: बड़े आराम से।
1: हाँ,
0: बड़े आराम से लग जाते हैं,
1: लेकिन ऐसा होता नहीं है।
0: इसीलिए लीला जी आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है खत्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं तक बस वही लगभग वही हो जाते हैं। हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवीय विवाह होता है,
0: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
0: ब्रह्म मुहूर्त में जब।
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं
0: हुआ,
1: दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
0: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया, गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधु ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधु वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं। कभी कभी तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर

0: लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोगों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी। उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच संभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, के अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
1: तभी से है,
0: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आप के जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
1: सबसे बड़ा दान,
0: ये सबसे बड़ा दान
1: दान कहलाता है।
0: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैला प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वरियामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद त्वम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्षगणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, देवता, मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं, तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका, तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासि च किंचन वाच्य महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख, त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः। अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, विष्णु ब्रह्मादेव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो। तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था, इसलिए देख रहे हो।
1: बहुत सुंदर,
0: देख नहीं पाते।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया। लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे। मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
3: ओम शांति।
2: और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
1: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं, उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है।

0: तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूय अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो ना हरिन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
1: बिन बुलाए मेहमान।
0: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P, अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना।

0: इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला रही
0: है। तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है, और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है, और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं, ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सारी चीजें आपने बताई है, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
2: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना, ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
2: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
2: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भुर्माते संगो अस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
3: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति
0: स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से मन आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कम्फर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं। वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं, और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर मतलब जो इंद्रियां हैं अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्रिय एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव रेश 107.8 FM पर। नमस्कार।
4: उजाला। समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
5: और मैं ये कह रही हूँ भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
4: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
5: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
4: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
5: तो फिर एक वादा करो।
4: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
5: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
4: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति.
1: आज बहुत सारी एवेन्यूज ओपन है विद द वे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बच्चे आज कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड दैट्स अनहेल्दी. इससे ज्यादा ये अच्छा है कि मैं आपको बताकर करूँ, इवन इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट. लेकिन जहाँ मुझे बार बार आपसे रेजिस्टेंस मिलेगा, आप नहीं बताएंगे, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर मी इज इट टुडे टू लीव द हाउस वेयरिंग अ सलवार कमीज एंड जस्ट चेंज समवेयर एल्स. आपको क्या पता चलेगा? नथिंग. एंड मेजोरिटी चिल्ड्रन आर डूइंग दैट. हाउ डिफिकल्ट इज इट कि बोलो कि मैं स्कूल जा रही हूँ और चले कोई मूवी जा. चिल्ड्रन आर डूइंग दैट.
0: आई थिंक इट्स हैपनिंग एवरी डे.
1: कितनी बार आप मूवी में चले जाओ, आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, बच्चे हैं वहाँ पे. क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे?
0: यूनिफॉर्म्स में है तो साफ दिखता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं. डेफिनेटली.
1: तो जहाँ रेजिस्टेंस मिला, हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया. अब जब हमने अपना तरीका अपने आप ढूंढ लिया, तब तो बहुत कुछ और हो सकता है जो पेरेंट को पता भी नहीं चलेगा. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं. आज पेरेंट्स को पता ही नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एनर्जी ब्लॉकेज थी. अगर हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया होता, तो वो उनको ये पता होता कि हम जो भी कर रहे हैं, वी कैन टेल आर पेरेंट्स. हर पेरेंट आजकल ये पूछता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे बच्चे हमारे को हर बात बता दे. दे वॉन्ट दैट. लेकिन उसके लिए फिर हर बात सुनना की पोटेंशियल तो होनी चाहिए ना. जैसे ही वो अपनी बात शेयर करेगा, बोलोगे यू रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो बच्चा बोलेगा ठीक है, देन आई एम नॉट टेलिंग यू. सो अगर मुझे ये पता होगा कि आप मेरी, आई कैन कम एंड टेल यू सबसे अजीब चीज एंड यू विल स्टिल एक्सेप्ट, तो मैं आपके साथ हर बात आकर शेयर करूंगी. लेकिन अगर मुझे पता है कि हर छोटी छोटी बात पर आप बोलोगे ये गलत है, तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसी है दुनिया आउटसाइड, तो मुझे पता है दुनिया कैसी आउटसाइड. आई फाइंड माई वे एंड आई डू इट माई वे. तो ये जो बैरियर होता है, ये बहुत ज्यादा हमने ही क्रिएट किया होता है. क्योंकि बचपन से एक्चुअली एक बच्चे को आदत होती है अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर करने की. तो हमने बचपन में उनकी बातें सुनते गए अगर वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि वो बड़े होकर भी शेयर करेंगे. लेकिन वो शेयर करना कब बंद करते हैं? आई हैव टू आस्क माई सेल्फ.
0: यस, वेरी ट्रू.
1: क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स कहते हैं अब बच्चे मेरे से बात नहीं करते हैं, वो हर वाली जो पहले वाली करते हैं, अब बच्चे छुपाते हैं कुछ बातें. आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. बहुत इजी है बोलना कि दे आर रॉन्ग, अब वो छुपाते हैं बातें. क्यों? क्यों जरूरत पड़ी छुपाने की? क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला. बहुत सारे परिवारों में है, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि उसका फाउंडेशन यही था, एक्सेप्टेंस. फिर जब वो शेयर करते हैं, तो फिर वो एक बात, एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, लेकिन शेयर करना ही बंद हो जाएगा, तो फिर तो बहुत ज्यादा दूरी आ जाएगी.
0: वंडरफुल. सो लेट बी. एक्चुअली अगर हम,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना डिसिप्लिनिंग कर रहे हैं, आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसको एक कंट्रोलर की तरह नहीं, एक गाइड की तरह. एक गाइड गाइड करता है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको साक्षी होना ही पड़ता है. तो औरों की स्क्रिप्ट लिखना बंद करके अपनी स्क्रिप्ट लिखें, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें. और अगर कोई हमें बुलाता है इंटरफेयर करने के लिए, यू नो पीपल अपने साथ शेयर करते हैं अपनी सारी बात, तो शेयर करें विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो उससे क्या होगा, हम उनको जो वो पूछ रहे हैं वो तो बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अगेन कंट्रोल नहीं करेंगे. नहीं, फिर आप, मैंने जो बताया आप उस अनुसार करें. नहीं, लेट पीपल बी द वे दे वॉन्ट टू बी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट बी शुड ऑलवेज बी इन माई माइंड कि जहाँ भी मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, स्टॉप, लेट देम बी, दे विल फाइंड देयर वे. यू नो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि हर आत्मा अपनी रास्ता ढूंढ लेती है. हर आत्मा, हम ही सोचते हैं कि नहीं, हम जल्दी से उसको उस रास्ते पर ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं होता. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्सेप्ट एवरीथिंग. जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है, अगेन इट्स वेरी वेल कनेक्टेड, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आता है, तो जिसके भी प्रति या जिस सिचुएशन के प्रति मेरे अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो मैं एक्चुअली उसको और शक्तिशाली बना देती हूँ. जैसे हम कहते हैं ना, वो और जिद्दी होते जाते हैं.
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल.
1: उनके अंदर वो आदत और कड़क होती जाती है, तो वो रेजिस्टेंस. और फिर यहाँ रेजिस्टेंस, हम बहुत बार बाहर से एक्सेप्ट कर लेते हैं कहने के लिए, लेकिन अंदर रेजिस्टेंस है. तो ये रेजिस्टेंस सामने वाले को या सिचुएशन को और भी एम्पावर करता जाता है. तो वी नीड टू रिमूव दैट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज, क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो परफेक्ट
0: फॉर दैट टाइम, फॉर दैट मिनट, फॉर दैट यू नो पूरा पर्सपेक्टिव में वो सही है.
1: तो उस क्षण में उसको एक्सेप्ट करें, अगले क्षण में फिर उसको जिस तरह से चेंज करना है वो कर सकते हैं. तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग. एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पास ऑन. हमें जो कुछ मिलता है उसको हम पकड़ कर रख लेते हैं. हमें जो कुछ मिला है वो मिला है पास ऑन करने के लिए. जिन लोगों को भी हम सारा दिन में मिलते हैं, शेयर, शेयर विद देम एवरीथिंग, अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपनी क्वालिटीज, हर चीज शेयर करें.
0: क्वालिटीज वो जो हम सचमुच में समझ चुके हैं अपनी, जो कि हर दूसरी आत्मा में भी है.
1: अब तो क्वालिटीज तो बहुत सेकेंडरी बात हो जाती है. इवन नॉलेज एंड स्किल्स शेयर करने में हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चलते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जो हमारे पास है अगर हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे पास नया कहाँ से आएगा. हम बस उतने को ही लेकर पकड़ कर रख लेते हैं. जैसे एक नदी को हम देखते जो ऊपर से बहती हुई जाकर नीचे सागर में जाकर मिल जाती है. यू जस्ट हैव टू सी द जर्नी ऑफ द रिवर, क्योंकि माय लाइफ इज लाइक दैट जर्नी.
0: लेट इट फ्लो, एक्चुअली यू नो एवरीथिंग हैज टू फ्लो,
1: एवरीथिंग हैज टू फ्लो. अब वो रिवर क्या करता है जब वो नीचे फ्लो कर रहा है? एक तो वो अपनी यात्रा अपने आप कर रहा है, इट फाइंड्स इट्स वे. बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो अपना रास्ता ढूंढता जाता है. वो जो नदी है, जो वो पानी की लहर जो फ्लो कर रही है, वो कितने सारे क्रीचर्स के लिए घर भी बन जाती है, कितने सारे उसके अंदर रहते हैं. लेकिन उस रिवर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है वो क्या?
0: जीवन.
1: किसको?
0: जीवन दायिनी, मनुष्य को देना.
1: एब्सोल्युटली. सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसके यात्रा हाँ. में जो कुछ आता है
0: उसको जीवन देते.
1: एक फूल, एक पत्ता, एक टहली, एक जानवर, एक पशु, एक पक्षी एंड ह्यूमन बींग. उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी यात्रा में एवरी थिंग, एवरी लिविंग बींग जो आता है, इट नरिशेस दैट लिविंग
0: बींग.
1: दैट्स द जर्नी ऑफ द रिवर.
0: वाओ, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस.
1: दैट्स माय जर्नी. मैं भी तो उसी तरह हूँ. आई एम फाइंडिंग माय वे, इट्स ओके. देर आर ऑब्स्टिकल्स, आई एम फाइंडिंग माय वे. आई हैव गिवन शेल्टर टू अ फ्यू क्रीचर्स, दैट्स ऑल्सो ओके. बट व्हाट इज माय मेन पर्पस इन लाइफ? बिकॉज What's my purpose in life? ये बहुत लोगों का question है. मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? और वो समझते हैं कि कोई और उनको बता पाएगा कि what's my purpose in life? Purpose in life is कि you're flowing, stagnant water नहीं बन जाओ जो एक जगह रुक जाता है. Flow करो, और आपके flow होने में, आपके contact में जो भी आता है
0: उन्हें
1: nourish. और nourish करना अर्थात जो मेरे पास है वो सबको, क्योंकि जैसे ही उनके साथ शेयर किया उनको भी एम्पावरमेंट मिल जाते हैं. इमेजिन गोइंग टुमारो मॉर्निंग टू वर्क विद दिस फीलिंग, देन वर्क इज नो लॉन्गर वर्क. एक है मुझे काम करने जाना है, पैसे कमाना है, घर आना,
0: और वहाँ सफोकेट होना है, वहाँ पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा.
1: एक है मुझे कल जाना है अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए, और वो ये है कि कल सारा दिन में जितने लोग मुझे मिलेंगे उनको नरिश करना,
0: and give them happiness, you know? Yeah.
1: ये मेरी responsibility है. तो imagine how the day will pass, and then I'm sharing and giving without expecting. At the end of the day मुझे कैसा लगेगा? Do I have to think इस satisfaction क्या होती है, contentment क्या होती है,
0: stress management क्या होती है? I think stress has gone somewhere up, you know. It's like in this whole conversation, I think मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी जरूर इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि इस पूरी बातचीत में स्ट्रेस कहीं दिखा ही नहीं, कहीं था ही.
1: स्ट्रेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बात करनी थी. स्ट्रेस दिस इज मोर द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल गो टू वर्क वेरी अनविलिंगली. आई हैव टू गो टू वर्क.
0: वर्क इज अ स्ट्रेस. इतनी बार ये कहा जाता है कि माई वर्क एरिया इज अ स्ट्रेस एरिया. द मोस्ट स्ट्रेसिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ इज माई वर्क.
1: तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हर एक के जीवन का लक्ष्य ये है, एनर्जी एक्सचेंज विद एवरीबडी आई मीट. अब मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए कि ये एनर्जी एक्सचेंज बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए. अब उसमें कई लोग बोलते हैं मैं तो देता हूँ अच्छी वाली लेकिन औरों से मुझे नेगेटिव मिलता है. स्टॉप, माई रोल इज ओनली टू
0: वंडरफुल. यू नो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी वांट कि हमें मिलना चाहिए. वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये उदाहरण एग्जांपल को अगर हम याद कर लें, आई एम लाइक अ रिवर,
1: you know, flow,
0: I am nourishing.
1: Flow, and just flow and pass on. क्योंकि आप flow करते करते कितनी चीजों को pass on करते जाएंगे और वो अपने आप nourish होते जाएंगे.
0: You know, we, at times we stay there.
1: रुका हुआ पानी रुका हुआ पानी कैसे हो जाता है।
0: कई बार अपने साथ लोगों को कईयों को ले चलते हैं, दे कैन बी पार्ट ऑफ योर फ्लो,
1: तो वो आपकी यात्रा का हिस्सा है, लेकिन हर एक को नरिश करें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको अगर हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि हर एक को नरिश करते करते वो नरिशमेंट तो
0: हमसे होके
1: आई फील ब्यूटिफुल।
0: एंड यू नो दैट रिवर इज हेल्दी रिवर व्हेन इट इज नरिशिंग एंड इट्स नॉट डाइंग, इट्स फ्लोइंग,
1: हीलिंग हो जाएगी उससे। कितनी हीलिंग। और थोड़ी देर के बाद साइलेंस में जब हम बैठते तो अपनी इस अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुने। कई बार हमें कुछ कर्म करने से पहले ऐसे लगता है कि आई थिंक समथिंग इज टेलिंग मी दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन मैं कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस आवाज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे उस टेम्प्ररी चीज़ों से जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो कोई डिपेंडेंसी है, चाहे वो कोई अटैचमेंट है, चाहे वो कोई एडिक्शन है, वो मुझे उससे दूर लेकर जा रही है, मुझे अंदर पता होता है कि लेकिन उस आवाज़ को सुनना मतलब इस टेम्प्ररी जो हैप्पीनेस की जो हमने चीज़ें ढूंढी हुई हैं इनसे दूर जाना, हम मैं इसको आवाज़ को अनसुना कर देती हूँ और उस तरफ चले जाते हूँ। ये जो बार बार अपने अंदर की जो ये आवाज़ आती है, क्योंकि विजडम इज ऑल इनसाइड, तो ये जब अंदर की आवाज़ आती है और हम इसको इग्नोर करते रहते हैं तो ये भी एक दिन
0: बात करना बंद कर देते हैं।
1: तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि साइलेंस में बैठकर वही लाइब्रेरी वाला सीन वापस क्रिएट करके एक्सटर्नल नॉइज को ख़त्म करके जो भी अपने पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जैसे हम दूसरों को पूछने जाते हैं वैसे अपने आप के लिए वो क्वेश्चन छोड़ दो। तुरंत आंसर नहीं एक्सपेक्ट करो, बट दैट शुड बी इन साइलेंस। साइलेंस में जाके क्वेश्चन वहाँ छोड़ दो, आंसर विल बी देयर बिकॉज द आंसर इज ऑलरेडी हियर। तो इसको हम कहते हैं लिसनिंग इनसाइड। कीप लिसनिंग टू द ट्यूटर इनसाइड इन ट्यूशन। अब हमें समझना चाहिए कि मेरी आंतरिक जो अंदर का विवेक है उसने वो आंसर दिया है वो मुझे, दैट्स गुड फॉर मी, देन आई शुड फॉलो दैट। तो बी क्वाइट, लेट गो, लेट बी, एक्सेप्ट एवरीथिंग, पास ऑन टू एवरीवन एज दे कम एंड लिसन इनसाइड। सिंपल सिंपल थिंग्स। सुनने में इमीडिएटली लग रहा होगा नहीं सिंपल नहीं, बहुत डिफिकल्ट, वेरी सिंपल सिंपल।
0: और हर बार की तरह
1: स्टार्ट डूइंग दैट,
0: हर बार की तरह वो एक्सपेरिमेंटेशन करके अपने अनुभव पे के आधार पर फिर हम इसको देखें कि कहाँ तक हम वहाँ पहुँच पाते हैं। बट यस, अपना अनुभव मुझे फिर यही कह रहा है कि ये बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रेस से हम जिंदगी को भरा हुआ है वो कहीं उड़ जाएगा। इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की, वो गुस्सा जिसे हम जायज मान लेते थे, लगता था कि हमें कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में ये बात सामने आती है कि गुस्सा एक वो डिस्टर्बेंस है, एक वो इमोशन है जो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता है, और उसका एटीट्यूड या वो फीलिंग जो उसको कम कर सकती है, उसको दूर कर सकती है, वो है पीस, शांति। लेकिन क्या है शांति? क्या जिसे हम शांति मानते हैं कहीं हम उससे बहुत इतने शांत तो नहीं हो जाएंगे कि हमारा एनर्जी लेवल ही कम हो जाएगा? ऐसी कई बातें अभी भी आपके मन में होंगी, मेरे पास भी ऐसे कई सवाल हैं। तो आज एक बार फिर ये सफ़र शुरू करते हैं, और हर बार की तरह इस सफ़र की हम सफ़र हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी, सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, पिछले दिनों हमने खूब गुस्से को खंगाला है, खूब अच्छी तरह से देखा है कि क्या क्या वो बातें हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो गुस्से को जनरेट करती हैं, और क्या कुछ हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार फिर हर बार की तरह एक रिकैप करते हैं और गुस्से के उन स्टेप्स किससे दोबारा गुजर लेते हैं जो जब शुरू होता है ये पूरा प्रोसेस और कहाँ तक पहुँचता है।
1: सबसे पहले तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गुस्सा है क्या। गुस्सा एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है हमारी कॉन्शियसनेस में, जो क्रिएट तब होता जब वो नहीं होता जो हमें चाहिए, या वो हो जाता जो हमें नहीं चाहिए, मतलब परिस्थितियाँ और लोग जब हमारे कंट्रोल से बाहर और हमारे कहे अनुसार नहीं चलते तो वो डिस्टर्बेंस हमारे अंदर क्रिएट होता। और जनरली क्योंकि हम परिस्थिति और लोगों को उसका जिम्मेवार ठहरा देते हैं तो वी आर एबल टू जस्टिफाई आर एंगर कि वो गलत थे तो मुझे गुस्सा आया। तो आज दिन तक हमने अपने गुस्से को जस्टिफाई करते गए और इसीलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता भी नहीं समझी कि ये सही है, दूसरे लोग बिगड़ जाएंगे अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, और उनकी है ही गलती तो मेरा गुस्सा करना जायज़ है। बट वॉट वी डेंट रियलाइज इज दैट एवरी टाइम वी आर इन्फ्लिक्टिंग सो मच ऑफ पेन ऑन आर सेल्व, तो गुस्सा बार बार करना या कहें एक बार भी करना सारे दिन में, तो ये अपना ही नुकसान है, दूसरे का कम लेकिन अपना बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होते वो यहाँ पर भी उसका प्रभाव पड़ता और फिर पूरे शरीर पर भी पड़ता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैंने जनरेट किया और इसको मैं फिनिश कर सकती हूँ। तो उसको सबसे पहले उसको ओवरकम करने के लिए हम एक अवेयरनेस में चलते हैं कि जब थोड़ा सा भी अंदर चिड़चिड़ापन की फीलिंग आए, थोड़ा सा भी कहीं कुछ मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहा, एंड आई कैन सी ओके आई एम नॉट लाइकिंग इट, यू नो मी नॉट लाइकिंग इट इज माई फर्स्ट स्टेज ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन थोड़ा सा अंदर आना शुरू हो गया तो उसी टाइम वो फर्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, जागृता कि मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अपनी क्रिएशन की शुरुआत में ही उसकी अवेयरनेस होती है, और दूसरा एक्नॉलेज करना कि यस आई एम क्रिएटिंग दिस, आपकी वजह से नहीं ये हो रहा है, आप भले जो बोल रहे हैं लेकिन ये मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये इसको एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे आ रहा है, उसके साथ युद्ध नहीं करना कि क्यों आ रहा है, आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट क्योंकि मुझे अब उसको फिनिश करना है। तो एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है, लेकिन ये मेरे अपने हाथ में है। तो अवेयरनेस क्रिएट की, एक्नॉलेज किया कि हाँ ये आ रहा है, एक्सेप्ट किया कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, और फिर उससे डिटैच हो जाए, अपने आप उस गुस्से के थॉट्स को देखना शुरू कर दे, वॉच इट एंड सी इट। तो व्हाट हैपेंस कि एक है कि जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है उसको वहाँ से हटा देते हैं, और वहाँ से हटाकर उस थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही हम वो एनर्जी को हटाते हैं वो जो इमोशन है वो फिनिश हो जाती है। अभी क्या है, हम उस इमोशन को एनर्जी देते हैं,
2: फ्यूल करते रहते हैं ना, वी ऑलवेज से दैट उसने हमारे एंगर को फ्यूल किया, बट आई थिंक इट्स आवर एनर्जी।
1: खुद जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप वो मस्ती कर रहे हो और आप भी उसके साथ मस्ती करो तो दोनों मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूर से खड़े होकर उसको देखना शुरू कर दो तो वो कॉन्शियस हो जाता है और वो जो कर रहा था वो उसको छोड़ देता है। तो कॉन्शियसनेस की एनर्जी को उस थॉट से हटा के देखना शुरू करते हैं, वो इमोशन फिनिश हो जाती है। अभी हम क्या करते थे, उसको एनर्जी देते, क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगली बार मैं ये देखूंगी। सो वी आर गिविंग एनर्जी टू दैट इमोशन, इट बिल्ड्स अप मोर एंड मोर एंड इट कैन स्टे विद मी टिल अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे डिटैच हो जाएंगे एंड देन कम बैक टू माई स्टेज, द सेंटर, कि मैं कौन, ओम शांति, ये भी अगर याद रहे तो इट मीन्स मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आई कम बैक टू माई स्टेज दैट आई एम अ पीसफुल बींग। तो अवेयरनेस, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट के हाँ आ रहा है, फिर उससे डिटैच हो जाए और देन कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टेज। तो कभी भी दिन में ये चिड़चिड़ापन गुस्सा अगर आए तो लेट्स गो थ्रू दिस 4-5 स्टेजेस, और अगर उस टाइम नहीं कर पाते तो गुस्सा करने के बाद भी भले कर लीजिए कि आज मुझे गुस्सा आया था, क्या हुआ था, तो क्या होगा, एक दो बार गुस्सा करने के बाद करेंगे तो अगली बार
2: गुस्से के दौरान भी कर सकते
1: हैं। वो अवेयरनेस, बेसिकली वो अवेयरनेस रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस रहती है तो बाकी स्टेप्स करना बहुत इजी हो जाता है।
2: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली सिस्टर शिवानी, बिकॉज अभी तक क्या होता आ रहा था कि हमें गुस्सा इतनी आदत में घुल चुका था कि हमें एहसास ही नहीं होता था कि हमने गुस्सा किया है, और अब क्योंकि जब पता है कि इतनी बात गुस्से की सुन चुके हैं, हम दूसरों को कहते थे मैं तो गुस्सा नहीं करता या मुझे तो गुस्सा नहीं आता, नो आई एम वेरी पीसफुल पर्सन, बट वो जो अंदर का चिड़चिड़ापन है, जो इंटरनलाइज एंगर जिसकी हमने पहले बात की थी, सो दिस ऑल स्टेज विद अस, सो अगेन इट मे नॉट गो कम्प्लीटली इन वन डे, बट द मोमेंट वी स्टार्ट वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू दीज 5 स्टेप्स, I think gradually we should be able.
1: It is not going to go in one day. See, because why it will not go in one day? क्योंकि वो belief systems एक दिन में नहीं जाते हैं। अगर belief सारे एक दिन में टूटते हैं कि गुस्से के बिना काम हो सकता है, गुस्से से कोई result, तो एक दिन में चला जाएगा। लेकिन वो एक-एक belief को finish करने में थोड़ा सा time लगता है। लेकिन the journey is very simple. You know, don't give up on yourself. चाहे आपका कितना भी कड़क संस्कार हो क्रोध का, it can go. और वो पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस जाएगी, यू नो अवेयरनेस चाहिए, बस गुस्सा आ रहा है एंड देन इट विल गो। एंड ये जस्टिफिकेशन खत्म करनी है कि दूसरों की वजह से, जब तक वो बिलीफ सिस्टम सबसे स्ट्रांग है कि औरों की वजह से गुस्सा, देन आई विल नॉट चेंज, देन आई विल कीप वेटिंग फॉर यू टू चेंज।
2: यस, यू नो वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस, जस्ट अ यू नो थॉट वे, सो अगेन द थॉट दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये एक संकल्प, ये एक सोच कि मैं जिम्मेदार हूँ, इवन इफ उसके लिए अपने आप को दोषी ना ठहरा के कि ठीक है गुस्सा है भी तो कोई बात नहीं, होता यह कि हम इतने गिल्ट और रैंक मतलब अपने आप से गुस्से में चले जाते हैं कि मैंने क्यों किया,
1: नुकसान हो जाता है, पहले गुस्सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, अब गिल्ट क्रिएट हो जाता है, फिर शेम हो जाती है, एंड फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसे और गुस्सा कर यू नो मतलब पहले गुस्सा कर देंगे, अंदर लगेगा कि मुझे करना नहीं चाहिए था, फिर और जोर से बोलेंगे क्यों नहीं करना चाहिए था, मुझे तो करना चाहिए था, आपने यू नो इट इज जस्ट बिकम्स अ वेरी साइकिल प्रोसेस एंड इट जस्ट डजंट ब्रेक एनीवेयर.
2: एंड डेफिनेटली सिस्टर शिवानी, ये हम इस पर कितनी बातचीत कर चुके हैं और इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इट कैन चेंज. लेकिन अब हम आते हैं कि हमने बात की थी इमोशन और फीलिंग की, यू नो कि हर एक इमोशन, क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हम अभी तक उसे अपनी ताकत मानते थे और हम कहते थे पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, इमोशन एक्चुअली इज यू नो ऑल दैट डिस्टर्बेंस जो यहाँ क्रिएट होती है, तो उसका एंटीडोट या उसका जो एक फीलिंग है जो उसके एवज में कन्वर्ट होती है या आती है वो पीस जुड़ता है उसके साथ. लेकिन पीस से जुड़ी हुई भी बहुत भ्रांतियाँ हैं. बहुत सी ऐसे बिलीव्स कह सकते हैं हम, या बहुत से ऐसे मान्यताएं कह सकते हैं कि पीस जो है वो बहुत एनर्जी लेस हो जाता है. तो एक्चुअली बहुत सी बातें हम जानेंगे कि क्या मान्यताएं जुड़ी हैं. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या है, व्हाट इज रियली मेंट बाय शांति या पीस.
1: पीस इज अ वर्ड.

0: कि जो मेरी थॉट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव और फोकस्ड होंगे. अंदर एक साइलेंस होगा. एक है साइलेंस, एक है नॉइज, यू नो. तो पीस डजंट मीन कि कोई बोले नहीं, कुछ करे नहीं. बाहर से हो सकता है कि बहुत पीसफुल है, अंदर बहुत नॉइज है. और नॉइज क्या है? ये सब डिस्टर्बेंसेस. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो पीस इज बेसिकली साइलेंस ऑफ द माइंड. साइलेंस ऑफ द माइंड में ये मतलब नहीं है कि जीरो थॉट्स. सम पीपल थिंक पीस साइलेंस मतलब नो थॉट्स. नो, थॉट्स फोकस्ड. आपको जिस चीज के बारे में जिस क्षण सोचना है और जितना सोचना है और जिस रूप से सोचना है बस उतना ही करना है. हमें ये प्रोग्राम अभी करना है. वन थॉट होगा नहीं होगा, ठीक होगा नहीं होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ना हो जाए.
1: तो ये पॉजिटिविटी के साथ, यू नो, जो फोकस जो थॉट्स की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव रहे.
0: पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो बहुत फास्ट चलते हैं एंड दे विल बी मोर टुवर्ड्स वरी, एंग्जाइटी, टेंशन, फियर. तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत फोकस्ड होंगे और उसका रिजल्ट आपके एटीट्यूड में आएगा, आपके बिहेवियर में आएगा. अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल में भी हम देखें तो पीस इज एक्चुअली एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर लेना. अभी जो चीज जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है, बट विद द वर्किंग कि इसको आगे और ठीक किया जा सकता है. तो अभी क्या होगा, पीस शांति मेरे मन में तब होगी जब मैं एक्सेप्ट कर लूं कि आप अभी जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ठीक. तो ये क्षण शांति, और फिर मैं आपको अगले क्षण के लिए आपके साथ ये डिस्कस भी कर सकती हूँ कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे अंदर ये चल रहा है, नहीं इनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या पहना हुआ है, ये नहीं पहनना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज पीसलेसनेस. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज यू आर. तो पीस इज के सिचुएशन जैसी है एक्सेप्ट करना, लेकिन साथ में भविष्य के लिए उसको चेंज भी करना. पीस मतलब आप जो हैं जैसे हैं आपको स्वीकार करना, इवन अगर आपका ओपिनियन
1: आप एक्सेप्ट कर लूँ, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूँ जैसे आप हैं, तो मैं क्या है सोच के एक्सेप्ट करूँ कि आप सही हैं अभी जैसी हैं अपने परिपेक्ष में, अपने लिए या मेरे लिए भी सही है.
0: आप अपने परिपेक्ष में, अपने दृष्टिकोण से, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं आप बिल्कुल ठीक है
1: उसके लिए.
0: एब्सोल्युटली,
1: है ना. लेकिन मेरे पास अगर कॉन्फ्लिक्ट है या मेरे विचार या मेरा परसेप्शन डिफरेंट है तो वो मेरा है, मैं एक्सेप्ट उसको भी करती हूँ. क्या यहाँ ये आ जाता है कि देन गिवन हो गया?
0: नहीं, गिवन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये भी एक्सेप्ट किया कि आप जो हैं वैसे भी ठीक है. मैंने ये भी पहले तो, अब देखो औरों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को.
1: आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. पूरे कॉन्फिडेंस से अब मैं कह सकती हूँ
0: ओम शांति.

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। और आज है संडे का दिन, और संडे वाला दिन हमारे साथ आकर के खास एक्सपर्ट हमारे जुड़ जाते हैं और बहुत सारी हम बातें भी करते हैं, साथ ही साथ आपके लिए भी खास जानकारी जो आज साक्षी लेकर के आ जाती है। और संडे वाले दिन देखिए, मैं आपसे ढेर सारी बातें तो कर ही रही हूँ, लेकिन अगर आपको भी कुछ कहना है, कोई गाना अपना पसंदीदा कमाल का सुनना है, तो जल्दी से मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 8010781078। और देखिए, आज की बात करें तो बहुत सारी होने वाली है बातें, तो फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ खास जानकारी लेकर के आ जाती हूँ। देखिए, आजकल की लाइफस्टाइल में ना नींद से समझौता करना आम बात हो गई है। कुछ लोग 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं और वहीं कुछ लोग जो हैं जो 10 से 12 घंटे की भी नींद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम से कम कितना आपको सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको कितना सोना चाहिए आपकी उम्र को जो तेजी से जो है वो बढ़ा सकता है। मतलब कि हो सकता है अगर आप कम सो रहे हैं तो ये भी आप उम्र जो है आपकी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए स्लीप साइकिल की वजह से काफी प्रॉब्लम जो है वो आती है, ज्यादा से भी हो सकता है। देखिए, लगभग 5 लाख लोगों पर एक स्टडी जो है वो की गई है, जो सामने आई है। और ये सामने आया है कि जरूरत से ज्यादा या कम सोना बायोलॉजिकल एज को तेजी से बढ़ाने में और समस्या को पैदा करने में कोई और भी जो है वो बढ़ाता है, समस्या बढ़ाता है। और देखिए, इससे जो है कई सारे खतरे जो है वो जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आप कितनी देर सो रहे हैं इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ना कम सोना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और मैं बात कर रही हूं आपके ज्यादा सोने की या कम सोने की। अगर आप ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा सो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कम सो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, तो सही टाइम क्या होना चाहिए इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक रिसर्च जो है वो की गई है 5 लाख लोगों में, जो कि सामने आई है। रिसर्च के मुताबिक 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में किसी भी कारण से के जो मौत का जोखिम है वो 50% ज्यादा देखा गया है। तो वहीं 6 से 8 घंटे सोने वाले लोगों की तुलना में 8 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोगों में जो खतरा है वो 40% पाया गया है। शरीर के जो ऑर्गन्स है और साथ ही साथ अगर बायोलॉजिकल एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो भी आपके लिए दिक्कत बनी हुई है, कम सो रहे हैं तो भी आपके लिए दिक्कत पैदा हो रही है। तो बात आती है कि सोना कितना चाहिए। तो देखिए अगर आप अपनी नींद को जो है, अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो लेनी ज़रूर चाहिए। और नींद की जो गुणवत्ता है, यानी कि नींद की जो ये आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और अगर आप ये 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो टाइम पर सोएं, और अपनी जो हमारी बॉडी की भी एक क्लॉक होती है ताकि वो जो है हमारे सभी ऑर्गन्स जो है वो रिकवर हो सके। इसलिए एक अच्छी नींद लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप वो नींद नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे समस्या बढ़ जाती है, और ना सिर्फ यहाँ पर मैं कहूँगी कि खतरा जो है वो बढ़ता है, जो बीमारियाँ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे आपका वेट गेन होने लगता है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो भी, अगर आप कम सोते हैं तो भी। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें. इसी के साथ आपको बता दूं, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हो और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मानव रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है. ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉइड या आईओएस मोबाइल फोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और जल्दी से झटपट से आपको डाउनलोड करना है. आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. तो चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, और भी होंगी बहुत सारी बातें. तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है संडे का दिन और संडे वाले दिन बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूं। देखिए आज एक संडे तो आ गया, ये जो अगला संडे आने वाला ना बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं 27 सितंबर 2026 ये एक ऐसा दिन है जिसमें देखिए बहुत ही बड़ा इवेंट जो है ये हो रहा है, बहुत ही बड़ा ये मैं कहूँगी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 जो है वो आ चुका है फरीदाबाद में, और सूरज कुंड मेला ग्राउंड जो है वो वेन्यू रहने वाला है जहाँ पर जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने आप को पहले आपको रजिस्टर कराना होगा, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ देखिए आपको करना क्या है। आपको सिर्फ जो रजिस्टर है वो अपने आप को करना है, जहाँ पर रजिस्टर करने के बाद देखिए एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए ये जो हाफ मैराथन है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 ये की जा रही है, और वो है ड्रग फ्री हरियाणा। तो दोस्तों के साथ आउटिंग तो बहुत कर ली, इस बार उनके साथ रनिंग करके आप देखिए अपने ग्रुप में एक चैलेंज आपको रखना है कि कौन सबसे फास्ट दौड़ने वाला है या कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। तो बस आपको इस मीनिंगफुल कॉज के साथ जुड़ जाना है जहां फिटनेस है, कॉम्पिटिशन है, आपके साथ आपके दोस्त हैं। और एक बहुत ही कमाल जो एक देखिए मैसेज है, ये कॉज है इसके लिए हम सभी दौड़ रहे हैं, वो है ड्रग फ्री हरियाणा। रजिस्टर करने के लिए आपको बस विजिट करना है www.faridabadhalfmarathon.in। और इसी के साथ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है इसका ऑफिशियल रेडियो पार्टनर। चलिए इसी के साथ फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, feel nice.

0: गुड मॉर्निंग रेडियो मानवरत्ना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज जैसे कि आपसे वादा किया था, हमारे साथ आकर के जुड़ गए आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश, और जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। डॉक्टर राजेश एक ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं, योग गुरु हैं और साथ ही साथ हैप्पीनेस कोच भी हैं, और कई सारे सवाल हैं जो आज हम उनसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेश, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार साक्षी, नमस्कार रेडियो मानव रचना के श्रोतागण, आप लोगों से मिलकर के काफी अच्छा लगता है। और खास करके अभी जो समय आ रहा है, ये तो त्योहारों का चल रहा है समय।
0: बिल्कुल,
1: इसमें तो और भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम गणपति मना रहे हैं, फिर विजयादशमी आएगी, फिर दिवाली आएगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि मन जब दुखी होता है तब हमें समझ नहीं आता कि कैसे उससे हम बाहर निकले। इसीलिए आज आपसे कुछ सवाल जो है मैं पूछने वाली हूँ। आप एक हैप्पीनेस कोच हैं, क्या हैप्पीनेस एक इमोशन है या स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं?
1: ना तो ये इमोशंस है, ना तो ये स्किल्स है, ये एक पॉजिटिव फ्रेम में रहने की कला है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को मेंटेन करने की कला है
0: जी।
1: और यह तभी होता है जब आप अपने आप में संतुष्ट होंगे।
0: जी डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग आजकल हम देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं, और सोशल मीडिया का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। हम देखते हैं कि बाहर लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, दूसरे लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हम एक निराशाजनक जो एक सिचुएशन होती है उसमें डालते रहते हैं। तो इससे बाहर निकलने का जो प्रैक्टिकल वे है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए?
1: साक्षी, आपके प्रश्न में ही आपके उत्तर भी मिल गए हैं। सबसे पहला चीज है कि अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए। आप अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व लेकर के इस संसार में आए हैं, और उस विशेष व्यक्तित्व के द्वारा आप अपने कार्यों को पूरा कीजिए। दूसरा चीज है, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। खुश रहने की जो सबसे अच्छा कला है, किसी से आप किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और अपना आप 100% दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: अपनी तरफ से आप फुल दीजिए, तो आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने अपना जो था, मैंने इस काम के लिए मैंने अपना पूरा दिया है, उसका जो रिवार्ड है उससे आप फ्री हो जाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये आपके पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को मेंटेन रखेगा। यहीं पर लोगों से गलती हो जाती है कि हम काम भी करते हैं और हम उम्मीद भी लगा के बैठते हैं कि सामने वाला मुझे रिवॉर्ड देगा। सामने वाला आपको रिवॉर्ड नहीं देगा, इस चीज को मान करके रखिए। आप कितना भी कर लेंगे, आप अपने आप में रहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, अब इसके बाद मुझे कुछ चाहिए नहीं।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे जिसके बाद और भी बहुत सारी होंगी बातें, और कई सारी जो बातें हैं अभी जाननी बाकी हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी आपसे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और लिसनर्स से भी कि कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए। ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, क्या बिजी रहना और जेन्युइनली प्रोडक्टिव रहना हैप्पीनेस को डिफरेंटली अफेक्ट करता है?
1: जी हाँ, बिजी रहने का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यवस्था में आप हैं, उसमें आप अपने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को मेंटेन रखिए। इमोशनल फ्लक्चुएशन को आपको नियंत्रित करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी हम टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल में फंसते हैं, उससे भी आपको बचना है। और आप अपना काम कीजिए पॉजिटिव फ्रेम में। हैप्पीनेस का अर्थ नहीं है कि हम 24 घंटा मुस्कुराते रहेंगे, हर समय हंसते रहेंगे, नहीं। हैप्पीनेस का अर्थ ही है कि अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सकारात्मक भाव में जीना। और दूसरा एक फॉर्मूला है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जिस प्रकार से ईश्वर आपको रखता है, आप खुश रहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसमें कोई कंप्लेन मत कीजिए। अगर आपके पास छोटा दायरे में आप रहते हैं, उसमें खुश रहना सीखिए। अरे कभी कभी तो मैं देखता हूँ रोड और सिग्नल्स पर ये छोटे बच्चे सब आते, इतना मुस्कुराते और हंसते हुए आकर के दरवाजा नॉक करते हैं कार का, और उनको कुछ आप दे दीजिए तो इतना वो खुश होते, उनकी आंखों की आप चमक देखना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो ना नहीं कह पाते हैं। क्या नो कहना, क्या ना कहना और बाउंड्री सेट करना एक्चुअली हैप्पीनेस को इम्प्रूव कर सकता है?
1: देखिए, बहुत तरीके हैं इसमें। कभी कभी किसी का व्यक्तित्व होता है, वो ना नहीं कहता है, लेकिन वो आपको घुमाते रहेगा। आप अपने परेशान, तो निगेटिव इम्पैक्ट हो गया ना। सकारात्मक दृष्टिकोण से समझा करके कह देना, शुरू में ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के, रूड नहीं बनना है, तो हम एक अच्छी तरह से एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकते हैं कि ये काम को हम दोबारा आप करके लाइए, इस तरह से व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं हम लोग आपस में। यहाँ एक दूसरे का ख्याल भी रखना पड़ता है। ज़्यादातर जो व्यवस्था हैप्पीनेस की है, आप खुश रहिए और अपने अगल बगल भी आप खुश रखिए।
0: जी,
1: एक दूसरे को आपको नर्चर करना है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बिल्ड करना है, यही हैप्पीनेस है।
0: जी डॉक्टर राजेश, अगर किसी को अपनी लाइफ में कोई क्लियर पर्पस ही फील नहीं होता हो, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? जो शुरुआती एक होता है कि हम अब थक चुके हैं, तो अब फील नहीं हो रहा है पर्पस कि क्या है हमारी लाइफ का पर्पस, तो वो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए?
1: देखिए, ये जो प्रश्न है ना आपकी, ये बड़ा टेक्निकल है। कभी कभी चीजें जो होती है ना कि लगता है मेरा कोई पर्पस नहीं, तो ऐसे समय मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पर्पस ढूंढने के लिए ना आप कम से कम परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ करके थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा हाथ बटाइए, कभी कोई छुट्टियों में जाइए, किसी सोशल इंस्टीट्यूशन में जाइए, किसी एनजीओ में जाइए, किसी फाउंडेशन में जाइए, कुछ देर आप बिना सेवा दीजिए, अपना वॉलंटरी वर्क कीजिए, तो आपको सारे गोल समझ आएंगे। नेचर के साथ समय बिताइए, पेट्स के साथ समय बिताइए, आपको अपने आप चीजें मिलने लगेगी, क्लैरिटी। आप एक फ्रेम में रहते रहते मोनोटोनियस हो गए हैं, जब आप वहां से निकलेंगे तो फिर आपको सारी चीजें साफ दिखेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, बहुत सारी बातें आपसे चल रही हैं, और यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील बैड।

0: वेलकम बैक वीडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ बातें हमारी चल रही हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर हम कई सारे लोगों को देख रहे हैं जिनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट नजर आती है और उन्हें देखकर होता है फोमो, उसे मेंटली कैसे हैंडल करें ये जरा बताएं।
1: देखिए, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से ना आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि आप जो चीज देख रही हैं अपने विजुअल इंपैक्ट से जो आपके अंदर जो ग्राफ बन रहा है उसको हम कहते हैं बीटा वेव्स। आपके ब्रेन में हमेशा बीटा वेव्स के जोन में आप रहते हैं और इसीलिए आप टायर्ड हो जाते हैं, इमोशनल फटीग का शिकार हो जाते हैं और आपको कहीं कहीं अकेलापन लगने लगता है, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। कोशिश कीजिए कम से कम स्क्रॉल कीजिए और जीवन के व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए। हर चीजें मीडिया में जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वो सही नहीं है। सोशल मीडिया की जो सारे चीजें उसको आप देखिए, हम उसके अगेंस्ट में भी नहीं हैं, देखना है, लेकिन अपने व्यवस्था को जानने के लिए आपको उस दृष्टिकोण के साथ जीना होगा। सोशल मीडिया पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं
0: बिल्कुल,
1: और सोशल मीडिया से आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो आप जीवन में हमेशा निराश ही रहेंगे, क्योंकि आप तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं
0: बिल्कुल,
1: आप तो उतने रिच भी नहीं है, आपके अंदर बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आपकी सोशल मीडिया में नहीं मिल सकता है
0: बिल्कुल।
1: समस्याओं के समाधान के लिए आपको अपने आप में ढूंढना पड़ेगा और अपने आप में ही समाधान को भी निकालना पड़ेगा और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सो मेरा कहने का अर्थ है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने आप को जस्ट देखना है।
0: डॉक्टर राजेश, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, क्या ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम आगे चलकर जो हैप्पीनेस को किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं?
1: ये तो डिपेंड करता है परिवार के ऊपर। परिवार जो है वही सबसे पहला पाठशाला होता है बच्चों का, स्कूल तो सेकेंडरी होता है मेरी नजर में। परिवार जो चीज बताता है कि परिवार की जो प्रायोरिटी होती है, फैमिली की जो प्रायोरिटी होती है, पेरेंट्स की जो प्रायोरिटी होती है, वो बच्चा में आपने प्रोग्रामिंग फीड कर दिया है। अगर आप बचपन में ही उसको स्ट्रेस देना कि तुम्हें ये बनना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो तो उसी स्ट्रेस में हो गया। आपने बीजारोपण कर दिया है, अब वो कभी जीवन में रिलैक्स हो ही नहीं सकता है। बच्चे का बचपना मत छीनिए।
0: बिल्कुल,
1: मैं सारे परिवारों से आग्रह करता हूँ बच्चे को बचपना को जीने दीजिए, उसके बचपन को जीने दीजिए
0: बिल्कुल।
1: और आपका काम है केयर करना, कमांड नहीं देना
0: बिल्कुल,
1: यही गलती हो जाती है।
0: जी जी डॉक्टर राजेश, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्या हर वक्त अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव बनाना जरूरी है या नेगेटिव इमोशंस को फील करना भी एक हेल्दी ऑप्शन हो सकता है?
1: ये तो मुश्किल है ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है और हर समय आप पॉजिटिव रह भी नहीं सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो जीवन का क्रम है, चक्र है, अंधकार है, प्रकाश है, दिन है, रात है, ऑपोजिट तो आएगा। इमोशंस भी आपके नीचे और ऊपर स्विंग करते हैं, अप्स एंड डाउन्स में वो वेव्स आपके बनते हैं। अब आपको अपने आप में देखना कि ऐसी कोई निगेटिव इमोशन जो है वो मुझे हार्म ना करे और न वह हमारे परिवार को हार्म करे। अपने अगल बगल के जो सहयोगी हैं, जहां अगर आप कार्य कर रहे हैं, उनको भी यह हार्म ना करे। यही है, दृष्टा बनिए, साक्षी बनिए, विटनेस बनिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, हैप्पीनेस यही है।
0: डॉक्टर राजेश, बहुत सारी बातें जो हैं हम आपसे जान रहे हैं। इसी के साथ एक छोटा सा मैं ब्रेक लेना चाहूंगी, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश, जो कि एक हैप्पीनेस कोच हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ योग गुरु भी हैं। डॉक्टर राजेश, कुछ सवाल मैं आपसे जान रही हूं और मैं अब आपसे अगला सवाल जानना चाहती हूं, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस अगर ना बन पाए तो हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देने का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो क्या हो सकता है?
1: अपने लिए समय निकालना, अपने आप पर आप समय इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहला चीज है फिटनेस, हेल्थ फिटनेस को आप प्रायोरिटी दीजिए। जैसे ही आप हेल्थ फिटनेस की प्रायोरिटी में आप आएंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप करेंगे। आप ज्यादा समय आप अपने आप को दीजिए, 1 घंटे से शुरू कीजिए कि 1 घंटा मुझे देना है। आप वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए, जिम कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। दूसरा टिप्स है कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कीजिए, रूड मत बनिए, इसका ख्याल रखिए। हम जो बातें कर रहे हैं उससे किसी को ठेस ना लगे, हमें बहुत ही उसका ख्याल है। हमारे यहाँ खास करके ये चीजें मिस हो जाती है, कम्युनिकेशन हम बहुत लाउड करते हैं और ख्याल नहीं रखते कि अगले वाले का क्या होता है, इसीलिए बहुत अनहैप्पी हो जाता है सामने वाला है। अरे इवन परिवार में पत्नी भी नाराज हो जाती है और पति को पता ही नहीं कि उसने क्या है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लोगों को हमेशा मैं ख्याल में लाना चाहता हूँ कि आप लाउड मत बनिए अपने कम्युनिकेशन में और डोमिनेट मत कीजिए।
0: बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आपने आज इतनी सारी बातें हमसे करी हैं, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी सारी बातें जो है वो बताई हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आने का। और साथ ही जाते जाते ये भी आपसे जानना चाहूँगी, क्या वो आखिरी संदेश है जो आप अपनी ओर से सभी लिसनर्स तक देना चाहेंगे?
1: खास करके हैप्पीनेस के लिए मैं कहूँगा, अगर परिवार में अगर हैप्पीनेस लाते हैं तो थोड़ा सा छुट्टियाँ बिताइए बाहर में जा करके, और मोबाइल फोन से थोड़ा दूर बचिए, सोशल मीडिया से अलग कीजिए, समय दीजिए परिवार को, बच्चों को, एक दूसरे का ख्याल कीजिए और लाउड मत बनिए, इजी कंफर्टेबल कम्युनिकेशन रखिए।
0: बिल्कुल, चलिए इसके साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी है। हैप्पीनेस कोच है, योग गुरु है और साथ ही साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी है। तो चलिए इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का। संडे का दिन है और संडे वाले दिन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कल आऊंगी आपके पास लेकर ढेर सारी बातें। सुबह 7 से 9 बजे तक आपके साथ रहूंगी, रोजाना रहती हूँ, कल भी रहूंगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।

योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम। वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं आज कहूंगा लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मनोरंजना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइव। हमारा शो बहुत स्पेशल है, उसकी कई सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने को मिलता है कि भैया हमारा भारत जो आत्मनिर्भर बन पा रहा है उसके पीछे उन कौन कौन सी कंपनीज का और लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिसने यहाँ तक आने में हमारी मदद की है कि हम सेल्फ रिलायंट खुद को बोल पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको एक इंडस्ट्री के बारे में पता लगता है, आपको एक स्टार्टअप के बारे में पता लगता है, आपको फाउंडर्स के बारे में पता लगता है, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है। बेसिकली इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर यू अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का लॉन्च करने का सोच रहे हैं तो। So, आज का शो अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइव।

विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें। अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज़ है, तो वो तमाम चीज़ें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मीन्स कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीज़ों में। सेकंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहाँ पर स्मार्टफोन है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसे हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज़्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज़ अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल।

पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर, वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कॉन्टेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोज बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान के पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजिली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जो आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कॉन्टेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कॉन्टेंट बनाए उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसका अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या, ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स। फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इम्पैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइव।

और दोस्तों अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज कि ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज़ का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स सब देखने को मिल जाते हैं जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारे कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कहता हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में, डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

0: करो।
1: वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझाया है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकती हैं, कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफ़ी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज़ अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू वांट टू सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीज़ें इसमें फॉलो करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीज़ें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां।

में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

और दोस्तों अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकेंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। AR टूल्स बनाने होंगे, IoT डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। उसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सोल्यूशन प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवंथ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं? ये चांद है या तुम्हारा कंगन? सितारे हैं या तुम्हारा आंचल? हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू? ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है? ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ऑल राइट, इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये गाने अच्छे लग रहे हैं और साथ साथ इंडस्ट्री की को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, अब तो बात करते हैं आज के ब्रांड की। तो भैया ये जो कंपनी है बहुत पुरानी कंपनी है और काफी अमेजिंग काम कर रही है, इसका नाम है बायोटिक। जी हाँ, बुटीक आपने सुना होगा। सो ये कंपनी बायो और बुटीक का टिक लेकर के बायोटिक बनी है, एक इंडियन ब्यूटी एंड वेलनेस ब्रांड है। कंपनी हालांकि 1992 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और ये ऑफिशियली ऑपरेट करती है अंडर द पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बायो वेदा एक्शन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। कोर आइडिया यहाँ पर जो है वो है एंशियंट इंडियन हर्बल और आयुर्वेदिक विजडम जो है उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिला करके एक नेचुरल ब्यूटी एंड वेलनेस को जो है लोगों की लाइफ में पहुंचाना, उनके जीवन में उसका मूल्य जोड़ना। कंपनी स्टार्ट होती है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के साथ कि भाई जो इसके फाउंडर हैं विनीता जैन मैम, शी वॉज बॉर्न इन कोलकाता। अपनी जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज है, अर्ली डेज, उन्होंने अपनी फैमिली के उनके टी प्लांटेशन एस्टेट्स थे जो कि असम एंड दार्जिलिंग में थे, तो वहाँ पर उन्होंने व्यतीत करे। उन प्लांटेशंस में जाकर वहाँ की हर्बल रेमेडीज को समझा, आयुर्वेदिक जो नॉलेज है उसको समझा, ठीक है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को ट्रीट किया करते थे। नियरेस्ट जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे बहुत दूर हुआ करते थे, लेकिन वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उन्हीं चाय के बागानों में उन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके वो अपना इलाज कर लिया करते थे। जहां से उन्हें आइडिया जो है समझ में आया या आप कह सकते हैं कि हिट किया, ठीक है, दैट वॉज द एक्सपोजर टू रियल ऑन द ग्राउंड हर्बल हीलिंग, जिसके बाद आयुर्वेदा में उनका विश्वास थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बाद में फर्दर उन्होंने हायर एजुकेशन जो है वो परस्यू किया एंड लकीली वो भी उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में किया फ्रॉम स्विट्जरलैंड। देन उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का भी जो है हायर स्टडीज में एडमिशन लिया इन अ बिजनेस स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया। देन उसके बाद 1992 में इस ट्रेडिशनल हर्बल हेरिटेज को लेकर के मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिला करके और साथ साथ जो बिजनेस की पढ़ाई उन्होंने करी, उन्होंने इस कंपनी को लॉन्च कर दिया, जिसके बाद फाइनली एक और उसमें से छोटी कंपनी निकली जो अभी बहुत बड़ी बन चुकी है, जिसका नाम है बायोटेक। विजन है दादी माँ का नुस्खा जो है वो हर घर तक पहुंचाना और एक आयुर्वेदिक तरीके से आपकी स्किन के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करना, आपकी ब्यूटी को एनहेंस करना, ये है इस कंपनी का विजन। सो टुडेज कंपनी इज बायोटेक। आई होप अभी तक ओवरव्यू आपको समझ आ चुका है। ऑन दिस नोट लेंगे म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

0: distorce arcando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, chi ha gara?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
2: गा

इसी एक उम्मीद के साथ कि आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई, फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं सागर, शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम के साथ। ऑन दिस शो में आगे बात करेंगे विनीता मैम के बारे में, बिकॉज मैं बता चुका हूँ बायोटेक हमारी आज की कंपनी है, फाउंडर है विनीता मैम, और अभी तक आपने समझा कि कैसे ये जो है स्टार्ट हुआ। सो मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में विनीता का जन्म हुआ, उसके बाद उनके जो फैमिली के टी प्लांटेशन के जो गार्डन्स हुआ करते थे वहाँ पर विजिट किया करते थे, और वो उन सब चीज़ों को समझते समझते आयुर्वेद को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना शुरू किया। फर्दर स्टडीज़ करके समझ में आया कि इसको लोगों तक भी पहुँचाया जा सकता है। इनका चाइल्डहुड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब क्योंकि इनके बैकग्राउंड की हम लोग बात करेंगे, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ टी प्लांटेशन में गुजरा एंड ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज़ को समझा, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी फिलॉसफी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट या एक स्टेपिंग स्टोन जो है बना वहाँ पर। अबाउट हर फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने आफ्टर स्कूलिंग बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की अब्रॉड से, ठीक है, बिजनेस मार्केटिंग को समझा, US भी गई, स्विट्जरलैंड भी गई, तमाम स्किल्स को गेन करने के बाद, तमाम दुनिया का एक्सपोजर लेने के बाद, तमाम तरह के लोगों को समझने के बाद, दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज को समझने के बाद, फाइनली शी डिसाइडेड अपने देश जाकर एक ब्रांड लॉन्च कर देना चाहिए। उनका मोटिवेशन अगर सिंपल इसी एक लाइन में समझें इसको, तो शी बिलीव्ड कि जो एंशियंट आयुर्वेदिक नॉलेज है, ठीक है, वो डिजर्व करती है एक साइंटिफिक वैलिडेशन एंड मॉडर्न डिलीवरी। उसको एक्सेसिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कंटेम्प्रेरी यूजर्स के लिए, खास तौर पर नए तरीके से सोचने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी नई चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा उसका जो है एक बेस होना चाहिए, एक लेयरिंग उसकी होनी चाहिए। सो दैट वॉज हर मोटिवेशन। हालांकि इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली 1990s की, ठीक है, उस टाइम पर मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल थी, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास नॉलेज के, टीवी, अखबार, रेडियो, इनके माध्यम से चीज़ें हम लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और वहां पर कमर्शियल लेवल पर आपको पता है कि किस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी। सो उस एक मार्केट में जहां पर ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इतने जायंट प्लेयर्स हैं जो इतना सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, इस तरह का विजन लेकर के आना अपने आप में बहुत बोल्ड मूव था। बट फाइनली शी डिड इट, और अभी तक वो जमी हुई है मैदान में, अभी तक उनकी कंपनी जो है अच्छे तरीके से कस्टमर्स को सर्व कर रही है। सो या दैट्स ऑल अबाउट हर बैकग्राउंड। ऑन दिस नोट लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। जाइएगा मत कहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। फील गुड, फील लाइव।

आशा करता हूँ ये वाइब आपको अच्छी लग रही है। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब बात करेंगे दोस्तों हमारी जो आज की कंपनी है बायोटेक, उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। देखिए बायोटेक को स्टैंड आउट क्या कराता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भैया बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनके पास, जैसे कि ब्लेंड है इनके पास एक एंशियंट नॉलेज का साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स का। 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है हमारा आयुर्वेदिक विजडम, उसको वो आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सेकेंड है नेचुरल बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई प्रिजर्वेटिव वो यूज़ नहीं करते हैं, मतलब एज पर द कंपनीज क्लेम दे आर सेइंग कि इनका जो फॉर्मुलेशन है वो ऑर्गेनिकली ग्रोन बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स से निकाले जाते हैं, जैसे कि हिमालयन फुटहिल्स हो गए या अदर जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ से। दे अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स, दे अवॉइड प्रिजर्वेटिव्स, दे अवॉइड सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेज, दैट्स हाउ दे कैन से दैट दे आर क्लीन नेचुरल या फिर सेफ, और लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं। और आज तो आपको पता है कि लोग ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल अप्रोच। जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वो मार्केट किए जाते हैं एज वेजिटेरियन, क्रुएल्टी फ्री, नो एनिमल टेस्टिंग विद रिसाइक्लेबल पैकेजिंग, सो दैट कि ये एनवायरमेंटली जो कॉन्शियस लोग हैं उनको भी केटर कर सकें, उनको भी मतलब ये बता सकें कि भैया हम एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आपकी स्किन को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आप यूएसपी जानना चाहते हैं इस ब्रांड का, तो दे आर स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं केवल वहाँ तक वो रुक गए हैं, उनके पास अपनी एक R&D की टीम है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, खासतौर पर अगर ब्यूटी टेक जैसे इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पर टच कर रहे हैं, R&D बहुत स्ट्रांग हमारी होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद से उसकी लैब टेस्टिंग करा सकते हैं। लोग अब पढ़ने लगे हैं लेबल्स, लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली कि हमें क्या बेचा जा रहा है। तो इन दिस एरा इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उस एक चीज़ को तवज्जो दें, उन लोगों को अप्रिशिएट करें कि हाँ हमारे कस्टमर्स अब इतने एनलाइटेंड हैं, वो इतना समझते हैं इन सब चीज़ों को। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम भैया थोड़ा इन्वेस्ट करें अपनी R&D के ऊपर। एंड लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर अफोर्डेबल नेचुरल ब्यूटी, मतलब कोई इनके पास लग्जरी केमिकल का खर्चा नहीं है। इन्होंने खुद को पोजिशन ही ऐसे किया है कि हम ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, हम ऑर्गेनिक हैं और आयुर्वेदिक हैं। तो भैया इंडियन कस्टमर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है ना कि एक्सेसिबल भी है, अफोर्डेबल भी है, आयुर्वेदिक भी है, सेफ भी है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, व्हाट एल्स यू नीड। सो या दैट्स हाउ दे आर पोजीशनिंग देमसेल्व्स एंड दैट्स हाउ दिस कंपनी इज ग्रोइंग। सो या दैट्स ऑल अबाउट द USPs ऑफ बायोटेक। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। मेरा नाम सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो 107.8 FM के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे की ड्राइवर्स एंड ग्रोथ की। बायोटेक हमारी आज की कंपनी है, ब्यूटी टेक में डील करती है। अभी तक आपने ओवरव्यू समझा, आपने फाउंडर को समझा, फाउंडर के बैकग्राउंड को समझा, पैशन को समझा, विजन को समझा, कहाँ से स्टार्ट हुआ उसको समझा। उसके बाद हमने यूएसपी की बात करी कि व्हाट मेक्स दिस ब्रांड टू स्टैंड आउट इन दिस मार्केट। अब फाइनली यहाँ पर बात करेंगे कि कंपनी को क्या चीज़ें हैं जो आगे लेकर के जा रही है। देखिए, एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि भैया पैकेज्ड आयुर्वेदिक ब्यूटी आपको मिल रही है। हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली 1990s की, वहीं से इसको समझिएगा। अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन अर्ली 1990s में ये नहीं था, ना ये टर्म फेमस थी, ना इसको ज़्यादा लोग तवज्जो दिया करते थे। टीवी बहुत सारे घरों में नया था, रेडियो जो है उनसे हमें जानकारी मिलती थी, और कमर्शियल्स एक मेजर सोर्स हुआ करता था। तो जिस भी तरीके से इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुँचाई जाती थी, हम लोग विश्वास करते थे। उस एरा में ये कंपनी लेकर के आई ये रेवोल्यूशनरी आइडिया। उसके बाद है ऑर्गेनिक ग्रोथ, मिनिमल जो है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, हैवी एड कैंपेन्स नहीं चलाए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं रुके कि हम कमर्शियल लेवल पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। सिंपली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू, प्रोडक्ट मेरिट के थ्रू, तभी शायद आप कह सकते हैं कि इतनी लंबी यात्रा रही है इनकी। वो टाइम लगता है उसमें जब आप उसको लेजिट वे में लेकर के चलते हैं, बट इट लास्ट लॉन्गर, वो भी एक फंडामेंटल होता है। उसके बाद है ओमनी चैनल प्रेजेंस है, मैन एक्सपोर्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक रिटेल तो है, साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स को भी केटर किया हुआ है। तो इंडियन एक ऐसा ब्रांड है ये जो बाहर भी भेज रहा है, बाहर के लोगों को भी स्किन केयर सिखा रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से किया जा सकता है। एडेप्टेशन टू डिजिटल एंड यूथ ऑडियंस, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि यहाँ पर ये ई कॉमर्स पर भी है, ऑनलाइन प्रेजेंस है इनकी, साथ साथ आपको ये दुकानों पर भी मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। सो ऑल दीज आर द थिंग्स जो इस कंपनी को आगे लेकर के जा रही हैं, जो इसकी ग्रोथ में इसकी हेल्प कर रही हैं, जिसके की ड्राइवर्स बन के सामने आ रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो लिटरली इस कंपनी को आगे लेकर के जा रही हैं। जस्ट प्योर आप कह सकते हैं कि एक विल है इनके पास। सो या दैट्स ऑल अबाउट बायोटेक। उम्मीद कर रहा हूँ आज की केस स्टडी आपको पसंद आई। अब इसी के साथ दोस्तों इजाजत चाहूंगा आपसे, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अगर आपको शो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें 8010781078 पर बताइएगा जरूर। पर अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे सागर।

0: के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से वक्त हो गया है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहाँ होती है आपकी हेल्थ से रिलेटेड बातें। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं खास हेल्थ एक्सपर्ट, और आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, शहर के एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डॉक्टर आलोक कुमार झा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि बहुत कॉमन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो अक्सर दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को होती हैं, यानी स्टोन्स की। जी हाँ, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन, ये बहुत कॉमन समस्याएं हैं। अगर आप हर चौथे पांचवें इंसान से बात करें तो उसको कभी ना कभी स्टोन हुआ होता है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और डॉक्टर आलोक कुमार झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना।
3: थैंक यू वेरी मच।
2: सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, यूरिनरी स्टोन्स की हम बात करते हैं या किडनी स्टोन्स की हम बात करते हैं, बेसिकली ये है क्या और कहाँ से आ जाते हैं हमारी बॉडी में? क्योंकि स्टोन तो हम डायरेक्टली ना कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, बट फिर भी ये काफी प्रॉब्लम दे रहे हैं लोगों को।
3: ठीक है, सो ऐसा है कि स्टोन जो है नदी किनारे बनती है, उसी तरह किडनी से जब यूरिन निकलती है वो भी एक नदी की तरह निकलती है, उसी के किनारे स्टोन्स बनती है। यूरिनरी सिस्टम में या पेशाब की जो सिस्टम है पूरी, उसमें स्टोन्स आपको किडनी में बनती हैं और वहाँ से वो नीचे यूरेटर नली में आती हैं और ब्लैडर, और वहाँ से फिर यूरेथ्रा से निकलती है। कई बार ब्लैडर में भी स्टोन्स बन जाते हैं जो वहाँ से निकलते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है स्टोन्स जो हैं वो अटक जाते हैं बीच रास्ते में। जब भी ये स्टोन्स अटक जाते हैं नली में या किसी ऊपर से नीचे आने में, उस वक्त काफ़ी परेशानी होती है रोगियों को। तेज दर्द होती है, इन्फेक्शन होती है, ब्लीडिंग होती है, बुखार आती है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो स्टोन्स बनते हैं वो यूरिन के ही कंपोनेंट से बनते हैं। हर आदमी में स्टोन नहीं बनता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि पूरी जीवन काल में 8-10% लोगों में स्टोन बनने की चांस रहती है पूरी जीवन काल में।
2: जी सर, हमने देखा है कि किडनी और यूरिनरी स्टोन्स आज के समय बहुत कॉमन है, मतलब यंग बच्चों में भी, 20-22 साल के यंगस्टर्स में भी है और 50 साल के व्यक्ति में भी है। सो बेसिकली ये किनको ज्यादा हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, किस व्यक्ति में ज्यादा देखे गए हैं किडनी स्टोन या यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्टोन्स फंस जाते हैं?
3: जो किडनी स्टोन्स होते हैं एक हाई रिस्क ग्रुप होती है। अब ये हाई रिस्क ग्रुप कौन है, पहला डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट पर, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की वेदर कैसी है। अगर आप रेगिस्तानी जगह में हैं, ऐसे जगह जहाँ की काफ़ी हीट और ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पे स्टोन्स बनने की चांस ज़्यादा रहती है। डिहाइड्रेशन होती है, उससे स्टोन्स बनते हैं एंड ग्रेजुअली स्टोन्स बड़े हो जाते हैं एंड सो ऑन। दूसरी डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ जॉब में, अगर आप पूरे समय एयर कंडीशनिंग में रहते हैं तो स्टोन्स बनने की चांस कम रहती है। अगर आप फील्ड वर्कर हैं जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन या और भी बहुत सारे वर्कर हैं, लेबरर हैं जो बाहर में हमेशा काम करते हैं, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत देर तक आप पानी नहीं पीते हैं, तो इन सारे लोगों को स्टोन बनने की चांस ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एज ग्रुप। दी एज ग्रुप जिसमें की पीक होती है स्टोन्स के, वो 40-50 वर्ष में होती है। उसके अलावा और भी कारण है, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है जिससे कि यूरिन में सॉल्ट एक्सक्रीशन, कैल्शियम एक्सक्रीशन, ऑक्सलेट एक्सक्रीशन ज़्यादा होते हैं, उससे स्टोन बनते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है डाइट, कोई भी डाइट्री एक्सेस, कई ऐसे डाइट्री एक्सेस हैं जिससे स्टोन्स बनने की चांस बढ़ जाती है, जैसे एक्सेस कैल्शियम खाना, एक्सेस ऑक्सलेट रिच फूड खाना, एक्सेस प्रोटीन और या एक्सेस प्यूरिन डाइट। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स हैं जैसे विटामिन डी, जिसको एक्सेस में लेने से भी स्टोन बनते हैं। आजकल एक फैशन हो गई है हाई डोज विटामिन लेने का, लेकिन लेने के पहले आप सतर्क हो जाएं, उससे स्टोन बनने की चांस बढ़ सकती है। जब भी कोई सप्लीमेंट लें प्रिकॉशन में, जब कुछ भी आपके खाने पीने का, आप वेज हो या नॉन वेज हो, सब कुछ मॉडरेशन में होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए।
2: जी,
3: कई जिम लोग जाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसके कारण भी स्टोन्स बढ़ जाते हैं।
2: जी,
3: सो

0: अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे कारण हैं, रिपीटेड इन्फेक्शन से भी स्टोन बन सकते हैं
1: जी।
0: दिस इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन स्टोन्स।
1: सो बहुत सारी और भी बातें हम जानेंगे स्टोन्स के बारे में कि स्टोन्स क्यों बन रहे हैं, कुछ रीजंस तो आप जान गए, लेकिन स्टोन किन चीजों के ज्यादा खाने से या किन चीजों को अवॉइड करने से बन जाते हैं, इसको विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। या फिर क्या इसका सोल्यूशन है, क्या लोग जो कहते हैं सिर्फ पानी पीते रहिए स्टोन्स नहीं बनेंगे ये सही है, या फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप बियर पीजिए स्टोन्स जो है वो निकल जाएंगे, तो इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो रोजमर्रा के जीवन में हम सुनते रहते हैं, पर क्या ये सही है, क्या ये वाकई घरेलू इलाज स्टोन्स को बनने से रोक सकते हैं, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में और स्टोन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो किडनी में हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत बार फंस जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। खास तौर पर से मैंने फरीदाबाद और दिल्ली NCR के लोगों को बहुत परेशान देखा है इस प्रॉब्लम से। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी ही ऐसा है, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ की डाइट ही ऐसी है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ पानी और डाइट आपके स्टोन्स बनने का कारण है या फिर कुछ और भी रीजंस होते हैं? ऐसी कुछ बातें और ऐसे कुछ प्रश्नों के आंसर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार झा, एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सर, बहुत सिंपल सी बात हमने देखी है, जनरली जब हम बात करते हैं स्टोन्स की तो हर दूसरा व्यक्ति आपको सलाह देता है आप पानी कम पीते होंगे, सब यही कहते हैं पानी पीजिए, और कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि बियर पी लिया कीजिए उससे स्टोन निकल जाता है। तो क्या वाकई पानी पीना या बियर पीना स्टोन्स को निकाल सकता है, और क्या पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए एक व्यक्ति के जीवन में अगर किसी को स्टोन बनने की टेंडेंसी है?
1: पहली बात है कि अगर आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन है, कि आप किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट नहीं है, नॉर्मल किडनीज है, इन दैट केस पानी इनटेक से ज्यादा जरूरी है यूरिन आउटपुट देखना। यूरिन आउटपुट एक एवरेज एडल्ट मेल या फीमेल का 1.5 लीटर मानते हैं, यानी कि 1.5 लीटर पेशाब 24 घंटे में होना चाहिए। अब अगर आप फील्ड वर्क में हैं तो उस 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट अचीव करने के लिए हो सकता है आपको 4-5 लीटर पानी पीना पड़े, और अगर आप एयर कंडीशनिंग में हैं तो कम पानी से भी 1.5 लीटर यूरिन आउट बन जाता है। रही बात दूसरी बात, पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग, हमेशा बोला जाता है कि बिंज ड्रिंकिंग अवॉइड करना, यानी कि कुछ लोग हैं 1 लीटर सुबह पानी पीते हैं 1 लीटर रात को, नहीं, दिस इज नॉट फिजियोलॉजिकल। आप थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पीते रहिए हर घंटे 2 घंटे पर, इससे क्या होता है स्लो डायूरेसिस होता है, एक कॉन्स्टेंट यूरिन आउटपुट बनते रहती है। अगर आप मेजर नहीं कर सकते हैं यूरिन आउटपुट तो यूरिन का कलर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कम पानी पी रहे हैं या ज़्यादा है। अगर बहुत गाढ़ा पीला रंग का पेशाब हो रहा है अचानक से, दैट मीन्स कि आपने पानी कम पिया है, बढ़ा दीजिए, या पेशाब में जलन हुआ हल्का से, शायद पानी कम पी रहे हैं। सो ये टारगेट हमेशा रहना चाहिए, 1.5 लीटर पेशाब होना चाहिए डेली। नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर्स। कई जगह बहुत हार्ड वाटर होती है, पहाड़ियों में या और भी जगह, वहाँ पर स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। कुछ जगह पानी की क्वालिटी ऐसी रहती है, नेचुरल वाटर की क्वालिटी ऐसी रहती है कि स्टोन्स कम बनते हैं। खाने पीने में बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है। रही बात बियर की, तो बियर एक्चुअली इट इज़ दी डायूरेसिस, यानी कि आप जब बियर लेते हैं तो 1 लीटर 1.5 लीटर जितना भी हो उसकी जो पानी होती है वो स्टोन को पुश आउट करती है, ना कि अल्कोहल पार्ट। खाने पीने में आप हमेशा याद रखिएगा जो कॉमनेस्ट स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, वो डाइट से काफ़ी कुछ रिलेटेड रहते हैं। अगर आपको स्टोन फॉर्मेशन टेंडेंसी है आप कैल्शियम लीजिए मॉडरेशन में, ना कम कैल्शियम ना ज़्यादा, कम लीजिएगा उससे भी स्टोन बनेगा, ज़्यादा लीजिएगा उससे भी स्टोन। सो वो कैल्शियम मॉडरेशन, आपको दूध दही बंद नहीं करना है, क्योंकि दूध दही में कैल्शियम रहता है और आपके खाने के फूड आइटम्स में ऑक्सलेट रहता है, तो जब भी आप एक्सेस ऑक्सलेट लेते हैं तो वो कैल्शियम उसको बाइंड कर लेता है इंटेस्टाइन में ही, सो ऑक्सलेट को एब्जॉर्ब करने में प्रिवेंट करता है। सो दैट्स व्हाई आपको दूध दही बंद नहीं करना है, मॉडरेशन में लीजिए नॉर्मल अमाउंट्स।
0: ऑक्सलेट की बात करें सर, तो ऑक्सलेट रिच फूड जो होते हैं जैसे स्पिनच है, नट्स है, जनरली लोग इसको भी मना करते हैं कि अगर आपको स्टोन्स बन रहे हैं तो आप इनको अवॉइड कीजिए, तो क्या वाकई बिल्कुल भी पालक ना खाएं? क्योंकि पालक एक ऐसी चीज़ है जो एक तरफ कहा जाता है कि आप ज़्यादा खाएं, दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं नट्स जितना खाएं अच्छा है, और लोग गो टू स्नैक में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। सो क्या इनको छोड़ना पड़ेगा या इनको बहुत कम मात्रा में खाएं?
1: नहीं, आपको आई विल नॉट एडवाइज कि इसको छोड़ दीजिए, आप लीजिए बट मॉडरेशन में, अगेन ना ज़्यादा ना कम। जब भी आप ऑक्सलेट रिच फूड्स ले रहे हैं साथ में कैल्शियम रिच फूड्स भी लीजिए, जैसे दूध दही पनीर, इससे क्या होगा कि आपकी एक्सेस ऑक्सलेट जो है इस फूड्स में वो आपको इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होने से बचा देगी, तो आपके यूरिन में नहीं आएगी। सो दैट इज़ वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग स्टोन्स अगर आप ऑक्सलेट्स ले रहे हैं पालक या जो भी, इसलिए आप देखेंगे कि डिश में भी पालक पनीर लोग एक साथ बनाते हैं, सो दैट ये लोग पान में ऑक्सलेट्स रहते हैं तो लोग चूना लगा के लेते हैं, लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो क्रीम के साथ खाते हैं, सो दिस इज टू प्रिवेंट स्टोन्स।
0: ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को लगता है सिर्फ स्वाद के लिए होता, पर ये स्वाद के साथ साथ आप ये देखें हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बरसों से एक्सेप्ट किया गया है और उसको हम इजीली इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन शायद इस तरीके से साइंटिफिकली लोग नहीं सोचते हैं।
1: एग्जैक्टली। और जब भी आप इस टाइप के फूड्स लें तो नेचर ने ऐसे भी फूड्स दिए हैं जो स्टोन को प्रिवेंट करें, जैसे साइट्रस फ्रूट्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब ऑक्सलेट स्टोन्स प्रिवेंट करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं।
0: ओके, तो आप नींबू पानी डेली पी सकते हैं।
1: एग्जैक्टली। एंड एक्सेस सोडियम या एक्सेस सॉल्ट अवॉइड कीजिए, ज़्यादा सोडियम या नमक लेने से यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाते हैं।
0: यही मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि सॉल्ट है, हर चीज में सॉल्ट डला होता है, आप नमकीन भी लेकर खा रहे हो उसमें सॉल्ट है, आप बिस्किट्स भी ले लें उसमें भी हिडन सॉल्ट है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, यंगस्टर्स में खास तौर पर से ये बहुत कल्चर है कि सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया या कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पी लिए, क्या ये भी सर कहने के लिए लिक्विड है, क्या ये भी कहीं ना कहीं स्टोन्स बना रहे हैं?
1: पॉसिबल कि आजकल सोडा वाटर में ही काफ़ी सॉल्ट रहती है, एक्सेस सोडा वाटर से भी लोग बोलते हैं बोन्स वीक हो जाते हैं बिकॉज इट प्रमोट्स कैल्शियम एक्सक्रीशन, सो दैट इज़ वन फैक्टर। एंड दूसरी, जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लें या कुछ भी लें, हमारी एडवाइस यही रहती है कि नेचुरल लीजिए, जो नेचुरल है वो हमेशा आर्टिफिशियल से बेटर रहती हैं।
0: बिल्कुल, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल से हमेशा बेटर रहती हैं, ये तो प्रूवन फैक्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ों का चलन बढ़ गया है, पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये सिर्फ स्टोन्स नहीं बनाते, ये आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर नुकसान तो कर ही रहे हैं, तो इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करते चलिए। बहुत सी बातें और भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं 8010781078 पर। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और बातचीत चल रही है प्रोग्राम ऑल इज वेल में आप ही की हेल्थ के बारे में, जहां हम बात कर रहे हैं आज स्टोन्स के बारे में, यानी किडनी स्टोन्स या यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाने वाले स्टोन्स जो पेशेंट्स को बहुत तकलीफ देते हैं। जिस भी व्यक्ति को स्टोन होता है वो कभी भी छिड़ जाता है, कभी भी उसे दर्द हो जाता है और उसके बड़े इंपॉर्टेंट दिनों में भी उसको तकलीफ होती है, यानी एक बड़ा पेन किलर लेना पड़ता है, कई बार एडमिट होना पड़ता है, कई बार आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो किडनी स्टोन्स है, एक्चुअली में इसको आप पहचाने कैसे, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको किडनी स्टोन्स है और कई बार ये किडनी स्टोन्स अचानक से दर्द देते हैं तो भी व्यक्ति जो है वो घबरा जाता है। तो ऐसी कुछ बातें जानने हैं और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार झा, जो कि जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। सर, आपसे मैं अब जानना चाहूँगी, स्टोन पेन जब होता है तो इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर बॉडी में कोई स्टोन है, जनरली लोग कहते हैं कि कमर में दर्द होता है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? कौन से वो पेन किलर्स जो हैं, क्या सेफ रहते हैं पेन किलर्स लेने? क्योंकि जिसको स्टोन है अगर नहीं निकल रहा है और वो सर्जरी भी नहीं करा रहा है, सो पेन किलर हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है।
1: स्टोन, किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स जो होते हैं या यूरिनरी स्टोन्स के सिम्टम्स, डिपेंड करते हैं कि लोकेशन कहाँ है स्टोन का। किडनी और यूरेटर में यदि स्टोन है तो यूजली साइड में पेन होता है, फ्लैंक पेन बोलते हैं। पेन के साथ साथ नौशिया और वॉमिटिंग बहुत होती है, उल्टी आना, ये काफ़ी कॉमन होता है और कई बार पेशाब में ब्लड भी आता है, तो ये एक वार्निंग साइन है। और अगर ब्लैडर या यूरेथ्रा में स्टोन आ गया है तो अचानक से पेशाब बंद होने का डर रहता है। कई बार ऐसा है कि दोनों किडनी में स्टोन, दोनों यूरेटर में स्टोन आ जाती है, पेशाब अचानक से बंद हो जाता है, यूरिन आउटपुट जीरो हो जाती है। अभी हाल ही में एक 1.5 साल की बच्ची का पेशाब ऑलमोस्ट बंद हो गया था, सिर्फ 1.5 साल की थी, दोनों साइड स्टोन्स थे।
0: इतने छोटे बच्चों को भी सर स्टोन हो सकता है?
1: यूजुअली होता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या मेडिकेशन या सम रीजन हैज टू बी देयर, सो बट एनीवे दैट्स अ लॉन्ग पीडियाट्रिक स्टोन्स, लॉन्ग टॉपिक है इन इटसेल्फ। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। कई बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, खासकर डायबिटिक्स में यूरिन इन्फेक्शन होते ही तेज़ बुखार आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इंटरमिटेंट पेन, यानी कि बीच बीच में दर्द आ रहा है और वो कांस्टेंट पेन होगी, कंटिन्यूस पेन, इट मींस कि मोस्ट प्रॉब्ली किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। वेट करना ठीक नहीं है, स्टोन को निकलवा लेना ठीक रहता है। एंड एट द ऑपोजिट एंड देयर आर साइलेंट स्टोन्स, दे आर मोर डेंजरस। ये साइलेंट स्टोन्स हैं, किडनी को ब्लॉक करते हैं, सिम्टम्स पता नहीं चलता है, धीरे धीरे 2-3-4-6 महीने के बाद हमारे पास आते हैं, तब तक किडनी के फंक्शन जीरो हो चुकी रहती है। सो साइलेंट स्टोन्स आर मोर डेंजरस। जो स्टोन पेन कर रही है दे आर बेटर, एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ, सिग्नल्स दे रहे हैं कि समथिंग इज रॉन्ग।
0: तो साइलेंट स्टोन सर अब हम कैसे पहचाने, अगर किसी व्यक्ति की किडनी में स्टोन है और उसको पता ही नहीं है कि उसको 3-5 साल से स्टोन है, उसको दर्द ही नहीं हो रहा, कोई सिम्टम नहीं है, तो वो पता कैसे लगाए कि उसको स्टोन है?
1: साइलेंट स्टोन्स के लिए द बेस्ट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 3 इन्वेस्टिगेशन है, 1 इज अल्ट्रासाउंड, छोटी सी टेस्ट है, हार्डली 5-10 मिनट लगता है एक अल्ट्रासाउंड कराने में, कोई रेडिएशन नहीं, इमीडिएट रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा है यूरिन टेस्ट, अ सिंपल यूरिन टेस्ट कोई भी लैब कर देगा। एंड नंबर 3 इज क्रिएटिनिन, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। क्रिएटिनिन इज अ सिंपल, एज फॉर स्क्रीनिंग ये 3 टेस्ट इज मोर देन इनफ, काफ़ी है। अगर ये सारे नॉर्मल है फिर चांस बहुत ही कम है कि स्टोन है। इसमें से कुछ भी एबनॉर्मल है तब हम सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं, लाइक अ CT स्कैन और अदर टेस्ट्स।
0: जी, यानी स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। कभी कभी आप स्क्रीनिंग करा लेंगे तो आपको अपने बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। और KFT वगैरह बाद में होते हैं, जब कोई चीज पता चलती है तो उसके बाद KFT कराया जाता है। तो टेस्ट कराने जरूरी हैं, डॉक्टर से अपने नॉर्मल फिजिशियन से मिलते रहिए और वो आपको एडवाइस करते रहेंगे, क्योंकि अगर देर हो गई फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सर, बहुत सारे पेशेंट्स हाई BP या डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। अब हाई BP और डायबिटीज़ मुझे लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल का ही पार्ट बन चुका है, इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं। सो जो डायबिटिक हैं या जो हाइपोटेंसिव हैं, उनको भी क्या चेक कराने चाहिए इस तरीके के स्टोन से बचने के लिए? क्योंकि आपने कहा कि अगर साइलेंट है तो वो किडनी को ख़राब कर रहा है और एकदम लास्ट स्टेज पर जाके पता चलेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
1: यस, सो डायबिटिक्स में नंबर 1 स्टोन बनने की टेंडेंसी थोड़े ज़्यादा रहती है, यूरिन इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। नंबर टू स्टोन डिजीज की हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं 30% हायर रहती है. सो इट्स बोथ वेज, अगर हार्ट की बीमारी है उसमें भी स्टोन की इंसिडेंस बढ़ सकती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजीज बट बिकॉज कि आप बहुत सारा मेडिकेशन भी साथ में ले रहे हैं. सो सच पेशेंट्स को अपार्ट, जो खासकर एट रिस्क पेशेंट्स हैं जैसे कि पहले डिस्कस किया, जो फील्ड वर्क में है या जिनको कोई पहले से बीमारी है, उनको स्क्रीनिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए. एंड वही तीन टेस्ट काफ़ी हैं डायग्नोसिस के लिए, एंड सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन उसके आधार पर हम करते हैं.
0: जी बिल्कुल, यानी कुछ टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कराते रहने चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं या फिर हाइपरटेंसिव हैं. आगे हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या आपका बढ़ता हुआ मोटापा भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ योगदान दे रहा है. वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर पॉडकास्ट में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो दुनिया के किसी भी कोने में आप शेयर कर सकते हैं कभी भी एक लिंक के द्वारा. वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और आज हम बात करें हैं स्टोन्स के बारे में, किडनी में होने वाले स्टोन्स. और इन स्टोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपकी बॉडी से इन स्टोन्स को निकालने को लेकर प्रोसेस बताने के लिए और ये दोबारा ना बने इसके लिए भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जो आज हमें दे रहे हैं शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक कुमार झा जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सर, अब बहुत सी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन अब बात करनी जरूरी है सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ओबेसिटी के बारे में, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक ओबेसिटी किसी को नहीं छोड़ रही है. बहुत सारे लोगों को अपने कह सकते हैं कि कब्जे में ले रखा है. लाइफस्टाइल टू सम एक्सटेंट इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन लाइफस्टाइल की अगर बात ना भी करें तो भी कई बार हेरिडिटरी होता है, कई बार कोई और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता चला जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. सो क्या ये ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं स्टोन्स को बढ़ावा देती है?
1: यस, अभी जो एक स्टडी हुई थी उसमें 80% पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर में या तो ओबीज हैं या एट रिस्क ऑफ ओबेसिटी हैं. दैट्स अ ह्यूज फिगर, 80%. ओबेसिटी या हाई बीएमआई बोलते हैं, उसमें स्टोन बनने की चांस थोड़ी ज़्यादा रहती है, नंबर वन. नंबर टू, सेडेंट्री लाइफस्टाइल. सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्रूवन फैक्टर स्टोन अधिकतर बन जाती है, खासकर अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है. मान लीजिए 6 महीने से बेड रेस्ट में है, ऐसे लोगों में स्टोन्स जल्दी बन जाते हैं.
0: ओके,
1: इट इज़ सेड दैट द पेशेंट passes the skeleton in the urine, यानी कि bone का calcium mobilize होके urine में आ जाती है. इसलिए sedentary lifestyle, जो bed rest में भी है, they should undergo some physiotherapy to strengthen the bones, या ऐसा medication ले जो calcium को prevent करें bone से kidney में आने के. So sedentary lifestyle is definitely one of them, and the bones tend to become weak and the calcium in the bones वो kidney में आ जाते हैं. Obesity definitely is a cause, there's no doubt about it.
0: जी.
1: So, या तो हमारी एक generation में dietary habits इतने change हो गई है कि obesity इतना common हो गया है. So, everyone has to sit down, children, school teachers, doctors, nutritionists, बैठ के dietary patterns change करना होगा. Otherwise, childhood obesity आगे चल के बहुत बड़ा health care problem बन सकती है.
0: जी बिल्कुल, यानी ओबेसिटी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सिर्फ आप ये ना सोचें कि आप थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं, जो जनरली भारतीय भाषा में कहा जाता है कि आप हेल्दी हैं, बच्चा हेल्दी है. अगर मोटा है, बच्चा मोटा होता है तो हेल्दी नहीं होता, या कोई व्यक्ति जो है उसका वेट बढ़ता है तो वो हेल्दी नहीं होता. उसे फिट रहना ज़रूरी है, जो वज़न को कम करके किया जा सकता है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा रीज़न है. इसलिए डाइट को चेंज करें और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें. सर, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की. अब स्टोन किसी को डिटेक्ट हो गया तो क्या दवाइयां हैं, क्या तरीका है जिससे स्टोन को निकाला जा सकता है, अगर कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता या सर्जरी अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि एक साइज के बाद ही सर्जरी हो सकती हैं.
1: सी, दी कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन जो हमारे ओपीडीज में आती हैं, यूरेट्रिक स्टोन की, यानी कि किडनी से स्टोन निकल के नली में फंस गई है, काफी पेन हो रहा है. एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन, दूसरी होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग, जो रुकावट नहीं कर रही है. कई बार किडनी के एक कोने में 5-6 mm की स्टोन पड़ी रहती है, उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, बट वही स्टोन जब नीचे नली में आ जाती है यूरेटर में, सिवियर पेन करती है. सो क्वेश्चन ये उठता है कि किस पेशेंट को दवा से स्टोन निकाला जाता है, किस में दूरबीन से स्टोन को निकालना पड़ता है. अगर स्टोन 4 mm से कम है और इन्फेक्शन नहीं है, ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, तो हम एक ट्रायल देते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का, एंड छोटे स्टोन्स में 70-80% दवा से निकल जाते हैं. लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया, स्टोन बड़ा है और पेन में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, किडनी को ब्लॉक कर रहा है, देन अर्ली सर्जरी इज एडवाइजेबल. फिर जल्दी सर्जरी कराना चाहिए.
0: जी,
1: आजकल सर्जरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. जब हम MBBS में थे तो उस वक्त ओपन सर्जरी यानी कि चीरा वाली सर्जरी बहुत होती थी, अब वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है. सारा स्टोन्स पिछले 20 साल में सारा दूरबीन से ही हजारों सर्जरी किए हैं.
0: जी,
1: या बाहर से दूरबीन डालते हैं, उसको पीसनेल बोलते हैं, या पेशाब के रास्ते से फ्लेक्सिबल दूरबीन डालते हैं, जिसको RARS या URS बोलते हैं. ये दूरबीन वाली ही सर्जरी होती है, और एनर्जी या तो आप लिथोक्लास न्यूमैटिक यूज करता हूँ या लेजर यूज कर सकते हैं, दोनों के अपने इंडिकेशंस हैं. बट सर्जरी अब काफ़ी सेफ हो गई है पहले से, मॉर्बिडिटी कम हो गई है, हॉस्पिटल स्टे 1 या 2 दिन मैक्सिमम, और पेशेंट वापस स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस 3-4 दिन के अंदर अधिकतर पेशेंट वापस जा सकते हैं
0: जी।
1: एक और टेक्नोलॉजी है साउंड वेव से ब्रेक करना, ESWL, छोटे स्टोन्स के लिए अच्छी है, बट उसमें यह है कि हो सकता है कि एक सिटिंग में पूरा स्टोन ना निकले, 2-3 सिटिंग करना पड़े।
0: यानी कई बार सर्जरीज जो है वही ऑप्शन बचता है जिसको कराने से। इतना ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, कोशिश करें कि अगर चीज़ ख़राब हो गई है तो वो सर्जरी से कंट्रोल की जा सकती है, ठीक की जा सकती है। पर डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सर्जरी के बाद भी वापस स्टोन्स बन सकते हैं उसी जगह पर, और ना बने इसके लिए क्या करें?
1: यस, अगर आपने सर्जरी के बाद कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तो 10 साल के अंदर 40% में दोबारा स्टोन बनने की चांस है।
0: So,
1: 40% इज द रेकरेंस रेट विद इन 10 ईयर्स। इसलिए आपको सारा प्रिकॉशन लेना होगा, जो पहला होता है वाटर इनटेक, जैसा कि समझाया, दूसरा है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी है मेडिकेशंस। कुछ स्टोन्स में मेडिकेशन काम करती हैं, यूरिक एसिड हुआ, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, ये सब में मेडिकेशंस देते हैं, जैसे पोटेशियम साइट्रेट, B6 विथ मैग्नीशियम, ये सारे चीज़ प्रिवेंट करते हैं स्टोन्स। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स आए हैं जो ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन घटाते हैं इंटेस्टाइन से। These are not medications, these are probiotics, bacteria हैं जो आपके intestine में ही oxalate को रोक लेते हैं, किडनी तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसके अलावा infection stones में long term suppressive urinary antiseptic लेने पड़ते हैं, आपकी यूरिन स्टेराइल रहेगी, बैक्टीरिया फ्री, तो दोबारा स्टोन होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, मेजॉरिटी 80-90% तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, बट रेयर स्टोन्स भी होते हैं जैसे यूरिक एसिड, फॉस्फेट, जैंथिन एंड अदर्स
0: जी,
1: सबके अलग। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे, सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको हो सकता है कि अगले 10 साल 20 साल 30 साल दोबारा स्टोन ना बने।
0: बिल्कुल, यानी ध्यान तो रखना ज़रूरी है, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी। कहने को स्टोन्स बहुत कॉमन है, लोगों को लगता है हार्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में है तो हार्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए समय समय पर चेकअप कराना, दर्द होने पर डॉक्टर से एडवाइस लेना और सही दवाइयाँ लेना, या फिर सर्जरी कराना ऑप्शन अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई बड़ी समस्या घर ना कर लें। सो डॉक्टर झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक्स अ लॉट।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात प्रोग्राम ऑल इज वेल के एक नए एपिसोड में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, और चर्चा करेंगे आपकी हेल्थ के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद का, हमारे इस कार्यक्रम के नॉलेज पार्टनर के रूप में।

0: अरे हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो फ्रेंड्स, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपके अपने कम्युनिटी मेंबर, और मेरे इस शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे नाम का, एक ऐसी हस्ती का जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। फ्रॉम द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ ऋषिकेश टू द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ फैशन, इनकी जर्नी ट्रूली इंस्पायरिंग है। ही स्टार्टेड हिज करियर विद विल्स इंडिया फैशन वीक एंड सून मेड हिज मार्क एट लैक्मे फैशन वीक, ग्लोबल इंडिया कॉट्योर वीक, टाइम्स फैशन वीक और कई बड़े फैशन प्लेटफॉर्म्स। गणेश व्यास हैज स्टाइल्ड सम ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, दीपा मलिक, आलिया भट्ट, सनी लियोनी, तापसी पन्नू और बहुत सारे रिनाउंड नेम्स। हिज वर्क हैज बीन फीचर्ड इंटरनेशनली इन वोग इटली, एल ऑफिशियल इटली, एल कॉस्मोपॉलिटन एंड मेनी मोर टॉप मैगजीन्स। इन्हें यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है। Along with celebrities, he has also collaborated with global brands like Samsung, Canon, Nestle. So, दोस्तों, एक छोटे से शहर से लेकर international fashion magazines तक का इनका ये सफर है talent, hard work और creativity का perfect example. So, दोस्तों, एक छोटे से शहर से लेकर international fashion magazines तक का इनका ये सफर है talent, hard work और creativity का perfect example. So please join me in welcoming the very talented and inspiring fashion stylist and designer Mr. Ganesh Vyas. Ganesh, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस शो क्रिएटिव मंच में।
1: थैंक यू सो मच गौरी मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई विल से प्लेजर इज ऑल माइन।
0: ओके गणेश, सो आप ऋषिकेश जैसे टाउन से बिलोंग करते हैं और आज एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैशन स्टाइलिस्ट और डिजाइनर बन गए हैं। So how did this inspiring journey begin? हमें ये तो बहुत ही मतलब जानने के लिए मैं excited हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो उस बारे में हमें बताइए।
1: एक्चुअली पहले तो मैं बोलूंगा ऋषिकेश इज द नियरेस्ट सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ।
0: okay.
1: जो मेरा असली घर है वो है ढालवाला, इट्स इन टिहरी गढ़वाल, और जो हमारी नियरेस्ट सिटी है वो ऋषिकेश है। बट जो मेरा बचपन है वो सारा ऋषिकेश, मतलब स्कूलिंग मेरी ऋषिकेश में ही हुई है। तो मैं ढालवाला से ऋषिकेश आता था पढ़ने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन ऋषिकेश ओनली।
0: ओके,
1: तो मुझे बचपन से यही करना था वैसे तो, एंड लाइक उस समय नया नया फैशन टीवी आया था, आई हैव सीन फैशन टीवी, एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, तो मुझे लगा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तो बचपन से ही था कि मुझे यही करना है। आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में ही कुछ करना है।
0: तो मतलब ये फैशन वाली जो आपने बात कही कि मुझे बचपन से, कौन सी क्या एज रही होगी तब आपकी?
1: I was in 6th, I guess, 6th, 7th.
0: Okay, मतलब काफी छोटी एज में, 6th, 7th में इतना आपने सोचा कि मुझे इसी लाइन में जाना है।
1: 10 और 11 साल का हूंगा मैं शायद उस समय।
0: Okay, okay. तो फैमिली का सपोर्ट मिला इसमें?
1: Family is okay about it. They are saying that this not be a main career. ये तो main career हो ही नहीं सकता है, आपको तो पढ़ाई करनी है। So I have done BSc in fashion, 7th, 10th. उसके साथ साथ मैंने BCom भी किया हुआ है।
0: अच्छा, तो ये आपने सब ऋषिकेश से ही किया है?
1: फैशन डिजाइनिंग मैंने दिल्ली से की है, और जो मेरा बीकॉम है वो मैंने ऋषिकेश से किया है।
0: अच्छा, नाइस। मतलब आपका जो आपने बताया कि स्टार्टिंग से फैमिली का भी इतना नहीं था कि उन्हें तो लगता होगा ये कोई
1: स्टिल थिंक, दे स्टिल थिंक, दे थिंक कि अभी भी क्या ही कर रहे हो आप।
0: okay, मतलब उनका वही माइंडसेट है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये वाली चीज ही करियर में होनी चाहिए। बट नहीं, आपने मतलब हम तो ये कहेंगे कि आपने बहुत इसमें भी नाम कमाया है, तो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आई थिंक आप सेट कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में भी। सो

0: तो फिर देन आई स्टार्ट वर्किंग विद हिम. उनके साथ मैंने विल्स इंडिया फैशन वीक किया सबसे पहले. तो दैट्स हाउ द करियर बिगिन.
1: तो योर फर्स्ट बिग ब्रेक केम विद विल्स इंडिया फैशन वीक. सो उस एक्सपीरियंस ने आपके करियर को किस तरह से शेप किया?
0: एक्चुअली विल्स इंडिया फैशन वीक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था पहले, जो कि अब मर्ज होके लैक्मे फैशन वीक हो गया. मतलब दोनों का लैक्मे और विल्स अब मर्ज होके एक ही हो गए. तो जब मैंने विल्स किया तो और लोगों ने भी मुझे रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ही इज वेरी गुड इन स्टाइलिंग, एंड देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी फॉर देयर शूट्स एंड शोज. सो या ऑफ कोर्स मेरे को बहुत ही, मैं कहूंगा कि विल्स इंडिया फैशन वीक से मुझे बहुत
1: कुछ हासिल हुआ है. मतलब वो
0: हाँ, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट बने काफी वहां पे. लोगों को जाना मैंने और मुझे मालूम चला कि काम होता कैसे है एक्चुअली.
1: अच्छा, तो इसमें भी क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स होने बहुत जरूरी हैं?
0: या ऑफ कोर्स यू हैव. सी, केवल कॉन्टैक्ट से भी काम नहीं होता, आपका काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए. आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं और अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है तो नो यूज ऑफ दैट.
1: सो दोस्तों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. जल्दी से सुनकर आते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास.

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर गणेश व्यास, जो एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड स्टाइलिस्ट हैं और डिज़ाइनर भी हैं। सो गणेश, जैसा कि आपने बताया कि आपने लैक्मे फैशन वीक, टाइम्स फैशन वीक और ग्लोबल इंडिया कॉटर वीक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर वर्क किया है, सो विश शो हैज़ बीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर यू टिल नाउ। क्या कोई ऐसी याद है या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको अभी तक याद है, जिसे आप भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते?
1: वैसे तो मैं बोलूँगा कि हर एक फैशन शो में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, बट ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है और पार्ट ऑफ मेरे ख्याल से हमारी जॉब है कि हर दिन आपको नया चैलेंज मिलेगा। बट देर इज़ अ डिज़ाइनर कॉल्ड विक्टर, ही इज़ अ दुबई बेस्ड डिज़ाइनर, उनके साथ मैंने शो किया था। वो ही इज़ द वन जो कि मेरे साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, एक एक चीज़ मेरे साथ शेयर कर रहे थे, मेरे एक एक जो आइडियाज़ हैं वो ले रहे थे। तो वेरी फ्यू पीपल आर लाइक दैट। और वो शो बहुत ही अमेजिंग हुआ है, मतलब अब तक का मेरा बेस्ट शो वो है जो मैंने किया है। और मुझे लगता है कि जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करोगे किसी के साथ, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ हो भी नहीं सकती है। वो इतना अच्छा जो भी आप काम कर रहे हो, वो इट्स नॉट अबाउट शो, इट्स अबाउट एवरीथिंग। जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो चीज़ उतनी अच्छे से हो नहीं सकती।
0: बिल्कुल। और ये कब की बात है, कौन से ईयर की बात?
1: ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है।
0: अच्छा, विच मींस 2023। नाइस। इसके अलावा और कोई ऐसी चीजें हो जो आप कभी नहीं भूल सकते हो? लाइक जैसे आपने बोला हर शो में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। और
1: ओ, एक एक बहुत शो की बात मैं आपने बोला तो मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं बोलूँ शूट की बात, तो जो मेरा जिंदगी का पहला ब्रेक था, पहला शूट था, वो सचिन तेंदुलकर के साथ था।
0: ओ वाओ।
1: सो यस, वाओ, ऑफ कोर्स। एंड आई वाज किड दैट टाइम। मैं सेट पे गया, शूट बॉम्बे में था, मैंने यहाँ से फ्लाई किया। मैं फ्लाई करते ही मेरी फ्लाइट लेट हो गई और मुझे होटल पे जाने का टाइम नहीं मिला, मैं डायरेक्ट सेट पे गया हूँ वहाँ से।
0: okay.
1: मैंने फटाफट जो भी है अपना सामान वामान किया, ये किया, सचिन आए और मैं बिल्कुल कांप रहा था, मुझे लगा मैं तो लेट हो गया आज तो, पता नहीं बैंड बजने वाली है। ही टैब इन माई शोल्डर और बोला प्लीज सेट। स्पॉट भाई को बोला पानी लेके आओ पहले सर के लिए। एंड दैट वॉज सो अमेजिंग। मतलब अभी तक मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुका हूँ, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। एंड देयर द सेकंड इज डॉक्टर दीपा मलिक, वो शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। आई कैन थिंक, मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद आई हैव टू गिव अप, तो दीपा मलिक मेरे को दिखती हैं या उनसे बात होती है, तो मुझे लगता है मैन इफ शी कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट।
0: ओके, सो गणेश आपने ये खुद से ही बता दिया, मैं अभी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे आने ही वाली थी। सो मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, जो लोग ये शो सुन रहे हैं, कि गणेश ने बहुत ही बड़े बड़े सेलेब्स को भी स्टाइल किया हुआ है, लाइक सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर दीपा मलिक, आलिया भट्ट, सनी लियोनी एंड तापसी पन्नू जी। इसके अलावा भी आई थिंक बहुत से सेलेब्स को आपने किया हुआ है स्टाइल। सो इनमें से कोई ऐसा स्टाइलिंग मोमेंट जो आपके लिए ट्रूली स्पेशल रहा हो? एक तो आपने सचिन तेंदुलकर जी का हमें बताया, और दीपा मलिक जी के बारे में आपने जो बताया, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि वो कौन है, क्योंकि हर किसी को अभी नहीं समझ आ रहा।
1: सो दीपा मलिक जी जो है वो है पैरा ओलंपियन, उन्होंने 2016 में रियो पैरालंपिक में मेडल लिया था सिल्वर, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन आई गेस जो जिन्होंने पैरालंपिक में इंडिया के लिए मेडल लिया है। और उसके अलावा शी हैव लाइक एवरीथिंग, खेल रत्न उनके पास है, उनके पास
0: पद्मश्री
1: भी उनके पास है, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस थिंग।
0: वाओ। तो इनको जब आपने स्टाइल किया, मतलब ये कब की बात है, क्या वो कोई शो था या कोई ऐसा?
1: एक पर्सनल इवेंट था, उस पे स्टाइल किया पहली बार।
0: अच्छा।
1: फिर उसके बाद तो I have styled her lot of many time, and I wish कि मैं उनके साथ हमेशा ही बना रहूं, जुड़ा रहूं।
0: So being a stylist, जैसे आपने बताया बहुत से celebs को style करते हैं, so आपने sports personalities को भी किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी और दीपा मलिक जी का आपने बताया। So आपको क्या लगता है, मतलब जैसे sports personalities काफी काम और शांत है, या फिर industry के जो है हमारे बॉलीवुड की personalities को जब आप स्टाइल करते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है दोनों ही?
1: See, अगर मैं बोलूं कि स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को स्टाइल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि they are not that much comfortable in the thing what we are thinking.
0: Okay.
1: वो उतने क्रिएटिव नहीं है, they have a different vision.
0: Yes.
1: In the case of Deepa Malik, she is very open about the ideas, but not everyone is open about the ideas, yeah. right? तो पर जो जो इंडस्ट्री में, जैसे अगर मैं कहूँ कि मॉडल्स हो गए या एक्टर हो गए या एक्ट्रेसेस हो गई, दे अंडरस्टैंड कि हाँ अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम सोच समझ के ही बोल रहे हैं, दे हायर्ड अ प्रोफेशनल और वो हिसाब से ही फिर काम करते।
0: तो आपने जैसे, मैं यहाँ पे नेम लूंगी आलिया भट्ट जी को, आपने किया स्टाइल, तो वो वाला एक्सपीरियंस क्या था? मतलब जो चीज आप उन्हें बता रहे हो, स्टाइल करना बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा आप पहले ये हमारे लिसनर्स को बताइए कि इसमें क्या रहता है, क्योंकि एक आप डिजाइनर भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को पहले लेते हैं।
1: सो स्टाइलिस्ट इज द वन हु डिसाइड व्हाट टू वेयर, व्हेन टू वेयर।
0: ओके
1: ओके, आपका हेयर मेकअप क्या होगा, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स अबाउट योर फुल लुक,
0: ओवरऑल जिसमें ज्वेलरी भी आ गई, मेकअप भी,
1: इट कम्स एवरीथिंग। आपका ड्रेस कौन सा होना चाहिए, आपका मेकअप क्या होगा, आपका हेयर क्या होगा, आपका नेल पेंट कैसा होगा, आपके शूज कैसे होंगे, सो इट कम्स विद एवरीथिंग।
0: ओके, तो ये आप स्टाइलिंग में आप यही करते हैं, और डिजाइनर जो है उसमें आप डिजाइन करते हैं,
1: वी डिजाइन गारमेंट्स एंड हेड गियर एंड एवरीथिंग।
0: ठीक है, तो ये तो हमें दोनों चीजों का फर्क समझ आ गया। सो गणेश, आपने अभी जैसे बहुत सारे सेलेब्स का बताया, तो अभी रिसेंटली कोई हाल ही में आपने किसको स्टाइल किया है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए।
1: सो रिसेंटली मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए डायना पेंटी को स्टाइल किया है, शी इज अमेजिंग वुमन और वेरी अंडरस्टैंडिंग।
0: अच्छा,
1: या वेरी स्वीट, सो दैट एक्सपीरियंस वाज आल्सो वेरी नाइस।
0: सो स्टाइलिंग में आप जो भी चीजें, लाइक आपने बोला क्लोथ्स, फुटवेयर, एवरीथिंग, ज्वेलरी, सब कुछ आता है, तो आप जो उन्हें सजेस्ट करते हैं वो आराम से,
1: इट्स ऑलवेज हैपेंड कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आई हैव टू गिव सम ऑप्शंस आल्सो कि अगर आप ये पहन रहे हो तो यू विल लुक लाइक दिस, अगर आप ये पहनोगे तो इसमें ये चीज एनहांस होगी, या ये वाला पार्ट बेटर लगेगा। सो इट डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कि उसको खुद को क्या लग रहा है, कुछ साइकिक भी होता है हर किसी का कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है।
0: Exactly.
1: तो इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग।
0: मतलब कोई कोई तो ऐसे होते हैं, रिजिड होते होंगे एक ही चीज पे कि वो वो तब तो आपके लिए बहुत आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती होगी, और कोई कोई सब आप पर ही छोड़ देते होंगे कि जो आप कह रहे हो वही
1: हमने।
0: नाइस, ये भी आपका बड़ा ही यू नो डिफरेंट रोल है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जल्दी से वापस आते हैं और हमारी इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं मिस्टर गणेश व्यास के साथ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एक बार फिर से, जिसका नाम है क्रिएटिव मंच। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास, जो बहुत ही मज़ेदार बातें बता रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बातें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, जो ये एक सुपर स्टाइलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर आपके साथ हमें।
1: मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके।
0: हाँ ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है, सो हाउ डिड रिसीविंग दिस अवार्ड इम्पैक्ट योर कॉन्फिडेंस एंड करियर?
1: सी, कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। करियर के लिए मैं कहूँगा कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज ऑलरेडी अवार्ड। अगर आप इंडस्ट्री में बने हुए हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा अवार्ड है कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बीइंग फ्रॉम अ स्कूल और द कॉलेज वेयर आई एम फ्रॉम। तो मेरे लिए तो ये अवार्ड ही बहुत बड़ा है कि जिनको मैं टीवी में देख रहा था, मैं आज उनके साथ काम कर रहा हूँ, दैट्स अवार्ड फॉर मी।
0: तो इस अवार्ड के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, मतलब कैसे आपका कुछ इसमें भी नॉमिनेशन कैसे रहता है?
1: जब मैंने सचिन तेंदुलकर के लिए शूट किया, उसके तुरंत बाद ही मुझे अवार्ड मिला था। तो आई थिंक दैट शूट वाज फॉर जेपी सीमेंट, इट्स शूट प्लस फिल्म, तो ये पूरी एक जैसे एड फिल्म होती है वो है, एंड देन इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एड फिल्म एंड द शूट। या उसके वजह से ही मेरे को मिला, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट इट। नाउ आई डोंट केयर अबाउट इट, बट हाँ, जब आप छोटे होते हो, आप ये आप छोटे होते हो, आप घर वालों के साथ लड़ रहे हो कि आपको इस चीज़ के लिए काम करना है, एंड देन समथिंग केम अप लाइक दिस, तो घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है,
0: कि नहीं ये
1: कर रहा है जिंदगी में,
0: हाँ कि फैशन में भी करियर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये अवार्ड आपको कौन सी एज में मिला था, कितने साल हो गए?
1: आई थिंक I was 22 that time.
0: Okay, nice.
1: अभी मत पूछना कितने साल का हूँ।
0: Okay, okay. ठीक है, नहीं पूछते हम, लेकिन ठीक है, वो आपका ये मैं कह सकती हूँ कि वो आपका स्टार्टिंग पीरियड रहा था, तो वो आपके इस करियर को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहा है। Very nice. So Ganesh, your work has been featured in top international magazines like Vogue Italy, Elle Official Italy and Elle. जब आपने पहली बार अपना work in global platforms पर देखा, so what was the feeling like? क्योंकि ये बहुत बड़े-बड़े names हैं अपने आप में।
1: I know बहुत बड़े-बड़े names हैं, but when you are shooting, you know कि ये यहाँ पे publish होना ही है।
0: Okay.
1: तो वो इतना वो नहीं था amazing, but most of my cousins are out of India. तो जब उन लोगों ने, वन ऑफ माई कजन गॉट होम एंड गेट दैट मैगजीन एंड से कि इज दिस यू, देन आई फील लाइक यस आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ।
0: अमेजिंग, वो फीलिंग तो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि सारे कजन्स में आपका एक
1: द सेम थिंग हैपेंड इन, देयर इज अ आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ माइन कि उत्तराखंड का स्टाइलिस्ट एंड दिस इज दैट, और वो फोटो किसी ने हमारे जो मतलब आई एम गणेश व्यास एंड जो व्यास है वो उत्तराखंड में बहुत ही कम लोग हैं व्यास, सो देयर इज अ स्मॉल
0: मतलब कम्युनिटी,
1: बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, तो उन कम्युनिटी का एक पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी ने उसमें डाल दिया।
0: अच्छा।
1: तो फिर मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो माय फादर नेम, तो दे नो माय दादाजीज नेम, तो द पीपल आर लाइक कि उनका बेटा है, उनका बेटा, देन पीपल आर कनेक्टिंग कि नहीं इसका बेटा नहीं, उसका बेटा नहीं। फिर मेरे पापा ने फोन देखा, ये क्या हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में आज, देन सी ही सेड, उन्होंने मेरी फिर पिक्चर देखी, अरे तेरी फोटो छपी है क्या आज, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, कि
0: मतलब वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ी खुशी वाला एक पल होगा। बिल्कुल, और बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं और फिर ऐसी कुछ चीजें हुए, आपका कभी न्यूज़पेपर में आपके लिए कुछ छप रहा है आर्टिकल, या फिर कभी लोकल न्यूज में भी आ जाए, तो ये चीजें छोटे छोटे मोमेंट्स है जो बहुत ही खुशी देते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी, लाइक पेरेंट्स को और हम लोगों को, और मोटिवेट ही करती हैं ये चीजें। सो गणेश, यू हैव कोलैबोरेटेड विद लीडिंग ब्रांड्स लाइक सैमसंग, कैनन, नेस्ले, so according to you what's the main difference between brands collaboration and celebrity styling?
1: See, brand collaboration में क्या होता है कि आप बहुत ही specify होते हो कि उनको they people have their mindset कि उनको ये ही चाहिए, what you're saying कि rigid होते हैं, वो उनको ये color they will, जब वो मुझे हायर करेंगे वो मुझे बता देंगे ये 50 color हैं, ये 50 color use नहीं करने, बचे हुए जो colors।

0: अब उनको तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम. अब ये नेकलाइन यूज नहीं करनी है या कुछ लोगो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. दे हैव अ वेरी ह्यूज लिस्ट कि आप जब उनके साथ काम करो तो ऐसा ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. आप सेलिब्रिटी के साथ कर रहे हो काम तो दे आर वेरी ओपन अबाउट इट. वेरी फ्यू कलर्स विल बी देयर कि वो कहेंगे कि नो, एंड आई वी विल ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ ये कलर आपके अच्छा नहीं लग रहा है या ऐसा सिल्वर मत पहनो. तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ तो ब्रांड के साथ काम करने में आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छे से खुल के नहीं आती है. क्योंकि वेन यू जब आप किसी क्रिएटिव पर्सन को बांध देते हो कि नहीं आपको इस दायरे में ही काम करना है
1: तो वो नहीं हो पाती, वो
0: क्रिएटिविटी आपकी निकल ही नहीं पाएगी. अनलेस अनटिल जब तक आप फ्री नहीं हो, आपके क्रिएटिव थॉट्स तभी निकलेंगे ना जब आप फ्री.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो यही डिफरेंस है दोनों.
1: और मुझे ऐसा लगता है फैशन भी एक आर्ट ही है अपने आप में. और यू आर लाइक अ फ्री बर्ड है ना, क्योंकि जब तक आपको वो फ्रीडम नहीं दी जाएगी वो चीज वो आउटपुट निकल के आएगा ही नहीं. बिल्कुल. तो मतलब आपको ज्यादा अच्छा मुझे लगता है सेलेब्स के साथ करने में.
0: नॉट जस्ट सेलेब्स बट
1: मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर वो चीज है.
0: दैट्स व्हाई जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं थोड़ा कम करता हूं और जो बाकी फैशन वाला काम है वो मैं ज्यादा करता हूं.
1: ओके गणेश, तो और आपके अभी क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे जो आपके रिसेंटली आ रहे हैं, लाइक फैशन शोज हैं या कौन से किनको आप स्टाइल करने वाले हो, इस बारे में कुछ हमें बताइए.
0: से अभी रिसेंटली एक फैशन शो आ रहा है मेरा जो है भारत डिजाइन शो, उसको मैं स्टाइल करने वाला हूँ. एंड डेफिनेटली देर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड दिस थिंग. पर जो भारत डिजाइन शो है वो इसलिए बहुत मेरे को अट्रैक्टिव और मैं बोलूँगा कि मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें जैसे IPL के लिए बिडिंग लगती है प्लेयर्स.
1: अच्छा.
0: की वैसे मॉडल्स के लिए बिडिंग लग रही है. सो इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट वाइज और क्या बोलेंगे इसे, इट्स अ सीरीज ऑल्सो. आई थिंक दे विल शूट Also, and ये किसी टीवी चैनल पे भी आने वाला है.
1: अच्छा.
0: E24 or something, I have, मतलब मुझे देखना पड़ेगा वो कि कौन सा टीवी चैनल पे.
1: तो
0: I'm very excited.
1: इसमें सारे इंडियन डिजाइनर्स
0: हैं. अच्छा. Almost इंडियन डिजाइनर, इंडियन मॉडल्स, मे बी फ्यू इंटरनेशनल मॉडल्स होंगे बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन डिजाइनर्स होते हैं.
1: नाइस. ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई है. डेफिनेटली अगर ये टीवी पर आएगा हम तो देखेंगे जरूर. सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं हमारे अमेजिंग स्टाइलिस्ट जिनका नाम है मिस्टर गणेश व्यास. सो बहुत ही मजा आ रहा है आज इनसे बात करके. जल्दी से म्यूजिकल ब्रेक से वापस आते हैं और फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस बातचीत को. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8.

पुरस्रार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम जिसका नाम है क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर गणेश व्यास। सो गणेश, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री की, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में, स्पेशली फॉर द यंग टैलेंट। सो वॉट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू अपकमिंग डिजाइनर्स एंड स्टाइलिस्ट हु ड्रीम टू मेक इट बिग लाइक यू?
1: आई थिंक जो यंग टैलेंट है वो सोचता है कि वो कॉलेज से निकलते ही जो है वो डिज़ाइनर बन जाएगा। ऑफ कोर्स यू आर अ डिज़ाइनर, यू हैव अ डिग्री ऑफ डिज़ाइनिंग, पर आपको किसी को तो असिस्ट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या क्या चीज़ें। और आफ्टर डिज़ाइनिंग ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोई डिज़ाइनर नहीं बन सकता, हर कोई स्टाइलिस्ट नहीं बन सकता। देर इज़ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कि आप शायद मर्चेंडाइजर बन जाओ या ऐसे ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपने सोची भी नहीं है। अभी तो सोशल मीडिया इतना चल रहा है, आप सोशल मीडिया डिजाइनर बन सकते हो या आप सोशल मीडिया किसी का हैंडल कर सकते हो बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन। तो आपको पहले बाहर निकल के वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज में सिखाया है वो बस किताबी पढ़ाई है, आपको बाहर आके भी तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी गेन करना पड़ेगा। आई वॉज लकी कि मेरे को मतलब जो आई वॉज लकी कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही जॉब मिल गया कॉलेज के, बट हर कोई शायद इतना लकी नहीं होता, मैं ये बोलूँगा। तो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंस ऑल्सो। जब तक आपके अंदर इतना धैर्य नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में तो काम नहीं हो सकता। अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आजकल की जनरेशन मैंने देखी है वो दे पीपल आर नॉट पेशेंट, दे हैव नो पेशेंस, दैट्स द थिंग। और मुझे लगता है नेटवर्किंग होनी चाहिए आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और इस इन सब के अलावा आपका जो है विजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपका जो विजन है वो बहुत यूनिक होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी को भी कॉपी कर रहे हो। आप एक लाइन, आप अगर किसी भी डिज़ाइनर को देखोगे, दे हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल एंड डिज़ाइनिंग, तो वो हमेशा से ही चला रहा है। आप किसी का भी डिज़ाइन, आप सभ्यसाची देखते हो तो आपको मालूम चल जाता है कि हाँ ये सभ्यसाची है। अगर उसको कोई कॉपी भी कर रहा है तो भी लोग यही बोलेंगे कि हाँ सभ्यसाची है, राइट? तो यूनिक विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी नेटवर्किंग होनी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी नेटवर्किंग से भी बहुत फर्क पड़ता है, जब तक नेटवर्किंग नहीं होगी आपको काम नहीं मिलेगा। ऑल्सो डिसिप्लिन इज मैटर अलॉट, ये नहीं कि आपने एक दिन अच्छा काम कर लिया और दूसरे दिन आप भूल गए, है ना। आपको हर दिन ऐसे ऐसे दिखाना है कि आप आज काम पे जा रहे हो तो ये आज आपका पहला दिन है काम का, आपको उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही पैशन के साथ सारे प्रोजेक्ट करने जैसा आप पहले प्रोजेक्ट में कर रहे
0: हो। बिल्कुल, मतलब वो एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए,
1: वो एक्साइटमेंट भी हमेशा होनी चाहिए।
0: ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, और ये मुझे लगता है हर फील्ड के लिए ये चीज अप्लाई होती
1: है। हर फील्ड के लिए पीपल थिंक दैट या वी हैव मेक, हमने तो कर लिया जितना करना था, एंड देन दे फॉरगॉट अबाउट इट कि अब तो ठीक है, हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। आप जब जा रहे हो तो आप हर दिन बहुत अच्छे से, हर दिन ऐसे सोचो कि ये
0: आपका फर्स्ट
1: डे है और हर दिन आपको जज कर रहा है। और हमारी इंडस्ट्री है भी ऐसी यार, मतलब अगर आप, मैं सोचो मैं एक दिन किसी शूट पे जाऊं और मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस ना करूं तो लोग सारा भूल जाएंगे पीछे, और वो मुझे बुलाना बंद कर देंगे अगली बार से कि यार उसने काम खराब किया। ऐसे मुझे लगता है कि दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू बी कीप इन माइंड।
0: ओके, सो एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी गणेश, जैसे आप कोई चीज, अगर आप डिजाइनर हैं, सो क्या आप एक ही, मतलब एथनिक ही डिजाइन करते हैं या वेस्टर्न भी आता है, ये कुछ अलग अलग लाइंस होती हैं या आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग?
1: सी, हर किसी का फोर्टे अलग होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको एक चीज पे स्टक रहना चाहिए। बीइंग अ स्टाइलिस्ट आई स्टाइल इंडियन वेस्टर्न एवरीथिंग, बट अगर डिजाइनिंग करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं मेंस की डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मेरा वेस्टर्न बहुत अच्छा है,
0: अच्छा,
1: और अगर मैं फीमेल की डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मेरा इंडियन बहुत अच्छा है। तो दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपके अंदर की जो एबिलिटी है वो कैसी है, आपको खुद को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी आता है जब आप कॉलेज से बाहर निकल रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों को देख रहे हो। जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं कौन क्या काम कर रहा है, तो ये आने में बहुत टाइम लगता है। मतलब यू हैव टू लर्न दिस वेरी क्विकली, ये समझना, जितनी जल्दी आप ये समझोगे उतनी जल्दी आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ।
0: अच्छा, मतलब चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ और अपना पता होना चाहिए कि आपका फोर्टे
1: की।
0: बिल्कुल। और जैसे गणेश, फैशन शो की हमने बात की, तो इसमें अब एक रोल रहता है, मेन रोल तो मुझे लगता है क्लोथ्स का और दूसरा मॉडल्स का ही रहता है, तो मॉडल्स भी क्या आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि शो में कैसे हैं? क्योंकि मैंने सभ्यसाची के इनके पेज देखे हैं तो उसमें काफी हेल्दी वाला फोटोशूट भी रहता है मॉडल्स को लेकर, तो काफी हेल्दी मॉडल्स का भी, तो वो एक क्या कॉन्सेप्ट है और आपके में कैसा रहता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: मॉडल्स आर मॉडल्स, मतलब जो डिजाइनर कपड़े बना रहा है वो यूजुअली बना तो नॉर्मल लोग के रहना, हर कोई तो पतला नहीं हो सकता। देर इज़ अ साइज़ एवरीवेयर. वो लड़का भी पहनेगा, लड़की भी पहनेगा, और जो नॉन बाइनरी लोग हैं वो लोग भी पहनेंगे. तो अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि डाइवर्सिटी आ रही है इंडस्ट्री में, कि वो टिपिकल मॉडल मॉडल टाइप मॉडल्स नहीं लेंगे. ऑफकोर्स वो तो लेंगे ही जो मॉडल्स हैं, उनके अलावा जो है वो LGBTQ कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको लेंगे, प्लस साइज मॉडल लेंगे. तो It coming like this.
0: मतलब बहुत साल पहले मुझे याद है हम देखते थे फैशन शो जीरो साइज, जीरो फिगर,
1: जीरो फिगर अभी भी है ऑफ कोर्स. जो जिसका काम मतलब अगर आप बोलोगे मॉडल तो बहुत ही स्पेसिफिक वो है, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया है. लेकिन अभी जो है वो चेंज होता जा
0: थोड़ा
1: रहा है.
0: सा चेंज हो रहा है और मुझे लगता है ये अच्छा भी
1: है. डाइवर्सिटी है क्योंकि हर कोई उतना पतला नहीं हो सकता. आप अगर हमेशा, और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस भी है जो कि पहले शायद लोगों को नहीं लग रही थी, कि आप हमेशा लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप पतले हो जाओ कितना हेल्दी है. ये हेल्दी है ही नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. तो और हर कोई ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता
0: जी. सो गणेश, आपने जैसे बताया आप एक स्मॉल टाउन से हैं और आपको लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट मिला भी और शायद नहीं भी, थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल तो रहा ही आपके साथ, है ना? हाँ, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि फैशन में क्या ही करियर होगा. तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है जो फैशन की लाइन में आना चाहती है, फिर मे बी चाहे वो मॉडलिंग हो या फिर स्टाइलिंग हो या डिजाइनिंग हो, तो वो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से समझाएं? मतलब आपको क्या लगता है कैसे समझाना चाहिए उन्हें? क्योंकि हर पेरेंट अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है कि डॉक्टर इंजीनियर. बहुत लोगों का चेंज भी हुआ है नो डाउट, बट कुछ फिर भी उस पे हैं अड़े हुए कि नहीं ये करियर वाइज अच्छा नहीं है. So कैसे समझाएं?
1: ऑफ कोर्स हर किसी को ये लगता है कि इंडस्ट्री बहुत खराब है. मतलब डिजाइनिंग मॉडलिंग के लिए भी लोगों को यही लगता है. बट मुझे एक चीज, मैं बहुत क्लियर था कि मुझे यही करना है. और मैं आजकल के बच्चों को ये बोलूंगा कि यार आप वैसे भी तो झूठ बोल के घर पे चीजें कर रहे हो ना, राइट? तो आप अगर आपको करना होगा तो आप करोगे ही करोगे. इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू विल डू इट. यू विल मेक योर पेरेंट्स, कि आप अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह से मना लोगे. मना नहीं पाओगे तो तुम उनको प्राउड फील तो करा ही दोगे अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और आपको करना है. जस्ट मेक अ गाइडलाइन कि आपको क्या क्या कैसे करना है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है, मुझे डिजाइनिंग करनी है, मुझे कहाँ से करनी है, मुझे क्या क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए इसके लिए. तो पहले तो एक बेसिक फॉर्मेट बनाओ, अपने घर वालों को समझाओ कि सही इतना खर्चा है, मुझे यहाँ से कॉलेज करना है, इतना टाइम मुझे चाहिए, मिनिमम मुझे इतना टाइम आप दे दो, उसके बाद आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे. सेम विद मॉडलिंग ऑल्सो आई गेस, कि अब तो मॉडलिंग के लिए खैर काफ़ी स्कोप है, आप बिना बताए भी घर पे कर सकते हैं. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो कि अपने घर पे नहीं बता रही थी और मॉडलिंग कर रही हैं. व्हेन दे मेक इट बिग तो उनके घर वालों को पता चला. तो जब आपको करना होगा तो आप कर ही लोगे यार. मतलब मुझे लगता है कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ. इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, इसमें आपका रोल है, आप कितने क्लियर हो अपने थॉट्स के लिए.
0: मींस पैशनेट होना चाहिए आपको
1: और पेशेंस भी होना चाहिए.
0: हाँ, तो दोनों ही चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि एक दिन में आपको शोहरत नहीं मिलती है. तो आपको धीमे धीमे ही सब कुछ होगा. मे बी यू आर लकी इनफ कि आपको एक दिन में ही बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाए.
0: तो जैसे अभी हमने मॉडल्स की बात की, तो इसमें बॉयज भी रहते हैं मॉडलिंग में, तो उनके लिए है ये बेनिफिशियल काफी या नहीं?
1: आई थिंक बॉयज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि अगर एक किसी भी मतलब अगर मैं बोलूं मेंस वेयर का हम लोग शूट कर रहे हैं, तो एक लड़के के साथ दो लड़कियां तो खड़ी होंगी.
0: Exactly.
1: है ना? तो लड़के का जिस चीज के लिए शूट हो रहा है वो बहुत कम है उसकी क्वांटिटी पर. हाँ. लड़कियां उनको फिर भी चाहिए.
0: Exactly.
1: तो लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा है,
0: मतलब स्कोप
1: ज्यादा है. लड़कों के लिए भी स्कोप है, बट यू हैव टू मेक इट लाइक यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू डू इट. और मैं ये भी बोलूँगा कि हाँ, आप इसको फर्स्ट करियर तो मान के पहले मत ही चलो. जब तक आप बिल्कुल ही आपको हर दिन काम नहीं मिलना शुरू हो रहा है,
0: मींस जो मॉडलिंग लाइन है उसके लिए
1: उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो.
0: हाँ, कोई
1: स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो.
0: साइड बाय साइड ट्राई
1: करना चाहिए. जब बहुत अच्छा चलने लग जाए देन यू कैन मेक इट अ फर्स्ट करियर.
0: काफ़ी अच्छी आज आप हमें टिप्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. मे बी जो लिसनर्स सुन रहे होंगे उसमें से बहुत से लोग हो सकता है ऐसे हों जो फैशन में मॉडलिंग में अपना करियर देख रहे हों. तो काफ़ी बेनिफिशियल लग रही है मुझे आज आपकी बातें जो हम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. सो अब लास्ट में गणेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स आज ये शो सुन रहे हैं, तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, या कोई ना कोई तो इसमें स्टडीज़ भी कर रहे होंगे लाइक फैशन डिज़ाइनिंग और भी चीज़ें. सो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो?
1: सी, मैं ये बोलूँगा सबको कि प्लीज़ बी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट. आप अगर स्टाइलिंग स्टाइलिस्ट हैं, मॉडल, आपको मॉडल बनना है, आपको स्टाइलिंग करनी है, आपको डिज़ाइनर बनना है, आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए. यहाँ पे ट्रेंड हर दिन चेंज हो रहा है, ट्रेंड को फॉलो करिए. अब जो आप इंडिविजुअल हो, जो भी आप इंडिविजुअल हो, जो आप सोचते हो, उन थॉट्स को किसी और चीज़ों के साथ मिक्स मत करिए. और अगर आप अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे तो यू विल मेक इट वन डे 101%. मे बी किस कुछ लोग जल्दी कर लें, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लग जाए. सो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट, दैट्स इट. यही मैं बोलना चाहूँगा.
0: थैंक यू सो मच गणेश, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है. डेफिनेटली ये हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं. सो थैंक यू सो मच आपकी जो ये आज हमने जर्नी सुनी, और आपने मतलब कितनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रही है. एक स्मॉल टाउन का लड़का जितना फैशन की दुनिया

0: में नाम कमा रहा है. सो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी.
1: थैंक यू सो मच.
0: सो बहुत बहुत थैंक यू गणेश, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे लिए समय निकाला. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. थैंक यू.
0: सो बहुत सी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी मेरे इस प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिएटिव मंच. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.
2: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ. इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है.

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: वेल हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरजे सागर आया हूं लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ। एंड दिस शो इज रियली स्पेशल फॉर अस, रीजन बीइंग यहां पर हर बार हम एक एक्सपर्ट से बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट ऑल द स्किल सेट दैट दे हैव। आज हमारे साथ यहाँ पर है दिशा सेन। दिशा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। दिशा इज एन एंकर, इज एन एमसी, ऑल्सो अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बींग। दिशा से आज हम बात कर रहे होंगे द आर्ट ऑफ एंकरिंग के बारे में। So we're gonna talk about how it works. अब देखे होंगे लोग शादी होस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट किया जाता है, तो ये जो कला है इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, कैसे अगर आपको कुछ चाहिए इसमें से तो आप क्या स्किल्स जो हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्या वो स्किल्स होती है, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, पैसा कैसे कमाते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी गोना टॉक अबाउट। बट एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम दिशा। हाय दिशा, वेलकम टू आवर शो।
2: हेलो सागर, हाउ आर यू?
1: गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: I am totally fine, बस वायरल चल रहा है तो थोड़ा सा सभी में फैला हुआ है, बाकी I'm fit and fine.
1: Yeah, हाँ, उसमें सबको दौड़ा हुआ है and I wish आप जल्दी ठीक हो जाएं। दिशा, ये शो जो हम करते हैं इसमें हमारा जो मेन पर्पज है वो है हमारे लिसनर्स जो हैं उन लोगों तक स्किल्स हम लोग पहुंचा सके। तो सबसे पहले मैं आपके डोमेन के बारे में बात करना चाहूंगा, अपने शब्दों में अच्छे से बताइए आप क्या करती हैं।
2: मैं एंकर हूँ और मैं फ्रीलांस एंकरिंग होस्ट करती हूँ, उसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, प्रमोशनल इवेंट्स भी होते हैं। बेसिकली मैं जो ज़्यादा मेरा क्राइटेरिया है इवेंट सेक्टर को वो है सोशल इवेंट्स, दैट इज डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो गया, कार्निवल इवेंट्स हो गए, हल्दी संगीत सेरेमनीज हो गए, मेहंदी सेरेमनीज, कॉकटेल पार्टीज हो गए एंड बिसाइड दिस फैशन शो, डांस कॉम्पिटिशन, मतलब फ्रीलांस एंकरिंग में जितना भी कुछ आता है, गवर्नमेंट शोज Also, तो ये सब मैं होस्ट करती हूँ एंड आई एंटरटेन पीपल और गेम्स ऑर्गेनाइज करवाना, ये सब मेरा वहाँ काम रहता है।
1: Okay,
2: and I'm doing it since very long, like 2019.
1: 2019 से आप इसको कर रहे हैं?
2: जी।
1: तो exactly अगर मैं बात करूँ, let's say that you are going to host an event, तो कैसे आप रोड मैप बनाते हो, क्या क्या तैयारियां आप करते हो?
2: हर एक इवेंट का ना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो अगर हम बात करें सोशल इवेंट्स की, लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग्स, वेडिंग्स की हम बात करें तो वेडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी स्क्रिप्टिंग में हमें सबसे पहले तो हमें फैमिली मेम्बर्स को कनेक्ट करना पड़ता है। जो भी हमारे फैमिली में दोनों ही साइड के मेन कैरेक्टर होंगे, लाइक फैमिलीज के एल्डर मैं बोलना चाहूंगी, उनके मम्मी पापा हो गए और फैमिली से रिलेटेड भैया भाभी हो गए, बिल्कुल क्लोज वंस, उनको कनेक्ट करके रखना होता है और स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम को कनेक्ट करके रखना होता है। और यही अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट इवेंट्स की, तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए आप किस कॉर्पोरेट इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं, कब से वो कंपनी स्टार्ट हुई है, एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट दी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर दैट। या एंड स्क्रिप्टिंग भी उनके अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि हर एक इवेंट में एक अलग ही आपको चीज निकल के आएगी कि ये एनुअल डे फंक्शन है, ये गेट टुगेदर है, या अवार्ड फंक्शन है, R&R एक्टिविटीज है। तो इसमें बहुत सारे मतलब इवेंट्स हम बोल देते हैं कि हम इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, बट वो इवेंट में भी इतने सारे क्राइटेरियाज निकल के आते हैं कि तो आपको उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ती है बेसिकली पहले।
1: Enjoy the musical vibe here. Stay tuned with us. My name is Arjun Sagar. Show voice of truth.

0: कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे आर्ट फॉर्म को जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हमने लोग देखे हैं ये माइक पकड़ के आ जाते हैं, हमें हंसा देते हैं, हमें रुला देते हैं, हमें एक्साइट कर देते हैं, हमें मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कला आती कैसे है, कैसे मिलती है वो कला, कैसे बना जाता है एक एंकर, ये हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने शो में। दिशा, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, कोई इंसान इस टाइम आपको सुन रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि आप एक फिफ्थ क्लास के बच्चे को समझा रही है।
1: मैं आई एम नॉट टू गुड यू नो ये बताने में, मतलब एज ए टीचर मैं बहुत बुरी हूँ वैसे, बट हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो उससे लोग सीख सकते हैं कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। वेल आपको सबसे पहले, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूँ, तो आपको होना पड़ेगा बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट। एंकरिंग फील्ड में उतरने के लिए, फ्रीलांस बेसिकली फील्ड में उतरने के लिए, आपको एकदम एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा पर्सनैलिटी के साथ, कि आप किसी से भी खुल के बात कर पाए। सबसे पहले आपको बातें करना आना चाहिए, आपको बातें बहुत अच्छी करना आना चाहिए, और वो भी इंसान टाइम के साथ मुझे लगता है ऐसा सीख जाता है। हर कोई बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं करता, मगर आपको लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए। तो आप जब कनेक्ट करने लग जाओगे तो बेसिकली आपके कनेक्शंस बनने लग जाते हैं। और हमारी फील्ड में बेसिकली फ्रीलांसिंग में अगर मैं बात करूँ, तो हमारी इवेंट इंडस्ट्री में स्पेशली जो एक बहुत बड़ा महत्व रखती है वो है कनेक्शंस। आपके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए, तो अगर आपको बात करना आता है तो आप लोगों से कनेक्ट भी कर पाएंगे। आप सोशल इवेंट्स के सरताज बनना चाहते हैं एंकर्स में, तो आपको लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनका आप इवेंट होस्ट करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें एकदम फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करो। उनको ये सोचो ही मत कि दे आर क्लाइंट एंड दे आर गोइंग टू पे यू। यू हैव टू बी अ फैमिली मेंबर ओवर दैट। आप एक फैमिली मेंबर की तरह बन जाओ बिल्कुल। जब आप एक फैमिली मेंबर बन जाते हो तो आप मजाक मस्ती कुछ भी करोगे, इमोशनल होगे उनके साथ, वो लोग उतना ही कनेक्ट करेंगे और वो इवेंट हिट हो जाएगा आपका।
0: बिल्कुल। एक इवेंट की तैयारी कैसे होती है? लेट्स से कि मैं एक फ्रेशर हूँ बिल्कुल, मेरे को एक इवेंट मिल गया somehow, लेट्स से कि एक एंगेजमेंट है, मुझे उसको जाके होस्ट करना है, तो मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है?
1: मेरे लिए और मुझे लगता है कि हमारे इवेंट इंडस्ट्री में जितने भी एंकर्स हैं ना, सबके लिए ये वाले इवेंट जो होते हैं, संगीत सेरेमनी, रिंग सेरेमनी इज द मोस्ट फेवरेट इवेंट, क्योंकि इसमें इतनी मस्ती मजाक होता है, इतने डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं कि हम लोग खुद भी एंटरटेन होते रहते हैं उनको एंटरटेन करने के साथ साथ। तो सबसे पहले जो तैयारी हमें करनी होती है वो ये होती है कि आपको ब्राइड एंड ग्रूम की सब कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर लव मैरिज है तो वो पता हो, अरेंज मैरिज है तो वो पता हो, फैमिली में कौन कौन है वो सब पता हो। तैयारी करने के लिए हमें पहले उनकी पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स लेनी पड़ती है, कहाँ से क्या तक है, कोई इंसान बुरा तो नहीं मान जाएगा, कि सारी चीजें, मतलब छोटी छोटी बातें हमें नोट करनी होती हैं। और स्पेशली जो नोट करना होता है वो सीक्वेंस होता है, क्योंकि आजकल के जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, संगीत और रिंग सेरेमनी में, तो बेसिकली एंकर्स को इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो हमें हर फैमिली मेंबर जो भी डांस परफॉर्म करने के लिए आ रहा है, उसका नेचर, उसके बारे में कुछ खासियत पता होनी चाहिए, ताकि आप उसके लिए दो लाइनें यू नो शायरी के तौर पे लिख पाओ। आपको वो चीज़ें रेडी करनी पड़ेंगी, एंड ये सब चीज़ें रेडी करने के बाद अब जब स्टेज पर जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा उस इवेंट को हिट करने से। तो बेसिकली स्क्रिप्ट रेडी करने में आपको हर एक फैमिली मेंबर की सीक्वेंस पता होनी चाहिए, डांस परफॉर्मेंस के टाइम पे वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, उनके नेचर के बारे में पता होना चाहिए उनको। आप सबको नोट डाउन, नोट करते जाओ एक एक चीज को, एक सीक्वेंस बनाओ, एक स्क्रिप्ट बनाओ हर एक फैमिली मेंबर के जो भी परफॉर्म करने के लिए आ रहा है उसके बारे में चंद लाइनें लिखो, तो आपका इवेंट हिट हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग में बेसिकली संगीत परफॉर्मेंसेस के लिए यही होता है। और जब मेन स्टेज एरिया पे हम अगर परफॉर्मेंस को साइड रखकर बात करें, तो बात आती है सिर्फ हमारे मेन कंसर्न फोकस पर्सन लाइमलाइट में जो रहते हैं उस टाइम पे, वो होते हैं ब्राइड एंड ग्रूम। उनकी थोड़ी चीज़ों को नोट करो, उनकी लाइफ साइकिल जो रही है, उनका जो रिलेशनशिप साइकिल रहा है उस टर्म में, उनको नोट करना ज़रूरी है। और उनको एंटरटेन करने के लिए बेसिकली आपको उनसे बात करनी पड़ेगी बहुत ओपनली होकर, तब आप अच्छे से एकदम मतलब वो रोमांटिक है या फिर शाई पर्सन है, अगर शाई है तो आपको किस तरह से उनको एंटरटेन करना है, उनको किस तरह से एंजॉयमेंट बनाना है उनको मोमेंट्स को, अगर ऑलरेडी वो पहले ही फन लविंग पर्सनैलिटीज है तो आपको और कैसे इनहेंस करना है उनको, तो वो आपको स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ेगा उनसे बातचीत करके स्पेशली, ये मेन
0: अगर
1: रहता है हमारा।
0: मानकर चलिए आपका सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस में कुछ विलंब हुआ, कुछ डिले हुआ, तो उस टाइम पर क्या ट्रिक्स होती है हमारे पास जो हम कर सकते हैं?
1: ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है बिकॉज हम लोगों के पास ये हमेशा होता है ये हर इवेंट पर होता है कि आप ऑलमोस्ट, अगर आपको क्लाइंट ने बोला कि आप रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी मैम 6 बजे से, एंड एंकर नीड टू बी देयर, और हम पहुंच भी जाते हैं 6 बजे, अगर इवेंट स्टार्ट हो रहा है तो हम 5:30 ही पहुंच जाएंगे, इतना पंचुअल रहना पड़ता है। एंड जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी इवेंट स्टार्ट नहीं होता, उसको फिलर्स डालने के लिए हमें गेम्स करवाने होते हैं, फिर वहां पे आप वहाँ कुछ भी गेम्स करवा सकते हो, लाइक फैमिली से रिलेटेड आप अंताक्षरी वाला गेम करवा लो। मेरा जो मेजरली है, मैं ट्विस्ट के साथ अंताक्षरी करवाती हूँ, स्टार्टिंग में बोलियां डाल के डांस करवाती हूँ, फैमिली में मेंबर्स को एंगेज कर लेती हूँ, और जब भी कोई फिलर बीच में आएगा तो आप मस्ती मजाक के साथ किसी भी पर्सन फैमिली मेंबर को स्टेज पर बुलाकर, बेसिकली कपल्स को बुलाकर कपल्स गेम करवा लो, ताकि बोर भी ना हो और वो लोग भी एंटरटेन होते रहे, तो फिलर्स के लिए आप गेम्स यूज कर सकते हैं।
0: तभी तक मैं समझ में आया कि आपको जिस इवेंट को आप होस्ट करने जा रहे हो उसकी आपको पूरी तैयारी करनी होगी, आपको सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, आपको हर एक फैमिली मेंबर को पर्सनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उनके लिए शायरी लिखें, चार बातें लिखें, उनको समझें आप, और कोई अफेंड तो नहीं हो जाएगा। प्लस आपके पास स्पॉन्टेनियटी होनी चाहिए, आपके पास स्पॉन्टेनियस कुछ गेम्स होने चाहिए कि इंस्टेंटली अगर कुछ डिले हो रहा है तो आप उसको फिल कर पाए। बेसिकली
1: बिल्कुल
0: हमारा हमारा काम है कि इवेंट वहां पर लो ना जाए, इवेंट की एनर्जी हमेशा हाई रहे। राइट ऑलराइट। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मिड इवेंट में आप कॉन्शियस हो गए हो और कुछ गड़बड़ होने वाली है आपको पता है एंड आपने मैनेज कर लिया हो संभाव?
1: ये तो काफी बार होता है, एक आध बार नहीं तो काफी बार हुआ है मेरे साथ, बहुत टाइम हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक जरूरी नहीं है कि फैमिली में प्रॉब्लम हो, कई बार इवेंट्स के टाइम पे लाइट में प्रॉब्लम हो गई या डिले हो गया, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप लेट कर दिया, ब्राइड अभी नहीं आई है, ग्रूम अभी नहीं आया है, वो शूट चल रहा है उनका, तो हमें फिर वहां पे मैनेज करना पड़ता है, काफी देर तक हैंडल करनी पड़ती है सिचुएशन को, बट कई बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, तो हम फिर उस टाइम पे हम थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि वो लोग अपने आप मैनेज कर पाए चीजों को, एंड देन फिर हम बैक टू स्टेज आए।
0: बहुत सर बहुत। लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक हियर, उसके बाद हम बात करेंगे भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन ये बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा होगा। फिलहाल अपने शो को बिना किसी देरी के आगे लेकर चलते हैं। दिशा हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें हमने करी हैं, दिशा के डोमेन को समझा है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो बात करिए। अब बात करते हैं काम धंधे की। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा दिशा, मुझे बताइए कि काम कैसे ढूंढा जाता है इस इंडस्ट्री में, काम कैसे मिलता है?
1: ये वाला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा, ये बहुत ज्यादा अभी आजकल के जो इवेंट सेक्टर्स में न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू एंकर्स आ रहे हैं, उनके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा कनेक्टिंग हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा उनको भी इजी हो जाएगा। जब जिस टाइम पे हमने शुरुआत करी थी, तो उस टाइम पे मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, बेसिकली BGMC किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा उसका भी एक्सपोजर मिला, क्योंकि मेरे कॉलेज में जो मेरे टीचर्स थे, जो प्रोफेसर थे, उनसे भी काफी इवेंट्स मुझे मिले थे उस टाइम पर। तो एक स्टार्टिंग, अगर मैं बात करना चाहूंगी स्टार्टिंग फेज की, तो मैंने स्टार्टअप जो करा है वो मेरे कॉलेज से ही करा है, विद MDO होस्ट करके एंड अपने कॉलेज के इवेंट्स होस्ट करके। वहां से मैंने कुछ वीडियोस बनाए, वीडियोस देकर फिर मैं आगे इवेंट्स में गई। कई बार मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी इवेंट करे हैं स्टार्टिंग में, बट एक दो इवेंट के बाद when you know your worth, तो आपको फिर लगता है कि यार now I have to charge, I need to pay, मेरे को अपना चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं फ्री में अगर इवेंट करूंगी तो फिर वहां मेरा भी वर्थ गिर रहा है। आपको कनेक्शन बनाने के लिए बेसिकली हमारे कुछ एंकर्स के ग्रुप होते हैं, उनको ज्वाइन करना है, वहां से आपको काम आता है। आपके जो क्लोज, मैं कहना चाहूँगी इवेंट इंडस्ट्री कोई पर्सन है जो इवेंट्स होस्ट करवाते हैं या फिर मैनेज करवाते हैं, इवेंटर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं आसपास के, उनसे आपको कनेक्ट करना होगा। एक दो इवेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बट मेजरली आप हर इवेंट को ऐसा मत सोचना कि काम बढ़ाने के लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना है। तो स्टार्टिंग आप कम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी एक वैल्यू बनाकर चलें, ताकि आपको नेक्स्ट कभी भी इवेंट होस्ट करने के लिए आपको बुलाया जाए तो आपके पास ऑलरेडी उतना वर्थ हो कि मैं इस पेज पे ही काम करती हूँ या करता हूँ। कनेक्शन बनाने के लिए बेसिकली यही है कि आपको इवेंटर्स के नंबर नोट होने चाहिए। और आज के टाइम में जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूँ तो वो चल रहा है जस्ट डायल। जस्ट डायल पर इतनी क्वेरीज आती हैं, एंकर्स रिलेटेड, हर एक फील्ड से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जस्ट डायल बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और योर ओन वर्क और एंकरिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो बेसिकली आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो।
0: ऑलराइट ऑलराइट। और कितना फ्रीक्वेंट काम होता है इस इंडस्ट्री में?
1: इवेंट की मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीजन के टाइम पे तो हम तो बिल्कुल टाइम नहीं होता कि घर भी वापस आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर ही होते हैं एक एक हफ्ते के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग उस टाइम पे चल रही होती है। तो मेन पीरियड अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग हो जाती है अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर से इवेंट्स चलते हैं। मई जून जुलाई इजीली चलते हैं, मई तक बहुत इजीली चलता है, देन वो 4 मंथ्स ऐसे होते हैं जब आपके पास काम बहुत कम होता है, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर एज वेल।
0: ओके, और जब काम नहीं होता है तो सस्टेन कैसे किया जाता है, सर्वाइवल कैसे होता है?
1: सर्वाइवल ऑनेस्टली आप इतना ऑलरेडी अर्न कर चुके होते हो कि आपको सर्वाइवल के बारे में इतना सोचना नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता है कि आपके पास बिल्कुल ही काम नहीं है। जो हाई प्रोफाइल्ड एंकर हैं, उनके पास ऑलरेडी ऑफ सीजन भी इतना काम होता है कि आपको सर्वाइवल के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज आप एक साइड से अर्निंग ऑलमोस्ट आपकी जारी रहती है, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ सीजन में जो काम चलते हैं वो होते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज, सोशल को छोड़कर आप हर एक फील्ड में उतर सकते हो। कॉर्पोरेट इवेंट सबसे ज्यादा ऑफ सीजन में होते हैं, लॉन्चिंग है, बर्थडे पार्टीज हैं, और कोई न्यू शॉप का लॉन्च है, एनुअल डे फंक्शंस हैं, तो ये इवेंट्स ऑलमोस्ट चलते ही रहते हैं। वो सदाबहार इवेंट्स हैं, वो ऑफ सीजन भी होंगे, ऑन सीजन भी होंगे, आपको उतना सोचना नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है इवेंट इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आप उतना अर्न कर लेते हो कि आपको सर्वाइवल पीरियड पे भी इतना टेंशन लेने की, बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: दिशा, ऑन एन एवरेज एक इवेंट का अगर मैं बात करूं तो कितना पे आउट होता है एक एवरेज एंकर के लिए, कितना हो सकता है
1: एवरेज? अगर मैं मान के चलती हूँ तो 8 से 10 तो एक इवेंट का चार्ज होता ही होता है, पर इवेंट की मैं इसमें बात कर रही हूँ। पर कुछ इवेंट्स में जो न्यू कमर्स हैं बिल्कुल, वो 6-7 में भी काम करते हैं, 6-7K में। जब आप हाई प्रोफाइल हो जाते हैं तो आप एक इवेंट का 20K भी चार्ज करते हैं। उसमें हो सकता है कि आपका मॉर्निंग इवनिंग इवेंट भी इंक्लूड हो, तो 20-20K, दोनों को मिलाकर 40K, तो एक दिन का आपका हो गया। बाकी स्टार्टिंग फेजेस में 6-7 से बंदा स्टार्ट करता है, बिल्कुल जब न्यू कमर आ रहा है कोई तो। अदरवाइज 8-9 मिनिमम, बिल्कुल बेयर मिनिमम है प्राइस आपका, कि इतना तो एंकर के चार्ज होता ही होता है हर जगह पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम। आई एम डन विद माय क्वेश्चन। दिशा, कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और इस डोमेन में आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो भी इवेंट एंकरिंग के लिए आ रहे हैं, स्पेशली जो एंकर बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डेवलप कर लो कि आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओ कि आप हर एक चीज को ग्रैब कर पाओ, हर किसी के इमोशंस को, उनके वर्ड्स को, उनके जेस्टर्स को ग्रैब कर पाओ, ताकि जब आप स्टेज पर उतरो, आओ, तो उस इंसान के सामने आपको खुद को भी फोबिया ना हो। और एक हमारे फील्ड में सबसे अच्छी कमांडिंग हमें अपनी वर्ड्स पे होना चाहिए, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट इवेंट्स पर होस्ट करने जा रहे हो, तो आपको शब्दों का बहुत बहुत सोच समझ के चयन करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो शब्द यूज होते हैं, बेसिकली वो हिंदी ज्यादा यूज होती है। और हिंदी में भी ऐसी हिंदी होनी चाहिए जहां पर आप कभी ऐसे ठहराव आए, आपको पता चले यहाँ पॉज लेना है, आपको पता चले कि यहाँ पर क्या बोलना है, आपको शब्दों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो एंकरिंग फील्ड में उतरने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको शब्दों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, वर्ड्स नॉलेज होनी चाहिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू अस।
1: वेल, थैंक यू सो मच सागर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि इससे थोड़ा सा और हमारा मुझे भी अपना कुछ कुछ चीजों का पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे सोचना चाहिए अपने बारे में। वेल, थैंक यू सो मच सागर।
0: दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ दिशा ने जितनी बातें हमें बताई हैं वो थी तो एक मोती बराबर, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाए होंगे। इफ यू वांट टू बी एन एंकर, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जो दिशा ने बताया, रोड मैप फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। नाउ दिस नोट, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो, लेकिन अब मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। आइए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की। इसे मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जा सकता है। रेतली दोमट मिट्टी में उगाने पर यह अच्छे परिणाम देती है। मिट्टी के पीएच की बात करें तो मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.0 होना चाहिए, या इसकी रोपाई के लिए थोड़ी क्षारीय मिट्टी भी अच्छी रहती है। तो ये बात तो हो गई किसान भाइयों मिट्टी की। अब बात आती है किस्मों की। एक किस्म है, इस किस्म का नाम है PSG 9 2005। इस किस्म की दरमियानी लंबी और गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली होती है। इसके फल नर्म, लंबे, कोमल और गहरे हरे रंग के होते हैं। मुख्य रूप से कटाई रोपाई के 60 दिनों के बाद की जाती है। इसकी औसतन पैदावार 65 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और फल का औसतन भार 65 ग्राम होता है। ये तो बात रही PSG 9 2005 की। एक और किस्म है जिसका नाम है पंजाब निखार 2020। ये किस्म मध्यवर्ती इंटरनोडल लंबाई के साथ मध्यम लंबाई की बेलें होती हैं। इस किस्म के पत्ते मध्यम आकार और हरे रंग के होते हैं। इसके फल पतले, नर्म, कोमल, लंबे, हल्के हरे रंग के और क्रीमी सफ़ेद बीज वाले होते हैं। ये किस्म बिजाई के 43 दिन के बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसकी औसतन पैदावार 82 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। एक किस्म के बारे में और सुन लीजिए जिसका नाम है पूसा चिकनी। इस किस्म में पत्ते गहरे हरे, मध्यम कद का पौधा और मध्यम आकार के फल होते हैं। इसके फल नर्म और कोमल होते हैं, जिनकी मोटाई 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी औसतन पैदावार 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो ये तो बात रही किस्मों की। इसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ज़मीन की तैयारी। तो ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए और बिजाई का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं बिजाई की। साल में दो बार इसके बीजों को बोया जाता है और बिजाई के लिए उपयुक्त समय मध्यम फरवरी से मार्च का महीना होता है और दूसरी बार बिजाई के लिए मध्य मई से जुलाई का समय उपयुक्त माना जाता है, लेकिन फासले का भी ध्यान रखना पड़ता है। दो बीजों के प्रति क्यारी में बोया जाता है जो कि 3 मीटर चौड़ी होती है और बीजों में 75 से 90 सेंटीमीटर के फासले का प्रयोग किया जाता है। अब बीज की गहराई की बात करें तो बीजों को 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोना चाहिए और बिजाई का जो ढंग है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी गड्ढे खोदकर इसकी बिजाई की जाती है। लेकिन किसान भाइयों, बीज हमारा जो है उसकी मात्रा क्या होना चाहिए, या फिर बीज में कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ रोग भी लग जाते हैं, उनका उपचार कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको दूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आज बात हो रही है काली तोरी के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि बताऊंगा बीजों के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बीज की मात्रा के बारे में। 2.0 किलो बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बीज का जो उपचार है उसके बारे में भी सुन लीजिए। रेती की मदद से बीजों को रगड़कर उनका ऊपरी छिलका उतार लें और अंकुरण बढ़ाने के लिए उन्हें 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब बात आती है पनीरी की देखरेख और रोपण कैसे हो। तो किसान भाइयों, याद रखिए, बीजों को तैयार नर्सरी बेडों पर बोया जाता है मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। सीड बेडों को जमीन से स्पर्श ना होने दें। रोपाई मुख्य रूप से पौधों पर 4 से 5 पत्ते आ जाने पर बिजाई के 25 से 30 दिनों के बाद की जाती है और पौधों की रोपाई कतारों और पौधों में 2.5 × 1.2 मीटर के फासले पर की जाती है। रोपाई के 7 से 10 दिनों के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की खुराक डाली जाती है। बेलों के विकसित होने और फूल निकलने के समय खाद डालना जरूरी हो जाता है। अब बात आती है कि खाद हम कैसे डालें और किस तरह से डालें जिससे कि हमारी जो काली तोरी है इसकी फसल बेहतरीन हो जाए। बताऊंगा, खाद के बारे में भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: का किया।
1: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, बात हो रही है काली तोरी के बारे में, अब जरा खाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि खाद पानी अगर फसल को अच्छे से मिल जाए ना तो आपकी फसल बेहतरीन हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खेत की तैयारी के समय नाइट्रोजन 40 किलो यानी यूरिया 90 किलो, फास्फोरस 20 किलो यानी SSP 125 किलो और पोटेशियम 20 किलो यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलो, इसको शुरुआती खुराक के तौर पर डालना चाहिए। बिजाई के समय नाइट्रोजन के एक तिहाई हिस्से के साथ फास्फोरस और पोटाश डालें। बेलों के शुरुआती विकास के समय या बिजाई के एक महीने के बाद बाकी की मात्रा डाल देनी चाहिए। अब बात आती है खरपतवार की, जो कि किसी भी फसल के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो किसान भाइयों, खेत को नदीन मुक्त करने के लिए मल्चिंग और नदीन नाशक आवश्यक होते हैं। पेंडी मेथालीन 1 लीटर या फ्लूक्लोरालिन 800 मिलीलीटर को प्रति एकड़ में नदीनों के अंकुरण से पहले डालें। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। गर्मियों और सूखे हालातों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और बारिश के मौसम में सीमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद की जाती है और कुछ फसल को 7 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हमारे जो पौधे होते हैं ना, इन पौधों में कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो फसल को बर्बाद कर देती हैं। अब वो बीमारियां कौन सी हैं और किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है काली तोरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनकी बीमारियों के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में। एक बीमारी है जिसका नाम है पत्तों के ऊपरी धब्बे वाला रोग, यानी इस रोग से पत्तों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आते हैं, जिसके कारण पत्ते नष्ट हो जाते हैं। उपचार सुन लीजिए। गर्म और नमी वाले मौसम के शुरू में उपचार करना ज़रूरी है। इस रोग से बचाव के लिए M45 दो ग्राम को 1 लीटर पानी में मिलाकर डालें। इसे क्लोरोथालोनिल बेनोमाइल या डिनोकैप के स्प्रे से भी नियंत्रित किया जा सकता है। पर एक कीट होता है जिसका नाम है भुंडिया। इस कीट से फूल, पत्ते और तना नष्ट हो जाता है। उपचार की बात सुन लीजिए। कीटनाशी स्प्रे की सहायता से इस कीट से बचाव किया जा सकता है। एक और है जिसका नाम है चेपा और थ्रिप्स। ये कीट पत्तों का रस चूसते हैं, जिससे पत्ते पीले होकर गिरना शुरू कर देते हैं। थ्रिप्स का हमला होने में पत्ते मुड़ जाते हैं और कप के आकार में आ जाते हैं या ऊपर की तरफ से मुड़ जाते हैं। अगर इनका हमला खेत में आपको नजर आए तो थाइमेथोक्सम 5 ग्राम को 5 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये बातें तो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से आप अपने पौधों को इस तरह के कीटों से या इस तरह के रोगों से बचा सकते हैं। पर आखिर में बात आती है फसल की कटाई की और बीज उत्पादन की, तो इन दोनों के बारे में भी आपसे बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, काली तोरी के बारे में आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। आखिर में अब वक्त है फसल की कटाई का। बिजाई के 70 से 80 दिनों के बाद फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और 3 से 4 दिनों के अंतराल पर तुड़ाई कर लेनी चाहिए। नर्म और मध्यम आकार की फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। इसकी औसतन पैदावार 66 से 83 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बीज उत्पादन की भी बात सुन लीजिए। काली तोरी की अन्य किस्मों से 1000 मीटर का फासला रखें, खेत में से बीमार पौधों को निकाल दें। बीज उत्पादन के लिए फसल उगाने का उपयुक्त समय फरवरी से मार्च का महीना होता है, क्योंकि सूखे मौसम के दौरान बीजों की तुड़ाई आसानी से होती है। बीज उत्पादन के लिए फलों की तुड़ाई फलों के शारीरिक रूप से परिपक्व होने पर की जाती है। तुड़ाई के बाद गुद्दे में से बीजों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद उन्हें पैक किया जाता है और फिर स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं काली तोरी के बारे में। अगली बार जब मिलूंगा तो किसी और फसल के बारे में आपसे बात करूंगा। फिलहाल आपसे आज्ञा चाहता हूं, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, लेकिन चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूँ राम राम सलाम।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए। आहा, अरे

कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। वो खई के पहन बनाओ रत बहला, खुली जाए बंद अकल का ताला।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिनके बारे में आपसे बात करने वाला हूं वो एक मशहूर लेखिका हैं, नाम है अलका सरावगी। देखिए दोस्तों, जीवन और जगत के विषय में साहित्यकार एक विचारधारा को लेकर चलता है और वो विचारधारा समय के अनुरूप परिवर्तित भी होती है। सामाजिक विचारधारा को उतना ही प्राचीन कहा जा सकता है जितना कि समाज को। सामाजिक विचार एक व्यक्ति का भी हो सकता है और समूह का भी हो सकता है, जाति का भी हो सकता है, दल और राष्ट्र का भी हो सकता है। अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होकर साहित्यकार अपनी कृतियों को नई दिशा देते हैं। अलका सरावगी ने समकालीन सामाजिक आयाम को अपने उपन्यासों में सामाजिक चेतना के उत्कर्ष के रूप में स्थान दिया है, जिसमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व खोए बिना व्यापक रूप से सामाजिक चेतना के संदर्भ को स्वीकार करके अपने को संक्रमण काल से बाहर निकालने का प्रयत्न करे। इस उद्देश्य को लेकर अलका सरावगी समकालीन शक्तियों से समाज को जागरूक करके उसे प्रेरणादायक मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। तो दोस्तों, आज बात होगी अलका सरावगी के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके लेखन के बारे में और इनके जीवन के संघर्षों का भी जिक्र होगा। फिलहाल आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से बदलते युग की आवश्यकताओं के कारण सामाजिक परिवेश, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगत होता है। अलका सरावगी ने अपने समग्र उपन्यासों में सामाजिक जीवन और परिवर्तनशील मानव मूल्यों की गाथा को समाहित किया है। अपने उपन्यासों में समसामयिक यथार्थ को चित्रित करते हुए मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं के साथ साथ रूढ़िगत परंपराओं के विघटन को स्वर दिया है। उनके कलिकथा वाया बाईपास से लेकर जानकी दास तेजपाल मेंशन तक के उपन्यासों में सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। स्वतंत्रता के पूर्व के सामाजिक जीवन एवं उसकी दशाओं को दर्शाया है, तो वहीं स्वतंत्रोत्तर सामाजिक चेतना के साथ आज के समकालीन समाज की विडंबनाओं को व्यापक रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इनके बारे में बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, समाज के रीति रिवाज, पारिवारिक जीवन की शैलियां, जातीय व्यवस्था, सामाजिक मूल्य, नारी की स्थिति, भूमंडलीकरण की विडंबना, यानी कि इन सब को अपने समग्र उपन्यासों में विशद चित्रण किया है। अलका सरावगी द्वारा समाज एवं व्यक्ति के संबंध को गहनता से दर्शाया है। जिस समाज में मनुष्य अपनी सामाजिक समस्याओं के प्रति जागृत नहीं होता है, वो समाज प्रगति कैसे कर पाएगा? समस्याओं के समाधान के प्रति जो प्रयत्न किए जा सकते हैं, वो सामाजिक चेतना की परिणति है। सामाजिक चेतना के अभाव में समाज का सृजन और पोषण संभव नहीं है। लेकिन अलका सरावगी ने समाज की हर उन प्रथाओं को साकार किया है जो परंपरागत हैं, तो आधुनिक भी हैं और समकालीन भी हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, कला की सार्थकता उसके सामाजिक संदर्भों में निहित होती है। जीवन की सार्थकता उसकी सामाजिक परिकल्पना में निहित है। सामाजिक परिवेश से अलिप्त मानव जीवन की धारणा कोरी कल्पना का भटकाव मात्र है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज और राष्ट्र अलग अलग इकाइयों में हैं। इनका परस्पर अटूट संबंध होता है। इन्हीं के दायरे में सुख दुख, आशा निराशा, हारस परिहारस, विजय पराजय, मित्रता शत्रुता, यानी कि ये भाव भूमियों का व्यापार चलता रहता है। भाव, विचार और दर्शन की त्रयी सामाजिक जीवन पद्धति, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और धर्म का स्वरूप निर्धारित करती है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना?

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: जैसा कि दोस्तों मैं पीछे आपसे जिक्र कर रहा था, भाव विचार और दर्शन की त्रयी सामाजिक जीवन पद्धति परंपरा सभ्यता संस्कृति और धर्म का स्वरूप निर्धारित करती है। इन्हीं विचारों को उद्वेलित करती अलका सरावगी ने अपने समग्र उपन्यासों में प्रत्येक युग के समाज की नाड़ियों का स्पंदन महसूस किया है, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व के समाज में प्रचलित अंधविश्वास कुप्रथाएं स्त्रियों का पिछड़ापन और अशिक्षा जैसी समस्याओं को सशक्तता के साथ उभारा है। खासकर मारवाड़ी समाज की दखियानूसी एवं पारंपरिक प्रथाओं का अलका सरावगी ने संवेदनशीलता के साथ दिखाया है, जिसमें स्त्रियों को अकेले घर से बाहर जाने की मनाही है, घूंघट में रहना है, मर्यादाओं का पालन करना शामिल था। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई हैं। तो दोस्तों, अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में और भी बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, आज बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में। उनके उपन्यासों का भी जिक्र मैंने आपसे किया और ये हकीकत है दोस्तों, पुरानी सड़ी गली सामाजिक कुरूतियों को तोड़ने का साहस लेखिका द्वारा निर्भीकता से किया गया है। कली कथा वाया बाईपास में लेखिका द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व के समाज का चित्रण है, तो स्वतंत्रता के पश्चात के सामाजिक बदलाव को भी प्रतिबिंबित किया है, जिसमें शिक्षा के प्रसार के साथ स्त्रियों की दशा में सुधार के संकेत मिलते हैं। कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू अपनी लड़कियों को कॉलेज पढ़ाते हैं और बहू भी पढ़ी लिखी ही लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी बातों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है इनके बारे में, यानी कि अलका सरावगी के बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपसे करूंगा लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश। हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और वेलकम टू रेडियो मानवरचना। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो सिर्फ ट्रेंडिंग ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज का टॉपिक भी ना थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि वो भी हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ट्रेंडिंग तड़का, ये जो आप नाम सुनते हैं ना, ट्रेंडिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बात रोज की कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से हर दिन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो ट्रेंडिंग ही तो हुआ ना। और कहीं तो अगर चाहे बात हो हमारे देश की, या बात हो हमारे विदेश की, या बात हो हमारे सोसाइटी की, या हमारे सोशल मीडिया की, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करते हैं। इसी के साथ ही बहुत से ऐसे स्पेसिफिक डे भी होते हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुँचाने का हम काम करते हैं। और मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ कुछ खास बातें, कुछ खास टॉपिक, जिसे हम यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुड़ी हुई है वो हम सबके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज का टॉपिक भी ना थोड़ा सा अलग है, हटके है, पर हम सबसे जुड़ा हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं नेचर की। जी हाँ, नेचर के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है हिमालयस और समुंदर। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। मैं ऐसा ये नहीं कहूँगी कि हम डेली ही इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना हमारी, कहते ना कि जिस धरती पे हम रहते हैं उसका ही हिस्सा है। और आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ और समुद्र दोनों का कनेक्शन क्या है। एक्चुअली कनेक्शन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आजकल हम डेवलपमेंट, टूरिज्म, ट्रैवलिंग और चेंजिंग लाइफस्टाइल की बातें बहुत करते हैं, लेकिन इसी के बीच नेचर पर पड़ने वाले जो प्रेशर को समझना भी ज़रूरी है। हिमालयस जैसे सेंसिटिव एरियाज जो कि बढ़ते टूरिज्म और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और दूसरी तरफ समुद्र के बढ़ते टेम्परेचर जैसे चेंजेस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ आकर खड़ा होता है। जी हाँ, और वो ये है

क्या नेचर हमें कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं और उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या हम उन सिग्नल्स को सीरियसली समझ रहे हैं या नहीं। तो आज का ट्रेंडिंग तड़का इसी पर कुछ खास होने वाला है। हमारे क्लाइमेट पर, ओशंस पर, हिमालयस पर, बहुत सारी चीज़ों पर बातें करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। जी हाँ, डे लाइफ से कैसे कनेक्टेड है इस पर भी बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में भी। पर उसके साथ मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही प्यार प्यार से गाने भी। तो गाने भी सुनेंगे और साथ में करेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजों की बातें जो हम सबसे जुड़ी है। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, इसके बाद करेंगे बहुत सारी बातें। तो सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो देखने में माउंटेन्स और ओशन से रिलेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो हम सबकी लाइफ से कनेक्टेड है। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालयस की। जी हाँ दोस्तों, जब हम हिमालय का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है कि स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ब्यूटीफुल वैलीज, फ्रेश एयर, रिवर्स, ट्रैकिंग, स्नोफॉल्स और ऑब्वियसली एक परफेक्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन। और ऑनेस्टली हिमालय की ब्यूटी ही कुछ ऐसी है कि हर साल बहुत सारे लोग वहां पर ट्रेवल करने जाते हैं। टूरिज्म पहाड़ी एरिया के लिए एम्प्लॉयमेंट और लोकल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, जैसे कि होटल्स हो गए, होम स्टे हो गए, रेस्टोरेंट्स हैं और टैक्सी हो गई, गाइडर्स हो गए या फिर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड टूरिज्म से ही जुड़ी होती है वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम टूरिज्म नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब टूरिज्म नेचर की कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे। जी हाँ, सोचिए एक छोटा सा हिल स्टेशन, लिमिटेड रोड्स हैं वहाँ पर, लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड स्पेस है और डेलिकेट इकोसिस्टम है। अब अगर पीक सीजन में एकदम से बहुत ज्यादा टूरिज्म आ जाए तो नेचुरली प्रेशर बढ़ेगा ही ना, ट्रैफिक बढ़ेगा, व्हीकल्स बढ़ेंगे, वाटर कंजप्शन बढ़ेगा, वेस्ट जनरेट होगा और कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है वहाँ पर। और यहीं से आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है केयरिंग कैपेसिटी। जी हाँ, सिंपल वर्ड में अगर समझे तो केयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि नेचुरल एरिया कितना ह्यूमन प्रेशर सस्टेनेबिलिटी को हैंडल कर सकता है बिना अपने एनवायरनमेंट को सीरियसली डैमेज किए। मतलब कि किसी डेस्टिनेशन की कैपेसिटी है कि 10,000 विजिटर्स को कंफर्टेबली हैंडल करने की, तो उसे कई गुना ज्यादा क्राउड को बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के वहां पर ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करना प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि क्या इसका सॉल्यूशन है कि लोग हिमालय पे जाना ही बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। ट्रैवलिंग और टूरिज्म इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ जाना होगा, जैसे कि वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करना, अननेसेसरी प्लास्टिक को अवॉइड करना, वाटर वेस्ट न करना, लोकल रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर शेयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना और नेचुरल एरिया में अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन से बचना, क्योंकि माउंटेन सिर्फ इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि वो वाटर, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट सिस्टम का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, हिमालय पर बढ़ता प्रेशर सिर्फ हिमालय की प्रॉब्लम नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे एनवायरमेंट और फ्यूचर से भी है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हिमालय के बाद समुद्र की स्टोरी क्या कह रही है, उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में भी, पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज इस ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं हमारे हिमालयस की, हमारे टूरिज्म की, हमारे जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस चीज़ की कि समुद्र का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ पर क्या इससे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब अभी हमने बात की हिमालय की, टूरिज्म की और नेचर पर बढ़ते प्रेशर की, लेकिन अब चलिए थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करते हैं, पहाड़ों से समुद्र की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है कि अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमने क्या किया है, हमें क्या इससे, हम तो समुद्र के अंदर रहते ही नहीं हैं। लेकिन यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है यार, समुद्र हमारी लाइफ से जितना दूर दिखाई देता है ना, एक्चुअली उतना दूर है नहीं। ओशंस अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल कहते हैं उसे, वो प्ले करता है। ये एटमॉस्फेयर से हीट ऑब्जर्व करता है और ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओशंस भी उस एक्स्ट्रा हीट का एक बड़ा हिस्सा ऑब्जर्व कर रहा है। जी हाँ, और जब समुद्र का टेम्परेचर नॉर्मल पैटर्न से ज्यादा वार्म होता है तो इसका इफेक्ट सिर्फ पानी के टेम्परेचर तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि मरीन लाइफ अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि वेदर पैटर्न चेंज हो सकता है उससे, और कोस्टल एरियाज में भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए कि हम अक्सर कहते हैं कि आज गर्मी कुछ ज्यादा है ना, और ये चीज हम हर साल देखते हैं कि हर साल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर देता है। कभी बारिश अनएक्सपेक्टेड टाइम पर हो जाती है और कभी तो इतना ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है और कभी हीट वेव अनयूजुअल लगती है। लेकिन हर सिग्नल वेदर इवेंट को डायरेक्टली क्लाइमेट से चेंज करना भी सही नहीं होगा ना। लेकिन जब साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म पैटर्न को स्टडी करते हैं तो ओशंस वार्निंग जैसे चेंजेस को क्लाइमेट सिस्टम के इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है, वो है कोरल रीफ्स। अपने कलरफुल कोरल्स की पिक्चर्स जरूर देखी होगी, ये अंडर वाटर इकोसिस्टम का

इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत सारी मरीन स्पीसीज जो है वो उसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब सी वाटर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कोरल जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है और कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो कोरल अपने टिश्यूज में रहने वाले हेल्पफुल एगल को लूज कर देता है, जिसकी वजह से कोरल का कलर फेड हो जाता है या फिर व्हाइट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेचर में कुछ भी कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है। समुद्र वार्म होता है, मरीन इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, जिससे फूड चेन पर भी प्रेशर आ सकता है और इम्पैक्ट इवेंचुअली ह्यूमन कम्युनिटीज तक पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप समुद्र की टेम्परेचर की न्यूज सुने ना, तो उसे सिर्फ ये डिस्टेंट एनवायरमेंट समझकर स्टोरी मत समझिएगा, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर अल्टीमेटली हमारे क्लाइमेट की स्टोरी भी बता रहा होता है। अब सवाल ये है कि अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो हमारी मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी इंटरेस्टिंग कनेक्शन को समझेंगे लेकिन अगले सेगमेंट पे। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और फिर से आ गई हूं मैं लेकर आपके लिए कुछ खास ट्रेंडिंग टॉपिक जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे आस पास के एटमोसफेयर की, हमारे वेदर की, हमारे टेम्परेचर की, हमारे माउंटेन्स की, हमारे हिमालयस की, हमारे ओशंस की, हमारे समंदर की, बहुत सारी बातें इन सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि स्नेहा यार इन सब चीज़ों से हमें क्या मतलब, ये तो बहुत दूर है और हम तो बस कभी कभार ही घूमने जाते हैं। जी नहीं, अगर वहाँ पर कोई दिक्कत होगी ना तो आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप ना ये न्यूज़ सुनते होंगे, हमेशा ये खबर सुनते होंगे कि यहाँ पर बाढ़ आ गई, यहाँ पर इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट वेव हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम सब से ही जुड़ी हुई है, और अगर आज हमने अपने क्लाइमेट पर ध्यान नहीं दिया, अगर आज हमने अपने नेचर पर ध्यान नहीं दिया, तो शायद कल इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हमें सुनने को मिल सकती हैं। तो अभी तक जैसे कि हमने समझा कि समुद्र का टेम्परेचर बढ़ना सिर्फ पानी गर्म होना नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन है मरीन लाइफ से, हाँ पूरे इकोसिस्टम से है। और इसी बात को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि एक ऐसी चीज़ के थ्रू जो समुद्र के अंदर होती है वो है कोरल रीफ्स। जी हाँ, आपने कलरफुल अंडर वाटर पिक्चर्स देखी होंगी, ब्लू वाटर के अंदर रेड ऑरेंज येलो और पर्पल शेड के ब्यूटीफुल कोरल्स। देखने में ये किसी अंडर वाटर गार्डन जैसे लगते हैं ना, लेकिन कोरल सिर्फ ब्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कोरल रीफ्स जो है वो समुद्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम में से एक माने जाते हैं। ये बहुत सारी मरीन स्पीसीज के फूड शेल्टर्स और ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं, इसलिए अगर कोरल रीफ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ कोरल तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। तो चलिए अब समझते हैं इसके बाद कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। हेल्दी कोरल के टिश्यूज में माइक्रोस्कोपिक एगल्स, जिन्हें जूक थैंकली कहा जाता है, ये एगल्स होते हैं कोरल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उनके ब्यूटीफुल कलर्स में भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब सी वाटर टेम्परेचर अनयूजुअली हाई हो जाता है तो कोरल स्ट्रेस में आ सकते हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से कोरल अपने एल्गी को बाहर निकाल देता है, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि कोरल का कलर चला जाता है और वो वाइट दिखने लगता है। इसी प्रोसेस को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लीच कोरल तुरंत डेड नहीं होता है। अगर कंडीशंस इम्प्रूव हो जाए और टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में वापस आ जाए तो कोरल रिकवर भी कर सकता है, लेकिन अगर हीट स्ट्रेस लॉन्ग टाइम तक रहे तो कोरल की सर्वाइवल डिफिकल्ट हो सकती है। और जब कोरल रीफ्स डैमेज हो जाते हैं तो उन पर डिपेंडेंट मरीन स्पीसीज भी अफेक्टेड हो सकती है। सोचिए एक अंडर वाटर इकोसिस्टम में एक छोटा सा चेंज धीरे धीरे फूड चेन की डिफरेंस लेवल तक इम्पेक्ट कर सकता है। इसका कनेक्शन ह्यूमन से भी है। जी हाँ, हेल्दी मरीन सिस्टम जो फिशर्स होते हैं और कोस्टल लाइवलीहुड होते हैं और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि कोरल रीफ्स कोस्टल एरियाज को वेव्स और स्टॉर्म के इंपैक्ट से प्रोटेक्ट करने में भी रोल प्ले करते हैं। इसलिए कोरल ब्लीचिंग को सिर्फ समुद्र के कोरल्स वाइट हो रहे हैं वाली स्टोरी समझना इनकम्प्लीट रहेगा। ये एक्चुअली में एक सिग्नल है कि मरीन इकोसिस्टम एनवायरमेंट चेंजेस के प्रेशर को फील कर रहा है। और दोस्तों, अब तक हमने जैसे कि हिमालय और समुद्र को अलग अलग तरीके से देखा और समझने की कोशिश की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की स्टोरी एक्चुअली में एक क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। जी हाँ, पहाड़ और समुद्र का क्या कनेक्शन है ये समझेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे सिंह आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर आज हम पहाड़ों को, समुद्रों को और अपने क्लाइमेट चेंज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जैसे कि दो अलग अलग स्टोरीज को समझने की कोशिश की कि एक हिमालय की और दूसरी समुद्र की। एक तरफ माउंटेन्स पर टूरिज्म और ह्यूमन एक्टिविटी का प्रेशर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ओशंस की जो वार्मिंग ट्रेंड है वो मरीन इकोसिस्टम पर इफेक्ट कर रही है। लेकिन अब आता है कि आज का टॉपिक जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि हिमालय और समुद्र का कनेक्शन आखिर है क्या और ये हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर मैप में देखें तो हिमालय और समुद्र बिल्कुल अलग अलग प्लेसेस पर हैं, लेकिन क्लाइमेट सिस्टम के लिए अर्थ एक कनेक्टेड सिस्टम है। हिमालय को हम सिर्फ ब्यूटीफुल माउंटेन्स के रूप में देखते हैं, लेकिन ये रीजन स्नो और ग्लेशियर की वजह से फ्रेश वाटर सिस्टम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हिमालय से निकलने वाली एक इंपॉर्टेंट रिवर मिलियंस ऑफ पीपल की वाटर नीड को सपोर्ट करती है और दूसरी तरफ है समुद्र, जो कि ओशंस अर्थ की एक्स्ट्रा हीट का बहुत ज़्यादा हिस्सा ऑब्जर्व करती है और एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस भी करती है। ओशंस टेम्परेचर, विंड्स और रेनफॉल और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बीच कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो पहाड़ पर होने वाला एनवायरनमेंट चेंज सिर्फ पहाड़ तक ही नहीं रुकता है और समुद्र में होने वाला जो चेंज है वो सिर्फ समुद्र तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हिमालय रीजन में ग्लेशियर और स्नोपैक टेम्परेचर चेंज के रिस्पांस में चेंज हो सकता है। इससे रिवर सिस्टम और सीजनल वाटर अडेप्टेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन हो सकता है। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो इसका कनेक्शन एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर और लाखों करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड से हो सकता है। सिमिलरली अगर देखें तो ओशंस अगर वार्म होते हैं तो मरीन इकोसिस्टम, कोस्टल एनवायरनमेंट और वेदर पैटर्न इस पर इफेक्ट हो सकता है। तो इससे पिक्चर क्या बनी, अब आप ये पूछेंगे। तो देखिए, माउंटेन से वाटर, फिर रिवर और फिर वो लोगों तक पहुंचता है और दूसरी तरफ है ओशंस, जहां पर अगर हीट बढ़ती है तो क्लाइमेट चेंज सिस्टम की वजह से हमारे वेदर पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और ये दोनों चेंज एक लार्जर क्लाइमेट सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट करती है। इसीलिए एनवायरनमेंट को अलग अलग बॉक्सेस में देखना डिफिकल्ट है। हम कहते हैं ना कि मुझे तो माउंटेन से क्या लेना देना, या फिर ओशंस तो हमसे बहुत दूर है, हम क्या करेंगे उसके बारे में जान के। लेकिन वाटर, वेदर, फूड, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के थ्रू नेचर के ये सिस्टम्स इनडायरेक्टली हमारी एवरीडे लाइफ से कनेक्टेड है और शायद इसीलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ एक जंगल या फिर एक रिवर या फिर एक माउंटेन को बचाना नहीं है, बल्कि हमें पूरे इकोसिस्टम को इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह समझना होगा। और जब प्रॉब्लम इतनी इंटरकनेक्टेड है तो सॉल्यूशन भी एक जगह से नहीं आएगा। तब इसमें सवाल क्या आता है, सवाल ये है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। क्या टूरिज्म और डेवलपमेंट को रोकना सॉल्यूशन है या हमें डेवलपमेंट का तरीका बदलना होगा, इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर हम बात करेंगे लेकिन अगले सेगमेंट पे। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइट।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का। और आज की ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं हमारे नेचर के बारे में। जी हाँ, अभी तक हमने हिमालयस की बात करी, टूरिज्म पर बात करी, टूरिज्म एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के प्रेशर को समझा, फिर समुद्र के बढ़ते टेम्परेचर और कोरल रीफ्स उस पर हो रहे इम्पैक्ट की बात की, और फिर हमने ये समझने की कोशिश की माउंटेन और ओशंस अलग होने के बाद भी क्लाइमेट सिस्टम में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। लेकिन अब सवाल प्रैक्टिकल सवाल है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? तो अब जब हमने इसके लिए इतनी सारी बातें की, अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो उसमें एक सवाल भी आया कि इन सब से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या हम कैसे उस चीज का एक सॉल्यूशन ढूंढें। क्या सॉल्यूशन है क्या इसका? क्या हमें टूरिज्म को कम्प्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए? क्या पहाड़ी एरियाज में डेवलपमेंट बंद कर दे? क्या लोग बीचेस पर जाना छोड़ दें? ऑब्वियसली इतना सिंपल आंसर तो नहीं है ये, लेकिन डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और एनवायरनमेंट भी। टूरिज्म से लोकल कम्युनिटीज़ को इनकम मिलती है, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है, इंडस्ट्रीज और सिटीज से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। प्रॉब्लम डेवलपमेंट में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम अनप्लान्ड डेवलपमेंट में हो सकती है। इसीलिए आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड में अगर इसका मतलब समझे तो आज की नीड्स को पूरा करना, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज ना करना। अब इसी टूरिज्म के एग्जाम्पल को समझते हैं कि अगर किसी हिल स्टेशन पर टूरिस्ट आ रहे हैं तो फोकस सिर्फ होटल रूम्स बढ़ाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ में वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर अवेलेबल है कि नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट, पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल इकोसिस्टम की कैपेसिटी को भी कंसीडर करना चाहिए। टूरिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इसके अंदर कि प्लास्टिक बॉटल्स या फिर रैपर्स कहीं पर भी थ्रो ना करना और वाटर अननेसेसरी वेस्ट ना करें, नेचुरल एरियाज में लिटरिंग ना करना, लोकल एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करना। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेम रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को फॉलो करते हैं ना, तो कलेक्टिव इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, बल्कि प्लानिंग अथॉरिटीज, बिजनेसेस और लोकल कम्युनिटीज, सबका रोल इसके अंदर आता है। सिटीज में भी सेम प्रिंसिपल अगर अप्लाई होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, लेकिन प्लानिंग के साथ ग्रीन स्पेसेस और ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल को भी इम्पोर्टेंस देना उतना ही जरूरी होता है। और ओशंस के केस में अगर देखें तो हम इंडिविजुअली कुछ सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक रिड्यूस करना, वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना और मरीन एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड ना करना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिविजुअल एक्शन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन सिर्फ इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है, बल्कि पॉलिसीज, साइंटिफिक रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और कलेक्टिव प्लानिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो शायद रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि डेवलपमेंट या फिर नेचर, रियल क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो नेचर के साथ बैलेंस में चले। और दोस्तों, इसी बैलेंस को समझना ही आज की कॉन्वर्जेशन का बिगेस्ट टेक अवे है, क्योंकि माउंटेन्स हो या फिर ओशंस, नेचर हमसे अलग नहीं है, हम भी इसी सिस्टम का पार्ट है। तो समझिएगा जरूर और इसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है मेरा आप सभी से इजाजत लेने का। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से किसी और नए ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, पर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, पर अपने नेचर का, अपने आसपास के एरिया का ध्यान रखिए। आप भी वो जनरेशन है जो कि अपने आगे वाली जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए इस धरती को सेव रखेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है। तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के संग लेक वादा, अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम है सुरक्षा संवाद, जिसे हम आपके साथ लेकर आते हैं खास तौर पर से फरीदाबाद पुलिस के साथ। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर कभी महिला सुरक्षा की बात होती है तो कभी साइबर फ्रॉड की तो कभी ट्रैफिक की, लेकिन आज इसी कड़ी में हम जो बात करने वाली हैं वो बात हम सभी से जुड़ी हुई है, हर किसी के घर से जुड़ी हुई है, हर किसी के लाइफस्टाइल से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशंस के बारे में, हम बात करने वाले हैं ड्रग्स के बारे में, नशा मुक्ति के बारे में, और साथ ही थोड़ी सी बात करेंगे सड़क पर चलते हुए लोगों के बारे में जो गाड़ियां चला रहे हैं पर पेशेंस खो चुके हैं, यानी कुछ हद तक ट्रैफिक के भी बारे में। तो बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं, किसी एक टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दे, ये सारे टॉपिक हम सबसे और आप सबसे जुड़े हुए हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं एसीपी अर्जुन जी, जो कि बटकल के एसीपी हैं और फरीदाबाद पुलिस से जुड़े रहे हैं और काफी समय से पुलिस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद जी।
0: सबसे पहले सर आपसे जानना चाहती हूँ, हम वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे, नशा मुक्ति के भी बारे में बात करेंगे और ट्रैफिक के भी बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज़ें एक आम इंसान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम सड़क पे जाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ट्रैफिक में लोग अपना आपा खो देते हैं, लड़ने लग जाते हैं अगर ज़रा सी गाड़ी कहीं टच हो जाती है, या अगर कोई आपसे तेज़ चला लेता है तो रोड रेज हो जाती है, या फिर अगर कहीं पर थोड़ा सा भी कट मिला तो रॉन्ग साइड भी गाड़ी निकाल लेते हैं। तो ये एक कंट्रोल लोगों का जो है खुद पर से जाता जा रहा है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नशा, ड्रग्स। बच्चे खास तौर पर से इसमें बहुत छोटी उम्र से इन्वॉल्व होने लगते हैं, लेकिन पुलिस हमसे ज़्यादा जानती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो अपराध को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है वेरिफिकेशन। खास तौर पर से वेरिफिकेशन, अगर आप अपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प लगा रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति को अपना मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं। तो सर सबसे पहले वेरिफिकेशन से शुरू करते हैं, वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी है ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, विस्तार से समझाएं और फिर उसके प्रोसेस के बारे में मैं आपसे सवाल पूछूंगी।
1: वेरिफिकेशन आम आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है
0: जी,
1: टेनेंट के लिए भी ज़रूरी है और लैंडलॉर्ड के भी ज़रूरी है
0: जी।
1: आजकल हर घर में कोई ना कोई टेनेंट है, हर घर में कोई ना कोई एक या दो नौकर हैं, और उनकी वेरिफिकेशन होती है तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है या वो गलती करते हैं, जानबूझ के छुपने की कोशिश करते हैं, अपराध की नीयत से कोई काम करते हैं, बहुत लोग नाम बदल के यहाँ रहते हो, अगर उनकी वेरिफिकेशन समय पे हो जाए तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रेस करना बड़ा आसान हो जाता है। अब पश्चिमी बंगाल का आदमी कोई यहाँ आके रह रहा है, काम कर रहा है, फरीदाबाद, गुड़गांव, NCR में, महानगर में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको, क्योंकि मानव मात्र की यहाँ गिनती में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भारत में कोई कहीं जा सकता है और एक यूनिक आईडी ना होने की वजह से हम उसको हर जगह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक की वेरिफिकेशन हो। वेरिफिकेशन के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि वेरिफिकेशन अगर करवाते हैं तो लैंडलॉर्ड है उसके लिए एक बहुत सुरक्षा का, मान लिया वो उनके साथ नहीं करे, अड़ोस पड़ोस में कहीं, रात में, दिन में, कहीं भी अगर कोई वो क्राइम करता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा और ट्रेस हो जाएगा
0: जी।
1: इसलिए बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहिए, आंतरिक सुरक्षा कहिए, इसमें वेरिफिकेशन प्रति व्यक्ति बहुत ज़रूरी है
0: जी। अर्जुन जी, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है जो स्लम एरियाज होते हैं या जो छोटी कॉलोनीज हैं, फरीदाबाद में काफ़ी ऐसी कॉलोनीज हैं, और यहाँ पर किराएदार रखना बहुत कॉमन है, या फिर जो गांव बने हुए हैं, अर्बन विलेजेस जिनको आप कह लेते हैं, उनमें लोगों ने एक एक घर में 10-10 कमरे बना रखे हैं, उन 10-10 कमरों में बहुत सारे लोग जो हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर जो काम करते हैं वो रहते हैं, बहुत सारे लेबर वहाँ पर रहते हैं, इनकी वेरिफिकेशन कराना उनके लिए मुश्किल काम होता है। सो क्या कोई ऐसा प्रोसेस या तरीका है, एक तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी प्रॉपर वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, और बाकी इस तरीके से जहाँ पर ज़्यादा टेनेंट्स रह रहे हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये किराया दे रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति को लगता है कि इतना तो दिन उसने रहना भी नहीं है जितना मैं वेरिफिकेशन कराऊँ।
1: वेरिफिकेशन के लिए मैम बड़ी सी बात यह है कि हम समय समय पर अभियान चलाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों को आपके FM के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जगह जगह पर अभियान चला के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, टेनेंट वेरिफिकेशन करवाएं, सर्वेंट वेरिफिकेशन करवाएं। उन स्लम एरियाज के लिए तो हमने यही अभियान रखा हुआ है कि जब जब मौका मिलता है, जब जब पुलिस राइडर्स जाती है, PCR जाती है, ERVs जाती है, होती है, फिजिकली जाके लोगों को बताते हैं, और कभी कभी हम एक कॉम्बिंग अभियान चलाते हैं। कॉम्बिंग अभियान में हम एक साइड से ले लेते हैं एक बस्ती को, उसको पूरे को कॉम्ब की तरह छानते हैं, कौन वेरिफिकेशन है दिखाइए, वेरिफिकेशन नहीं होती उनकी उस दिन पकड़ के वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरीफाई करते हैं उनको। एक तो ये है। दूसरा जो आपने प्रावधान पूछा, प्रोसीजर पूछा, उसके लिए हमें दो सिस्टम रखे हुए हैं, एक तो है मैनुअल और एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए ये है कि आपके पास किसी भी व्यक्ति ने जो वेरिफिकेशन करवानी है, हमारा हर समय पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाएंगे, उस पे वेरिफिकेशन लिख के आएगी, टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन और पांच चार वेरिफिकेशन और है उनमें। तो जैसे मोस्टली हम जब देखते हैं तो टेनेंट वेरिफिकेशन और सर्वेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो उन पे अपलोड कर देंगे, उनके अपलोड करने के बाद वो पोर्टल के माध्यम से हमारे पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, पुलिस स्टेशन के लोग उसको देख के उस जगह पे वेरीफाई करके, उस आदमी को वेरीफाई करके, दो लोगों को वेरीफाई करवा के वापस अपलोड कर देंगे, और वो वहाँ आके वापस उसी पोर्टल पे आके जैसे अब क्लिक होगा आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी और आपको सर्टिफिकेट निकाल लेंगे। एक प्रोसीजर तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कहीं कुछ दिक्कत आती है, नहीं करवा पाता कोई आदमी, तो वो एक हमारा चैम्बर बना हुआ है, उस चैम्बर में वो जाएं और वहाँ 9 to 5 चलता है, वो सीपी ऑफिस में हमारे यहाँ
0: जी,
1: और वहाँ पे रसीट कटती है, वो आपको डॉक्यूमेंट लेके रसीट काट के दे देंगे, वो फिजिकली कंसर्न पुलिस स्टेशन में चला जाएगा, वो लोग उसी तरह वेरिफिकेशन करवा के वापस वहाँ जमा करवा देंगे और उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये प्रोसीजर है।
0: यानी पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आकर वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे
1: जी।
0: इसमें सर मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो जरूरी होते हैं। एक आधार कार्ड जो है वो तो अब सभी के पास होता है।
1: हम दो डॉक्यूमेंट, दो आईडी रिक्वायर रखते हैं, एक आधार प्लस एक आईडी कोई और जो फोटो वाली आईडी रहे, जैसे डीएल है, कोई पासपोर्ट है, कोई और है, जो भी फोटो वाली दो आईडी को देखते हैं ताकि उनको मैच करवाने में, उनको वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो, एक पे भरोसा ना रखें हम।
0: जी,
1: दो आईडी मांगे,
0: यानी जिन पे आपकी फोटो लगी हुई हो सिर्फ दो,
1: दो
0: चीजें
1: दो आईडी
0: वो मांगी जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में एसीबी बटकल श्री अर्जुन जी से, बहुत सी बातें और भी जारी रहेंगी। अभी हमने जाना वेरिफिकेशन के बारे में, आगे भी हम बहुत से ऐसे मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो आम इंसान से जुड़े होते हैं। खास तौर पर से हम बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान जो फरीदाबाद पुलिस चला रही है, और साथ ही ट्रैफिक को लेकर क्या कर रही है ट्रैफिक पुलिस। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। मैं हूं दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम सुरक्षा संवाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ कार्यक्रम सुरक्षा संवाद, जिसे आपके बीच लेकर आता है फरीदाबाद पुलिस। और आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं नशा मुक्ति अभियान, वेरिफिकेशंस और फरीदाबाद के ट्रैफिक के बारे में। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं ACP बटकल श्री अर्जुन। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फरीदाबाद में क्या वाकई लोग वेरिफिकेशन कराते हैं बहुत ज्यादा या कम ही है?
1: नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो वेरिफिकेशन करवाते हैं खुद से, फिर हम अभियान चलाते हैं, फिर हम रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और खुद जाके लोगों को जागरूक करते हैं। तो बहुत लोग करवाते हैं, विशेष अभियान में बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन होती है, बहुत ज्यादा। एक डेटा बन जाता है पुलिस के पास, कोई गड़बड़ करता है, कोई क्राइम करके भागता है, या यहाँ दिन में कोई क्राइम कर रहा है, रात में क्राइम कर रहा है, कहीं रात में काम कर रहा है, कहीं दिन में काम, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेफ्टी की दृष्टि से वो ठीक ठाक एनालाइज कर लेते हैं।
0: दिल्ली NCR में एक बहुत प्रचलन है कि यहाँ पर डोमेस्टिक हेल्प जो है वो फुल टाइम होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और मेट्रो सिटीज़ में ये कल्चर आ गया है सपोर्ट के लिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है। ऐसे में सर, एहतियात के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं सुबह से रात तक या फुल टाइम है आपके पास 24 घंटे? अब कई बार ना लोग विश्वास में आ जाते हैं कि ये हमारी डोमेस्टिक हेल्प थी, उसकी बेटी है या बेटा है, वो हमारे घर में रह रहा है, हम उसे 10 साल से जानते हैं, तो इतना वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, शायद उसे बुरा ना लग जाए।
1: लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर कोई विश्वास पात्र आपके पास सर्विस दे रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवा ले अपना। देर सवेर कहीं ना कहीं जिस दिन दिक्कत आती है उस दिन वो विश्वास रखा रह जाता है और कागज़ आपके पास होता नहीं है। तो ये हमारी राय ये है, हमारी प्रार्थना भी है ये आमजन से, कि वो मैक्सिमम अपनी वेरिफिकेशन करवाएं टेनेंट की और सर्वेंट की।
0: आजकल सर काफ़ी ट्रेंड चल गया है कि लोगों ने अपने जो घर हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस पे खास तौर पर से छोटे छोटे समय के लिए रेंट पे देना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे शहरों की जहाँ पर टूरिस्ट अब ज़्यादा जाने लग गया है, पहाड़ी एरिया हो गए या लोग वैसे ही घूमने के लिए चले जाते हैं कि वीकेंड आ रहा है, बट वो ऑफिशियली होम स्टे नहीं होते हैं या फिर ऐसा कहें कि होटल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे से घर हैं और घर में एक कमरा दे दिया कि यंगस्टर्स आ गए, उनको कितना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको स्पेशली गाइडलाइन जारी की गई है कि जिसको भी आप किराए पे रखेंगे, वो चाहे परमानेंट टेंट रखें, 2 दिन के लिए रखें, होम स्टे में रखें, होटल्स में रखें, ओयो में रखें, जैसी जिसकी सुविधा बनती है, ये सेकेंडरी मैटर है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, बट जिस आदमी को आप रख रहे हैं तो कम से कम उसका रजिस्ट्रेशन जरूर चेक कर लें, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें कि आपके पास प्रॉपर ID फोटो स्टेट की हुई हो, आपने ID मैच करवा रखी हो कि जो ID दे रहा है, क्योंकि आधार पे, पैन पे, इन पे कई बार फोटो ऐसी होती है वो मिसमैच सी लगती है, तो अच्छे से वेरिफिकेशन करके अपने पास अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और रजिस्टर हम हर महीने लगभग चेक करते हैं कि आपके पास कितने लोग आए हैं किराए पे, ऐसी सबकी लिस्ट होती है, तो सबको चेक किया जाता है बीच बीच में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी अगर आप अपने घर को किसी भी फॉर्म में किराए पर दे रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए दे रहे हैं, चाहे आप होटल बना रहे हैं, चाहे आप होम स्टे कर रहे हैं, चाहे वैसे ही किराए पर दे रहे हैं, आपको ज़रूर वेरिफिकेशन कराना चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग सर एक शहर में रहते हैं और दूसरे शहर में घर किराए पे होता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने घर किराए पे दे दिया, आप 2-3 साल वहाँ जाते ही नहीं हैं और वहाँ पर क्या गतिविधियां हो रही हैं कुछ नहीं पता होता। अब आजकल समय ऐसा है कि आसपास वाले भी ज़्यादा

0: भी दे रखा है, तो उसे यही अपील करते हैं बार बार कि वो अपने टेनेंट्स को चेक करता रहे कि यही टेनेंट है जिनके हमने वेरिफिकेशन करवाई थी
1: जी। और ये मुझे लगता है लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपका एक घर कहीं बम्बई में है या लखनऊ में है और वहाँ पर आपने वो किराए पे दे रखा है, तो आप कहाँ जा पाते हैं? लोगों के पास में समय होता है, बट एक्चुअली में 90 दिन में अगर जा रहे हैं तो आप चेक रख पाते हैं कि वाकई वही लोग रह रहे हैं या कुछ और गतिविधियाँ चल रही हैं। तो घर के अंदर जाके एक बार जरूर देखें, आपका घर है, कोई रोकेगा नहीं आपको, आप फोन करके जाएं चाहे वैसे जाएं,
0: बिल्कुल
1: बट जाना जरूर चाहिए।
2: बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं हमें 8010781078 पर। और साथ ही अगर आप ये कॉन्वर्सेशन इस पॉडकास्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहें या सुनना चाहें तो फिर आप हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर आपको सुरक्षा संवाद के नाम से ACP श्री अर्जुन के साथ ये सारी बातचीत मिल जाएगी, जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें जारी हैं कार्यक्रम सुरक्षा संवाद में। एसीपी अर्जुन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसीपी हैं भटकल क्षेत्र के फरीदाबाद में, और इस कार्य को करते हुए बहुत से वक्त हो गया है इनको, और ये आज जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं वो है वेरिफिकेशन। जी हाँ, वेरिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नशा मुक्ति और फरीदाबाद के ट्रैफिक को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। आइए करते हैं और भी विस्तार से बात। अब सर बात करते हैं एक ऐसी परेशानी की जो एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में गहराया हुआ है, और वो है नशा। अब नशा एक तो होता है अल्कोहल जो आम

0: पर लोग लेते हैं, बड़ी उम्र के भी लेते हैं और कुछ यंगस्टर्स भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नशा होता है ड्रग्स का, जिसके बारे में वर्ल्ड वाइड बहुत से अभियान चलाए जाते हैं। हर देश कोशिश करता है कि ड्रग्स के सर्कुलेशन को लोगों तक पहुंचाने में रोका जाए, पर फिर भी ये खुलकर बिकता है और खुलकर युवा जो है इसको कंज्यूम करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे अब इस मुद्दे पर ये है कि हम अपने आसपास आजकल बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं, बहुत सारे गाने देख रहे हैं जिसमें गन कल्चर, ड्रग्स कल्चर, वीड की बात, इस तरीके के बहुत से शब्दों का इस्तेमाल होता है और खुल के होता है। रोक भी लगी है, एक बीप लगाने से सबको समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है वो दिख जाता है, पता चल जाता है। अब इससे युवा कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप खुद इस प्रोफेशन में है कि आप युवाओं के पूरे आंकड़े या फिर कुछ जानकारियां ज़्यादा हम एक आम आदमी से ज़्यादा रखते हैं।
1: मैम बिल्कुल सही सवाल है आपका। नशे से सरकार नशे के प्रति बहुत बड़े अभियान चला रही है। सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग हम फरीदाबाद में कहें तो 36-37 डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए सरकार की हिदायत है कि नशे को बिल्कुल बंद करना है, नशे को नो कहना है, किसी सूरत में नशे को यस नहीं कहना है। और नशे की वजह से हमारी पीढ़ी समाप्त हो रही है, खासकर युवा पीढ़ी जिसको पता नहीं है, बच्चे जिनको अंदाज़ा ही नहीं है जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो कोई सीरीज़ देख के कहिए या कोई रील देख के कहिए कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और जो ड्रग पेडलर है उनके लिए भी बच्चा एक आसान सा स्टेप है, उसको मोल्ड करना, उसको पैसे का लालच दे के खुद को उसको डाल देना या आगे ड्रग पेडलिंग में यूज कर लेना बड़ा आसान है। इसके लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान अब भी चल रहा है और हर 15 दिन में एक पुलिस स्टेशन, कोई ना कोई एक पुलिस चौकी, कोई ना कोई कार्यक्रम हर एक बस्ती में, हर एक बीट लेवल पे, बीट लेवल का मीन 2-3 गलियों तक के हम प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस विषय में मैं यही कहूँगा कि शराब को पीछे छोड़ दिया है नशे ने। आज के दिन अगर ये कहें कि शराब नशा नहीं रहा, नशे की गिनती में नहीं रहा, नशे की गिनती से बाहर हो गया, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आजकल सुल्फा, गांजा, भांग, चिट्टा और कई तरह के सिंथेटिक नशे हैं, कोई सूखे नशे हैं, वो इतने आगे हैं कि आप शराब को भूल जाएंगे। हम नशे के किसी भी सूरत में हक में नहीं हैं। रोज प्रचार प्रसार करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, परिवारों में जाते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, ये कहने के लिए कि एक आदमी नशे के चपेट में आता है तो कम से कम पूरा परिवार ख़त्म कर देता है। तो नशे के जागरूकता के बारे में बच्चों को हम जाते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि एक व्यक्ति 5 लोगों को नशे की बुराइयां बताए, अपने आप नशा कम होता जाएगा। और लोग खुल के विरोध करें, जो लोग नशा करते हैं वो तो पीड़ित है, नशा कहाँ से आ रहा है, वो वहीं बस्ती से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो वो लोग नशा बेचने वालों का हर हाल में विरोध करें। एक बार देशव्यापी विरोध हो गया तो नशे को जगह नहीं मिलेगी।
0: जी जी, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये जो पूरा एक चलता है सिस्टम, ये एक देश से दूसरे देश बहुत ईजिली चला जाता है,
1: ये वर्ल्ड वाइड है, प्रतिबंधित है, फिर भी वर्ल्ड वाइड है। प्रतिबंधित है, किसी भी देश में नशा शायद ही कहीं खुला हो, हर एक जगह प्रतिबंधित है, लेकिन हर एक जगह नशा है। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड अभियान चला रखे हैं, भारत सरकार ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, विशेष टीमें गठित की हुई, पुलिस ने अपनी विशेष टीम गठित की हुई, रोज कम से कम 5 या 6 प्रोग्राम स्कूलों में, पब्लिक में, स्लम बस्ती में, सबको जाके नशे के प्रति जागरूक करते हैं। और उन लोगों के प्रति कार्रवाइयाँ रोज हो रही है, आंकड़े देखेंगे तो हमने अभी NDPS की जितनी भी FIR लॉन्च की है उनके आंकड़े एक हाई लेवल पे गए, वो इसलिए कि इधर जागरूकता अभियान है, इधर धरपकड़ शुरू है, तो लोग भी सहयोग कर रहे हैं लेकिन छुप के कर रहे हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि लोग खुल के सामने आए, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है हमें क्या ले रहा है, हमारा क्या ले रहा है, सवाल आपका हमारा नहीं है, सवाल पीढ़ी का है। वो घूमते घूमते पता नहीं किस दिन किसके घर में नशा घुस जाएगा, हम सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे अपील यही करते हैं कि नशे के विरोध में खड़े हों और हर आदमी जहां खड़ा है वहीं से 4 लोगों को जागरूक करे, यही अपील करते हैं।
0: जी जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी ये शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि आप बहुत क्लोजली बच्चों को भी देखते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, बड़ों को भी देखते हैं, ये शुरुआत कैसे होती है, कैसे बच्चों को फंसाया जाता है इस पूरे ट्रैप में?
1: बच्चे का मन बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुद्ध होता है। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, घर में होता है तो माँ बाप को रोल मॉडल मानता है, स्कूल में पढ़ता है तो टीचर्स को रोल मॉडल मानता है। इसी तरह से उसकी जो दिमाग की मॉडलिटी है, जो उसका मूव करना है, उसका सीखने का, लर्न करने का या उसको मोल्ड करने का जो सिस्टम है, बहुत नरम है। इसी का फायदा उठा के घुसपैठिए कहिए या उनसे थोड़ी बड़े उम्र के कहिए या ऐसे लोग जो बच्चों को बर्गलास के वो बच्चों की मार्फत एंट्री करते हैं,
0: यानी बच्चों को अपने उसमें
1: चंगुल में फंसाते हैं,
0: चंगुल में फंसाते हैं।
1: एक बार जो बच्चा या तो पेडलिंग में ड्रग पेडलिंग में आ गया या बच्चा कंज्यूम करने लग गया तो वो नशे ऐसे हैं कि शराब छूट सकती है वो नशे छूट नहीं सकते, वो दलदल में धंसता चला जाता है। इसीलिए हम बार बार अपील करते हैं कि सब लोग नशे वालों के खिलाफ खड़े हों, एकजुट। जैसे स्वतंत्रता की लड़ाई हमारी जन जन के पास थी तो आज वो समय आ गया है कि जन जन को नशे के खिलाफ बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब इस चीज़ के लिए शायद इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर जिसके घर में होता है सिर्फ वही समझ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: और कुछ हमारे देश में ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से हैं। सर, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि बच्चा अगर एक बार इस चीज़ में फंस जाता है, एज क्या होती है नॉमिनल, जो अगर हम एक नॉर्मल एज देखें बच्चे?
1: मान के चलेंगे हम 12-13 साल का बच्चा अगर बड़ा इजी फंसता है इसमें, उसको पता नहीं होता इसकी बुराइयां क्या है, क्योंकि वो 12-13 की जो एज होती है वो 18 साल से नीचे और 12 साल से ऊपर की एज होती है, तो वो घर वालों की प्रतिबंधता को नकारते हुए दोस्तों में जाना पसंद करेगा। हर प्रत्येक वो चीज़ जो उनका परिवार, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स मना करेंगे उसकी तरफ वो दौड़ेगा, और उसी का फायदा ये ड्रग पेडलर उठा के उसको शिकार बनाते हैं।
0: मतलब 12 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता को बहुत
1: 12 से 18, जैसे 18 पार कर जाएगा बच्चा तो वो समझने लगेगा, देखने लगेगा, उसमें जिम्मेवारी थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, वो समझता है। ये बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी के मान के चलो, जो रूप देंगे इन बच्चों को वही रूप चला जाएगा, तो इसी का फायदा उठा के लोग घुसपैठ करते हैं।
0: जी जी, और सोशल मीडिया इसमें कितना रोल प्ले करता है आपको?
1: सोशल मीडिया रोल प्ले करता है, पीछे जो बहुत ऐसे गाने भी हुए हैं जिनमें नशे की बात, गन कल्चर की बातें आई, वो प्रतिबंधित भी हुए हैं, बट सरकार भी अपने लेवल पे काम कर रही है, पर ये सरकार के साथ सहयोग करना पड़ेगा आम जन को। सरकार काम कर रही है आम जन के लिए, आम जन को भी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, जो सरकार चाह रही है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और उसमें भी आम जन के ही आदमी है, सरकार के आदमी बहुत नहीं मिलेगा कोई आदमी कि सरकार का आदमी कोई इस काम में हो, तो आम जन का आदमी है उनको सपोर्ट करना पड़ेगा इस बात के लिए कि आइडेंटिफाई किया हमने, ये आदमी नशा भेजते हैं, यहाँ ये एक्टिविटी हो रही है, ये प्रशासन को बताना पड़ेगा तभी एक्शन हो पाएगा। मान लिया कोई PCR राइडर गश्त पे है तो वो पेट्रोलिंग कर रही है, उनके सामने से हट गया तो आम जन जिसने देखा वो रिपोर्ट करे, उस पे एक्शन होगा।
0: तो लोग क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं, अभी भी डरते हैं पुलिस से?
1: पुलिस से नहीं डर रहे हैं, दिक्कत कई तरह की है, कुछ लोग तो इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि हम क्यों करें,
0: एक जागरूकता नहीं है।
1: हम जागरूकता अभियान इसीलिए चला रहे हैं, सरकार ने एक विशेष टीमें बना के हर एक डिपार्टमेंट को बोला है कि रोज कोई ना कोई जागरूकता अभियान चलाएंगे। आप पेपर देखेंगे तो रोज पुलिस भी कर रही है और डिपार्टमेंट भी नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं और वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं।
0: जी, तो नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी किस किस तरीके के नशे जो हैं आते हैं। हमने पहले देखा था कि दवाइयाँ बहुत ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधित होती हैं पर वो मिल जाती हैं इजली, दवाइयाँ जो होती हैं वो कितना इफ़ेक्ट करती हैं, कैसे बच्चों को फंसाती हैं, और इसके अलावा क्या क्या होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को जनरली नहीं पता होता, ये सिर्फ यंगस्टर्स को पता होता है कि किस किस तरीके के नशे जो हैं वो मिल रहे हैं, किस किस फॉर्म में मिल रहे हैं, क्या उनका कलर होता है, क्या वो लिक्विड हैं, इंजेक्टेबल हैं, या पाउडर्स हैं, या टैबलेट्स हैं, क्या है?
1: बच्चे को जो सबसे पहले नशे की तरफ लेके जाते हैं, कहीं कहीं से शराब का सेवन बहुत कम रह गया है, उससे पहले सिगरेट में कुछ मिला के पिला दिया, एक बार उसने सुट्टा लगा लिया, जो सुट्टे के नाम पे बहुत रील्स आती हैं, बहुत सीरीज आती हैं, तो उनको वो देखता है बच्चा, वो सुट्टा लगा लिया, उसने जब एक बार लगा लिया तो उसी में कुछ कुछ कुछ देते जाते हैं। वो इंजेक्ट की स्टेज जो आती है वो तो 3rd-4th स्टेज है,
0: उससे काफ़ी बाद में,
1: उससे पहले तो कुछ और चीज़ें हैं, उनको कुछ मिला के खिला दिया, कुछ पिला दिया, सिगरेट में पिला दिया या कोल्ड ड्रिंक में पिला दिया, इस चीज़ के आते हैं। इंजेक्ट वाली स्टेज तो लास्ट में आते हैं, इंजेक्ट वाली स्टेज के बाद संभलना बड़ा भारी काम है, बहुत भारी काम है, वो तो ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी बात बन सकती है, अदरवाइज बाहर नहीं पेरेंट्स रोक पाए,
0: खुद नहीं छोड़ सकते
1: नहीं, जो क्योंकि जैसे ही वो नशे की तरफ घुसेगा तो वो घर से परिवार से कटने लगेगा, चोरियां करने लगेगा बच्चा, तो क्राइम की दुनिया में इसी रास्ते से इंटर करते हैं लोग, तो नशा बहुत बुराई मानेंगे हम तो, कि नशा किसी सूरत में नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल, यानी इतनी सारी चीज़ें जो दुनिया भर में मिल रही हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनकी 12-13 साल की उम्र है और इन टीनेजर्स को आप एकदम सही जीवन देना चाहते हैं तो इनके साथ थोड़ा समय बिताना ज़रूरी है, इनकी थोड़ा सा चेक रखना भी ज़रूरी
1: है। हम तो ये कहेंगे कि बच्चे को दोस्त की ज़रूरत होती है और वो दोस्त घर से बाहर तलाशता है। हम पेरेंट्स से प्रार्थना करेंगे कि वो दोस्त अपने आप को मोल्ड करके अपने आप को तरीके से उसके दोस्त बन जाएं ताकि उसको दोस्ती के लिए बाहर ना जाना पड़े। आप पेरेंट्स का हिटलरशिप ना चला के हाँ। मित्रता पूर्ण उनके साथ रहिए ताकि वो
0: फ्रेंडशिप की बात करें
1: हाँ, ताकि वो 70% कम से कम 80% 70% आपके साथ बात कर ले तो उससे उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको उनके पास जाने की। वो दिक्कत का बात यह है कि हम पेरेंटिंग करते करते भूल जाते हैं कि बच्चे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चेंजेज आते हैं बच्चे में, ऐसे हार्मोनल चेंजेज आते हैं, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, तो उन चेंजेज को वो आपसे शेयर ना करके कहीं और शेयर करें। इससे अच्छा तो आप एजुकेट करें बच्चे को, फ्रेंडशिप रखें उसके साथ ताकि वो आपसे शेयर कर ले तो नौबत नहीं आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सुरक्षा संवाद में बातचीत जारी रहेगी, वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे खास मेहमान ACP बटकल अर्जुन जी, जो कि फरीदाबाद पुलिस में हैं और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम के आज गेस्ट भी हैं। हम इस कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के सहयोग से और बहुत से अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज जिन विषयों पर हमने बातचीत करी है वो है वेरिफिकेशन, यानी आप अपने घर में अगर कोई हाउस हेल्प रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, या फिर आप अपना घर या दुकान किसी को रेंट पर देते हैं, तो वेरिफिकेशन कराना यानी पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वेरिफिकेशन कराना लाभदायी साबित हो सकता है, इस पर चर्चा करी है। साथ ही हमने नशा मुक्ति पर बात करी है और फरीदाबाद ट्रैफिक के बारे में भी बात कर रहे हैं।
1: सर, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो उसकी पहचान, उसका नाम जो है वो एकदम छुपा के रखा जाएगा, रिवील नहीं किया जाएगा?
2: बिल्कुल ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हमने नीचे कांस्टेबल लेवल तक ये कहा हुआ है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन आने के बाद उस पर एक्शन होना चाहिए। जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं उनका नाम, बेशक उनकी झूठी कंप्लेंट रही हो या कामयाबी ना मिली हो, उनका नाम ना पब्लिश करेंगे ना किसी को बताएंगे हम। वो हमारे लिए एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है, आज नहीं तो कल वो हेल्प ही कर रहे हैं हमारी। तो पहले ही ऐसा था, कुछ साल पहले, 15 साल पहले कहेंगे तो पुलिस के पास जाने से लोग कतराते थे, पुलिस को बताने से कतराते थे, हम लफड़े में क्यों पड़े। अभी ऐसा नहीं है, अगर आदमी कोई बताता है, इंसान बताता है, तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सीक्रेट रखी जाती है और उस पर एक्शन होता है।
1: जी बिल्कुल, यानी सीक्रेट आइडेंटिटी का प्रावधान है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो वो इजिली कंप्लेंट कर सकता है। अब सर बात करते हैं ट्रैफिक, क्योंकि दो मुद्दे ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आम इंसान के, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ट्रैफिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जो घर से बाहर निकलेगा वो ट्रैफिक का सामना करेगा, और गाड़ी भी चलाएगा, बाइक भी चलाएगा, स्कूटर, साइकिल, नहीं तो पैदल तो चल ही रहा है। तो इन सड़कों पर जो रोड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तो आजकल के समय में क्यों लोगों में सब्र नहीं है सड़क पर चलते हुए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर आप चल रहे हैं, अगर लिमिट 100 की है तो 120, 130 से नीचे कोई नहीं चलाना चाहता, और ऐसे में एक्सीडेंट होना लाजमी होता है। दूसरी चीज़ जो सुबह के वक्त होती है या शाम के वक्त होती है, सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी होती है, आप लेट निकलते हैं घर से, ट्रैफिक हल्का सा मिलता है तो आप रॉन्ग साइड लेते हैं, शाम को आपको वैसे ही घर जल्दी पहुंचना होता है क्योंकि आप थक चुके होते हैं, तो लोग रॉन्ग साइड बहुत लेते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई सड़क पर चल रहा है, उसने ज़रा सा आपसे तेज़ गाड़ी निकाल ली तो आप रोड रेज में आ जाते हैं, और इसकी वजह से सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होते, हमने ये देखा है कि मार पिटाई से लेकर खून खराबे तक की बात आ जाती है।
2: बिल्कुल सही बात है। आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो लोगों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से पेशेंस लूज हो गया है। पेशेंस लूज हो गया तो वो ना तो रोड रेज से चूकता है, वहाँ पे भी बिल्कुल तुरंत से एक्शन करके लड़ना पसंद करता है, और ना ही ट्रैफिक के जो प्रेशर है ट्रैफिक का उसको सहन कर पाता है। अब छोटा सा उदाहरण NCR का, हम यहाँ से फरीदाबाद से गुड़गांव का लेते हैं जी। गुड़गांव से फरीदाबाद जाने के लिए एक सड़क जाने की है और एक सड़क आने की है। एक सड़क पे जाते वक्त दो व्हीकल साथ निकल सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा समय होता है जो ट्रैफिक रश होता है, क्रॉल करके चलता है, उसमें लोग पेशेंस करने के बजाय ओवरटेक करके आ जाएंगे, रॉन्ग साइड चले जाएंगे, तो आपकी ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ चल रही, स्लो चल रही है, बस इतना ही है, थोड़ी देर क्योंकि प्रेशर है सुबह शाम का तो स्लो चलेगी। आप उसको थोड़ा जज्ब कर लें, अंदाज़ा लगाएं कि हमारी वजह से दूसरों को दिक्कत ना हो। जो सामने से आने वाला है उसने कोई गलती थोड़ी की है, हम दूसरी साइड रॉन्ग साइड चले जाएंगे, जाम लग जाएगा, वो सब लोग ओवर फंस जाएंगे, इससे अच्छा तो अपनी रो में चलें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, जहाँ 15 मिनट लगने थे वहाँ 17 मिनट लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा 2 मिनट से फालतू। लॉन्ग ड्राइव तो आप कहीं 100 की स्पीड पे जा रहे हैं और उसी स्पीड को आप 120 कर दें तो 300 किलोमीटर पे जाके 12 मिनट का फर्क पड़ता है। 300 किलोमीटर सफर करने पे 12 मिनट का फर्क पड़ेगा, 12 मिनट के लिए आप अपनी दूसरों की परिवार की जिंदगी दाव पे लगा देते हैं। और NCR में तो इसलिए कि सब आदमी काम करने के लिए निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो प्रेशर होता है, ये मन मनाना पड़ेगा लोगों को भी इस वक्त ट्रैफिक का प्रेशर है, ना कोई जाम है, ना कोई देर है, अब एकदम से जैसे टोल पे चले जाएंगे तो टोल की लंबी लाइन हो जाती है, लंबी लाइन में थोड़ा पेशेंस करना पड़ेगा, उसको भी टाइम लगता है जी। वो रीड करेगा, सर्च करेगा, निकालेगा, इतना
1: और कभी टेक्निकल एरर्स भी हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल।
2: तो हमें पेशेंस की जरूरत है, और सड़क पे जो घर से निकलता है वो अपने काम से निकलता है, कोई लड़ने के लिए, कोई एक्सीडेंट करने के लिए नहीं निकलता। एक्सीडेंट बाई चांस हो जाता है, तो हमें पेशेंस की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं तो ये भी कहूँगा, एक्सीडेंट चलो हो गया तो हम जो लाखों रुपए इंश्योरेंस के देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो ठीक करवा लेना, कि इसलिए देते हैं कि हम लड़ लें।
1: बिल्कुल, लड़ने की आदत बहुत दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है।
2: वो अग्रेसिव इसलिए हो गए हैं कि उनके फिजिकल वर्कआउट नहीं रहा। अगर कोई इंसान फिजिकल वर्कआउट, योग, प्राणायाम करेगा, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा और जाएगा, तो उससे उसका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, तो उससे फिर वो लड़ने की तरफ नहीं जाएगा, काम की तरफ फोकस करेगा। जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा उसके दिमाग में एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे रहे, स्ट्रेस के चक्कर में लड़ भिड़ पड़ता है।
1: बिल्कुल, यानी कहीं का गुस्सा
2: कहीं निकलता है। बिल्कुल सही कहा।
1: और हमेशा में हमने ये देखा है कि जो भी स्ट्रांग होता है वो अपने से कमजोर वाले गुस्सा निकालता है, तो वही चीज हो जाती है कि आपकी गाड़ी बड़ी है, आप छोटी गाड़ी वाले से लड़ लेते हैं या ऑटो वाले से लड़ लेते।
2: बड़ी गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस की गाड़ी रखी है, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं समय पे, तो ये हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा कि वो इंश्योरेंस इसीलिए दिन के लिए पे किया था हमने, कि अगर कोई छोटी मोटी बात गलती से, ना गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसके कवर करने के लिए हमने इंश्योरेंस करवाया था, ना कि लड़ने के लिए करवाया था। ये पेशेंस हमें बड़ा दिल करके करना ही पड़ेगा।
1: अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बिल्कुल अपने दो मिनट बचाने के लिए रॉन्ग साइड लेते हैं? और खास तौर पर से मैंने ये देखा है कि फरीदाबाद में रॉन्ग साइड का कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली जाएं चालान से डर लगता है, लेकिन फरीदाबाद में लोगों को शायद चालान से डर ही नहीं लगता है। हालांकि हम बहुत ट्रैफिक ऑफिसर से बात कर चुके हैं और उन सब के बाद चीज़ें यही निकल के आती है कि चालान तो बहुत हो रहे हैं, अभियान तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग सुधर नहीं रहे।
2: अभी इसमें दो बातें कहेंगे हम। एक तो NPR कैमरेज लगा रखे हैं, हर एक जगह कैमराज हैं, उनमें बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमारा चालान हो कहाँ रहा है। वो रॉन्ग साइड जाएंगे और उनका हो जाएगा। पीछे एक किसी ने आके बताया, जी मेरा 1,12,000 का चालान हो गया स्कूटी का।
1: अच्छा,
2: हम बहुत हैरान थे इस बात के लिए कैसा हुआ। पता चला कि वो श्रीमान जी घर से निकलते हैं विदाउट हेलमेट होते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं और सिग्नल जंप करते हैं, तो तीन चालान जाते वक्त, तीन चालान आते वक्त, हर रोज
1: छह चालान
2: डेली के ले रहे हैं। तो वो उनको पता ही नहीं चला, 3 महीने में लगभग 1,00,000 कुछ के पार निकल गए।
1: अच्छा,
2: उसके बाद उनको दिमाग में आया, वो खुद अब 2-3 जगह में पता चला कि वो खुद लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, आपके घर चालान पहुंचे।
1: ये फरीदाबाद के हैं,
2: ये फरीदाबाद के हैं। दूसरा एक अभियान और चलाया फरीदाबाद पुलिस ने कि रॉन्ग साइड जाने वालों को कोशिश करेंगे हम कंट्रोल करें, फिर भी ना हो तो रॉन्ग साइड, जब एक जहां बीच में डिवाइडर बना हुआ है, एक सड़क जाने की है एक आने की है, अगर उस पर रॉन्ग साइड है तो उसका चालान की बजाय व्हीकल जब्त करके पैदल जाए।
1: जी,
2: स्पष्ट पता है कि हमें ये सड़क जाने की और आने की है, फिर भी धक्का कर रहे हैं, तो उनके व्हीकल जब्त कर लिया जाए, वो पैदल टैक्सी से निकल जाए, वो एक बार जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे,
1: दोबारा नहीं जाएंगे। तो ये स्ट्रिक्टनेस जरूरी है।
2: ये लास्ट में आके तब करनी पड़ी जब जागरूक अभियान चला दिए हमने, सब कुछ कर दिया, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो मन मना के चला है, तो मन मना के पुलिस ने मन मना लिया कि जी ऐसे जो करेंगे उनका व्हीकल जब्त कर लिया जाए, उनको पैदल भेजा जाए।
1: और जब्त करते हैं?
2: हाँ करते हैं, शुरू कर दिया काम,
1: कर दिया है। तो शुरू, जो लोग हमें सुन रहे हैं और वो रॉन्ग साइड के आदि हो चुके हैं, तो आपको हम ये बता दें कि गाड़ियां जब्त करने का जो ट्रेंड है वो फरीदाबाद पुलिस का शुरू हो चुका है। तो अगर आपको लग रहा है आप रॉन्ग साइड लेके आसानी से निकल जाएंगे, कभी एक आधी बार निकल सकते हैं, पर जनरली अब आप पकड़ में भी आ जाएंगे।
2: जी,
1: तो सर बहुत सारी बातें आपने कही हैं और बहुत सारी जानकारी दी है। चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए जरूर कही।
2: हम सभी से प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे कि नशे के खिलाफ एकजुट होके, जैसे स्वतंत्रता संग्राम चलाया था, स्वतंत्रता की लड़ाई चलाई थी, हर घर से इंसान स्वतंत्रता के लिए निकला था, इसी तरह अपील करें कि नशे के खिलाफ भी हर घर से हर इंसान जागरूक हो और जागरूक करे और नशे को बाय बाय कहे। ट्रैफिक के बारे में ये भी प्रार्थना करेंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जहाँ जहाँ बंद पड़ता है हर एक जगह पुलिस व्यवस्था के लिए लगाई हुई है, लेकिन हर आदमी के लिए हर जगह पुलिस लगाना संभव नहीं है। जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे ट्रैफिक स्मूथ नहीं चल पाएगी, सबकी व्यवस्था के लिए सब लोग सहयोग करें। और तीसरा हमारा वेरिफिकेशन के लिए था, वेरिफिकेशन आपकी, आपके नगर की, आपके देश की सुरक्षा के लिए है, कोई इसमें बुराई नहीं है, समय पे कराने पे कोई फालतू लफड़ा नहीं है, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल ठीक समूथ हो जाएगा, यही हमारी प्रार्थना है, यही इंतजार है।
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज हमने सुरक्षा संवाद में जानी है। हमारे साथ जुड़े रहे भटकल के ACP श्री अर्जुन जी, और जिन्होंने बहुत सारी डिटेल में बातें बताई हैं कि वेरिफिकेशन कितनी ज़रूरी होती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है, और सबसे ज़रूरी चीज़, नशे के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को इस नशे से बचाना पड़ेगा। फिलहाल सुरक्षा संवाद में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से करेंगे मुलाकात एक नए अधिकारी के साथ। उम्मीद है आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने सवाल हमें 8010781078 पर भेजते रहें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे। संतुलित बनाएंगे।
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम ऐसे में अपने मानवता के होने के और साथ के साथ मानवता के कामों को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीवन अपने लिए जी रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को जीते हुए या तो उन्होंने अपने जीवन को ही लोगों के लिए न्योछावर कर दिया है, या फिर वो ढेर सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें आज भी याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं और अपनी इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। तो इस राह पर आज हम जिनके साथ चलने वाले हैं वो है डॉक्टर आर के सिन्हा। डॉक्टर आर के सिन्हा प्रज्ञा फाउंडेशन से हैं और इस फाउंडेशन की नींव इन्हीं ने रखी है। अब ये फाउंडेशन क्या करती है, कहाँ पर है, किस प्रकार से लोगों के लिए मानवता कर रही है, इसके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले करेंगे डॉक्टर आर के सिन्हा का स्वागत रेडियो मानवरचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, और आपके माध्यम से मैं सारे श्रोताओं को भेजना चाहता हूँ प्रज्ञा फाउंडेशन का प्रेम भरा नमस्कार।
1: डॉक्टर सिन्हा, कब शुरुआत हुई और क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि देखिए हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग काम कर ही रहे होते हैं, सो ऐसे में क्या ऐसी जरूरत थी या क्या दिल में ऐसी इच्छा आई कि आपको लगा कि ये प्रज्ञा फाउंडेशन एग्जिस्टेंस में आ जाए?
2: भावना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि शायद मैं प्रज्ञा फाउंडेशन का फेस हूं और मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं और लोगों के साथ मैं बार बार लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, तो आपको नहीं सबको ऐसा लगता है कि मैं ही इस फाउंडेशन का फाउंडर हूं, संस्थापक हूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं इनसे बाद में जुड़ा। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई IIT दिल्ली में, एक सेमिनार था एजुकेशन एंड लिटरेसी पे। वहाँ पे कई प्रबुद्ध लोग थे जिनमें डॉक्टर वीना शर्मा, जो एक्चुअल में संस्थापक हैं प्रज्ञा फाउंडेशन की, वो थी, और वहीं पे उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर TN चतुर्वेदी, जो CAG थे, बाद में कर्नाटक के गवर्नर भी रहे हैं, और इनके साथ और जुड़े जनरल खुराना, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राइट हैंड थे, एक संत जी थे वहाँ पे हरिद्वार ऋषिकेश में, एक है डिवाइन फाउंडेशन जिसको शिवानंद आश्रम के नाम से जानते हैं। तो इस गोष्ठी में ये निकल करके आया कि हम तो प्रगति करते जा रहे हैं लिटरेसी और एजुकेशन पे, बट कहीं ना कहीं पे एक वैल्यू एजुकेशन पे हमारी तवज्जो नहीं होती है
1: जी।
2: और वो एक बहुत बड़ा गैप है। तो इन लोगों ने मिलकर सोचा कि हम एक ऐसी संस्था बनाएं जहाँ पे पहले इन्हीं जो कॉलेज के स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, इनको हम वैल्यू एजुकेशन की तरफ ले आए और उनके अंदर संस्कार डालने की कोशिश करें
1: जी।
2: बाद में लेडी श्रीराम कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने अप्रोच किया हमें, मतलब प्रज्ञा फाउंडेशन को, कि वो भी कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ जो हैव्स हैं, जो प्रिविलेज क्लास हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो अंडर प्रिविलेज होते हैं। और आप याद कीजिए 1994 में राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं था
1: जी।
2: उस समय प्राइमरी स्कूल तक बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन नहीं था। तो और आपको तो पता है कि हमारे यहाँ इंडिया और भारत, तो भारत में एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग इसको महत्व नहीं देते हैं, बिकॉज उनका जो रोजी रोटी कमाई है वो पढ़ाई से नहीं, वो दो हाथों की कमाई से होती है चलती है। तो ये रहा, और ये दोनों जोड़ करके जो यूथ पावर है और विजडम ऑफ दीज पीपल जिनका मैंने अभी आपसे नाम लिया, इन लोगों ने मिल करके फिर सन 2000 में कालका जी में एक झुग्गियों के बीच में एक सेंटर स्थापित किया, जहाँ पे सब लोगों ने मिलके पहले तो जा करके एडवोकेसी की, वहाँ जो लोग झुग्गियों में जो लोग रहते थे। ये बात 1994 से 2000 की है, जब हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की बच्चों को स्कूल भेजने की, लेकिन मैं बताऊँ 60 वॉलंटियर्स मिल करके पहले साल में सिर्फ 5 बच्चों का एनरोलमेंट करा पाए।
1: जस्ट इमेजिन।
2: यस, लेकिन वही संख्या जो है 2010 तक वो करीब झुग्गी में आज करीब 1000 बच्चे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ फख्र के साथ कि नाउ दी एनरोलमेंट इन द स्कूल्स इज ऑलमोस्ट 100%। ये बहुत हमारे लिए संतुष्टि की बात है और गर्व की बात है। थैंक्स टू पीपल लाइक यू हु हैव बीन सपोर्टिंग दिस।
1: डॉक्टर सिन्हा, आपको क्या लगता है, माइंडसेट बदल गया है, पेरेंट्स में थोड़ी बहुत जागृति आ गई है, उन्हें लग रहा है कि भाई हम अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं और उसे थोड़ी सी दुनिया भी दिखा पाएं, या आपको लग रहा है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब कुछ काफ़ी हावी है और इसके थ्रू आपको ये पता लगता है अच्छा फला संस्था ये काम कर रही है तो यहां जाकर उन्हें ये एड मिलेगी तो उसे अवेल कर लेना चाहिए, एग्जैक्टली क्या लग रहा है?
2: देखिए, सोशल मीडिया से जो अवेयरनेस हुई है, ठीक है, वो उस तबके पर नहीं गई है, उनकी अवेयरनेस जो रील्स तक ही रही है, लेकिन पढ़ना चाहिए ये अवेयरनेस उन तक नहीं हुआ। तो उन तक ये चीज़ पहुंचाना ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम बार बार उनको ये चीज़ याद दिलाते रहें। और जब हमारे यहाँ आपके यहाँ से भी कई वॉलंटियर्स आते हैं, अच्छे कॉलेज से आते हैं और लड़कियाँ आती हैं, तो उनको देख करके हम एग्जाम्पल सेट करते हैं कि देखो ये लड़कियाँ जो हैं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कई माएँ अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजती हैं, वो कहती हैं नहीं जी ज़माना ख़राब है इसलिए हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो हमारे वॉलंटियर्स को कहते हैं ज़माना ख़राब है, ऑल द मोर रीज़न कि आप अपने बच्चों को सक्षम बनाएं, इसलिए आप उनको पढ़ाएं। और पढ़ाई में उनके साथ भी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं, बिकॉज बच्चे उनके लिए इनकम का जरिया होते हैं। तो अगर वो स्कूल भेज देंगे तो फिर जब माएँ काम पे जाती हैं तो उनके जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े बच्चे उनको देखते हैं, अगर वो पढ़ने चले जाएंगे तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होगा तो ये कोठियों में जाके काम नहीं कर पाएंगी। तो ये सब उनकी मजबूरियाँ भी हैं जो हम समझते हैं, लेकिन उसी में फिर हम उन्हें कहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करो। उनके जो कई दफ़ा उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो हमारे सेंटर के आसपास रहते हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा आप टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिए ताकि अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएँ और आपका भी काम चलता रहे।
1: सो जैसे आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भाई बहन होते हैं और ये बड़ा फैक्ट है, मतलब अगर मैं आफ्टरनून स्कूल्स की बात करूं तो अक्सर ये चैलेंज आता है। हाल ही में हम एक ऐसे ही इवनिंग स्कूल में गए थे जहां पर कि हमने जितने भी वहां के बच्चे थे ना सिर्फ उन्हें बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की, बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जब मैंने उनसे पूछा तो ये सेम परेशानी थी कि मैम सुबह तो हम काम पर जाते हैं लेकिन क्योंकि पढ़ाई करने का मन है तो हम शाम को यहाँ पर आते हैं। सो मेरा ये जानने का तात्पर्य था कि जब ऐसे घरों से बच्चे आते हैं तो हमें पता है कि ये चैलेंज वहाँ पर है, तो क्या क्रैश का अरेंजमेंट या किसी तरीके की उनके लिए प्रलोभन ऐसा जिससे कि वो आ पाए, और क्या आपको लगता है कि यहाँ आकर पढ़ने के बाद उन्हें वो डिफरेंस महसूस हो पाता है?
2: देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है और हम तकरीबन कुछ ऐसा ही करते हैं। वो फॉर्मल सेंस में क्रैश तो नहीं है, शायद उससे बेहतर है
1: जी।
2: पहली बात तो जैसे शुरू में सुबह तो बच्चे स्कूल चले गए, माँ को कोई दिक्कत नहीं है, वो जा करके काम करके आ गई। जब दोपहर से लौट के आते हैं, अब तो आरटी के बाद उनको दोपहर का भोजन भी मिलता है तो पेट भरा हुआ होता है। उसके बाद वो घर आके यूनिफॉर्म चेंज करके फिर वो हमारे सेंटर पे आ जाते हैं। और ये जो सेंटर हमने ऐसा बनाया है, यू नो सीइंग इज बिलीविंग, अगर आप आ करके देखेंगे, इनफैक्ट मैं सबको दावत देता हूँ कि आपके उस सेंटर आके देखिए, आपको लगेगा कि इस झुग्गी के बीच में एक यूरोपियन बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई है।
1: क्या बात है,
2: वी टेक प्राइड इन सेइंग दैट दिस इज प्रोबेबली, इनफैक्ट आई एम श्योर दिस इज द ओनली फुल्ली एयर कंडीशन सेंटर फॉर द झुग्गी चिल्ड्रेन। और ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। हमारे कई दोस्तों ने पहले इस बात पे असहमति जाहिर की थी कि इनके लिए एयर कंडीशन, इनके लिए बढ़िया सुंदर पेंट किया हुआ बिल्डिंग किस लिए चाहिए, उनके घर में तो नहीं है, लेकिन हमने देखा उसका फर्क पड़ता है
1: जी।
2: फिर बच्चों को अट्रैक्शन होता है कि वो घर से निकल करके, कई बच्चे तो ऐसे हैं, माँ बाप ये शिकायत करते हैं कि ये बच्चे घर नहीं जाना चाहते, यहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और हम वहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई जो इसको एकेडमिक कैरिकुलम कहते हैं वो तो जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है। और जब हमने बात की थी, इनफैक्ट आपको मैं फिर से बताऊं, ये जो प्रज्ञा है, आप हमसे पूछ रही थी प्रजना है प्रज्ञा, स्पेलिंग तो PRAJN है क्योंकि जेन इज ज्ञा होता है अंग्रेजी में, इसलिए मैं प्रजना बोलना पड़ता है, अदरवाइज लोग गूगल करेंगे तो उनको मिलेगा नहीं। तो प्रज्ञा का संस्कृत नाम है, इसका मतलब होता है विजडम
1: जी।
2: और विजडम सिर्फ एकेडमिक से नहीं आता है।
1: yes.
2: इसके लिए वैल्यू एजुकेशन चाहिए, और सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाई करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, फिर वो भाग जाएंगे वहाँ से। और हमारा तो लक्ष्य उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना, तो उसके साथ साथ हम सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनसे कराते हैं, उनके खिलाते हैं, गेम्स देते हैं, और हमारे पास स्मार्ट टीवीज हैं, जो लड़कियां हैं वो उस पे YouTube देख करके वो डांस सीखती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। हमारा एक मल्टीपर्पज हॉल है जहाँ पे बच्चे योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और डांस भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं। थिएटर के थ्रू हम उनके अंदर सिविक सेंस भी डालने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच है बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए, और जहां बच्चे बहुत खुश रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आते हैं, इनफैक्ट मानव रचना से भी हमारे पास वॉलंटियर्स आ चुके हैं पहले, वो सब आकर के ताज्जुब करते हैं इतनी गरीबी में, इतनी गुर्बत में यहाँ इतनी खुशी कैसे है।
1: एग्जैक्टली
2: तो हम लोग ने खुशी का माहौल बना रखा है वहां पे, और उनको हम वो हर चीज प्रोवाइड करते हैं जो हमारे आपके बच्चों को मिलता है, ताकि कभी भी उनके अंदर हीन भावना नहीं आए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आए कि उनके पास ये नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, अगर आपको और पता हो, बिकॉज आप तो बहुत एनजीओस के इंटरव्यूज लेती रहती हैं, आपको शायद पता होगा, वी ऑल्सो ऑपरेट अ लैपटॉप बैंक।
1: यस
2: ओके। एंड लैपटॉप बैंक की शुरुआत यूं हुई थी कि कोविड में सब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, तो फॉर्चुनेटली ये शायद दैवी कृपा थी कि कोविड आने के साल भर पहले ही हमने ये रियलाइज किया कि आगे वाले दिनों में बच्चों की डिजिटल लिटरेसी ही एक्चुअल लिटरेसी है। तो हमने उसी समय से कंप्यूटर लगाया, ब्रॉडबैंड लगाया, और 9th-10th के बच्चों को हमने लैपटॉप देना शुरू किया, ताकि वो बच्चे लैपटॉप से पढ़ सकें। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लैपटॉप कभी उनके हाथ में आएगा। हाँ, हम उनको वो बांट नहीं देते हैं, हम जैसे लाइब्रेरी में बुक इशू होता है, उनको ऐसा लैपटॉप इशू कराते हैं, ताकि उनके माँ बाप को ये पता हो ये प्रज्ञा फाउंडेशन की प्रॉपर्टी है, उसका वो कोई दुरुपयोग ना कर दे या किसी और को। आप समझ सकते हैं।
1: एग्जैक्टली। सो दोस्तों, इतना खूबसूरत सा काम हो रहा है इस फाउंडेशन में, और इस फाउंडेशन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो बस कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, वापस लौट के आ रही हूँ। लेकिन तब तक के लिए आपको सुना रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना, फील गुड फील लाइव। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM।
3: लागा गोरी गुजरिया से

0: थई थई थई थई झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं आरके सिन्हा जी के साथ प्रज्ञान फाउंडेशन से, और आप सभी को बता दूं कि एक इतना बेहतरीन काम किया जा रहा है कि हम दरअसल देखते हैं कि हम गरीब बच्चों के लिए

0: जब बच्चे आते हैं हमारे यहाँ
1: जी
0: तो ABCD तो स्कूल में सीखते हैं और कीबोर्ड चलाना हमारे यहाँ सीखते हैं
1: जी।
0: चार साल पांच साल के छह साल के बच्चे भी उनकी टाइपिंग स्पीड हमारे आपके स्पीड से ज्यादा अच्छी होती है।
1: क्या बात है।
0: तो वो एक जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो उसके साथ वो सीखते हैं और हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही देखिए हम बहुत आपके मानव रचना की तरह तो हम बहुत हाईली स्किल्ड एंड हाईली पेड टीचर्स नहीं रह सकते लेकिन जो भी अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एड करती है उनको। हमने उनको हेडफोन लगा करके वो बच्चे वहाँ पे AV मोड में आ करके वो उनसे सॉफ्टवेयर से सीखते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी एक बचपन से ये आदत बन जाती है कि वो कंप्यूटर से डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीख सकें तो ब्रेन उनका उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है और वो काम करते करते फिर वो हमारे पास एक IIT बॉम्बे से डिज़ाइन किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है जो उनको IT ट्रेनिंग देता है। वो पढ़ते पढ़ते पढ़ते फिर कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है कि वो जा करके बड़े होकर के इतनी सारी नेहरू प्लेस में डेटा मैनेजमेंट कंपनी है दे बिकम डेटा एंट्री ऑपरेटर। उसी के माध्यम से उनका ज्ञान चक्षु खुलता है होराइजन ब्रॉडन होता है तो बहुत सारे कैरियर जो हैं उनके सामने खुलते हैं। तो जो भी बच्चा आगे चल के जो बनना चाहता है कोई नर्स बनना चाहता है कोई होटल इंडस्ट्री में जाके हॉस्पिटलिटी में हाउसकीपिंग सीखना चाहता है और हमारी एक लड़की जो है वो AI इंजीनियर बन रही है चीज तो कोई भी वो वोकेशन चुनना चाहता है। देखिए दो तरह के वोकेशन हम उनको ट्रेन करते हैं एक तो इनहाउस होता है जो जनरली सभी NGOs में होता है स्किल ट्रेनिंग के लिए वो आपने भी कहा सिलाई होती है स्टिचिंग होती है ब्यूटी पार्लर होता है ब्यूटी टीचिंग होती है लेकिन जो हम खुद नहीं कर सकते हैं और वो कहीं जाना चाहते हैं तो उनको हम सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट यू करते हैं कि अगर कोई बच्चे से वो लड़की हमारी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करना चाहती थी AI बड़ी अच्छी बात है वो कंप्यूटर देखते देखते उसको लग गया हमें AI इंजीनियर बनना है तो हम उसकी डिटेल्स उसकी चाहत उसकी आकांक्षा जो है हम अपने कॉन्टैक्ट्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं ये फीस स्ट्रक्चर है ये है तो उसमें दो चार फ्रेंड्स हमारे मिल जाते हैं वो मिलकर उसको स्पॉन्सर कर देते हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल है बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहे हायर एजुकेशन हो चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो किसी तरह की भी। दुनिया में एक लड़की हमारी वो एयर होस्टेस बनना चाहती है अब आपको पता है कि कितने एक्सपेंसिव है बट यस व्हाई नॉट शी हैज द एबिलिटी शी हैज द विल टू डू दैट एंड शी विल डेफिनेटली डू इट तो हम वो भी करेंगे जहाँ चाह वहाँ राज यूं ही थोड़ी बना है।
1: तो सबसे अच्छी बात है कि अपने बच्चों के सपने माता पिता सुनते हैं और इसलिए जी जान से लग जाते हैं कि अब इन सपनों को पूरा किया जाए। बट क्या कभी आपने सोचा है कि किसी NGO में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को कोई ये कह रहा है कि जाइए सपने देखिए और इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं हम आपके साथ खड़े हैं और आपके सपनों को पूरा करेंगे। और शायद यही कारण है कि जब हम प्रजना फाउंडेशन की बच्चियों को देखते हैं बच्चों को देखते हैं सो हम ये एक डिफरेंस महसूस कर पाते हैं कि किस तरीके से वो आज ही आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने की कोशिश कर रहे हैं और यही समाज की एक कल्पना हम सभी ने की है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम आर के सिन्हा जी के साथ हैं, प्रजना फाउंडेशन से। सिन्हा जी, सुनने में बहुत आसान लग रहा है। आपने कहा कि हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप है हमारे दोस्तों का, उसमें हम ऐसे डालते हैं, पैसा आ जाता है और हम बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। हमने एक बहुत खूबसूरत सा एसी हॉल और एसी बिल्डिंग बनाई है जो बहुत ही खूबसूरत है और बच्चों के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आसान सुनने में लग रहा है, लेकिन जब इसे हकीकत में करने जाएं, और आज के ज़माने में जहां पर 1,000 रुपये के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ किस प्रकार के चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं। सो ऐसे तो अगर मैं बताऊं लोगों को तो सबको लग रहा होगा पता नहीं कितने धनाढ़य लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल शायद डोनेशन देने के लिए बैठे हैं प्रजना फाउंडेशन के लिए, लेकिन अदरवाइज मुझे बताइए किस प्रकार के रियल टाइम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप।
1: देखिए, एक शेर है ना, ये इश्क नहीं आसान।
0: वाकई
1: तो ये जो मानवता के लिए भी इश्क है, इसके लिए खुद तो आपको हो सकता है, दूसरों को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं होता।
0: तो जगाया कैसे जाए, कई बार तो यही बड़ा मुश्किल है।
1: हाँ, और जब आप यह जगाने की आप कोशिश करते हैं तो आपको शुरू में बहुत निराशा का सामना करना पड़ता है। शुरू में मुझे लगता था ये भावना जी मेरी दोस्त हैं, इनके पास इतने पैसे हैं, अरे 500 रुपये दे दो ट्यूशन फी और भावना जी हमारे पर चाहे शाम को डिनर पे 5,000 खर्च कर देंगी लेकिन 500 रुपये नहीं देंगी। तो मुझे बड़ा दुख भी होता था और समझ भी नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने समझा कि सिर्फ मांगने से नहीं होता है, ठीक है। और मैंने कहीं सुना कि आप डोनेशन मांगिए मत, इंस्पायर कीजिए कि लोग आपसे जुड़े। तो ये हमने अपना जो ये सोच, अपना अप्रोच चेंज किया कि मुझे मांगना नहीं है, ओके, मुझे लोगों को इंस्पायर करना है। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, और जो हमें डोनेशन दे चाहे ना दे, हम खुले हृदय से उनका स्वागत करते हैं, हम उनको अपने सेंटर पे बुलाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो जो लोग नहीं आते हैं हमारे पास, तो उनके पास हम बच्चों को ले जाते हैं। अब कैसे ले जाते हैं, हर साल 1 या 2 बार हम कमानी ऑडिटोरियम में म्यूजिकल शो करते हैं।
0: वाओ।
1: और उसके बहाने जितने जो हमारे दोस्त हैं और उनके दोस्त हैं, उनके फैमिली, उन सबको हम वहाँ पे इकट्ठा करते हैं उस म्यूजिकल शो के बहाने।
0: जी।
1: और वहाँ पे हम इन बच्चों को बुलाते हैं, उनको मिलाते हैं और उनके सक्सेस स्टोरीज उनके साथ शेयर करते हैं।
0: yes.
1: तो ये हमने जब शुरू किया 2015 में, उस समय हमारे पास डोनर बेस हार्डली मुश्किल से 40-50 था, और आज मुझे लगता है कि हमारे पास 2000 डोनर बेस हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं आपसे इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि और भी कुछ लोग इससे अगर प्रेरित होकर के अगर अपने एनजीओ के लिए कुछ करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी।
0: वाकई वाकई, मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जब मैं एनजीओ से पूछती हूँ तो वो ये कहते हैं, बड़े दिल को लगता हुआ सवाल है मैम, आप हमसे ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि भाई हमें फंड्स कैसे मिलते हैं और उन्हें इकट्ठा करना कितना मुश्किल है। लेकिन ये एक सच्चाई है, जब हम मानवता की राह पर निकलते हैं तो जज्बा हमारा होता है और सोच हमारी होती है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को इस पूरे राह में जोड़ लेते हैं। और फिर होता क्या है, जब हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी किस्म का जज्बा जैसा हमारा है दिखाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। लेकिन मुझे लगता है कि सिन्हा जी ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है, जब तक आप किसी की सक्सेस नहीं दिखाएंगे तब तक उस सक्सेस का हिस्सा बनने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। सो शायद पहले हमें अपना टर्नओवर दिखाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट जल्दी से आ ही जाएगी। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम प्रज्ञा फाउंडेशन के साथ चल रहे हैं और प्रज्ञान फाउंडेशन इतना बेहतरीन काम कर रही है कि क्या कहने, लेकिन उसके पीछे कुछ डेडिकेटेड माइंड्स और कहना चाहिए मोटिवेटेड सोल्स हैं, जिन्होंने ये सोच लिया था कि भाई हमें ये एक्चुअली करके दिखाना है, तभी हम आने वाली पीढ़ी को ये दिखा पाएंगे कि उज्ज्वल भविष्य किस प्रकार होता है। सिन्हा जी, आप एक बड़ा अहम हिस्सा निभा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, या फिर मैं कहूँ कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक इस फाउंडेशन को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ये सब कुछ करते हैं, आप इन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्या कोई ऐसी एक सक्सेस स्टोरी या कोई एनेक्डोट आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो आज भी आपको हमेशा एक मोटिवेशन दे जाता है कि आई हैव टू डू मोर?
1: ओह यस, देयर आर मेनी, बट एक जो रिसेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बार मैं ऐसे सेंटर गया तो मैंने देखा कि एक लड़की है, वो सेंटर क्रॉस करते हुए आगे निकल गई, तो मैंने उसको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उसको आवाज़ दी और उसको मैंने बुलाया कि तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम्हारे क्लास का टाइम है। तो उसने कहा कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हमने कहा क्यों छोड़ दी? बोला नहीं, वो हमारे ऊपर बहुत लोन है और हमारे फैमिली के जिनसे लोन लिया है वो रिलेटिव्स कहते हैं लड़की को पढ़ा करके क्या करोगे, ठीक है उसको कोठियों भेजे, उससे काम करा और उससे पैसा कमा करके हमारा लोन चुकता करो। सो देवर अंडर डेट। तो मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो लड़की मुझे पता था कि बहुत अच्छी है, टैलेंटेड भी है, मल्टी टैलेंटेड इनफैक्ट। तो मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है अपने पेरेंट्स को बुलाओ। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बुला करके उनसे बात की और उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि ये महीने में 2000 रुपये शायद कमा लेगी, लेकिन इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो आगे चल के 2 लाख रुपये महीने कमाएगी, तो आप इस 2000 महीने के चक्कर में 1,80,000 महीने का उसका नुकसान करा रहे हो। आपकी लड़की बहुत तेज़ है, बहुत ब्रिलियंट है, तो आपकी जो थोड़ी बहुत मदद है वो मैं करने की कोशिश करूँगा, जैसे उसके लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, तो आप इसकी चिंता नहीं करो। मैंने सेंटर मैनेजर से कहा कि इसको जो भी चाहिए, किताबें चाहिए, कॉपी चाहिए, बगैर मुझसे पूछे, मुझसे अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट चेक फ्रॉम मी, जो चाहिए आप इसको दो, लेकिन इसको यहाँ पे माँ बाप से कहेंगे देखो मैंने बोल दिया, इसको आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, ये पढ़ेगी यहाँ पे, सारा दायित्व तो हमारा है। ओके और मैंने उनको कहा कि ये बेटी जरूर आपके यहाँ पैदा हुई है, लेकिन सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी बेटी है, वैसे भी कहते हैं बेटियाँ साझा होती हैं। तो और हमने उसका कहा बेटा चिंता मत करो, ठीक है तुम पढ़ो, मैं हूं ना, ओके चिंता क्या बात है। और उस लड़की ने थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, उसने बाद में एक अपने बारे में लिखा आर्टिकल, उसमें इस बात का उसने जिक्र किया कि तब मेरे टेंशन होती थी घर की, तो वैसे ही मेरी पढ़ाई खराब हो रही थी, मेरे मार्क्स ई आते थे, डी आते थे, तो वैसे ही पढ़ाई छूट गई, तो चलो मैं पढ़ के ही क्या करती जब इतना खराब मार्क्स आ रहा था, लेकिन जब मुझे सर ने कहा मैं हूं ना, तो मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया कि कोई है हमारे पीछे, और उसके बाद मेरा स्कोर लेवल वो बढ़ता चला गया, फिर मैं सी, फिर बी, फिर ए प्लस प्लस आने लगा, और फिर वो लड़की क्लास 10 में टॉप किया उसने अपने स्कूल में, क्लास 12 में फिर उसने टॉप किया, और आपको सुन के खुशी होगी वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी वेंकटेश्वर कॉलेज में उसका एडमिशन मिला, वहां ग्रेजुएशन में उसने टॉप किया अपने बैच में। तो फिर मैंने उससे पूछा अच्छा अब तुम क्या करना चाहती हो? बोली मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो हमने कहा टीचर बनने के लिए तो बीएड करना पड़ेगा। बोली हाँ, तो मैं गांव चली जाऊंगी, यहाँ पे तो दिल्ली में स्कूल्स वगैरह बहुत महंगे हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं करती, मैं गांव चली जाऊंगी, वहाँ से किसी सरकारी स्कूल से बीएड करने कॉलेज से करने की कोशिश करूंगी। हमने कहा नहीं, दिल्ली की पली बड़ी लड़की, तुम मेरी बेटी हो, कहाँ जाओगी मुझे छोड़ करके, तुम यहीं रहो। फिर उसका हमने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उस समय उसकी फीस थी तकरीबन 3,72,000 रुपये प्लस आना जाना स्टेशनरी वगैरह, फिर मैंने उसकी स्टोरी अपने लोगों के साथ शेयर किया, अनफॉर्चुनेटली वी गॉट द रिस्पॉन्स, फिर उसने बीएड किया, वहां भी उसने टॉप किया, एंड नाउ शी इज एम्प्लॉयड इन द सेम स्कूल वेयर शी हैड स्टडीड।
0: वाओ,
1: या
0: नाउ दैट्स द रियल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी।
1: या
0: सो भाई देखिए, जब कभी भी ये कहानियां है ना, इसको इन कहानियों को सुनाने के पीछे एक ध्येय है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ये सोचते हैं चलिए हम एक्स वाई जेड या फलां कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका जानकार है, कोई आपका दोस्त है या किसी संस्था का आपका साथी है, तो आप ये सोचते हैं चलिए हम इनकी मदद करें। दरअसल आप किसी का भविष्य बना रहे हैं, और यही कारण है कि मैं हमेशा कहती हूँ हमें अपने अंदर अपनी मानवता को जिंदा रखना चाहिए। अब वो अलग अलग किस्म से हो सकती है। अगर आपके पास समय नहीं है, धन है, आप धन दे सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप वॉलंटियर कर सकते हैं। आप ना सिर्फ आइडियाज दे सकते हैं, लोगों तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन मानवता आप फैला सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप दूर कहीं जाइए और कोई एनजीओ ढूंढिए, आप अपने घर के आसपास हर इंसान, अगर सिर्फ एक इंसान की मदद करे तो हमारा पूरा देश एक्चुअली आत्मनिर्भर हो जाएगा। सो ये हमारा सपना है मानवता की राह पर। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। आरके सिन्हा जी के साथ चल रहे हैं प्रज्ञा फाउंडेशन से। और सिन्हा जी, अब क्योंकि मैंने सबको मोटिवेट कर दिया है, सो आप उन्हें बताइए कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, अगर कोई वॉलंटियर कर सकता है, कोई आपके साथ जुड़ सकता है, कोई आकर समय निकाल कर आपके बच्चों को पढ़ा सकता है, कोई स्किल सिखा सकता है, या फिर जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके पास और कोई जरिया नहीं है, भाई बहुत ही बिजी है, तो आप धन दे सकते हैं। सो किस तरीके से कोई जुड़ सकता है आपके साथ?
1: देखिए, आपने इसके पहले बहुत सही कहा कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके आसपास ही बहुत लोग मिल जाएंगे। एक शेयर करता हूँ, अपना गम भूल कर कोई देखे
0: जी,
1: अपना गम भूल कर कोई देखे, सैकड़ों गम के मारे मिलेंगे, दस्त हो या हो सहने गुलिस्तां, हर जगह गम के मारे मिलेंगे।
0: वाकई,
1: तो आप अपने आसपास देखिए, बहुत लोग मिल जाएंगे
0: जी।
1: और उसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई एनजीओ है तो आप उनसे जुड़िए, ताकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, और ये जरूर करना चाहिए। आपने पहले ही बता दिया, तन मन धन तीन तरीके से सेवा होती है, जो भी आप कर सकते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि एक मान्यता है 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म होता है, और उस जन्म का कुछ मकसद होता है, सिर्फ पैसे कमा लेना और पशु व्रत जीवन व्यतीत करना कि हम पैदा हुए, खाए पिए, बच्चे पैदा किए और खुद मरे चले गए, वो मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, कुछ और है। तो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए प्लीज गिव बैक टू द सोसाइटी। सक्सेस इज नॉट अचीवमेंट, सक्सेस इज शेयरिंग व्हाट यू हैव।
0: यस, एग्जैक्टली। सो भाई, अगर आप भी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर से ये सेल्फिश वाली फीलिंग थोड़ी सी कम कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिंदगी की सारी अच्छाइयाँ या फिर जिंदगी की सारी जितनी भी कहना चाहिए लग्जरीज हैं, वो उन्हें त्याग दीजिए, लेकिन यस, कोशिश ये करिए कि थोड़ा सा आप शेयर भी करें। सब कुछ सिर्फ अपने लिए करना, मुझे लगता है बहुत ही सेल्फिश होता है। इसीलिए अपनी मानवता को जिंदा रखिए, और जैसे कि डॉक्टर सिन्हा ने कहा है कि अपने आसपास जाइए, और अगर आप रेजोनेट करते हैं इनकी इन सारे आइडिएशन से, आपको लगता है कि आप प्रज्ञा फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत ही आसान तरीका है। आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप इन्हें सोशल मीडिया के हैंडल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक और प्यारा सा गाना, बड़ा आप कहीं मत जाना, फील गुड फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजी भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर। आज की राह थोड़ी सी लंबी लेकिन थी बहुत ही खूबसूरत, और ये जो डगर है ना, ऊंची नीची आड़ी टेढ़ी, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक ले गई। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने एक सीख जरूर ली है कि हमें मानवता करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी सेना जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाला, यू ट्रैवल्ड ऑल द वे, और आकर आपने अपनी खूबसूरत सी कहानी हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंचाई। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगे उन्हें?
1: मैं सबको कहूंगा, एक पुराना गाना है वो याद रखें, आज चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। इस गाने को ध्यान करते हुए मानवता के साथ जुड़ जाइए, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और यकीन मानिए, खुशी देने से खुशी मिलती है, कुछ पाने से कभी नहीं मिलती।
0: ये तो बिल्कुल फैक्ट है भाई, कि जब कभी भी आप कुछ देते हैं, पहली चीज की वो बढ़ जाती है आपके पास, और दूसरी चीज की इट ब्रिंग्स यू इमेंस सैटिस्फैक्शन। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास दुनिया ने बहुत कुछ है लेकिन ना एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं असेस करिए अपने आप को। कोशिश यही करिए कि आप लोगों को देना शुरू करिए, और फिर देखिए आप अपनी ही रिचेस को, अपनी ही सक्सेस को कितना एंजॉय करेंगे। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए एक वादा जरूर करती हूँ, और वादा यही कि अगले हफ्ते मैं आऊंगी आपके पास एक और खूबसूरत सी कहानी और मानवता के बहुत सारे संदेश के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू अय्या।

अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु खो गया दिल मेरा सुकु सुकु

0: मशहूर हो जाए।
1: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
3: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से एक कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खट खट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है, बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी, पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्शते कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सबकी सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदाबख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदाबख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नई

0: जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा,
1: मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए।
0: वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया,
1: तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है।
0: ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया,
1: नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ।
0: चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा,
1: मेरा नाम शंकर है।
0: सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामली शक्ल सूरत का आदमी था मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा,
1: फरमाइए।
0: ये सुनकर वो लेट गया।
1: मैं क्या फरमाऊं?
0: तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं?
1: शंकर ने जवाब दिया,
0: यही जो तुम करती हो।
1: क्या
0: तुम क्या करती हो?
1: मैं कुछ नहीं करती।
0: तो मैं भी कुछ नहीं करता।
1: सुल्ताना ने भन्ना कर कहा,
0: ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना।
1: शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया,
0: तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी।
1: झक मारती हूँ।
0: तो मैं भी झक मारता हूँ।
1: तो आओ झक मारे।
0: मैं हाजिर हूँ मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता।
1: होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं।
0: तो मैं भी वॉलंटियर नहीं।
1: सुल्ताना यहाँ रुक गई।
0: उसने पूछा,
1: ये वॉलंटियर क्या होते हैं?
0: जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो,
1: बोलो रहोगे?
0: इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ।
1: सुल्ताना उठ खड़ी हुई,
0: तो जाओ रास्ता पकड़ो।
1: शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा,

0: मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाए। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 1.25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते टांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ, मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है? शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
1: निकाह और शादी कैसी?
0: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं, छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
1: बोलो क्या बात करूं?
0: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल पहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
1: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
0: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
1: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
0: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
1: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ,
0: तो कहो क्या इरादा है?
1: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
0: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
1: हाँ सुल्ताना ही है।
0: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा।
1: मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
0: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
1: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
0: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ।
1: सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर
0: कहो कहो रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
1: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो।
0: कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा,
1: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
0: नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो।
1: मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है।
0: बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी।
1: लो बस अब खुश हो गई?
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो?
1: सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
0: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी।
1: बोलो देती हो?
0: ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतार कर शंकर को दे दिए। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज उसने सुल्ताना को दी और कहा,
1: साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो।
0: अच्छा अब मैं चलता हूँ। शंकर सलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, ऐसा महसूस होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चलाया है। सुल्ताना ने कागज खोला, साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा,
1: कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है।
0: कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया,
1: आज ही दर्जी से लाई हूँ।
0: ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी।
1: ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं?
0: अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: રેડિયો 107.8 FM પર ઢે સારી મસ્તી ખૂબ સારા ફન ક્યુંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी डेडिकेशन से ना सिर्फ अपनी लाइफ को बदला है बल्कि दूसरों के लाइफ के लिए भी मिसाल बन गए हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और आज का प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ और साथ ही एक ऐसी पर्सनैलिटी की कहानी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले एक वर्ड याद आता है और वो वर्ड है टीचर। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ टीचर की ही बात नहीं करने वाले हैं बल्कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो टीचर भी रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं और स्कॉलर भी रहे हैं और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक टीचर की जर्नी प्रेसिडेंट तक कैसे पहुंच गई और उनकी लाइफ में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों इसी जर्नी को हम आज के सक्सेस मंत्रा में थोड़ा और ज्यादा क्लोजली समझने वाले हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5th ऑफ सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। उनका बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल था लेकिन उनके अंदर नॉलेज को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। पढ़ाई के प्रति उनकी डेडिकेशन ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिलोसफी को अपना स्पेशल एरिया बनाया और टीचिंग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो एजुकेशन को सिर्फ बुक्स और एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं समझा करते थे बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि इंसान की सोच को डेवलप करना, उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना और लाइफ को समझने के लिए रेडी करना। और शायद इसी वजह से उनकी जर्नी आज भी हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट है। दोस्तों सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छी जॉब मिलना, किसी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना या फिर किसी के लिए अपने पैशन को फॉलो करना। लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझाते हैं कि सक्सेस के साथ नॉलेज और कैरेक्टर भी जरूरी होता है। तो आज के इस खास एपिसोड में हम उनकी लाइफ के डिफरेंट चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी जर्नी हमें क्या क्या सिखाती है, स्पेशली जो आज की जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्हें क्या क्या सीख मिल पाती है उनकी जर्नी के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम है जहां पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने भी। तो सुनेंगे बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की हमारे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा में, जिनकी पूरी लाइफ ही नॉलेज और लर्निंग को जाना कि एक सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाले राधा कृष्णन जी कैसे अपनी पढ़ाई और नॉलेज के थ्रू एक अलग आइडेंटिटी बना पाए। लेकिन दोस्तों, उनकी जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने या फिर एग्जाम पास करने का मीडियम नहीं था, बल्कि उनके लिए एजुकेशन का मतलब था कि अपनी थिंकिंग को डेवलप करना और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना। सोचिए, आज जब हम एजुकेशन को अक्सर मार्क्स, डिग्री, जॉब या फिर करियर के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये भी जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनका कोई मीनिंग समझने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद हम एजुकेशन का रियल पर्पस मिस कर रहे हैं। राधा कृष्णन जी ने फिलॉसफी को अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। फिलॉसफी सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना। और इसी सब्जेक्ट के थ्रू उन्होंने लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि थिंकिंग का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। उन्होंने टीचिंग को भी बहुत सीरियसली लिया। उनका मानना था कि एक टीचर का रोल सिर्फ क्लासरूम में लेसन एक्सप्लेन करने का ही नहीं होता है, बल्कि टीचर स्टूडेंट को इंस्पायर करता है, उन्हें क्वेश्चंस को पूछना सिखाता है और उनके अंदर सोचने की एबिलिटी को डेवलप करता है। और दोस्तों, यही लेसन हमें आज अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है और हम इसे कर सकते हैं। आज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पर एक क्लिक में थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स हमें मिल जाते हैं तुरंत में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे समझते हैं और उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करते हैं। राधा कृष्णन जी हमें लाइफ में ये सिखाते हैं कि लर्निंग एक फिक्स्ड एज तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ या फिर जॉब मिल गई, इसका मतलब लर्निंग खत्म हो गई है ये नहीं होता है। एक्चुअली रियल लर्निंग तो उसके बाद ही कंटिन्यू होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक सिंपल मंत्रा याद रखिएगा कि मार्क्स आपको एक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, नए स्किल को सीखिए, क्वेश्चंस पूछिए और अपनी गलतियों से सीखिए और अपनी थिंकिंग को ओपन रखिए। क्योंकि सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सक्सेस ये भी है कि आप जो जानते हैं उससे अपनी और दूसरों की लाइफ को कितना बेटर बना पाते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की एजुकेशन जर्नी से हमें आज का सक्सेस मंत्रा, पहला सक्सेस मंत्रा मिलता है कि लर्निंग को डेस्टिनेशन मत समझिए, उसे अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी बना लीजिए। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उनकी सक्सेस फिलॉसफी की, पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हासिल करा है, साथ ही वो अपनी जर्नी से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और लर्निंग के बारे में जाना है, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर उनकी सक्सेस का मंत्र क्या था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो अक्सर हम उनकी अचीवमेंट्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, कितने अवार्ड्स मिले, कौन सी पोजीशन मिली, कितना नाम कमाया। लेकिन असली सक्सेस को समझने के लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि उस इंसान की सोच क्या थी और उसने अपनी जर्नी को कैसे बिल्ड किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से एक थी कंटिन्यूस लर्निंग। वो नॉलेज को भी एक फिक्स्ड चीज नहीं मानते थे, उनकी थिंकिंग हमेशा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस रही है। ये क्वालिटी आज के टाइम में हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज की जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है तो और कंपटीशन भी है उसी के साथ। हर फील्ड में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नए करियर के ऑप्शंस आ रहे हैं और स्किल्स भी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहे हैं। और ऐसे में अगर हम ये सोच लें कि मुझे सब आता है तो शायद हम वहीं रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें मैं और सीख सकता हूँ तो हमारी ग्रोथ का चांस हमेशा बना रहेगा। लेकिन उनकी लाइफ हमें डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस भी समझाती है। टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट को डायरेक्शन देने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपके पास कितना भी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं करते तो पोटेंशियल का रिजल्ट नहीं मिलता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी सिंप्लिसिटी। इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने के बाद भी उनकी पर्सनैलिटी में सिंप्लिसिटी और डिग्निटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। ये हमें रिमाइंड देता है कि सक्सेस के साथ ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि नॉलेज के साथ कैरेक्टर। जी हाँ, सिर्फ इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं होता है, आप कितने नॉलेजेबल हैं उसके साथ ये भी मैटर करता है कि आप अपनी नॉलेज और पोजीशन का यूज किस पर्पस के लिए करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर सक्सेस को मोस्टली ग्लैमरस वे में देखते हैं, जैसे कि बड़ी सैलरी होना, लग्जरी लाइफस्टाइल होना, अचीवमेंट्स होना, सब कुछ इंस्टेंटली विजिबल है। लेकिन किसी भी रियल सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, पेशेंस और कंसिस्टेंसी होती है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी भी हमें ये बताती है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, सक्सेस एक प्रोसेस है, लर्निंग का, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और कंटिन्यूसली बेटर बनने का। तो आज का सक्सेस मंत्र बहुत ही सिंपल है कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लर्निंग, डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज इस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं जिस जर्नी के साथ, उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनकी जर्नी ये प्रूव करती है कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट आपका फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि एक यंग स्टूडेंट जो नॉलेज और फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखता है और पढ़ाई भी करता है, फिर टीचिंग को अपना करियर चूज करता है और धीरे धीरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक पहुंचता है कि एक दिन वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये जर्नी किसी मूवी की स्टोरी नहीं बल्कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी की रियल लाइफ जर्नी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीचिंग से और फिलॉसफी के फील्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाकर की थी। उन्होंने डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में फिलॉसफी की पढ़ाई की और अपनी नॉलेज के थ्रू स्टूडेंट के बीच एक अलग रिस्पेक्ट अर्न किया। उनकी टीचिंग स्टाइल का फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने पर ही नहीं था बल्कि स्टूडेंट्स को सोचने और समझने के लिए एनकरेज करना भी था। उनकी एकेडमिक रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग हुई कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजियस और एथिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सोचिए दोस्तों, एक इंडियन स्कॉलर का ऑक्सफोर्ड में जाकर इंडियन फिलॉसफी और थॉट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन उनकी जर्नी यही नहीं रुकी। इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने पब्लिक लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है। जी हाँ, वो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने और 1952 से 1962 तक इस पोजीशन पर रहे। इसके बाद 1962 में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद को भी संभाला। और अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात भी आती है कि एक टीचर और एक फिलोसोफर का देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में से एक तक पहुँचना हमें क्या बताता है। ये बताता है कि आप जिस फील्ड में सिंसियरली काम करते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस फील्ड तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आप फ्यूचर जनरेशन को शेप कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज आपकी लर्निंग कल की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकती है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल में हैं तो डेडिकेशन और नॉलेज के थ्रू आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की जर्नी का एक और ब्यूटीफुल लेसन है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ एक डेस्टिनेशन से डिफाइन नहीं होने दिया बल्कि वो पहले टीचर थे, फिर फिलोसोफर थे, फिर उसके बाद स्कॉलर रहे, फिर डिप्लोमेट रहे और फिर प्रेसिडेंट बने। लेकिन हर स्टेज पर उनकी कोर स्ट्रेंथ नॉलेज और लर्निंग ही रही है। दोस्तों, हम भी लाइफ में कई बार अपनी करंट सिचुएशन को देखकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मैं नहीं कर सकता, मेरी स्टार्टिंग स्ट्रांग नहीं है तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। लेकिन राधाकृष्णन जी की जर्नी हमें एक रिमाइंडर देती है कि स्टार्टिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, डेस्टिनेशन और डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो आज का एक और सक्सेस मंत्रा कि अपनी करंट पोजीशन को अपनी फाइनल आइडेंटिटी मत समझिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी पॉसिबिलिटीज पर बिलीव रखिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरती सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा. और आज सक्सेस मंत्रा की जर्नी पर हम चल रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ, उनकी लाइफ और उनकी इंस्पायरिंग थिंकिंग के साथ. अब तक हमने उनकी एजुकेशन, सक्सेस फिलोसफी और टीचर से प्रेसिडेंट तक की जर्नी के बारे में जाना. लेकिन दोस्तों, राधाकृष्णन जी को सिर्फ उनकी पोजीशन की वजह से ही याद करना उनकी पर्सनैलिटी को बहुत छोटा कर देना होगा. उनकी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज में से एक थी फिलोसोफर की. अब फिलोसोफर वर्ड सुनते ही आपको शायद लगता होगा कि ये टॉपिक थोड़ा सीरियस या फिर डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे ना, तो फिलोसफी का मतलब है कि लाइफ, नॉलेज और सोसाइटी से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सोचना. जैसे कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या है. डॉक्टर राधाकृष्णन जी की थिंकिंग में एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. उनके लिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ सक्सेसफुल करियर बनाना नहीं था, बल्कि एजुकेशन का रोल एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल, थॉटफुल और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना था. और दोस्तों, अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये थॉट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी ने नॉलेज तक पहुंचना बहुत इजी कर दिया है, लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम एक ही चीज़ नहीं होती. आपके फ़ोन में थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उन फैक्ट्स को समझना, उनका सही यूज़ करना और राइट डिसीजन लेना, ये विजडम का पार्ट होता है. इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग आज के यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. हर वायरल पोस्ट को सच मान लेना और हर ओपिनियन को फॉलो कर लेना या फिर सिर्फ किसी ट्रेंड का पार्ट बन जाना, क्योंकि सब कर रहे हैं, ये हेल्दी थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं है. राधा कृष्णन जी के फिलोसफिकल अप्रोच हमें एनकरेज करती है कि हम क्वेश्चंस को पूछें, समझें और अपनी थिंकिंग को डेवलप करें. एक और इम्पोर्टेंट लेसन है, वो है कैरेक्टर. आपके पास नॉलेज है, डिग्री है, स्किल्स है, लेकिन अगर वैल्यूज और कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं है तो सक्सेस इनकम्प्लीट रह जाती है. और अगर आज हम करियर गोल को सेट करते हैं, अच्छी जॉब मिलना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रमोशन, बिजनेस, पॉपुलैरिटी, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही हमें ये भी पूछना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ. ये क्वेश्चन शायद हमारी जर्नी को और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है. तो दोस्तों, राधा कृष्णन जी की थिंकिंग का एक और सक्सेस मंत्रा कि नॉलेज आपको इंटेलिजेंट बना सकती है, लेकिन राइट थिंकिंग और वैल्यूज आपको वाइज बना सकती है. और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की और उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के साथ आज हम चल रहे हैं। अब तक हमने उनकी एजुकेशन और फिलोसफी, सक्सेस जर्नी और उनके थॉट को बहुत अच्छे से समझा, जान चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन अब आते हैं उनकी लाइफ से जुड़े एक ऐसे दिन पर जिसे हम हर साल बहुत ही स्पेशल वे में सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5th of September यानी कि टीचर्स डे की। दोस्तों, हम सब ने स्कूल या फिर कॉलेजेस में टीचर्स डे जरूर सेलिब्रेट किया होगा। कहीं स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए कार्ड बनाते हैं, कहीं पर परफॉर्मेंस भी होती है, तो कहीं टीचर्स के लिए स्पेशल एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में 5th of September को ही ये टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका कनेक्शन है डायरेक्टली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से ही। जी हाँ, उनका जन्म 5th of September 1888 को ही हुआ था। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब उन्हें कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के अपनी विश को एक्सप्रेस किया, लेकिन राधाकृष्णन जी ने अपने बर्थडे को पर्सनली सेलिब्रेट करने के बजाय सजेस्ट किया कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। और दोस्तों, ये ही बात उनकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा स्पेशल बनाती है। सोचिए, जिस दिन को कोई भी इंसान अपने नाम और बर्थडे के साथ सेलिब्रेट कर सकता था, लेकिन राधाकृष्णन जी ने उस दिन को टीचर्स डे के ऑनर से सेलिब्रेट करने के लिए कनेक्ट कर दिया। इसके पीछे एक ब्यूटीफुल थॉट भी है कि एजुकेशन और टीचर्स की इंपॉर्टेंस को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। टीचर्स हमारी लाइफ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने वाले लोग नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी एक टीचर का एक सिंपल सा सेंटेंस, एक एडवाइस या फिर एक छोटा सा एनकरेजमेंट हमारी पूरी डेडिकेशन को चेंज कर सकता है। स्कूल में जब हम किसी सब्जेक्ट से स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो टीचर ही हमें पेशेंटली उसे समझाता है। जब मार्क्स कम आते हैं तो वो हमें मोटिवेट करता है, और जब हम खुद पर डाउट करते हैं तब एक अच्छा टीचर हमें ये याद दिलाता है कि रिजल्ट आपकी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। आज के टाइम में भी टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी और AI ने लर्निंग को ईजी जरूर बना दिया है, लेकिन एक टीचर को स्टूडेंट की सिचुएशन को समझ कर उसे गाइड करता है। उस ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू ही अलग होती है। आज स्टूडेंट्स के लिए भी टीचर्स डे एक रिमाइंडर है कि अपने टीचर को सिर्फ एक दिन विश करना इनफ नहीं है, उनकी मेहनत को, उनकी गाइडेंस को और उनके टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा टीचर रहा है जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिली हो, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया हो और आपको बेटर

करने में हेल्प की हो तो उन्हें एक बार जरूर याद कीजिएगा और उन्हें एक बार जरूर विश कीजिएगा और उन्हें एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। और आज का एक और सक्सेस मंत्र कि एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता बल्कि वो किसी की लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रिच 107.8 FM।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब हम पहुँच गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में और अब वक्त है आज के एपिसोड को एक इंस्पायरिंग नोट के साथ रैप अप करने का। और आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जर्नी को बहुत अच्छे से जाना, एक टीचर को, एक फिलोसोफर को और एक स्कॉलर से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक के सफर को जाना। लेकिन दोस्तों, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उनकी पोजिशन ही नहीं थी बल्कि उनकी सोच, उनके वैल्यूज और उनकी लर्निंग के प्रति डेडिकेशन थी। तो चलिए उनके पांच कुछ ऐसे सिंपल से सक्सेस मंत्र है जिन्हें मैंने आपको शुरू से लेकर अभी तक बताया है, एक बार हम दोबारा से उसे जान लेते हैं। सबसे पहला था कीप लर्निंग। लर्निंग कभी आपकी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी लाइफ हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो इसलिए क्यूरियस रहिए और नए स्किल को सीखते रहिए। दूसरा है थिंक इंडिपेंडेंटली। हर चीज को सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए क्योंकि सब कर रहे हैं। क्वेश्चंस पूछिए, इन्फॉर्मेशन को समझिए और अपने ओपिनियन को खुद बनाइए। तीसरा है डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं होता लेकिन डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंटली एक्शन लेने में हेल्प करता है। छोटी छोटी हैबिट्स हमें फ्यूचर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। और चौथा है कैरेक्टर और अचीवमेंट्स। इंपॉर्टेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी उतना ही जरूरी है जितना कि नॉलेज के साथ ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। पांचवा है नेवर लिमिट योरसेल्फ। राधा कृष्णन जी की जर्नी हमें सिखाती है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन और लर्निंग आपको बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे कि आपकी लाइफ का वो टीचर कौन है जिन्होंने आपको कोई इम्पोर्टेंट लेसन दिया हो? अगर वो आज आपके सामने होते तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? तो उन्हें जरूर मैसेज करिएगा और उन्हें कॉल करके याद जरूर दिलाइएगा कि आपका ये इम्पोर्टेंट लेसन मेरी लाइफ में बहुत काम आया। तो इसी थॉट के साथ आज के सक्सेस मंत्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा थॉट कि सक्सेस सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है बल्कि जर्नी में सीखते हुए एक बेटर इंसान बनना है। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा और मैं ले रही हूं आपसे इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे इंस्पायर्ड और मुझे दीजिए इजाजत। और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: सुमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

0: ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमि और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।
1: योर सिटी योर रेडियो फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजना 107.8 FM।
2: वेल हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्री अकाल राम राम जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं आज कहूंगा लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे रेडियो मनोरंजना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव। हमारा शो बहुत स्पेशल है, उसकी कई सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने को मिलता है कि भैया हमारा भारत जो आत्मनिर्भर बन पा रहा है उसके पीछे उन कौन कौन सी कंपनीज का और लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिसने यहाँ तक आने में हमारी मदद की है कि हम सेल्फ रिलायंट खुद को बोल पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक इंडस्ट्री के बारे में पता लगता है, आपको एक स्टार्टअप के बारे में पता लगता है, आपको फाउंडर्स के बारे में पता लगता है, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगता है। बेसिकली इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर यू अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करने का लॉन्च करने का सोच रहे हैं तो। सो आज का शो अगेन बहुत स्पेशल होने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत क्योंकि अभी हम ले रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फील गुड फील लाइव।

विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि AI पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, AI पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मींस कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है, अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला। बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसे हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज़ अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा। उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चलें तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान के पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजिली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जो आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशन का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए, कंज्यूमर्स के पास आप माने या ना माने लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कॉन्टेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं ताकि लोग कॉन्टेंट बनाए उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यानी कि ब्यूटी टेक को एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स, फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इम्पैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज कि ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा, क्या मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसीडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही हैं प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में, डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड फील।

0: करो।
1: वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझाया है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है, उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफ़ी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीज़ें आती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीज़ अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू वांट टू सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीज़ें इसमें फॉलो करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीज़ें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीज़ें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां।

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा, जा।

दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे, तब जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकेंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए, AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। AR टूल्स बनाने होंगे, IoT डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए, हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा, कल्चर, सब चीज़ होती है, तो तमाम चीज़ें पढ़ के जहाँ पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको वहाँ की कोई चीज़ देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें।

लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ऑलराइट, इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये गाने अच्छे लग रहे हैं और साथ साथ इंडस्ट्री की को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है अब तो बात करते हैं आज के ब्रांड की। तो भैया ये जो कंपनी है बहुत पुरानी कंपनी है और काफी अमेजिंग काम कर रही है। इसका नाम है बायोटिक। जी हाँ, बुटीक आपने सुना होगा। सो ये कंपनी बायो और बुटीक का टिक लेकर के बायोटिक बनी है, एक इंडियन ब्यूटी एंड वेलनेस ब्रांड है। कंपनी हालांकि 1992 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और ये ऑफिशियली ऑपरेट करती है अंडर द पेरेंट कंपनी जिसका नाम है बायो वेदा एक्शन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में। कोर आइडिया यहाँ पर जो है वो है एंशियंट इंडियन हर्बल और आयुर्वेदिक विजडम जो है उसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिला करके एक नेचुरल ब्यूटी एंड वेलनेस को जो है लोगों की लाइफ में पहुंचाना, उनके जीवन में उसका मूल्य जोड़ना। कंपनी स्टार्ट होती है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के साथ कि भाई जो इसके फाउंडर है विनीता जैन मैम, शी वॉज बॉर्न इन कोलकाता। अपनी जो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज है, अर्ली डेज, उन्होंने अपनी फैमिली के उनके टी प्लांटेशन एस्टेट्स थे जो कि असम एंड दार्जिलिंग में थे, तो वहाँ पर उन्होंने व्यतीत करे। उन प्लांटेशंस में जाकर वहाँ की हर्बल रेमेडीज को समझा, आयुर्वेदिक जो नॉलेज है उसको समझा, ठीक है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को ट्रीट किया करते थे। नियरेस्ट जो हॉस्पिटल्स हुआ करते थे बहुत दूर हुआ करते थे, लेकिन वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उन्हीं चाय के बागानों में उन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके वो अपना इलाज कर लिया करते थे, जहाँ से उन्हें आइडिया जो है समझ में आया या आप कह सकते हैं कि हिट किया, ठीक है। दैट वॉज द एक्सपोजर टू रियल ऑन द ग्राउंड हर्बल हीलिंग, जिसके बाद आयुर्वेदा में उनका विश्वास थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। बाद में फर्दर उन्होंने हायर एजुकेशन जो है वो परस्यू किया एंड लकीली वो भी उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में किया फ्रॉम स्विट्जरलैंड। देन उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का भी जो है हायर स्टडीज में एडमिशन लिया इन अ बिजनेस स्कूल इन द यूनाइटेड स्टेट बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया। देन उसके बाद 1992 में इस ट्रेडिशनल हर्बल हेरिटेज को लेकर के मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिला करके और साथ साथ जो बिजनेस की पढ़ाई उन्होंने करी, उन्होंने इस कंपनी को लॉन्च कर दिया, जिसके बाद फाइनली एक और उसमें से छोटी कंपनी निकली जो अभी बहुत बड़ी बन चुकी है, जिसका नाम है बायोटेक। विजन है दादी माँ का नुस्खा जो है वो हर घर तक पहुंचाना और एक आयुर्वेदिक तरीके से आपके स्किन के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करना, आपकी ब्यूटी को एनहेंस करना, ये है इस कंपनी का विजन। सो टुडेज कंपनी इज बायोटेक। आई होप अभी तक ओवरव्यू आपको समझ आ चुका है। ऑन दिस नोट लेंगे म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

इसी उम्मीद के साथ कि आपको म्यूजिकल वाइब पसंद आई, फिलहाल अपने शो को आगे लेकर चलेंगे। मैं हूं सागर, शो चल रहा है यहां पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो मानव प्रश्न 107.8 एफएम के साथ। ऑन दिस नोट, शो में आगे बात करेंगे विनीता मैम के बारे में, बिकॉज मैं बता चुका हूँ बायोटेक हमारी आज की कंपनी है, फाउंडर है विनीता मैम, और अभी तक आपने समझा कि कैसे ये जो है स्टार्ट हुआ। सो मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में विनीता का जन्म हुआ, उसके बाद उनके जो फैमिली के टी प्लांटेशन के जो गार्डन्स हुआ करते थे वहाँ पर विजिट किया करते थे, और वो उन सब चीज़ों को समझते समझते आयुर्वेद को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना शुरू किया। फर्दर स्टडीज़ करके समझ में आया कि इसको लोगों तक भी पहुँचाया जा सकता है। इनका चाइल्डहुड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब क्योंकि इनके बैकग्राउंड की हम लोग बात करेंगे, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ टी प्लांटेशन में गुजरा एंड ट्रेडिशनल हर्बल रेमेडीज़ को समझा, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी फिलॉसफी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट या एक स्टेपिंग स्टोन जो है बना वहाँ पर। अबाउट हर फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने आफ्टर स्कूलिंग बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की अब्रॉड से, ठीक है, बिजनेस मार्केटिंग को समझा, US भी गई, स्विट्ज़रलैंड भी गई, तमाम स्किल्स को गेन करने के बाद, तमाम दुनिया का एक्सपोजर लेने के बाद, तमाम तरह के लोगों को समझने के बाद, दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज को समझने के बाद, फाइनली शी डिसाइडेड अपने देश जाकर एक ब्रांड लॉन्च कर देना चाहिए। उनका मोटिवेशन अगर सिंपल इसी एक लाइन में समझें इसको, तो शी बिलीव्ड कि जो एंशियंट आयुर्वेदिक नॉलेज है, ठीक है, वो डिजर्व करती है एक साइंटिफिक वैलिडेशन एंड मॉडर्न डिलीवरी। उसको एक्सेसिबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कंटेम्प्रेरी यूजर्स के लिए, खास तौर पर नए तरीके से सोचने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी नई चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा उसका जो है एक बेस होना चाहिए, एक लेयरिंग उसकी होनी चाहिए। सो दैट वॉज हर मोटिवेशन। हालांकि इनिशियली बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली 1990s की, ठीक है, उस टाइम पर मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल थी, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास नॉलेज के, टीवी, अखबार

आशा करता हूँ ये वाइब आपको अच्छी लग रही है। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। अब बात करेंगे दोस्तों हमारी जो आज की कंपनी है बायोटेक, उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। देखिए बायोटेक को स्टैंड आउट क्या कराता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि भैया बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनके पास, जैसे कि ब्लेंड है इनके पास एक एंशियंट नॉलेज का साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स का। 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है हमारा आयुर्वेदिक विजडम, उसको वो आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कर करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। सेकेंड है नेचुरल बोटेनिकल इंग्रेडिएंट्स है, कोई प्रिजर्वेटिव वो यूज़ नहीं करते हैं, मतलब एज पर द कंपनीज क्लेम दे आर सेइंग कि इनका जो फॉर्मुलेशन है वो ऑर्गेनिकली ग्रोन बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स से निकाले जाते हैं, जैसे कि हिमालयन फुटहिल्स हो गए या अदर जो नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ से। दे अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स, दे अवॉइड प्रिजर्वेटिव्स, दे अवॉइड सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेज, दैट्स हाउ दे कैन से दैट दे आर क्लीन नेचुरल या फिर सेफ, और लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं। और आज तो आपको पता है कि लोग ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है इको फ्रेंडली सस्टेनेबल अप्रोच। जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वो मार्केट किए जाते हैं एज वेजिटेरियन, क्रुएल्टी फ्री, नो एनिमल टेस्टिंग, विद रिसाइक्लेबल पैकेजिंग, सो दैट कि ये एनवायरमेंटली जो कॉन्शियस लोग हैं उनको भी केटर कर सकें, उनको भी मतलब ये बता सकें कि भैया हम एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपकी स्किन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आप यूएसपी जानना चाहते हैं इस ब्रांड का, तो दे आर स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल हर्ब्स हैं केवल वहाँ तक वो रुक गए हैं, उनके पास अपनी एक R&D की टीम है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, खासतौर पर अगर ब्यूटी टेक जैसे इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पर टच कर रहे हैं, R&D बहुत स्ट्रांग हमारी होनी चाहिए, क्योंकि लोग अब इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद से उसकी लैब टेस्टिंग करा सकते हैं। लोग अब पढ़ने लगे हैं लेबल्स, लोग जानना चाहते हैं एक्चुअली कि हमें क्या बेचा जा रहा है। तो इन दिस एरा इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उस एक चीज़ को तवज्जो दें, उन लोगों को अप्रिशिएट करें कि हाँ हमारे कस्टमर्स अब इतने एनलाइटेंड हैं, वो इतना समझते हैं इन सब चीज़ों को। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम भैया थोड़ा इन्वेस्ट करें अपनी R&D के ऊपर। एंड लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर अफोर्डेबल नेचुरल ब्यूटी, मतलब कोई इनके पास लग्जरी केमिकल का खर्चा नहीं है। इन्होंने खुद को पोजिशन ही ऐसे किया है कि हम ज़्यादा एक्सेसिबल हैं, हम ऑर्गेनिक हैं और आयुर्वेदिक हैं। तो भैया इंडियन कस्टमर्स के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है ना कि एक्सेसिबल भी है, अफोर्डेबल भी है, आयुर्वेदिक भी है, सेफ भी है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, व्हाट एल्स यू नीड। सो या दैट्स हाउ दे आर पोजिशनिंग देमसेल्व्स एंड दैट्स हाउ दिस कंपनी इज ग्रोइंग। सो या दैट्स ऑल अबाउट द USPs ऑफ बायोटेक। फिलहाल वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, मेरा नाम सागर, शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की, और आप लोग जुड़े हुए रेडियो वाराणसी 107.8 FM के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे की ड्राइवर्स एंड ग्रोथ की। बायोटेक हमारी आज की कंपनी है, ब्यूटी टेक में डील करती है। अभी तक आपने ओवरव्यू समझा, आपने फाउंडर को समझा, फाउंडर के बैकग्राउंड को समझा, पैशन को समझा, विजन को समझा, कहाँ से स्टार्ट हुआ उसको समझा। उसके बाद हमने यूएसपी की बात करी कि व्हाट मेक्स दिस ब्रांड टू स्टैंड आउट इन दिस मार्केट। अब फाइनली यहाँ पर बात करेंगे कि कंपनी को क्या चीज़ें हैं जो आगे लेकर के जा रही है। देखिए, एक तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि भैया पैकेज्ड आयुर्वेदिक ब्यूटी आपको मिल रही है। हम लोग बात कर रहे हैं अर्ली 1990s की, वहीं से इसको समझिएगा। अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन अर्ली 1990s में ये नहीं था, ना ये टर्म फेमस थी, ना इसको ज़्यादा लोग तवज्जो दिया करते थे। टीवी बहुत सारे घरों में नया था, रेडियो जो है उनसे हमें जानकारी मिलती थी, और कमर्शियल्स एक मेजर सोर्स हुआ करता था। तो जिस भी तरीके से इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुँचाई जाती थी, हम लोग विश्वास करते थे। उस एरा में ये कंपनी लेकर के आई ये रेवोल्यूशनरी आइडिया। उसके बाद है ऑर्गेनिक ग्रोथ, मिनिमल जो है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, हैवी एड कैंपेन्स नहीं चलाए, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं रुके कि हम कमर्शियल लेवल पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। सिंपली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, ब्रांड बिल्डिंग के थ्रू, प्रोडक्ट मेरिट के थ्रू, तभी शायद आप कह सकते हैं कि इतनी लंबी यात्रा रही है इनकी। वो टाइम लगता है उसमें जब आप उसको लेजिट वे में लेकर के चलते हैं, बट इट लास्ट लॉन्गर, वो भी एक फंडामेंटल होता है। उसके बाद है ओमनी चैनल प्रेजेंस है एंड एक्सपोर्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक रिटेल तो है, साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स को भी केटर किया हुआ है। तो इंडियन एक ऐसा ब्रांड है ये जो बाहर भी भेज रहा है, बाहर के लोगों को भी स्किन केयर सिखा रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से किया जा सकता है। एडेप्टेशन टू डिजिटल एंड यूथ ऑडियंस, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कि यहाँ पर ये ई कॉमर्स पर भी है, ऑनलाइन प्रेजेंस है इनकी, साथ साथ आपको ये दुकानों पर भी मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ दे आर वर्किंग। सो ऑल दीज आर द थिंग्स जो इस कंपनी को आगे लेकर के जा रही हैं, जो इसकी ग्रोथ में इसकी हेल्प कर रही हैं, जिसके की ड्राइवर्स बन के सामने आ रही हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो लिटरली इस कंपनी को आगे लेकर के जा रही हैं। जस्ट प्योर आप कह सकते हैं कि एक विल है इनके पास। सो या दैट्स ऑल अबाउट बायोटेक। उम्मीद कर रहा हूँ आज की केस स्टडी आपको पसंद आई। अब इसी के साथ दोस्तों इजाजत चाहूंगा आपसे, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अगर आपको शो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें 8010781078 पर बताइएगा जरूर। पर अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे सागर।

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से वक्त हो गया है प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जहाँ होती है आपकी हेल्थ से रिलेटेड बातें। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं खास हेल्थ एक्सपर्ट, और आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, शहर के एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, डॉक्टर आलोक कुमार झा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि बहुत कॉमन है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो अक्सर दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को होती हैं, यानी स्टोन्स की। जी हाँ, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन, ये बहुत कॉमन समस्याएं हैं। अगर आप हर चौथे पांचवें इंसान से बात करें तो उसको कभी ना कभी स्टोन हुआ होता है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और डॉक्टर आलोक कुमार झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना।
3: थैंक यू वेरी मच।
2: सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, यूरिनरी स्टोन्स की हम बात करते हैं या किडनी स्टोन्स की हम बात करते हैं, बेसिकली ये है क्या और कहाँ से आ जाते हैं हमारी बॉडी में? क्योंकि स्टोन तो हम डायरेक्टली ना कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, बट फिर भी ये काफी प्रॉब्लम दे रहे हैं लोगों को।
3: ठीक है, सो ऐसा है कि स्टोन जो है नदी किनारे बनती है, उसी तरह किडनी से जब यूरिन निकलती है वो भी एक नदी की तरह निकलती है, उसी के किनारे स्टोन्स बनती है। यूरिनरी सिस्टम में या पेशाब की जो सिस्टम है पूरी, उसमें स्टोन्स आपको किडनी में बनती हैं और वहाँ से वो नीचे यूरेटर नली में आती हैं और ब्लैडर, और वहाँ से फिर यूरेथ्रा से निकलती है। कई बार ब्लैडर में भी स्टोन्स बन जाते हैं जो वहाँ से निकलते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है स्टोन्स जो हैं वो अटक जाते हैं बीच रास्ते में। जब भी ये स्टोन्स अटक जाते हैं नली में या किसी ऊपर से नीचे आने में, उस वक्त काफ़ी परेशानी होती है रोगियों को। तेज़ दर्द होती है, इन्फेक्शन होती है, ब्लीडिंग होती है, बुखार आती है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो स्टोन्स बनते हैं वो यूरिन के ही कंपोनेंट से बनते हैं। हर आदमी में स्टोन नहीं बनता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि पूरी जीवन काल में 8-10% लोगों में स्टोन बनने की चांस रहती है पूरे जीवन काल में।
2: जी सर, हमने देखा है कि किडनी और यूरिनरी स्टोन्स आज के समय बहुत कॉमन है, मतलब यंग बच्चों में भी, 20-22 साल के यंगस्टर्स में भी है और 50 साल के व्यक्ति में भी है। सो बेसिकली ये किनको ज्यादा हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, किस व्यक्ति में ज्यादा देखे गए हैं किडनी स्टोन या यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्टोन्स फंस जाते हैं?
3: जो किडनी स्टोन्स होते हैं एक हाई रिस्क ग्रुप होती है। अब ये हाई रिस्क ग्रुप कौन है, पहला डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट पर, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ की वेदर कैसी है।
2: ओके,
3: अगर आप रेगिस्तानी जगह में हैं, ऐसे जगह जहाँ की काफ़ी हीट और ड्राई क्लाइमेट है, वहाँ पे स्टोन्स बनने की चांस ज़्यादा रहती है। डिहाइड्रेशन होती है, उससे स्टोन्स बनते हैं एंड ग्रेजुअली स्टोन्स बड़े हो जाते हैं एंड सो ऑन। दूसरी डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ जॉब में, अगर आप पूरे समय एयर कंडीशनिंग में रहते हैं तो स्टोन्स बनने की चांस कम रहती है। अगर आप फील्ड वर्कर हैं जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन या और भी बहुत सारे वर्कर हैं, लेबरर हैं जो बाहर में हमेशा काम करते हैं, तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत देर तक आप पानी नहीं पीते हैं, तो इन सारे लोगों को स्टोन बनने की चांस ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एज ग्रुप। दी एज ग्रुप जिसमें की पीक होती है स्टोन्स के, वो 40 से 50 वर्ष में होती है। उसके अलावा और भी कारण है, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, कुछ लोगों में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है जिससे कि यूरिन में सॉल्ट एक्सक्रीशन, कैल्शियम एक्सक्रीशन, ऑक्सलेट एक्सक्रीशन ज़्यादा होते हैं, उससे स्टोन बनते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर है डाइट, कोई भी डाइट्री एक्सेस, कई ऐसे डाइट्री एक्सेस हैं जिससे स्टोन्स बनने की चांस बढ़ जाती है, जैसे एक्सेस कैल्शियम खाना, एक्सेस ऑक्सलेट रिच फूड खाना, एक्सेस प्रोटीन और या एक्सेस प्यूरिन डाइट। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन्स हैं जैसे विटामिन डी, जिसको एक्सेस में लेने से भी स्टोन बनते हैं। आजकल एक फैशन हो गई है हाई डोज विटामिन लेने का, लेकिन लेने के पहले आप सतर्क हो जाएं, उससे स्टोन बनने की चांस बढ़ सकती है। जब भी कोई सप्लीमेंट लें प्रिकॉशन में, जब कुछ भी आपके खाने पीने का, आप वेज हो या नॉन वेज हो, सब कुछ मॉडरेशन में होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए
2: जी।
3: कई जिम लोग जाते हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसके कारण भी स्टोन्स बढ़ जाते हैं
2: जी।
3: सो अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे कारण हैं, रिपीटेड इन्फेक्शन से भी स्टोन बन सकते हैं
2: जी।
3: दिस इज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन स्टोन्स।
2: सो बहुत सारी और भी बातें हम जानेंगे स्टोन्स के बारे में कि स्टोन्स क्यों बन रहे हैं। कुछ रीजंस तो आप जान गए, लेकिन स्टोन किन चीज़ों के ज़्यादा खाने से या किन चीज़ों को अवॉइड करने से बन जाते हैं, इसको विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। या फिर क्या इसका सोल्यूशन है, क्या लोग जो कहते हैं सिर्फ पानी पीते रहिए स्टोन्स नहीं बनेंगे, ये सही है? या फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप बियर पीजिए स्टोन्स जो है वो निकल जाएंगे, तो इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो रोजमर्रा के जीवन में हम सुनते रहते हैं। पर क्या ये सही है, क्या ये वाकई घरेलू इलाज स्टोन्स को बनने से रोक सकते हैं, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ। बहुत सारी बातें चल रही हैं आप ही की हेल्थ के बारे में और स्टोन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो किडनी में हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक में बहुत बार फंस जाते हैं और बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। खास तौर पर से मैंने फरीदाबाद और दिल्ली NCR के लोगों को बहुत परेशान देखा है इस प्रॉब्लम से। कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी ही ऐसा है, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ की डाइट ही ऐसी है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ पानी और डाइट आपके स्टोन्स बनने का कारण है या फिर कुछ और भी रीजंस होते हैं? ऐसी कुछ बातें और ऐसी कुछ बातों के, ऐसे कुछ प्रश्नों के आंसर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार झा, एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सर, बहुत सिंपल सी बात हमने देखी है, जनरली जब हम बात करते हैं स्टोन्स की तो हर दूसरा व्यक्ति आपको सलाह देता है आप पानी कम पीते होंगे, सब यही कहते हैं पानी पीजिए, और कुछ जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि बियर पी लिया कीजिए उससे स्टोन निकल जाता है। तो क्या वाकई पानी पीना या बियर पीना स्टोन्स को निकाल सकता है, और क्या पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए एक व्यक्ति के जीवन में अगर किसी को स्टोन बनने की टेंडेंसी है?
1: पहली बात है कि अगर आपकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन है, कि आप किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट नहीं है, नॉर्मल किडनीज है, इन दैट केस पानी इनटेक से ज्यादा जरूरी है यूरिन आउटपुट देखना। यूरिन आउटपुट एक एवरेज एडल्ट मेल या फीमेल का 1.5 लीटर मानते हैं, यानी कि 1.5 लीटर पेशाब 24 घंटे में होना चाहिए। अब अगर आप फील्ड वर्क में हैं तो उस 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट अचीव करने के लिए हो सकता है आपको 4-5 लीटर पानी पीना पड़े, और अगर आप एयर कंडीशनिंग में हैं तो कम पानी से भी 1.5 लीटर यूरिन आउट बन जाता है। रही बात दूसरी बात, पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग, हमेशा बोला जाता है कि बिंज ड्रिंकिंग अवॉइड करना, यानी कि कुछ लोग हैं 1 लीटर सुबह पानी पीते हैं 1 लीटर रात को, नहीं, दिस इज नॉट फिजियोलॉजिकल। आप थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पीते रहिए हर घंटे 2 घंटे पर, इससे क्या होता है स्लो डायूरेसिस होता है, एक कॉन्स्टेंट यूरिन आउटपुट बनते रहती है। अगर आप मेजर नहीं कर सकते हैं यूरिन आउटपुट तो यूरिन का कलर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कम पानी पी रहे हैं या ज़्यादा है। अगर बहुत गाढ़ा पीला रंग का पेशाब हो रहा है अचानक से, दैट मीन्स कि आपने पानी कम पिया है, बढ़ा दीजिए, या पेशाब में जलन हुआ हल्का से, शायद पानी कम पी रहे हैं। सो ये टारगेट हमेशा रहना चाहिए, 1.5 लीटर पेशाब होना चाहिए डेली। नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ वाटर मैटर्स। कई जगह बहुत हार्ड वाटर होती है पहाड़ियों में या और भी जगह, वहाँ पर स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। कुछ जगह पानी की क्वालिटी ऐसी रहती है, नेचुरल वाटर की क्वालिटी ऐसी रहती है कि स्टोन्स कम बनते हैं। खाने पीने में बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है। रही बात बियर की, तो बियर एक्चुअली इट इज़ द डायूरेसिस, यानी कि आप जब बियर लेते हैं तो 1 लीटर 1/2 लीटर जितना भी हो उसकी जो पानी होती है वो स्टोन को पुश आउट करती है, ना कि अल्कोहल पार्ट। खाने पीने में आप हमेशा याद रखिएगा जो कॉमन स्टोन है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, वो डाइट से काफ़ी कुछ रिलेटेड रहते हैं। अगर आपको स्टोन फॉर्मेशन टेंडेंसी है आप कैल्शियम लीजिए मॉडरेशन में, ना कम कैल्शियम ना ज़्यादा, कम लीजिएगा उससे भी स्टोन बनेगा, ज़्यादा लीजिएगा उससे भी स्टोन। सो वो कैल्शियम मॉडरेशन, आपको दूध दही बंद नहीं करना है, क्योंकि दूध दही में कैल्शियम रहता है और आपके खाने के फूड आइटम्स में ऑक्सलेट रहता है, तो जब भी आप एक्सेस ऑक्सलेट लेते हैं तो वो कैल्शियम उसको बाइंड कर लेता है इंटेस्टाइन में ही, सो ऑक्सलेट को एब्जॉर्ब करने में प्रिवेंट करता है। सो दैट्स व्हाई आपको दूध दही बंद नहीं करना है, मॉडरेशन में लीजिए नॉर्मल अमाउंट्स।
0: ऑक्सलेट की बात करें सर, तो ऑक्सलेट रिच फूड जो होते हैं जैसे स्पिनच है, नट्स है, जनरली लोग इसको भी मना करते हैं कि अगर आपको स्टोन्स बन रहे हैं तो आप इनको अवॉइड कीजिए, तो क्या वाकई बिल्कुल भी पालक ना खाएं? क्योंकि पालक एक ऐसी चीज़ है जो एक तरफ कहा जाता है कि आप ज़्यादा खाएं, दूसरी तरफ लोग ये भी कहते हैं नट्स जितना खाएं अच्छा है, और लोग गो टू स्नैक में भी इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। सो क्या इनको छोड़ना पड़ेगा या इनको बहुत कम मात्रा में खाएं?
1: नहीं, आपको आई विल नॉट एडवाइस कि इसको छोड़ दीजिए, आप लीजिए बट मॉडरेशन में, अगेन ना ज़्यादा ना कम। जब भी आप ऑक्सलेट रिच फूड्स ले रहे हैं साथ में कैल्शियम रिच फूड्स भी लीजिए, जैसे दूध दही पनीर, इससे क्या होगा कि आपकी एक्सेस ऑक्सलेट जो है इस फूड्स में वो आपको इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होने से बचा देगी, तो आपके यूरिन में नहीं आएगी। सो दैट इज़ वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग स्टोन्स अगर आप ऑक्सलेट्स ले रहे हैं पालक या जो भी, इसलिए आप देखेंगे कि डिश में भी पालक पनीर लोग एक साथ बनाते हैं, सो दैट ये लोग पान में ऑक्सलेट्स रहते हैं तो लोग चूना लगा के लेते हैं,
0: हाँ।
1: लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो क्रीम के साथ खाते हैं, सो दिस इज टू प्रिवेंट स्टोन्स।
0: ओह, ये कॉम्बिनेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को लगता है सिर्फ स्वाद के लिए होता, पर ये स्वाद के साथ साथ आप ये देखिए हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बरसों से एक्सेप्ट किया गया है और उसको हम इजीली इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन शायद इस तरीके से साइंटिफिकली लोग नहीं सोचते हैं।
1: एग्जैक्टली और जब भी आप इस टाइप के फूड्स लें तो नेचर ने ऐसे भी फूड्स दिए हैं जो स्टोन को प्रिवेंट करें, जैसे साइट्रस फ्रूट्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब ऑक्सलेट स्टोन्स प्रिवेंट करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं।
0: ओके, तो आप नींबू पानी डेली पी सकते हैं।
1: एग्जैक्टली, एंड एक्सेस सोडियम या एक्सेस सॉल्ट अवॉइड कीजिए, ज़्यादा सोडियम या नमक लेने से यूरिन में कैल्शियम बढ़ जाते हैं।
0: यही मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि सॉल्ट है, हर चीज़ में सॉल्ट डला होता है, आप नमकीन भी लेकर खा रहे हो उसमें सॉल्ट है, आप बिस्किट्स भी ले लें उसमें भी हिडन सॉल्ट है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, यंगस्टर्स में खासतौर पर से ये बहुत कल्चर है कि सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया या कुछ एनर्जी ड्रिंक्स पी लिए, क्या ये भी सर कहने के लिए लिक्विड है, क्या ये भी कहीं ना कहीं स्टोन्स बना रहे हैं?
1: पॉसिबल कि आजकल सोडा वाटर में ही काफ़ी सॉल्ट रहती है, एक्सेस सोडा वाटर से भी लोग बोलते हैं बोन्स वीक हो जाते हैं बिकॉज इट प्रमोट्स कैल्शियम एक्सक्रीशन, सो दैट इज़ वन फैक्टर। एंड दूसरी, जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक लें या कुछ भी लें, हमारी एडवाइस यही रहती है कि नेचुरल लीजिए, जो नेचुरल है वो हमेशा आर्टिफिशियल से बेटर रहती हैं।
0: बिल्कुल, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल से हमेशा बेटर रहती हैं, ये तो प्रूवन फैक्ट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और ये सारी चीज़ों का चलन बढ़ गया है, पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ये सिर्फ स्टोन्स नहीं बनाते, ये आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर नुकसान तो कर ही रहे हैं, तो इनको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करते चलिए। बहुत सी बातें और भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं 8010781078 पर। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज़ वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है, हूं दीक्षा आपके साथ और बातचीत चल रही है प्रोग्राम ऑल इज वेल में आप ही की हेल्थ के बारे में, जहां हम बात कर रहे हैं आज स्टोन्स के बारे में, यानी किडनी स्टोन्स या यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाने वाले स्टोन्स जो पेशेंट्स को बहुत तकलीफ देते हैं। जिस भी व्यक्ति को स्टोन होता है वो कभी भी छिड़ जाता है, कभी भी उसे दर्द हो जाता है और उसके बड़े इंपॉर्टेंट दिनों में भी उसको तकलीफ होती है, यानी एक बड़ा पेन किलर लेना पड़ता है, कई बार एडमिट होना पड़ता है, कई बार आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शन्स भी लगवाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो किडनी स्टोन्स है एक्चुअली में इसको आप पहचाने कैसे, क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको किडनी स्टोन्स है और कई बार ये किडनी स्टोन्स अचानक से दर्द देते हैं तो भी व्यक्ति जो है वो घबरा जाता है। तो ऐसी कुछ बातें जानने और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार झा जो कि जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। सर आपसे मैं अब जानना चाहूँगी स्टोन पेन जब होता है तो इसके बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर बॉडी में कोई स्टोन है। जनरली लोग कहते हैं कि कमर में दर्द होता है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन से वो पेन किलर्स जो हैं, क्या सेफ रहते हैं पेन किलर्स लेने, क्योंकि जिसको स्टोन है अगर नहीं निकल रहा है और वो सर्जरी भी नहीं करा रहा है सो पेन किलर हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है।
1: स्टोन किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स जो होते हैं या यूरिनरी स्टोन्स के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि लोकेशन कहाँ है स्टोन का। किडनी और यूरेटर में यदि स्टोन है तो यूजली साइड में पेन होता है, फ्लैंक पेन बोलते हैं। पेन के साथ साथ नौशिया और वॉमिटिंग बहुत होती है, उल्टी आना, ये काफ़ी कॉमन होता है और कई बार पेशाब में ब्लड भी आता है, तो ये एक वार्निंग साइन है। और अगर ब्लैडर या यूरेथ्रा में स्टोन आ गया है तो अचानक से पेशाब बंद होने का डर रहता है। कई बार ऐसा है कि दोनों किडनी में स्टोन, दोनों यूरेटर में स्टोन आ जाती है, पेशाब अचानक से बंद हो जाता है, यूरिन आउटपुट जीरो हो जाती है। अभी हाल ही में एक 1.5 साल की बच्ची का पेशाब ऑलमोस्ट बंद हो गया था, सिर्फ 1.5 साल की थी, दोनों साइड स्टोन्स थे।
0: इतने छोटे बच्चों को भी स्टोन हो सकता है?
1: यूजुअली होता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या मेडिकेशन या सम रीजन हैज टू बी देयर, सो बट एनीवे दैट्स अ लॉन्ग पीडियाट्रिक स्टोन्स लॉन्ग टॉपिक है इन इटसेल्फ। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। कई बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है, खासकर डायबिटिक्स में यूरिन इन्फेक्शन होते ही तेज बुखार आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी इंटरमिटेंट पेन यानी कि बीच बीच में दर्द आ रहा है और वो कांस्टेंट पेन होगी, कंटिन्यूअस पेन, इट मींस कि मोस्ट प्रॉब्ली किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। वेट करना ठीक नहीं है, स्टोन को निकलवा लेना ठीक रहता है। एंड एट द ऑपोजिट एंड देयर आर साइलेंट स्टोन्स, दे आर मोर डेंजरस। ये साइलेंट स्टोन्स हैं, किडनी को ब्लॉक करते हैं, सिम्टम्स पता नहीं चलता है, धीरे धीरे 2-3-4-6 महीने के बाद हमारे पास आते हैं, तब तक किडनी के फंक्शन जीरो हो चुके रहते हैं। सो साइलेंट स्टोन्स आर मोर डेंजरस। जो स्टोन पेन कर रही है दे आर बेटर, एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ सिग्नल्स दे रहे हैं कि समथिंग इज रॉन्ग।
0: तो साइलेंट स्टोन सर अब हम कैसे पहचाने, अगर किसी व्यक्ति की किडनी में स्टोन है और उसको पता ही नहीं है कि उसको 3 साल से 5 साल से स्टोन है, उसको दर्द ही नहीं हो रहा, कोई सिम्टम नहीं है, तो वो पता कैसे लगाए कि उसको स्टोन है?
1: साइलेंट स्टोन्स के लिए द बेस्ट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 3 इन्वेस्टिगेशन है, 1 इज अल्ट्रासाउंड, छोटी सी टेस्ट है, हार्डली 5-10 मिनट लगता है एक अल्ट्रासाउंड कराने में, कोई रेडिएशन नहीं, इमीडिएट रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। दूसरा है यूरिन टेस्ट, अ सिंपल यूरिन टेस्ट कोई भी लैब कर देगा। एंड नंबर 3 इज क्रिएटिनिन यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। क्रिएटिनिन इज अ सिंपल एज फॉर स्क्रीनिंग, ये 3 टेस्ट इज मोर देन इनफ, काफ़ी है। अगर ये सारे नॉर्मल है फिर चांस बहुत ही कम है कि स्टोन है। इसमें से कुछ भी एबनॉर्मल है तब हम सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन पर जाते हैं, लाइक अ सीटी स्कैन और अदर टेस्ट्स।
0: जी यानी स्क्रीनिंग कराना जरूरी है, कभी कभी आप स्क्रीनिंग करा लेंगे तो आपको अपने बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। और KFT वगैरह बाद में होते हैं, जब कोई चीज़ पता चलती है तो उसके बाद KFT कराया जाता है। तो टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, डॉक्टर से अपने नॉर्मल फिजिशियन से मिलते रहिए और वो आपको एडवाइस करते रहेंगे, क्योंकि अगर देर हो गई फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सर बहुत सारे पेशेंट्स हाई BP या डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। अब हाई BP और डायबिटीज़ मुझे लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल का ही पार्ट बन चुका है, इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं। सो जो डायबिटिक हैं या जो हाइपोटेंसिव हैं उनको भी क्या चेक कराने चाहिए इस तरीके के स्टोन से बचने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि अगर साइलेंट है तो वो किडनी को ख़राब कर रहा है और एकदम लास्ट स्टेज पे जाके पता चलेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी।
1: यस, सो डायबिटिक्स में नंबर 1 स्टोन बनने की टेंडेंसी थोड़े ज़्यादा रहती है, यूरिन इन्फेक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। नंबर टू स्टोन डिजीज की हिस्ट्री है, द हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं 30% हायर रहती है. सो इट्स बोथ वेज, अगर हार्ट की बीमारी है उसमें भी स्टोन की इंसिडेंस बढ़ सकती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ट डिजीज बट बिकॉज कि आप बहुत सारा मेडिकेशन भी साथ में ले रहे हैं. सो सच पेशेंट्स को अपार्ट, जो खासकर एट रिस्क पेशेंट्स हैं जैसे कि पहले डिस्कस किया, जो फील्ड वर्क में है या जिनको कोई पहले से बीमारी है, उनको स्क्रीनिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए. एंड वही तीन टेस्ट काफ़ी हैं डायग्नोसिस के लिए, एंड सेकेंड लाइन इन्वेस्टिगेशन उसके आधार पर हम करते हैं.
0: जी बिल्कुल, यानी कुछ टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कराते रहने चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं या फिर हाइपरटेंसिव हैं. आगे हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या आपका बढ़ता हुआ मोटापा भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ योगदान दे रहा है. वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. मैं हूँ दीक्षा आपके साथ. ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से. आरजे दीक्षा के फोल्डर में जाकर पॉडकास्ट में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो दुनिया के किसी भी कोने में आप शेयर कर सकते हैं कभी भी एक लिंक के द्वारा. वक्त है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम है ऑल इज वेल जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और आज हम बात करें हैं स्टोन्स के बारे में, किडनी में होने वाले स्टोन्स. और इन स्टोन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपकी बॉडी से इन स्टोन्स को निकालने को लेकर प्रोसेस बताने के लिए और ये दोबारा ना बने इसके लिए भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है जो आज हमें दे रहे हैं शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक कुमार झा जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सर, अब बहुत सी बातें हम कर चुके हैं लेकिन अब बात करनी जरूरी है सेडेंट्री लाइफस्टाइल और ओबेसिटी के बारे में, क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक ओबेसिटी किसी को नहीं छोड़ रही है. बहुत सारे लोगों को अपने कह सकते हैं कि कब्जे में ले रखा है. लाइफस्टाइल टू सम एक्सटेंट इसके लिए जिम्मेदार है लेकिन लाइफस्टाइल की अगर बात ना भी करें तो भी कई बार हेरिडिटरी होता है, कई बार कोई और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता चला जाता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. सो क्या ये ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं स्टोन्स को बढ़ावा देती है?
1: यस, अभी जो एक स्टडी हुई थी उसमें 80% पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर में या तो ओबीज हैं या एट रिस्क ऑफ ओबेसिटी हैं. दैट्स अ ह्यूज फिगर, 80%. ओबेसिटी या हाई बीएमआई बोलते हैं, उसमें स्टोन बनने की चांस थोड़ी ज़्यादा रहती है. नंबर वन. नंबर टू, सेडेंट्री लाइफस्टाइल. सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्रोवन फैक्टर स्टोन अधिकतर बन जाती है. खासकर अगर कोई बेड रिडन पेशेंट है, मान लीजिए 6 महीने से बेड रेस्ट में है, ऐसे लोगों में स्टोन्स जल्दी बन जाते हैं.
0: ओके.
1: इट इज सेड दैट द पेशेंट passes the skeleton in the urine, यानी कि बोन का कैल्शियम मोबिलाइज होकर यूरिन में आ जाता है. इसलिए सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो बेड रेस्ट में भी है, दे शुड अंडरगो सम फिजियोथेरेपी टू स्ट्रेंथन द बोन्स या ऐसा मेडिकेशन ले जो कैल्शियम को प्रिवेंट करें बोन से किडनी में आने के. सो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इज डेफिनेटली वन ऑफ देम एंड द बोन्स टेंड टू बिकम वीक एंड द कैल्शियम इन द बोन्स वो किडनी में आ जाते हैं. Obesity definitely is a cause. There's no doubt about it.
0: जी.
1: So, या तो हमारी एक जनरेशन में डाइटरी हैबिट्स इतनी चेंज हो गई है कि ओबेसिटी इतना कॉमन हो गया है. सो एवरी वन हैज टू सिट डाउन, चिल्ड्रन, स्कूल टीचर्स, डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, बैठ के डाइटरी पैटर्न्स चेंज करना होगा. अदरवाइज चाइल्डहुड ओबेसिटी आगे चल के बहुत बड़ा हेल्थ केयर प्रॉब्लम बन सकती है.
0: जी बिल्कुल, यानी ओबेसिटी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जिसको सिर्फ आप ये ना सोचें कि आप थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं, जो जनरली भारतीय भाषा में कहा जाता है कि आप हेल्दी हैं, बच्चा हेल्दी है. अगर मोटा है, बच्चा मोटा होता है तो हेल्दी नहीं होता, या कोई व्यक्ति जो है उसका वेट बढ़ता है तो वो हेल्दी नहीं होता. उसे फिट रहना ज़रूरी है, जो वज़न को कम करके किया जा सकता है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा रीज़न है. इसलिए डाइट को चेंज करें और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें. सर, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की. अब स्टोन किसी को डिटेक्ट हो गया तो क्या दवाइयां हैं, क्या तरीका है जिससे स्टोन को निकाला जा सकता है अगर कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता या सर्जरी अभी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साइज के बाद ही सर्जरी हो सकती हैं.
1: सी दी कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन जो हमारे ओपीडीज में आती हैं यूरेट्रिक स्टोन की, यानी कि किडनी से स्टोन निकल के नली में फंस गई है, काफी पेन हो रहा है. एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन, दूसरी होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग, जो रुकावट नहीं कर रही है. कई बार किडनी के एक कोने में 5-6 mm की स्टोन पड़ी रहती है, उससे प्रॉब्लम नहीं होता है, बट वही स्टोन जब नीचे नली में आ जाती है यूरेटर में सिवियर पेन करती है. सो क्वेश्चन ये उठता है कि किस पेशेंट को दवा से स्टोन निकाला जाता है, किस में दूरबीन से स्टोन को निकालना पड़ता है. अगर स्टोन 4 mm से कम है और इन्फेक्शन नहीं है, ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, तो हम एक ट्रायल देते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का एंड छोटे स्टोन्स में 70-80% दवा से निकल जाते हैं. लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया, स्टोन बड़ा है और पेन में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, किडनी को ब्लॉक कर रहा है, देन अर्ली सर्जरी इज एडवाइजेबल. फिर जल्दी सर्जरी कराना चाहिए.
0: जी,
1: आजकल सर्जरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. जब हम MBBS में थे तो उस वक्त ओपन सर्जरी यानी कि चीरा वाली सर्जरी बहुत होती थी, अब वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है. सारा स्टोन्स पिछले 20 साल में सारा दूरबीन से ही हजारों सर्जरी किए हैं.
0: जी,
1: या बाहर से दूरबीन डालते हैं उसको पीसनेल बोलते हैं, या पेशाब के रास्ते से फ्लेक्सिबल दूरबीन डालते हैं जिसको RARS या URS बोलते हैं. ये दूरबीन वाली ही सर्जरी होती है और एनर्जी या तो आप लिथोक्लास्ट न्यूमैटिक यूज करता हूँ या लेजर यूज कर सकते हैं, दोनों के अपने इंडिकेशंस हैं. बट सर्जरी अब काफ़ी सेफ हो गई है पहले से, मॉर्बिडिटी कम हो गई है, हॉस्पिटल स्टे 1 या 2 दिन मैक्सिमम, और पेशेंट वापस स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस 3-4 दिन के अंदर अधिकतर पेशेंट वापस जा सकते हैं
0: जी।
1: एक और टेक्नोलॉजी है साउंड वेव से ब्रेक करना, ESWL, छोटे स्टोन्स के लिए अच्छी है, बट उसमें यह है कि हो सकता है कि एक सिटिंग में पूरा स्टोन ना निकले, 2-3 सिटिंग करना पड़े।
0: यानी कई बार सर्जरीज जो है वो ही ऑप्शन बचता है जिसको कराने से। इतना ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, कोशिश करें कि अगर चीज़ ख़राब हो गई है तो वो सर्जरी से कंट्रोल की जा सकती है, ठीक की जा सकती है। पर डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या सर्जरी के बाद भी वापस स्टोन्स बन सकते हैं उसी जगह पर, और ना बने इसके लिए क्या करें?
1: यस, अगर आपने सर्जरी के बाद कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तो 10 साल के अंदर 40% में दोबारा स्टोन बनने की चांस है। इसलिए आपको सारा प्रिकॉशन लेना होगा, जो पहला होता है वाटर इनटेक जैसा कि समझाया, दूसरा है डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तीसरी है मेडिकेशंस। कुछ स्टोन्स में मेडिकेशन काम करती हैं, यूरिक एसिड हुआ, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, ये सब में मेडिकेशंस देते हैं, जैसे पोटेशियम साइट्रेट, B6 विथ मैग्नीशियम, ये सारे चीज़ प्रिवेंट करते हैं स्टोन्स। उसके अलावा प्रोबायोटिक्स आए हैं जो ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन घटाते हैं इंटेस्टाइन से। दीज आर नॉट मेडिकेशंस, दीज आर प्रोबायोटिक्स, बैक्टीरिया हैं जो आपके इंटेस्टाइन में ही ऑक्सलेट को रोक लेते हैं, किडनी तक नहीं पहुंचने देते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन स्टोन्स में लॉन्ग टर्म सप्रेसिव यूरिनरी एंटीसेप्टिक लेने पड़ते हैं, आपकी यूरिन स्टेराइल रहेगी, बैक्टीरिया फ्री, तो दोबारा स्टोन होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, मेजॉरिटी 80-90% तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, बट रेयर स्टोन्स भी होते हैं जैसे यूरिक एसिड, फॉस्फेट, जैंथिन एंड अदर्स
0: जी,
1: सबके अलग। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे, सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको हो सकता है कि अगले 10 साल 20 साल 30 साल दोबारा स्टोन ना बने।
0: बिल्कुल, यानी ध्यान तो रखना ज़रूरी है, प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी। कहने को स्टोन्स बहुत कॉमन है, लोगों को लगता है हार्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में है तो हार्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए समय समय पर चेकअप कराना, दर्द होने पर डॉक्टर से एडवाइस लेना और सही दवाइयाँ लेना या फिर सर्जरी कराना ऑप्शन अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई बड़ी समस्या घर ना कर लें। सो डॉक्टर झा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी। थैंक्स अ लॉट।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात प्रोग्राम ऑल इज वेल के एक नए एपिसोड में एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, और चर्चा करेंगे आपकी हेल्थ के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं SSP हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद का, हमारे इस कार्यक्रम के नॉलेज पार्टनर के रूप में।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन क्यों।
4: हेलो फ्रेंड्स, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं गौरी मल्होत्रा, आपकी अपनी कम्युनिटी मेंबर, और मेरे इस शो क्रिएटिव मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे नाम का, एक ऐसी हस्ती का जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। फ्रॉम द स्पिरिचुअल सिटी ऑफ ऋषिकेश टू द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ फैशन, इनकी जर्नी ट्रूली इंस्पायरिंग है। ही स्टार्टेड हिज करियर विद विल्स इंडिया फैशन वीक एंड सून मेड हिज मार्क एट लैक्मे फैशन वीक, ग्लोबल इंडिया कॉट्योर वीक, टाइम्स फैशन वीक और कई बड़े फैशन प्लेटफॉर्म्स। Ganesh Vyas has styled some of the biggest celebrities including Sachin Tendulkar, Deepa Malik, Alia Bhatt, Sunny Leone, Tapsee Pannu aur bahut sare renowned names. His work has been featured internationally in Vogue Italy, Elle Official Italy, Elle, Cosmopolitan and many more top magazines. इन्हें यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है। अलॉन्ग विद सेलिब्रिटीज ही हैज ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद ग्लोबल ब्रांड्स लाइक सैमसंग, कैनन, नेस्ले। सो दोस्तों, एक छोटे से शहर से लेकर इंटरनेशनल फैशन मैगजीन्स तक का इनका ये सफर है टैलेंट, हार्डवर्क और क्रिएटिविटी का परफेक्ट एग्जाम्पल। सो दोस्तों, एक छोटे से शहर से लेकर इंटरनेशनल फैशन मैगजीन्स तक का इनका ये सफर है टैलेंट, हार्डवर्क और क्रिएटिविटी का परफेक्ट एग्जाम्पल। सो प्लीज ज्वाइन मी इन वेलकमिंग द वेरी टैलेंटेड एंड इंस्पायरिंग फैशन स्टाइलिस्ट एंड डिजाइनर मिस्टर गणेश व्यास। गणेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस शो क्रिएटिव मंच में।
5: थैंक यू सो मच गौरी मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड आई विल से प्लेजर इज ऑल माइन।
4: ओके गणेश, सो आप ऋषिकेश जैसे टाउन से बिलोंग करते हैं और आज एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैशन स्टाइलिस्ट और डिजाइनर बन गए हैं। सो हाउ डिड दिस इंस्पायरिंग जर्नी बिगिन? हमें ये तो बहुत ही मतलब जानने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, तो उस बारे में हमें बताइए।
5: एक्चुअली पहले तो मैं बोलूंगा ऋषिकेश इज द नियरेस्ट सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ।
4: okay.
5: जो मेरा असली घर है वो है ढालवाला, इट्स इन टिहरी गढ़वाल, और जो हमारी नियरेस्ट सिटी है वो ऋषिकेश है। बट जो मेरा बचपन है वो सारा ऋषिकेश, मतलब स्कूलिंग मेरी ऋषिकेश में ही हुई है। तो मैं ढालवाला से ऋषिकेश आता था पढ़ने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन ऋषिकेश ओनली।
4: ओके,
5: तो मुझे बचपन से यही करना था वैसे तो, एंड लाइक उस समय नया नया फैशन टीवी आया था, आई हैव सीन फैशन टीवी, एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, तो मुझे लगा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये तो बचपन से ही था कि मुझे यही करना है, आई वाज वेरी वेरी क्लियर कि मेरे को फैशन इंडस्ट्री में ही कुछ करना है।
4: तो मतलब ये फैशन वाली जो आपने बात कही कि मुझे बचपन से, कौन सी क्या एज रही होगी तब आपकी?
5: I was in 6th, I guess, 6th, 7th.
4: Okay, मतलब काफी छोटी एज में, 6th, 7th में इतना आपने सोचा कि मुझे इसी लाइन में जाना है। 10 और 11
5: साल का हूंगा मैं शायद उस समय।
4: Okay, okay. तो फैमिली का सपोर्ट मिला इसमें?
5: Family is okay about it. They are saying that this not be a main career. ये तो main career हो ही नहीं सकता है, आपको तो पढ़ाई करनी है। So I have done BSc in fashion, 7th, 10th. उसके साथ साथ मैंने BCom भी किया हुआ है।
4: अच्छा, तो ये आपने सब ऋषिकेश से ही किया है?
5: फैशन डिजाइनिंग मैंने दिल्ली से की है, और जो मेरा बीकॉम है वो मैंने ऋषिकेश से किया है।
4: अच्छा, नाइस। मतलब आपका जो आपने बताया कि स्टार्टिंग से फैमिली का भी इतना नहीं था कि उन्हें तो लगता होगा ये कोई
5: स्टिल थिंक, दे स्टिल थिंक, दे थिंक कि अभी भी क्या ही कर रहे हो आप।
4: मतलब उनका वही माइंडसेट है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये

0: पहली चीज ही करियर में होनी चाहिए, बट नहीं आपने, मतलब हम तो ये कहेंगे कि आपने बहुत इसमें भी नाम कमाया है, तो बहुत एक अच्छा एग्जांपल आई थिंक आप सेट कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में भी। सो इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कॉलेज आपने किया, देन फैशन डिजाइनिंग में ही आपने किया, सो उसके बाद क्या रहा, कैसे आप इसमें आगे बढ़े?
1: सी आई थिंक आई एम वेरी लकी, जब मेरा कॉलेज का पहला पोर्टफोलियो था तो देर इज़ अ डिज़ाइनर कॉल सामंत चौहान, उन्होंने वो मेरी ज्यूरी में थे, तो सामंत ने मेरे जो मैंने गारमेंट बनाया था वो खादी से रिलेटेड था, एंड सामंत जो हैं वो अहिंसा सिल्क पे काम करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर फैब्रिक एंड कलर्स, तो उनको मेरा कलेक्शन बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि यू कैन जॉइन मी फॉर द इंटर्नशिप, मैंने उनके साथ इंटर्नशिप करी, और इंटर्नशिप के साथ साथ ही उनको, मतलब जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो उसके साथ साथ ही उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर लिया, तो फिर देन आई स्टार्ट वर्किंग विद हिम, उनके साथ मैंने विल्स इंडिया फैशन वीक किया सबसे पहले, तो दैट्स हाउ द करियर बिगिन।
0: तो योर फर्स्ट बिग ब्रेक केम विद विल्स इंडिया फैशन वीक, सो उस एक्सपीरियंस ने आपके करियर को किस तरह से शेप किया?
1: एक्चुअली विल्स इंडिया फैशन वीक एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था पहले, जो कि अब मर्ज होके लैक्मे फैशन वीक हो गया, मतलब दोनों का लैक्मे और विल्स अब मर्ज होके एक ही हो गए हैं, तो जब मैंने विल्स किया तो और लोगों ने भी मुझे रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ही इज वेरी गुड इन स्टाइलिंग, एंड देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी फॉर देयर शूट्स एंड शोज, सो या ऑफ कोर्स मेरे को बहुत ही, मैं कहूंगा कि विल्स इंडिया फैशन वीक से मुझे बहुत
0: कुछ हासिल हुआ है, मतलब वो
1: हाँ, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट बने काफी वहां पे, लोगों को जाना मैंने और मुझे मालूम चला कि काम होता कैसे है एक्चुअली।
0: अच्छा, तो इसमें भी क्या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स होने बहुत जरूरी हैं?
1: या ऑफ कोर्स यू हैव, सी केवल कॉन्टैक्ट से भी काम नहीं होता, आपका काम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, और अगर आपका काम ही अच्छा नहीं है तो नो यूज ऑफ दैट।
0: सो दोस्तों अभी वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जल्दी से सुनकर आते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास।

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो क्रिएटिव मंच में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर गणेश व्यास, जो एक बहुत ही सुपर टैलेंटेड स्टाइलिस्ट हैं और डिजाइनर भी हैं। सो गणेश, जैसा कि आपने बताया कि आपने लैक्मे फैशन वीक, टाइम्स फैशन वीक और ग्लोबल इंडिया कोटोर वीक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर वर्क किया है, सो विश शो हैज बीन द मोस्ट मेमोरेबल फॉर यू टिल नाउ। क्या कोई ऐसी याद है या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जो आपको अभी तक याद है, जिसे आप भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते?
1: वैसे तो मैं बोलूँगा कि हर एक फैशन शो में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, बट ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है और पार्ट ऑफ मेरे ख्याल से हमारी जॉब है कि हर दिन आपको नया चैलेंज मिलेगा। बट देर इज अ डिजाइनर कॉल्ड विक्टर, ही इज अ दुबई बेस्ड डिजाइनर, उनके साथ मैंने शो किया था। वो ही इज़ द वन जो कि मेरे साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, एक एक चीज़ मेरे साथ शेयर कर रहे थे, मेरे एक एक जो आइडियाज़ हैं वो ले रहे थे। तो वेरी फ्यू पीपल आर लाइक दैट। और वो शो बहुत ही अमेजिंग हुआ है, मतलब अब तक का मेरा बेस्ट शो वो है जो मैंने किया है। और मुझे लगता है कि जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करोगे किसी के साथ, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ हो भी नहीं सकती है। वो इतना अच्छा जो भी आप काम कर रहे हो, वो इट्स नॉट अबाउट शो, इट्स अबाउट एवरीथिंग। जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो चीज़ उतनी अच्छे से हो नहीं सकती
0: है। बिल्कुल। और ये कब की बात है, कौन से ईयर की?
1: ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है।
0: अच्छा, विच मींस 2023। नाइस। इसके अलावा और कोई ऐसी चीजें हो जो आप कभी नहीं भूल सकते हो? लाइक जैसे आपने बोला हर शो में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। और भी
1: एक बहुत शो की बात मैं आपने बोला तो मैं बता रहा हूँ। वैसे अगर मैं बोलूँ शूट की बात, तो जो मेरा जिंदगी का पहला ब्रेक था, पहला शूट था, वो सचिन तेंदुलकर के साथ था।
0: ओह वाओ।
1: सो यस, वाओ, ऑफ कोर्स। एंड आई वाज किड दैट टाइम। मैं सेट पे गया, शूट बॉम्बे में था, मैंने यहाँ से फ्लाई किया। मैं फ्लाई करते ही मेरी फ्लाइट लेट हो गई और मुझे होटल पे जाने का टाइम नहीं मिला, मैं डायरेक्ट सेट पे गया हूँ वहाँ से। मैंने फटाफट जो भी है अपना सामान वामान किया, ये किया, सचिन आए और मैं बिल्कुल कांप रहा था, मुझे लगा मैं तो लेट हो गया आज, तुम पता नहीं बैंड बजने वाली है। ही टैब इन माई शोल्डर और बोला प्लीज सेट। स्पॉट बॉय को बोला पानी लेके आओ पहले सर के लिए। एंड दैट वॉज सो अमेजिंग। मतलब अभी तक मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुका हूँ, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। एंड देयर द सेकंड इज डॉक्टर दीपा मलिक, शी इज आल्सो अमेजिंग। आई कैन थिंक, मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद आई हैव टू गिव अप, तो दीपा मलिक मेरे को दिखती हैं या उनसे बात होती है, तो मुझे लगता है मैन इफ शी कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट।
0: ओके, सो गणेश आपने ये खुद से ही बता दिया, मैं अभी नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे आने ही वाली थी। सो मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, जो लोग ये शो सुन रहे हैं, कि गणेश ने बहुत ही बड़े बड़े सेलेब्स को भी स्टाइल किया हुआ है, लाइक सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर दीपा मलिक, आलिया भट्ट, सनी लियोनी एंड तापसी पन्नू जी। इसके अलावा भी आई थिंक बहुत से सेलेब्स को आपने किया हुआ है स्टाइल। सो इनमें से कोई ऐसा स्टाइलिंग मोमेंट जो आपके लिए ट्रूली स्पेशल रहा हो? एक तो आपने सचिन तेंदुलकर जी का हमें बताया और दीपा मलिक जी के बारे में आपने जो बताया, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि वो कौन है, क्योंकि हर किसी को अभी नहीं समझ आ रहा।
1: सो दीपा मलिक जी जो है वो है पैरा ओलम्पियन, उन्होंने 2016 में रियो पैरा ओलम्पिक में मेडल लिया था सिल्वर, एंड शी इज द फर्स्ट वुमेन आई गेस जो जिन्होंने पैरा ओलम्पिक में इंडिया के लिए मेडल लिया है। और उसके अलावा शी हैव लाइक एवरीथिंग, खेल रत्न उनके पास है, उनके पास
0: पद्मश्री
1: भी उनके पास है, तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस थिंग।
0: वाओ। तो इनको जब आपने स्टाइल किया, मतलब ये कब की बात है, क्या वो कोई शो था या कोई ऐसा
1: एक पर्सनल इवेंट था, उस पे स्टाइल किया पहली बार। अच्छा। फिर उसके बाद तो वी लाइक आई हैव स्टाइलर लॉट ऑफ मेनी टाइम, एंड आई विश कि मैं उनके साथ हमेशा ही बना रहूं, जुड़ा रहूं।
0: सो बीइंग अ स्टाइलिस्ट, जैसे आपने बताया बहुत से सेलेब्स को स्टाइल करते हैं, सो आपने स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को भी किया है, जैसे सचिन तेंदुलकर जी और दीपा मलिक जी का आपने बताया। सो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज काफी काम और शांत है, या फिर इंडस्ट्री के जो है हमारे बॉलीवुड की पर्सनालिटीज को जब आप स्टाइल करते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है दोनों ही?
1: सी, अगर मैं बोलूं कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को स्टाइल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन द थिंग व्हाट वी आर थिंकिंग।
0: ओके।
1: वो उतने क्रिएटिव नहीं है, दे हैव अ डिफरेंट विजन।
0: यस।
1: In the case of Deepa Malik, she is very open about the ideas, but not everyone is open about the ideas, yeah. Right? So, पर जो जो industry में, जैसे अगर मैं कहूँ कि models हो गए या actor हो गए या actresses हो गई, दे अंडरस्टैंड कि हाँ अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम सोच समझ के ही बोल रहे हैं, दे हायर्ड अ प्रोफेशनल और वो हिसाब से ही फिर काम करते हैं।
0: तो आपने जैसे, मैं यहाँ पे नेम लूंगी आलिया भट्ट जी को, आपने किया स्टाइल, तो वो वाला एक्सपीरियंस क्या था? मतलब जो चीज आप उन्हें बता रहे हो, स्टाइल करना बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा आप पहले ये हमारे लिसनर्स को बताइए कि इसमें क्या रहता है, क्योंकि एक आप डिजाइनर भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों को पहले लेते हैं।
1: स्टाइलिस्ट इज द वन हु डिसाइड व्हाट टू वेयर, व्हेन टू वेयर।
0: ओके
1: आपका हेयर मेकअप क्या होगा, इट्स नॉट अ जस्ट वन थिंग, इट्स अबाउट योर फुल लुक,
0: ओवरऑल जिसमें ज्वेलरी भी आ गई, मेकअप भी,
1: इट कम्स एवरीथिंग। आपका ड्रेस कौन सा होना चाहिए, आपका मेकअप क्या होगा, आपका हेयर क्या होगा, आपका नेल पेंट कैसा होगा, आपके शूज कैसे होंगे,
0: ओके
1: सो इट कम्स विद एवरीथिंग।
0: ओके तो ये आप स्टाइलिंग में आप यही करते हैं, और डिजाइनर जो है उसमें आप डिजाइन करते हैं,
1: वी डिजाइन गारमेंट्स एंड हेडगियर एंड एवरीथिंग।
0: ठीक है, तो ये तो हमें दोनों चीजों का फर्क समझ आ गया। सो गणेश, आपने अभी जैसे बहुत सारे सेलेब्स का बताया, तो अभी रिसेंटली कोई हाल ही में आपने किसको स्टाइल किया है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए।
1: सो रिसेंटली मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए डायना पेंटी को स्टाइल किया है, शी इज अमेजिंग वुमन और वेरी अंडरस्टैंडिंग,
0: अच्छा,
1: वेरी स्वीट, सो दैट एक्सपीरियंस वाज आल्सो वेरी नाइस।
0: सो स्टाइलिंग में आप जो भी चीजें, लाइक आपने बोला क्लोथ्स, फुटवेयर, एवरीथिंग, ज्वेलरी, सब कुछ आता है, तो आप जो उन्हें सजेस्ट करते हैं वो आराम से,
1: इट्स ऑलवेज हैपेंड कि मैं जो बोल रहा हूँ सामने वाले का प्रोस्पेक्टिव बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आई हैव टू गिव सम ऑप्शंस आल्सो कि अगर आप ये पहन रहे हो तो यू विल लुक लाइक दिस, अगर आप ये पहनोगे तो इसमें ये चीज एनहांस होगी, या ये वाला पार्ट बेटर लगेगा। सो इट डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी कि उसको खुद को क्या लग रहा है, कुछ साइकिक भी होता है हर किसी का कि आपको खुद को क्या अच्छा लगता है।
0: Exactly.
1: तो इट शुड बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग।
0: मतलब कोई कोई तो ऐसे होते होंगे, रिजिड होते होंगे एक ही चीज पे, कि वो हां वो तब तो आपके लिए बहुत आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती होगी, और कोई कोई सब आप पर ही छोड़ देते होंगे कि जो आप कह रहे हो वही हमने,
1: समथिंग ओके वी आर डूइंग।
0: नाइस, ये भी आपका बड़ा ही यू नो डिफरेंट रोल है आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सो साथियों अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जल्दी से वापस आते हैं और हमारी इसी गुफ्तगू को आगे जारी रखते हैं मिस्टर गणेश व्यास के साथ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में एक बार फिर से, जिसका नाम है क्रिएटिव मंच। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गणेश व्यास, जो बहुत ही मज़ेदार बातें बता रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग बातें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, जो ये एक सुपर स्टाइलिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं, बहुत ही अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आ रहा है सर आज आपके साथ हमें। हाँ ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको यंगेस्ट फैशन अचीवर्स अवार्ड से भी ऑनर किया गया है, सो हाउ डिड रिसीविंग दिस अवार्ड इम्पैक्ट योर कॉन्फिडेंस एंड करियर?
1: सी, कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है करियर के लिए। मैं कहूँगा कि बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इज ऑलरेडी अवार्ड। अगर आप इंडस्ट्री में बने हुए हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा अवार्ड है कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, बीइंग फ्रॉम अ स्कूल और द कॉलेज वेयर आई एम फ्रॉम। तो मेरे लिए तो ये अवार्ड ही बहुत बड़ा है कि जिनको मैं टीवी में देख रहा था, मैं आज उनके साथ काम कर रहा हूँ, दैट्स अवार्ड फॉर मी।
0: तो इस अवार्ड के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, मतलब कैसे आपका कुछ इसमें भी नॉमिनेशन कैसे रहता है?
1: जब मैंने सचिन तेंदुलकर के लिए शूट किया, उसके तुरंत बाद ही मुझे अवार्ड मिला था। तो आई थिंक दैट शूट वाज फॉर जेपी सीमेंट, इट्स शूट प्लस फिल्म, तो ये पूरी एक जैसे एड फिल्म होती है वो है, एंड देन इट्स अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड एड फिल्म एंड द शूट। या उसके वजह से ही मेरे को मिला, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट इट। नाउ आई डोंट केयर अबाउट इट, बट हाँ, जब आप छोटे होते हो, आप ये लाइक आप छोटे होते हो, आप घर वालों के साथ लड़ रहे हो कि आपको इस चीज़ के लिए काम करना है, एंड देन समथिंग केम अप लाइक दिस, तो घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, कि
0: नहीं ये
1: कर रहा है जिंदगी में,
0: हाँ कि फैशन में भी करियर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये अवार्ड आपको कौन सी एज में मिला था, कितने साल हो गए?
1: आई थिंक आई I was 22 that time.
0: Okay, nice.
1: अभी मत पूछना कितने साल का हूँ।
0: Okay, okay. ठीक है, नहीं पूछते हम, लेकिन ठीक है, वो आपका ये मैं कह सकती हूँ कि वो आपका स्टार्टिंग पीरियड रहा था, तो वो आपके इस करियर को बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहा है। वेरी नाइस। सो गणेश, योर वर्क हैज बीन फीचर्ड इन टॉप इंटरनेशनल मैगजीन्स लाइक वोग इटली, एल ऑफिशियल इटली एंड एल। जब आपने पहली बार अपना वर्क इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर देखा, सो व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? क्योंकि बहुत बड़े-बड़े नेम्स हैं अपने आप में।
1: आई नो बहुत बड़े-बड़े नेम हैं, बट व्हेन यू आर शूटिंग यू नो कि ये यहां पे पब्लिश होना ही है।
0: ओके,
1: तो वो इतना वो नहीं था अमेजिंग, बट मोस्ट ऑफ माय कजन्स आर आउट ऑफ इंडिया, तो जब उन लोगों ने, वन ऑफ माई कजन गॉट होम एंड गेट दैट मैगजीन एंड से कि इज दिस यू, देन आई फील लाइक यस आई हैव डन समथिंग इन माय लाइफ।
0: अमेजिंग। वो फीलिंग तो कुछ अलग ही होती है, क्योंकि सारे कजन्स में आपका एक
1: द सेम थिंग हैपेंड इन, देयर इज अ आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ माइन कि उत्तराखंड का स्टाइलिस्ट एंड दिस इज दैट, और वो फोटो किसी ने हमारे जो मतलब आई एम गणेश व्यास एंड जो व्यास है वो उत्तराखंड में बहुत ही कम लोग हैं व्यास, सो देयर इज अ स्मॉल
0: मतलब कम्युनिटी,
1: बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, तो उन कम्युनिटी का एक पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस किसी ने उसमें डाल दिया।
0: अच्छा।
1: तो फिर मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो माय फादर नेम, तो दे नो माय दादाजीज नेम, तो दे पीपल आर लाइक ये उनका बेटा है, उनका बेटा, देन पीपल आर कनेक्टिंग कि नहीं है इसका बेटा नहीं, उसका बेटा नहीं है। फिर मेरे पापा ने फोन देखा, ये क्या हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में आज, देन सी ही सेड, उन्होंने मेरी फिर पिक्चर देखी, अरे तेरी फोटो छपी है क्या आज, तो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी कि
0: मतलब वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ी खुशी वाला एक पल होगा। बिल्कुल। और बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का कि आप एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं और फिर ऐसी कुछ चीजें होए, आपका कभी न्यूज़पेपर में आपके लिए कुछ छप रहा है आर्टिकल, या फिर कभी लोकल न्यूज में भी आ जाए, तो ये चीजें छोटे छोटे मोमेंट्स है जो बहुत ही खुशी देते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी, लाइक पेरेंट्स को और हम लोगों को, और मोटिवेट ही करती हैं ये चीजें। सो गणेश, यू हैव कोलैबोरेटेड विद लीडिंग ब्रांड्स लाइक सैमसंग, कैनन, नेस्ले, so according to you what's the main difference between brands collaboration and celebrity styling?
1: See, brand collaboration में क्या होता है कि आप बहुत ही specify होते हो कि उनको they people have their mindset कि उनको ये ही चाहिए, what you're saying कि rigid होते हैं, वो उनको ये color they will, जब वो मुझे हायर करेंगे वो मुझे बता देंगे ये 50 कलर हैं, ये 50 अच्छा। कलर यूज नहीं करने, बचे हुए जो कलर्स हैं आप उनको, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम। अब ये नेकलाइन यूज नहीं करनी है, या कुछ लोगो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दे हैव अ वेरी ह्यूज लिस्ट कि आप जब उनके साथ काम करो तो ऐसा ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सेलिब्रिटी के साथ कर रहे हो काम, तो दे आर वेरी ओपन अबाउट इट. वेरी फ्यू कलर्स विल बी देयर कि वो कहेंगे कि नो, एंड आई वी विल ऑल्सो सजेस्ट कि हाँ ये कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा है या ऐसा सिल्वर्ट मत पहनो. तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं बोलूँ तो ब्रांड के साथ काम करने में आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छे से खुल के नहीं आती है, क्योंकि वेन यू जब आप किसी क्रिएटिव पर्सन को बांध देते हो कि नहीं आपको इस दायरे में ही काम करना है,
0: तो वो नहीं हो पाती, वो
1: क्रिएटिविटी आपकी निकल ही नहीं पाएगी. अनलेस अनटिल जब तक आप फ्री नहीं हो, आपके क्रिएटिव थॉट्स तभी निकलेंगे ना जब आप फ्री.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो यही डिफरेंस है दोनों.
0: और मुझे ऐसा लगता है फैशन भी एक आर्ट ही है अपने आप में, और यू आर लाइक अ फ्री बर्ड है ना, क्योंकि जब तक आपको वो फ्रीडम नहीं दी जाएगी वो चीज, वो आउटपुट निकल के आएगा ही नहीं. बिल्कुल. तो मतलब आपको ज्यादा अच्छा मुझे लगता है सेलेब्स के साथ करने में.
1: नॉट जस्ट सेलेब्स बट
0: मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर वो चीज है.
1: दैट्स व्हाई जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं थोड़ा कम करता हूं, और जो बाकी फैशन वाला काम है वो मैं ज्यादा करता हूं.
0: ओके गणेश, तो और आपके अभी क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे जो आपके रिसेंटली आ रहे हैं, लाइक फैशन शोज हैं या कौन से, किनको आप स्टाइल करने वाले हो, इस बारे में कुछ हमें बताइए.
1: अभी रिसेंटली एक फैशन शो आ रहा है मेरा जो है भारत डिजाइन शो, उसको मैं स्टाइल करने वाला हूँ. एंड डेफिनेटली देर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड दिस थिंग. पर जो भारत डिजाइन शो है वो इसलिए बहुत मेरे को अट्रैक्टिव, और मैं बोलूँगा कि मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें जैसे IPL के लिए बिडिंग लगती है प्लेयर्स.
0: अच्छा.
1: की वैसे मॉडल्स के लिए बिडिंग लग रही है. सो इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट वाइज, और क्या बोलेंगे इसे, इट्स अ सीरीज ऑल्सो. आई थिंक दे विल शूट Also, and ये किसी टीवी चैनल पे भी आने वाला है.
0: अच्छा.
1: E24 or something, I have, मतलब मुझे देखना पड़ेगा वो कि कौन से टीवी चैनल पे. तो I'm very excited.
0: इसमें सारे इंडियन डिजाइनर्स
1: हैं. अच्छा. ऑलमोस्ट इंडियन डिजाइनर, इंडियन मॉडल्स, मे बी फ्यू इंटरनेशनल मॉडल्स होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन डिजाइनर्स होते हैं.
0: नाइस. ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई है. डेफिनेटली अगर ये टीवी पर आएगा हम तो देखेंगे जरूर. सो साथियों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं हमारे अमेजिंग स्टाइलिस्ट जिनका नाम है मिस्टर गणेश व्यास. सो बहुत ही मजा आ रहा है आज इनसे बात करके. जल्दी से म्यूजिकल ब्रेक से वापस आते हैं और फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस बातचीत को. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8.

0: वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, और आफ्टर डिज़ाइनिंग ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें हैं. हर कोई डिज़ाइनर नहीं बन सकता है, हर कोई स्टाइलिस्ट नहीं बन सकता. देर इज़ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस कि आप शायद मर्चेंडाइजर बन जाओ, या ऐसे ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपने सोची भी नहीं है. अभी तो सोशल मीडिया इतना चल रहा है, आप सोशल मीडिया डिज़ाइनर बन सकते हो, या आप सोशल मीडिया किसी का हैंडल कर सकते हो बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन. तो आपको पहले बाहर निकल के वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज में सिखाया है वो बस किताबी पढ़ाई है. आपको बाहर आके भी तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी गेन करना पड़ेगा. आई वॉज लकी कि मेरे को मतलब जो आई वॉज लकी कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही जॉब मिल गया कॉलेज के, बट हर कोई शायद इतना लकी नहीं होता, मैं ये बोलूँगा. तो यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट योर वर्क एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंस ऑल्सो. जब तक आपके अंदर इतना धैर्य नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में तो काम नहीं हो सकता. अगर आप बहुत ही ज़्यादा आजकल की जनरेशन मैंने देखी है, वो दे पीपल आर नॉट पेशेंट, दे हैव नो पेशेंस. दैट्स द थिंग. और मुझे लगता है नेटवर्किंग होनी चाहिए आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग. और इस इन सब के अलावा आपका जो है विजन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. आपका जो विजन है वो बहुत यूनिक होना चाहिए. ये नहीं कि आप किसी को भी कॉपी कर रहे हो. आप एक लाइन, आप अगर किसी भी डिज़ाइनर को देखोगे, दे हैव अ सेंस ऑफ स्टाइल एंड डिज़ाइनिंग, तो वो हमेशा से ही चला रहे हैं. आप किसी का भी डिज़ाइन, आप सभ्यसाची देखते हो तो आपको मालूम चल जाता है कि हाँ ये सभ्यसाची है. अगर उसको कोई कॉपी भी कर रहा है तो भी लोग यही बोलेंगे कि हाँ सभ्यसाची है, राइट. तो यूनिक विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद अगर आपका काम बहुत अच्छा है, आपकी नेटवर्किंग होनी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपकी नेटवर्किंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. जब तक नेटवर्किंग नहीं होगी आपको काम नहीं मिलेगा. ऑल्सो डिसिप्लिन इज़ मैटर अलॉट. ये नहीं कि आपने एक दिन अच्छा काम कर लिया और दूसरे दिन आप भूल गए, है ना. आपको हर दिन ऐसे दिखाना है कि आप आज काम पे जा रहे हो तो आज आपका पहला दिन है काम का. आपको उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही पैशन के साथ सारे प्रोजेक्ट करने जैसा आप पहले प्रोजेक्ट में कर रहे हो.
1: बिल्कुल, मतलब वो एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए,
0: वो एक्साइटमेंट भी हमेशा होनी चाहिए.
1: ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, और ये मुझे लगता है हर फील्ड के लिए ये चीज
0: अप्लाई, हर फील्ड के लिए. पीपल थिंक दैट वी हैव मेक, हमने तो कर लिया जितना करना था, एंड देन दे फॉरगॉट अबाउट इट कि अब तो ठीक है, हो जाएगा. ये नहीं होना चाहिए. आप जब जा रहे हो तो आप हर दिन बहुत अच्छे से, हर दिन ऐसे सोचो कि ये
1: आपका फर्स्ट
0: डे है, और हर दिन आपको जज करा है. और हमारी इंडस्ट्री है भी ऐसी यार, मतलब अगर आप सोचो मैं एक दिन किसी शूट पे जाऊं और मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस ना करूं तो लोग सारा भूल जाएंगे पीछे, और वो मुझे बुलाना बंद कर देंगे अगली बार से कि यार उसने काम खराब किया. ऐसे मुझे लगता है कि दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू बी कीप इन माइंड.
1: ओके, सो एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी गणेश, जैसे आप कोई चीज, अगर आप डिजाइनर हैं, सो क्या आप एक ही मतलब एथनिक ही डिजाइन करते हैं, या वेस्टर्न भी आता है, ये कुछ अलग अलग लाइंस होती हैं, या आप कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग?
0: सी, हर किसी का फोटो अलग होता है. जैसे मैंने बोला कि आपको एक चीज पे स्टक रहना चाहिए. बीइंग अ स्टाइलिस्ट, आई स्टाइल इंडियन वेस्टर्न एवरीथिंग. बट अगर मैं डिजाइनिंग करूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं मेंस की डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मेरा वेस्टर्न बहुत अच्छा है.
1: अच्छा.
0: और अगर मैं फीमेल की डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मेरा इंडियन बहुत अच्छा है. तो दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपके अंदर की जो एबिलिटी है वो कैसी है. आपको खुद को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तभी आता है जब आप कॉलेज से बाहर निकल रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों को देख रहे हो. जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं, देखोगे नहीं कौन क्या काम कर रहा है, तो ये आने में बहुत टाइम लगता है. मतलब यू हैव टू लर्न दिस वेरी क्विकली. ये समझना, जितनी जल्दी आप ये समझोगे उतनी जल्दी आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ.
1: अच्छा, मतलब चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है. ये नहीं कि सिर्फ और अपना पता होना चाहिए कि आपका फोर्टे
0: क्या
1: है. बिल्कुल. और जैसे गणेश, फैशन शो की हमने बात की, तो इसमें अब एक रोल रहता है, मेन रोल तो मुझे लगता है क्लोथ्स का, और दूसरा मॉडल्स का ही रहता है. तो मॉडल्स भी क्या आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि शो में कैसे, क्योंकि मैंने सभ्यसाची के इनके पेज देखे हैं, तो उसमें काफी हेल्दी वाला फोटोशूट भी रहता है मॉडल्स को लेकर, तो काफी हेल्दी मॉडल्स का भी. तो वो एक क्या कॉन्सेप्ट है और आपके में कैसा रहता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए.
0: मॉडल्स आर मॉडल्स, मतलब जो डिजाइनर कपड़े बना रहे हैं वो यूजुअली बना तो नॉर्मल लोगों के लिए रहना. हर कोई तो पतला नहीं हो सकता. देर इज अ साइज एवरीवेयर. वो लड़का भी पहनेगा, लड़की भी पहनेगा, और जो नॉन बाइनरी लोग हैं वो लोग भी पहनेंगे. तो अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि डाइवर्सिटी आ रही है इंडस्ट्री में, कि वो टिपिकल मॉडल टाइप मॉडल्स नहीं लेंगे. ऑफकोर्स वो तो लेंगे ही जो मॉडल्स हैं, उनके अलावा जो है वो LGBTQ कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको लेंगे, प्लस साइज मॉडल लेंगे. तो It coming like this.
1: मतलब बहुत साल पहले मुझे याद है हम देखते थे फैशन शो जीरो साइज,
0: जीरो फिगर अभी भी है. ऑफकोर्स जो जिसका काम, मतलब अगर आप बोलोगे मॉडल तो बहुत ही स्पेसिफिक वो है, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक क्राइटेरिया है. लेकिन अभी जो है वो चेंज होता जा
1: थोड़ा
0: रहा है।
1: सा चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है ये

0: अच्छा भी
1: डाइवर्सिटी है, हाँ, exactly. क्योंकि हर कोई उतना पतला नहीं हो सकता. और आप अगर हमेशा, और ये बहुत अच्छी अवेयरनेस भी है जो कि पहले शायद लोगों को नहीं लग रही थी, कि आप हमेशा लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप पतले हो जाओ कितना हेल्दी है ये. हेल्दी है ही नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. तो और हर कोई ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकता
0: जी. सो गणेश, आपने जैसे बताया आप एक स्मॉल टाउन से हैं और आपको लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट मिला भी और शायद नहीं भी, थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल तो रहा ही आपके साथ, है ना. हाँ, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि फैशन में क्या ही करियर होगा. तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है जो फैशन की लाइन में आना चाहती है, फिर मे बी चाहे वो मॉडलिंग हो या फिर स्टाइलिंग हो या डिजाइनिंग हो, तो वो अपने पेरेंट्स को किस तरीके से समझाएं, मतलब आपको क्या लगता है कैसे समझाना चाहिए उन्हें? क्योंकि हर पेरेंट अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है कि डॉक्टर इंजीनियर. बहुत लोगों का चेंज भी हुआ है नो डाउट, बट कुछ फिर भी उस पे हैं अड़े हुए कि नहीं ये करियर वाइज अच्छा नहीं है. सो कैसे समझाएं?
1: ऑफ कोर्स हर किसी को ये लगता है कि इंडस्ट्री बहुत खराब है, मतलब डिजाइनिंग मॉडलिंग के लिए भी लोगों को यही लगता है. बट मुझे एक चीज, मैं बहुत ही एक तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे यही करना है. और मैं आजकल के बच्चों को ये बोलूंगा कि यार आप वैसे भी तो झूठ बोल के घर पे चीजें कर रहे हो ना, राइट. तो आप अगर आपको करना होगा तो आप करोगे ही करोगे. इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग यू विल डू इट. यू विल मेक योर पेरेंट्स, कि आप अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह से मना लोगे. मना नहीं पाओगे तो तुम उनको प्राउड फील तो करा ही दोगे अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो और आपको करना है. जस्ट मेक अ गाइडलाइन कि आपको क्या क्या कैसे करना है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हाँ ठीक है मुझे डिजाइनिंग करनी है, मुझे कहाँ से करनी है, मुझे क्या क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए इसके लिए. तो पहले तो एक बेसिक फॉर्मेट बनाओ, अपने घर वालों को समझाओ कि सी इतना खर्चा है, मुझे यहाँ से कॉलेज करना है, इतना टाइम मुझे चाहिए, मिनिमम मुझे इतना टाइम आप दे दो, उसके बाद आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे. सेम विद मॉडलिंग ऑल्सो आई गेस, कि अब तो मॉडलिंग के लिए खैर काफ़ी स्कोप है, आप बिना बताए भी घर पे कर सकते हैं. एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ गर्ल्स जो कि अपने घर पे नहीं बता रही थी और मॉडलिंग कर रही हैं. व्हेन दे मेक इट बिग तो उनके घर वालों को पता चला. तो जब आपको करना होगा तो आप कर ही लोगे यार. मतलब मुझे लगता है कि यू हैव टू पुश योर सेल्फ. इसमें पेरेंट्स का कोई रोल नहीं है, इसमें आपका रोल है, आप कितने क्लियर हो अपने थॉट्स के लिए.
0: Means passionate होना चाहिए आपको,
1: और patience भी होना चाहिए.
0: हाँ, तो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि एक दिन में आपको शोहरत नहीं मिलती है. तो आपको धीमे धीमे ही सब कुछ होगा. मे बी यू आर लकी इनफ कि आपको एक दिन में ही बहुत अच्छा ब्रेक मिल जाए.
0: तो जैसे अभी हमने मॉडल्स की बात की, तो इसमें बॉयज भी रहते हैं मॉडलिंग में, तो उनके लिए है ये बेनिफिशियल काफी या नहीं?
1: आई थिंक बॉयज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप ये देखोगे की अगर एक किसी भी मतलब अगर मैं बोलूं मेंस वेयर का हम लोग शूट कर रहे हैं, तो एक लड़के के साथ दो लड़कियां तो खड़ी होंगी.
0: एग्जैक्टली,
1: है ना. तो लड़के का जिस चीज के लिए शूट हो रहा है वो बहुत कम है उसकी क्वांटिटी, पर लड़कियां उनको फिर भी चाहिए. तो लड़कियों के लिए ऑफ कोर्स ज्यादा है,
0: मतलब
1: स्कोप ज्यादा है. लड़कों के लिए भी स्कोप है, बट यू हैव टू मेक इट लाइक यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड यू हैव टू डू इट. और मैं ये भी बोलूँ कि हाँ, आप इसको फर्स्ट करियर तो मान के पहले मत ही चलो, जब तक आप बिल्कुल ही आपको हर दिन काम नहीं मिलना शुरू हो रहा है.
0: मींस जो मॉडलिंग लाइन है उसके लिए,
1: उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो.
0: हाँ, कोई
1: स्टार्ट जब आप कर रहे हो तो उसको फर्स्ट करियर मान के मत चलो.
0: साइड बाय साइड ट्राई
1: करना चाहिए. जब बहुत अच्छा चलने लग जाए देन यू कैन मेक इट अ फर्स्ट करियर.
0: काफ़ी अच्छी आज आप हमें टिप्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. मे बी जो लिसनर्स सुन रहे होंगे उसमें से बहुत से लोग हो सकता है ऐसे हों जो फैशन में मॉडलिंग में अपना करियर देख रहे हों, तो काफ़ी बेनिफिशियल लग रही है मुझे आज आपकी बातें जो हम कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. सो अब लास्ट में गणेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स आज ये शो सुन रहे हैं, तो उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, या कोई ना कोई तो इसमें स्टडीज़ भी कर रहे होंगे लाइक फैशन डिज़ाइनिंग और भी चीज़ें. सो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो?
1: सी, मैं ये बोलूँगा सबको कि प्लीज़ बी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट. आप अगर स्टाइलिस्ट हैं, मॉडल, आपको मॉडल बनना है, आपको स्टाइलिंग करनी है, आपको डिज़ाइनर बनना है, आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए. यहाँ पे ट्रेंड हर दिन चेंज हो रहा है, ट्रेंड को फॉलो करिए. अब जो आप इंडिविजुअल हो, जो भी आप इंडिविजुअल हो, जो आप सोचते हो, उन थॉट्स को किसी और चीज़ों के साथ मिक्स मत करिए. और अगर आप अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे तो यू विल मेक इट वन डे 101%. मे बी कुछ लोग जल्दी कर लें, कुछ लोग को थोड़ा टाइम लग जाए. सो यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट, दैट्स इट. यही मैं बोलना चाहूँगा.
0: थैंक यू सो मच गणेश, आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है. डेफिनेटली ये हमारे लिसनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो अपना करियर फैशन इंडस्ट्री में देख रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं. सो थैंक यू सो मच आपकी जो ये आज हमने जर्नी सुनी, और आपने मतलब कितनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रही है. एक स्मॉल टाउन का लड़का जितना फैशन की दुनिया में नाम कमा रहा है. सो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हमेशा रहेंगी.
1: थैंक यू सो मच.
0: सो बहुत बहुत थैंक यू गणेश, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे लिए समय निकाला. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. थैंक यू.
0: सो बहुत सी बातें करने के बाद अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी मेरे इस प्रोग्राम जिसका नाम है क्रिएटिव मंच. तब तक के लिए मुझे यानी गौरी मल्होत्रा को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.
2: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ. इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है.

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good afternoon, namaskar. Sat Sri Akal, Ram Ram, Jai Mata Di, Assalamu Alaikum, dosto. I'm RJ Sagar. I am lekar ke show Voice of Youth. And this show is really special for us. Reason being, yahan par har baar hum ek expert se baat karte hain. And we talk about all the skill set that they have. आज हमारे साथ यहाँ पर है दिशा सेन. दिशा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा. दिशा इज एन एंकर, इज एन एमसी, आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. दिशा से आज हम बात कर रहे होंगे द आर्ट ऑफ एंकरिंग के बारे में. सो वी गोना टॉक अबाउट हाउ इट वर्क. अब देखे होंगे लोग शादी होस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट किया जाता है. तो ये जो कला है इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग, कैसे अगर आपको कुछ चाहिए इसमें से तो आप क्या स्किल्स जो हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, क्या वो स्किल्स होती है, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, पैसा कैसे कमाते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी गोना टॉक अबाउट. बट एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम दिशा. हाय दिशा, वेलकम टू आवर शो.
2: हेलो सागर, हाउ आर यू?
1: गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम टोटली फाइन. बस वायरल चल रहा है तो थोड़ा सा सभी में फैला हुआ है, बाकी आई एम फिट एंड फाइन.
1: उसमें सबको दौड़ा हुआ है एंड आई विश आप जल्दी ठीक हो जाएं. दिशा, ये शो जो हम करते हैं इसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारे लिसनर्स जो हैं उन लोगों तक स्किल्स हम लोग पहुंचा सके. तो सबसे पहले मैं आपके डोमेन के बारे में बात करना चाहूंगा. अपने शब्दों में अच्छे से बताइए आप क्या करती हैं.
2: मैं एंकर हूँ और मैं फ्रीलांस एंकरिंग होस्ट करती हूँ. उसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, प्रमोशनल इवेंट्स भी होते हैं. बेसिकली मैं जो ज़्यादा मेरा क्राइटेरिया है इवेंट सेक्टर को वो है सोशल इवेंट्स, दैट इज डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो गया, कार्निवल इवेंट्स हो गए, हल्दी संगीत सेरेमनीज हो गए, मेहंदी सेरेमनीज, कॉकटेल पार्टीज हो गए एंड बिसाइड दिस फैशन शो, डांस कॉम्पिटिशन. मतलब फ्रीलांस एंकरिंग में जितना भी कुछ आता है, गवर्नमेंट शोज ऑल्सो, तो ये सब मैं होस्ट करती हूँ एंड आई एंटरटेन पीपल और गेम्स ऑर्गेनाइज करवाना, ये सब मेरा वहाँ काम रहता है. एंड आई एम डूइंग इट सिंस वेरी लॉन्ग, लाइक 2019
1: से आप इसको कर रहे हैं.
2: जी.
1: तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, लेट्स से दैट यू आर गोइंग टू होस्ट एन इवेंट, तो कैसे आप रोड मैप बनाते हो, क्या क्या तैयारियां आप करते हो?
2: सी, हर एक इवेंट का ना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. तो अगर हम बात करें सोशल इवेंट्स की, लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग्स, वेडिंग्स की हम बात करें तो वेडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी स्क्रिप्टिंग में हमें सबसे पहले तो हमें फैमिली मेम्बर्स को कनेक्ट करना पड़ता है. जो भी हमारे फैमिली में दोनों ही साइड के मेन कैरेक्टर होंगे, लाइक फैमिलीज के एल्डर मैं बोलना चाहूंगी, उनके मम्मी पापा हो गए और फैमिली से रिलेटेड भैया भाभी हो गए, बिल्कुल क्लोज वंस, उनको कनेक्ट करके रखना होता है और स्पेशली ब्राइड एंड ग्रूम को कनेक्ट करके रखना होता है. और यही अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट इवेंट्स की, तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए आप किस कॉर्पोरेट इवेंट को होस्ट करने जा रहे हैं, कब से वो कंपनी स्टार्ट हुई है, एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट दी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर दैट. या एंड स्क्रिप्टिंग भी उनके अकॉर्डिंग ही होती है, क्योंकि हर एक इवेंट में एक अलग ही आपको चीज निकल के आएगी कि ये एनुअल डे फंक्शन है, ये गेट टुगेदर है, या अवार्ड फंक्शन है, R&R एक्टिविटीज है. तो इसमें बहुत सारे मतलब इवेंट्स हम बोल देते हैं कि हम इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, बट वो इवेंट में भी इतने सारे क्राइटेरियाज निकल के आते हैं, क्योंकि आपको उसके ऊपर स्टडी करनी ही पड़ती है बेसिकली पहले.
1: Enjoy the musical vibe here. Stay tuned with us. My name is RJ Sagar, show Voice of Youth.

0: वेलकम बैक मैं सागर शो वॉइस ऑफ यूथ। और जैसा कि आपको पता है दिशा हमारे साथ है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आर्ट ऑफ एंकरिंग की। हम लोग यहाँ पर डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी आर्ट फॉर्म को जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। हमने लोग देखे हैं ये माइक पकड़ के आ जाते हैं, हमें हंसा देते हैं, हमें रुला देते हैं, हमें एक्साइट कर देते हैं, हमें मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कला आती कैसे है, कैसे मिलती है वो कला, कैसे बना जाता है एक एंकर, ये हम यहाँ पर आज समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने शो में। दिशा मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, कोई इंसान इस टाइम आपको सुन रहा है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो एंकर बनना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए क्या स्किल्स चाहिए होते हैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि आप एक फिफ्थ क्लास के बच्चे को समझा रही हैं।
1: मैं आई एम नॉट टू गुड यू नो ये बताने में, मतलब एज ए टीचर मैं बहुत बुरी हूँ वैसे, बट हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो उससे लोग सीख सकते हैं कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। वेल, आपको सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूँ तो आपको होना पड़ेगा बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट। एंकरिंग फील्ड में उतरने के लिए, फ्रीलांस बेसिकली फील्ड में उतरने के लिए आपको एकदम एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा पर्सनालिटी के साथ, कि आप किसी से भी खुल के बात कर पाए। सबसे पहले आपको बातें करना आना चाहिए, आपको बातें बहुत अच्छी करना आना चाहिए, और वो भी इंसान टाइम के साथ मुझे लगता है ऐसा सीख जाता है। हर कोई बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं करता, मगर आपको लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए। तो आप जब कनेक्ट करने लग जाओगे तो बेसिकली आपके कनेक्शंस बनने लग जाते हैं। और हमारी फील्ड में बेसिकली फ्रीलांसिंग में अगर मैं बात करूँ तो हमारी इवेंट इंडस्ट्री में स्पेशली जो एक बहुत बड़ा महत्व रखती है वो है कनेक्शंस। आपके कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए, तो अगर आपको बात करना आता है तो आप लोगों से कनेक्ट भी कर पाएंगे। आप सोशल इवेंट्स के सरताज बनना चाहते हैं एंकर्स में, तो आपको लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनका आप इवेंट होस्ट करने के लिए जा रहे हैं उन्हें एकदम फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करो। उनको ये सोचो ही मत कि दे आर क्लाइंट एंड दे आर गोइंग टू पे यू। यू हैव टू बी अ फैमिली मेंबर ओवर देयर। आप एक फैमिली मेंबर की तरह बन जाओ बिल्कुल। जब आप एक फैमिली मेंबर बन जाते हो तो आप मजाक मस्ती कुछ भी करोगे, इमोशनल होगे उनके साथ, वो लोग उतना ही कनेक्ट करेंगे और वो इवेंट हिट हो जाएगा आपका।
0: बिल्कुल। एक इवेंट की तैयारी कैसे होती है, लेट्स से कि मैं एक फ्रेशर हूं बिल्कुल, मेरे को एक इवेंट मिल गया somehow, लेट्स से कि एक एंगेजमेंट है, मुझे उसको जाके होस्ट करना है, तो मुझे क्या क्या तैयारियां करनी है?
1: सी, मेरे लिए और मुझे लगता है कि हमारे इवेंट इंडस्ट्री में जितने भी एंकर्स हैं ना, सबके लिए ये वाले इवेंट जो होते हैं संगीत सेरेमनी, रिंग सेरेमनी इज द मोस्ट फेवरेट इवेंट, क्योंकि इसमें इतनी मस्ती मजाक होता है, इतने डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं कि हम लोग खुद भी एंटरटेन होते रहते हैं उनको एंटरटेन करने के साथ साथ। तो सबसे पहले जो तैयारी हमें करनी होती है वो ये होती है कि आपको ब्राइड एंड ग्रूम की सब कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। बेसिकली अगर लव मैरिज है तो वो पता हो, अरेंज मैरिज है तो वो पता हो, फैमिली में कौन कौन है वो सब पता हो। तैयारी करने के लिए हमें पहले उनकी पूरी बैकग्राउंड डिटेल्स लेनी पड़ती है, कहाँ से क्या तक है, कोई इंसान बुरा तो नहीं मान जाएगा, कि सारी चीजें, मतलब छोटी छोटी बातें हमें नोट करनी होती हैं। और स्पेशली जो नोट करना होता है वो सीक्वेंस होता है, क्योंकि आजकल के जो इवेंट्स हो रहे हैं ना संगीत और रिंग सेरेमनी में, तो बेसिकली एंकर्स को इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेज होते हैं। तो हमें हर फैमिली मेंबर जो भी डांस परफॉर्म करने के लिए आ रहा है उसका नेचर, उसके बारे में कुछ खासियत पता होनी चाहिए, ताकि आप उसके लिए दो लाइनें यू नो शायरी के तौर पे लिख पाओ। आपको वो चीज़ें रेडी करनी पड़ेंगी, एंड ये सब चीज़ें रेडी करने के बाद अब जब स्टेज पर जाओगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा उस इवेंट को हिट करने से। तो बेसिकली स्क्रिप्ट रेडी करने में आपको हर एक फैमिली मेंबर की सीक्वेंस पता होनी चाहिए, डांस परफॉर्मेंस के टाइम पे वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, उनके नेचर के बारे में पता होना चाहिए उनको। आप सबको नोट डाउन नोट करते जाओ एक एक चीज़ को, एक सीक्वेंस बनाओ, एक स्क्रिप्ट बनाओ हर एक फैमिली मेंबर के जो भी परफॉर्म करने के लिए आ रहा है उसके बारे में चंद लाइनें लिखो, तो आपका इवेंट हिट हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग में बेसिकली संगीत परफॉर्मेंसेस के लिए यही होता है। और जब मेन स्टेज एरिया पे हम अगर परफॉर्मेंस को साइड रखकर बात करें तो बात आती है सिर्फ हमारे मेन कंसर्न फोकस पर्सन लाइमलाइट में जो रहते हैं उस टाइम पे, वो होते हैं ब्राइड एंड ग्रूम। उनकी थोड़ी चीज़ों को नोट करो, उनकी लाइफ साइकिल जो रही है, उनका जो रिलेशनशिप साइकिल रहा है उस टर्म में, उनको नोट करना ज़रूरी है। और उनको एंटरटेन करने के लिए बेसिकली आपको उनसे बात करनी पड़ेगी बहुत ओपनली होकर, तब आप अच्छे से एकदम मतलब वो रोमांटिक है या फिर शाय पर्सन है, अगर शाय हैं तो आपको किस तरह से उनको एंटरटेन करना है, उनको किस तरह से इंजॉयमेंट बनाना है उनको मोमेंट्स को। अगर ऑलरेडी वो पहले ही फन लविंग पर्सनालिटीज है, तो आपको और कैसे इनहेंस करना है उनको, तो वो आपको स्क्रिप्ट रेडी करना पड़ेगा उनसे बातचीत करके स्पेशली, ये मेन रहता है।
0: अगर मानकर चलिए आपका सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस में कुछ विलंब हुआ, कुछ डिले हुआ, तो उस टाइम पर क्या ट्रिक्स होती है हमारे पास जो हम कर सकते हैं?
1: ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बिकॉज हम लोगों के पास ये हमेशा होता है ये हर इवेंट पर होता है कि आप ऑलमोस्ट, अगर आपको क्लाइंट ने बोला कि आप रिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी मैम 6 बजे से, एंड एंकर नीड टू बी देयर, और हम पहुंच भी जाते हैं 6 बजे, अगर इवेंट स्टार्ट हो रहा है तो हम 5:30 ही पहुंच जाएंगे, इतना पंचुअल रहना पड़ता है। एंड जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे तो ऑब्वियसली इतनी जल्दी इवेंट स्टार्ट नहीं होता, उसको फिलर्स डालने के लिए हमें गेम्स करवाने होते हैं। फिर वहाँ पे आप वहाँ कुछ भी गेम्स करवा सकते हो, लाइक फैमिली से रिलेटेड आप अंताक्षरी वाला गेम करवा लो। मेरा जो मेजरली है, मैं ट्विस्ट के साथ अंताक्षरी करवाती हूँ स्टार्टिंग में, बोलियां डाल के डांस करवाती हूँ, फैमिली मेंबर्स को एंगेज कर लेती हूँ। और जब भी कोई फिलर बीच में आएगा तो आप मस्ती मजाक के साथ किसी भी पर्सन, फैमिली मेंबर को स्टेज पर बुलाकर, बेसिकली कपल्स को बुलाकर कपल्स गेम करवा लो, ताकि बोर भी ना हो और वो लोग भी एंटरटेन होते रहे। तो फिलर्स के लिए आप गेम्स यूज कर सकते हैं।
0: ऑलराइट, तभी तक मुझे समझ में आया कि आपको जिस इवेंट को आप होस्ट करने जा रहे हो उसकी आपको पूरी तैयारी करनी होगी, आपको सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, आपको हर एक फैमिली मेंबर को पर्सनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उनके लिए शायरी लिखी है, चार बातें लिखी है, उनको समझे आप, और भी अफेंड तो नहीं हो जाएगा। प्लस आपके पास स्पॉन्टेनियटी होनी चाहिए, आपके पास स्पॉन्टेनियस कुछ गेम्स होने चाहिए कि इंस्टेंटली अगर कुछ डिले हो रहा है तो आप उसको फिल कर पाए। बेसिकली हमारा काम है कि इवेंट वहां पर लो ना जाए, इवेंट की एनर्जी हमेशा हाई रहे।
1: एग्जैक्टली,
0: राइट, ऑलराइट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मिड इवेंट में आप कॉन्शियस हो गए हो और कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपको पता है एंड आपने मैनेज कर लिया हो समहाउ?
1: ये तो काफी बार होता है, एक आध बार नहीं तो काफी बार हुआ है मेरे साथ, बहुत टाइम हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक जरूरी नहीं है कि फैमिली में प्रॉब्लम हो, कई बार इवेंट के टाइम पे लाइट में प्रॉब्लम हो गई या डिले हो गया, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप लेट कर दिया, ब्राइड अभी नहीं आई है, ग्रूम अभी नहीं आया है, वो शूट चल रहा है उनका, तो हमें फिर वहां पे मैनेज करना पड़ता है, काफी देर तक हैंडल करनी पड़ती है सिचुएशन को। बट कई बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, तो हम फिर उस टाइम पे हम थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि वो लोग अपने आप मैनेज कर पाए चीजों को, एंड देन फिर हम बैक टू स्टेज आए।
0: बहुत लेट्स टेक अनदर म्यूजिकल ब्रेक हियर, उसके बाद हम बात करेंगे भैया सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन ये बात करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक, जुड़े रहिए हमारे साथ।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको मजा आ रहा होगा। फिलहाल अपने शो को बिना किसी देरी के आगे लेकर चलते हैं। दिशा हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें हमने करी हैं, दिशा के डोमेन को समझा है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो बात करिए। अब बात करते हैं काम धंधे की। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा दिशा, मुझे बताइए कि काम कैसे ढूंढा जाता है इस इंडस्ट्री में, काम कैसे मिलता है?
1: ये वाला क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा, ये बहुत ज्यादा अभी आजकल के जो इवेंट सेक्टर्स में न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू एंकर्स आ रहे हैं, उनके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा कनेक्टिंग हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा सा उनको भी इजी हो जाएगा। जब जिस टाइम पे हमने शुरुआत करी थी, तो उस टाइम पे मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, बेसिकली BGMC किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा उसका भी एक्सपोजर मिला, क्योंकि मेरे कॉलेज में जो मेरे टीचर्स थे, जो प्रोफेसर थे, उनसे भी काफी इवेंट्स मुझे मिले थे उस टाइम पर। तो एक स्टार्टिंग, अगर मैं बात करना चाहूंगी स्टार्टिंग फेज की, तो मैंने स्टार्टअप जो करा है वो मेरे कॉलेज से ही करा है, विद MDO होस्ट करके एंड अपने कॉलेज के इवेंट्स होस्ट करके। वहां से मैंने कुछ वीडियोस बनाए, वीडियोस देकर फिर मैं आगे इवेंट्स में गई। कई बार मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी इवेंट करे हैं स्टार्टिंग में, बट एक दो इवेंट के बाद when you know your worth, तो आपको फिर लगता है कि यार now I have to charge, I need to pay, मेरे को अपना चार्ज लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं फ्री में अगर इवेंट करूंगी तो फिर वहां मेरा भी वर्थ गिर रहा है। आपको कनेक्शन बनाने के लिए बेसिकली हमारे कुछ एंकर्स के ग्रुप होते हैं, उनको ज्वाइन करना है, वहां से आपको काम आता है, आपके जो क्लोज मैं कहना चाहूंगी इवेंट इंडस्ट्री कोई पर्सन है जो इवेंट्स होस्ट करवाते हैं या फिर मैनेज करवाते हैं, इवेंटर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं आसपास के, उनसे आपको कनेक्ट करना होगा। एक दो इवेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बट मेजरली आप हर इवेंट को ऐसा मत सोचना कि काम बढ़ाने के लिए मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ही करना है। तो स्टार्टिंग आप कम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी एक वैल्यू बनाकर चलें, ताकि आपको नेक्स्ट कभी भी इवेंट होस्ट करने के लिए आपको बुलाया जाए तो आपके पास ऑलरेडी उतना वर्थ हो कि मैं इस पेज पे ही काम करती हूँ या करता हूँ। कनेक्शन बनाने के लिए बेसिकली यही है कि आपको इवेंटर्स के नंबर नोट होने चाहिए, और आज के टाइम में जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मैं बात करूँ तो वो चल रहा है जस्ट डायल। जस्ट डायल पर इतनी क्वेरीज आती हैं एंकर्स रिलेटेड, हर एक फील्ड से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जस्ट डायल बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और योर ओन वर्क और एंकरिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो बेसिकली आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो।
0: ऑलराइट ऑलराइट, और कितना फ्रीक्वेंट काम होता है इस इंडस्ट्री में?
1: इवेंट की मैं अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीजन के टाइम पे तो हम तो बिल्कुल टाइम नहीं होता कि घर भी वापस आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बाहर ही होते हैं एक एक हफ्ते के लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग उस टाइम पे चल रही होती है, तो मेन पीरियड अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग हो जाती है अक्टूबर से, सेप्टेम्बर अक्टूबर से इवेंट चलते हैं। मई जून जुलाई इजीली चलते हैं, मई तक बहुत इजीली चलता है, देन वो 4 मंथ्स ऐसे होते हैं जब आपके पास काम बहुत कम होता है, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर एज वेल।
0: ओके, और जब काम नहीं होता है तो सस्टेन कैसे किया जाता है, सर्वाइवल कैसे होता है?
1: सर्वाइवल ऑनेस्टली आप इतना ऑलरेडी अर्न कर चुके होते हो कि आपको सर्वाइवल के बारे में इतना सोचना नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता है कि आपके पास बिल्कुल ही काम नहीं है। जो हाई प्रोफाइल्ड एंकर हैं, उनके पास ऑलरेडी ऑफ सीजन भी इतना काम होता है कि आपको सर्वाइवल के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज आप एक साइड से अर्निंग ऑलमोस्ट आपकी जारी रहती है, तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ता। बिकॉज ऑफ सीजन में जो काम चलते हैं वो होते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज, सोशल को छोड़कर आप हर एक फील्ड में उतर सकते हो। कॉर्पोरेट इवेंट सबसे ज्यादा ऑफ सीजन में होते हैं, लॉन्चिंग है, बर्थडे पार्टीज हैं, और कोई न्यू शॉप का लॉन्च है, एनुअल डे फंक्शंस हैं, तो ये इवेंट्स तो ऑलमोस्ट चलते ही रहते हैं, वो सदाबहार इवेंट्स हैं, वो ऑफ सीजन भी होंगे ऑन सीजन भी होंगे, आपको उतना सोचना नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है इवेंट इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो तो आप उतना अर्न कर लेते हो कि आपको सर्वाइवल पीरियड पे भी इतना टेंशन लेने की, बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
0: दिशा, ऑन एन एवरेज एक इवेंट का अगर मैं बात करूं तो कितना पे आउट होता है एक एवरेज एंकर के लिए, कितना हो सकता है?

0: 7 से बंदा स्टार्ट करता है बिल्कुल जब न्यू कमर आ रहा है कोई, तो अदरवाइज 8 9 मिनिमम, बिल्कुल बेयर मिनिमम है प्राइस आपका, कि इतना तो एंकर के चार्ज होता ही होता है हर जगह पर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्तम। आई एम डन विद माय क्वेश्चन दिशा, कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूँ और इस डोमेन में आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
0: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो भी इवेंट एंकरिंग के लिए आ रहे हैं, स्पेशली जो एंकर बनना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज डेवलप कर लो कि आप इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाओ कि आप हर एक चीज को ग्रैब कर पाओ, हर किसी के इमोशंस को, उनके वर्ड्स को, उनके जेस्टर्स को ग्रैब कर पाओ, ताकि जब आप स्टेज पर उतरो आओ तो उस इंसान के सामने आपको खुद को भी फोबिया ना हो। और एक हमारे फील्ड में सबसे अच्छी कमांडिंग हमें अपनी वर्ड्स पे होना चाहिए, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट इवेंट्स पर होस्ट करने जा रहे हो, तो आपको शब्दों का बहुत बहुत सोच समझ के चयन करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो शब्द यूज होते हैं, बेसिकली वो हिंदी ज्यादा यूज होती है, और हिंदी में भी ऐसी हिंदी होनी चाहिए जहां पर आप कभी ऐसे ठहराव आए, आपको पता चले यहाँ पॉज लेना है, आपको पता चले कि यहाँ पर क्या बोलना है, आपको शब्दों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो एंकरिंग फील्ड में उतरने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको शब्दों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, वर्ड्स नॉलेज होनी चाहिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, इट मीन्स अ लॉट टू अस।
0: वेल थैंक यू सो मच सागर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू, एंड थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि इससे थोड़ा सा और हमारा मुझे भी अपना कुछ कुछ चीजों का पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए, आगे सोचना चाहिए अपने बारे में। वेल थैंक यू सो मच सागर।
1: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये शो पसंद आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ दिशा ने जितनी बातें हमें बताई हैं वो थी तो एक मोती बराबर, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर पाई होंगी। इफ यू वांट टू बी एन एंकर जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जो दिशा ने बताया रोड मैप फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। नाउ दिस नोट, चलता हूँ फिर मुलाकात होगी, फिर लौटूंगा लेकर एक और शो, लेकिन अब मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें, खैरियत से रहें। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

कार्यक्रम अन्नदाता और आज आपसे बात करने वाला हूँ काली तोरी के बारे में। इसे लुफा काली तोरी के नाम से भी जाना जाता है किसान भाइयों। और काली तोरी की बेलों का जो कद है 30 फुट और इससे ज्यादा भी हो सकता है। काली तोरी के फल बेलनाकार आकार के और इनकी बाहरी छिलका नरम हरे रंग का होता है। फलों का अंदरूनी गुद्दा सफेद रंग का रेशे वाला होता है और इसका जो स्वाद है ना, वो स्वाद थोड़ा सा करेले की तरह होता है। फलों का कद 1 से 2 फुट होता है और काली तोरी के पूरी तरह पके हुए फलों में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जिसका प्रयोग सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है और टेबल मैट, जूते के तलवे यानी कि ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा त्वचा की बीमारियों के इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और भारत में इसे पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड में उगाया जाता है। लेकिन इसके उगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम, सलाम।

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। आइए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की। इसे मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जा सकता है। रेतली दोमट मिट्टी में उगाने पर ये अच्छे परिणाम देती है। मिट्टी के पीएच की बात करें तो मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.0 होना चाहिए, या इसकी रोपाई के लिए थोड़ी क्षारीय मिट्टी भी अच्छी रहती है। तो ये बात तो हो गई किसान भाइयों मिट्टी की। अब बात आती है किस्मों की। एक किस्म है, इस किस्म का नाम है PSG 9 2005। इस किस्म की दरमियानी लंबी और गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली होती है। इसके फल नर्म, लंबे, कोमल और गहरे हरे रंग के होते हैं। मुख्य रूप से कटाई रोपाई के 60 दिनों के बाद की जाती है। इसकी औसतन पैदावार 65 क्विंटल प्रति एकड़ होती है और फल का औसतन भार 65 ग्राम होता है। ये तो बात रही PSG 9 2005 की। एक और किस्म है जिसका नाम है पंजाब निखार 2020। ये किस्म मध्यवर्ती इंटरनोडल लंबाई के साथ मध्यम लंबाई की बेलें होती हैं। इस किस्म के पत्ते मध्यम आकार और हरे रंग के होते हैं। इसके फल पतले, नर्म, कोमल, लंबे, हल्के हरे रंग के और क्रीमी सफ़ेद बीज वाले होते हैं। ये किस्म बिजाई के 43 दिन के बाद पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इसकी औसतन पैदावार 82 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। एक किस्म के बारे में और सुन लीजिए जिसका नाम है पूसा चिकनी। इस किस्म में पत्ते गहरे हरे, मध्यम कद का पौधा और मध्यम आकार के फल होते हैं। इसके फल नर्म और कोमल होते हैं, जिनकी मोटाई 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी औसतन पैदावार 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो ये तो बात रही किस्मों की। इसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ज़मीन की तैयारी। तो ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए और बिजाई का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके बारे में भी आपसे बात करूँगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं बिजाई की। साल में दो बार इसके बीजों को बोया जाता है और बिजाई के लिए उपयुक्त समय मध्यम फरवरी से मार्च का महीना होता है और दूसरी बार बिजाई के लिए मध्य मई से जुलाई का समय उपयुक्त माना जाता है, लेकिन फासले का भी ध्यान रखना पड़ता है। दो बीजों के प्रति क्यारी में बोया जाता है जो कि 3 मीटर चौड़ी होती है और बीजों में 75 से 90 सेंटीमीटर के फासले का प्रयोग किया जाता है। अब बीज की गहराई की बात करें तो बीजों को 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बोना चाहिए और बिजाई का जो ढंग है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी गड्ढे खोदकर इसकी बिजाई की जाती है। लेकिन किसान भाइयों, बीज हमारा जो है उसकी मात्रा क्या होना चाहिए, या फिर बीज में कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ रोग भी लग जाते हैं, उनका उपचार कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपको दूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: लेकिन वो बात
1: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, आज बात हो रही है काली तोरी के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि बताऊंगा बीजों के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बीज की मात्रा के बारे में। 2.0 किलो बीज प्रति एकड़ में प्रयोग करें। बीज का जो उपचार है उसके बारे में भी सुन लीजिए। रेती की मदद से बीजों को रगड़कर उनका ऊपरी छिलका उतार लें और अंकुरण बढ़ाने के लिए उन्हें 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब बात आती है पनीरी की देखरेख और रोपण कैसे हो। तो किसान भाइयों, याद रखिए, बीजों को तैयार नर्सरी बेडों पर बोया जाता है मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। सीड बेडों को जमीन से स्पर्श ना होने दें। रोपाई मुख्य रूप से पौधों पर 4 से 5 पत्ते आ जाने पर बिजाई के 25 से 30 दिनों के बाद की जाती है और पौधों की रोपाई कतारों और पौधों में 2.5 × 1.2 मीटर के फासले पर की जाती है। रोपाई के 7 से 10 दिनों के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की खुराक डाली जाती है। बेलों के विकसित होने और फूल निकलने के समय खाद डालना जरूरी हो जाता है। अब बात आती है कि खाद हम कैसे डालें और किस तरह से डालें जिससे कि हमारी जो काली तोरी है इसकी फसल बेहतरीन हो जाए। बताऊंगा, खाद के बारे में भी बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है काली तोरी के बारे में। अब जरा खाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि खाद पानी अगर फसल को अच्छे से मिल जाए ना, तो आपकी फसल बेहतरीन हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खेत की तैयारी के समय नाइट्रोजन 40 किलो यानी यूरिया 90 किलो, फास्फोरस 20 किलो यानी SSP 125 किलो और पोटेशियम 20 किलो यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलो, इसको शुरुआती खुराक के तौर पर डालना चाहिए। बिजाई के समय नाइट्रोजन के एक तिहाई हिस्से के साथ फास्फोरस और पोटाश डालें। बेलों के शुरुआती विकास के समय या बिजाई के एक महीने के बाद बाकी की मात्रा डाल देनी चाहिए। अब बात आती है खरपतवार की, जो कि किसी भी फसल के लिए बड़ी हानिकारक होती है। तो किसान भाइयों, खेत को नदीन मुक्त करने के लिए मल्चिंग और नदीन नाशक आवश्यक होते हैं। पेंडीमेथालीन 1 लीटर या फ्लूक्लोरालिन 800 मिलीलीटर को प्रति एकड़ में नदीनों के अंकुरण से पहले डालें। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की। गर्मियों और सूखे हालातों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और बारिश के मौसम में सीमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बीज बोने के तुरंत बाद की जाती है और कुछ फसल को 7 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हमारे जो पौधे होते हैं ना, इन पौधों में कुछ ऐसी बीमारियां लग जाती हैं जो फसल को बर्बाद कर देती हैं। अब वो बीमारियां कौन सी हैं और किस तरह से उनका समाधान किया जा सकता है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है काली तोरी के बारे में, अब बात कर लेते हैं इनकी बीमारियों के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में। एक बीमारी है जिसका नाम है पत्तों के ऊपरी धब्बे वाला रोग, यानी इस रोग से पत्तों की ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आते हैं जिसके कारण पत्ते नष्ट हो जाते हैं। उपचार सुन लीजिए, गर्म

थ्रिप्स का हमला होने में पत्ते मुड़ जाते हैं और कप के आकार में आ जाते हैं या ऊपर की तरफ से मुड़ जाते हैं। अगर इनका हमला खेत में आपको नजर आए तो थाइमेथोक्सम 5 ग्राम को 5 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये बातें तो मैंने आपको बता दी हैं कि किस तरह से आप अपने पौधों को इस तरह के कीटों से या इस तरह के रोगों से बचा सकते हैं, पर आखिर में बात आती है फसल की कटाई की और बीज उत्पादन की, तो इन दोनों के बारे में भी आपसे बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, काली तोरी के बारे में आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। आखिर में अब वक्त है फसल की कटाई का। बिजाई के 70 से 80 दिनों के बाद फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और 3 से 4 दिनों के अंतराल पर तुड़ाई कर लेनी चाहिए। नर्म और मध्यम आकार की फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। इसकी औसतन पैदावार 66 से 83 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अब बीज उत्पादन की भी बात सुन लीजिए। काली तोरी की अन्य किस्मों से 1000 मीटर का फासला रखें, खेत में से बीमार पौधों को निकाल दें। बीज उत्पादन के लिए फसल उगाने का उपयुक्त समय फरवरी से मार्च का महीना होता है, क्योंकि सूखे मौसम के दौरान बीजों की तुड़ाई आसानी से होती है। बीज उत्पादन के लिए फलों की तुड़ाई फलों के शारीरिक रूप से परिपक्व होने पर की जाती है। तुड़ाई के बाद गुद्दे में से बीजों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद उन्हें पैक किया जाता है और फिर स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं काली तोरी के बारे में। अगली बार जब मिलूंगा तो किसी और फसल के बारे में आपसे बात करूंगा। फिलहाल आपसे आज्ञा चाहता हूं, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, लेकिन चलते चलते सभी किसान भाइयों को करता हूं राम राम सलाम।
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिरला पान चबाए, आओ।

राजोरी कर गई हमरे दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, इन दिनों बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिन उपन्यासों को पढ़कर लोग जागरूक हुए हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू अपनी लड़कियों को कॉलेज पढ़ाते हैं और बहू भी पढ़ी लिखी ही लेकर आते हैं। कोई बात नहीं, उपन्यास में लेखिका द्वारा शशांक की दादी के जीवन को पुराने काल में जीती एक स्त्री के संग्राम को दिखाया है, तो आधुनिक समय में शशांक की मां को एक सुदृढ़ एवं शिक्षित महिला के रूप में दर्शाया है, जो शारीरिक रूप से कमजोर बेटे का संबल बनती है और घर से बाहर जाकर काम भी करती है। शशांक की दादी के द्वारा विकलांग शशांक के लिए झाड़ फूंक करवाने की परंपराओं पर कुठार घात करती लेखिका द्वारा दर्शाया गया है कि विकलांग शशांक नहीं है, बल्कि समाज के लोग वैचारिक रूप से विकलांगता से ग्रसित हैं। इस प्रकार के परंपरागत मूल्यों का विघटन आवश्यक है और शशांक की मां की दृढ़ता के द्वारा सामाजिक चेतना के उत्कर्ष को दिखाया गया है। तो दोस्तों, अलका सरावगी के बारे में, उनके लेखन के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, व्यक्ति का समाज के प्रति विद्रोह प्रत्यक्ष ना होकर धर्म, रीति, रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति यानी कि इनके प्रति है। प्रत्यक्ष रूप की अपेक्षा संघर्ष के इस परोक्ष रूप का संबंध समाज के सभी पहलुओं से होता है। इसी परोक्ष रूप का चित्रांकन लेखिका द्वारा सामाजिक परिवर्तन के स्वर में मुखरित हुआ है, क्योंकि एक जमाने का सत्य दूसरे जमाने की मिथ्या हो जाता है। जानकी दास तेजपाल मेंशन का जय गोविंद इसी मिथ्या सत्य का विरोध करता प्रतीत होता है। क्या गोविंद नहीं जानता कि ये दुनिया उन लोगों के तलवे चाटती है जिनका बैंक बैलेंस उनसे दुगने से लेकर 100 गुने तक होता है। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत सारी कड़वी लेकिन सच्ची बातें अलका सरावगी ने अपने शब्दों के माध्यम से कही हैं। इनकी बातों का जिक्र होता रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: देखिए दोस्तों, वास्तव में ये सामाजिक आर्थिक विषमता का ढांचा हमारे समाज पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि नैतिक विकृतियां जन्म लेने लगती हैं, वर्ग भेद की खाई गहरी होने लगती है। तो अलका सरावगी ने समाज की इस दोहरी सोच को बखूबी प्रस्तुत किया है। पैसे की होड़, उसके पीछे दौड़ता समाज, सारी मर्यादाओं एवं नैतिकताओं को रौंदता हुआ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लेखिका ने व्यक्ति प्रतिष्ठा के मूल्य का प्रत्यक्ष स्वरूप भी प्रस्तुत किया है। जानकी दास तेजपाल मेंशन का जय गोविंद जानता है कि माँ ने ये विश्वास बनाए रखा है कि वो दोनों अनपढ़ लोगों की दुनिया से अलग हैं। भले ही छठी क्लास फेल पड़ोसी भी करोड़ों में खेल रहा हो, पर उनके पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, आज बात हो रही है लेखिका अलका सरावगी के बारे में। सामाजिक चेतना को संदर्भित करते हुए अलका सरावगी ने उसकी सार्थकता को दर्शाया है, जिसके लिए उन्होंने मुक्त एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाने से परहेज नहीं किया है। उन्होंने विगत के सुलभ परंपरागत आग्रह के साथ आधुनिक वैज्ञानिक बदलाव को प्रतिष्ठित किया है। एक बेरक के बाद उपन्यास में के शंकर अय्यर एक तमिल ब्राह्मण हैं, परंतु वो एक बंगाली कायस्थ कन्या से प्रेम विवाह करता है। एक शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण का मांस मछली खाने वाली बंगाली बाला से प्रेम विवाह को समय के साथ होने वाले सामाजिक परिवर्तन को दर्शाया है। तो इस तरह से दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं उन्होंने अपने लेखन में शामिल की हैं। इनकी बातों का जिक्र होता रहेगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: सुनो हरदीप, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में।
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, अलका सरावगी ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में समकालीन समाज की दशा एवं दिशा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। आज के दौर की सामाजिक चेतना कुछ अलग ही दिशा की ओर बढ़ रही है। पहला संचार की प्रचुरता और दूसरा उपभोक्तावादी समाज का आविर्भाव नए किस्म का सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें उपभोक्ता और अलग अलग जीवन शैली के लोग उभर कर आए हैं। ये समकालीन समाज का भौतिकतावादी स्वरूप है, जिसे अलका सरावगी ने वैश्वीकरण के संदर्भ में विस्तार दिया है, जिसके कारण जीवन मूल्यों का संक्रमण, व्यक्ति का असंतोष, नए पुराने विचारों का संघर्ष, नारी का बदलता स्वरूप, जो कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक भी है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सुनते रहिए फहीम के साथ यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है अलका सरावगी के बारे में, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। वास्तव में अलका सरावगी के समग्र उपन्यासों में अपने समय के सामाजिक यथार्थ का मौलिक विवेचन है, जो आज के जटिल समाज के बहुआयामी चित्र को उकेरते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति में फंसे अंतर्द्वंद से ग्रस्त सामान्य व्यक्ति कब स्वार्थी, भ्रष्ट एवं अनैतिक बन जाता है, उसे मालूम ही नहीं रहता। कली कथा वाया बाईपास में किशोर बाबू का लड़का, जो उनके व्यवसाय अब चला रहा है, किशोर बाबू के पूछने पर के मेघना जूट का ऑर्डर मिल गया है तक लड़का बोलता है, कहाँ पापा, सेल्स डिपार्टमेंट ने सैंपल रिजेक्ट कर दिया है, उसका आदमी ले भी घूस खाना चाहता है, कहा है 20 गांधी से कम नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, अलका सरावगी ने उन मुद्दों को उठाया है जो कि हमारे समाज को कमजोर करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने अपने लेखन में शामिल की हैं कि जिन बातों को अगर लोग अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो ये हमारा समाज और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अलका सरावगी के अगले एपिसोड में इन्हीं के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें करूँगा। फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। चलता हूं, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।
2: चलो।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और वेलकम टू रेडियो मानव रचना। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहां पर हम बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो सिर्फ ट्रेंडिंग ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारी एवरीडे लाइफ भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और आज का टॉपिक भी ना थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटके है, क्योंकि वो भी हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ट्रेंडिंग तड़का, ये जो आप नाम सुनते हैं ना, ट्रेंडिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बात रोज की कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से हर दिन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो ट्रेंडिंग ही तो हुआ ना। और कहीं तो अगर चाहे बात हो हमारे देश की, या बात हो हमारे विदेश की, या बात हो हमारे सोसाइटी की, हमारे सोशल मीडिया की, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करते हैं। इसी के साथ ही बहुत से ऐसे स्पेसिफिक डे भी होते हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाने का हम काम करते हैं। और मैं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे स्नेहा हर हफ्ते संडे शाम 4 से 5 लेकर आ जाती हूँ कुछ खास बातें, कुछ खास टॉपिक, जिसे हम यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो चीजें हमसे रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ी हुई है वो हम सबके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज का टॉपिक भी ना थोड़ा सा अलग है, हटके है, पर हम सबसे जुड़ा हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं नेचर की। जी हाँ, नेचर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है हिमालयस और समुद्र। जी हाँ, ये बहुत जरूरी पार्ट है। मैं ऐसा ये नहीं कहूँगी कि हम डेली ही इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना हमारी, कहते ना कि जिस धरती पे हम रहते हैं उसका ही हिस्सा है। और आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ और समंदर दोनों का कनेक्शन क्या है। एक्चुअली कनेक्शन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आजकल हम डेवलपमेंट, टूरिज्म, ट्रैवलिंग और चेंजिंग लाइफस्टाइल की बातें बहुत करते हैं, लेकिन इसी के बीच नेचर पर पड़ने वाले जो प्रेशर को समझना भी जरूरी है। हिमालयस जैसे सेंसिटिव एरियाज जो कि बढ़ते टूरिज्म और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और दूसरी तरफ समुद्र के बढ़ते टेम्परेचर जैसे चेंजेस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी तरफ आकर खड़ा होता है। जी हाँ, और वो ये है कि क्या नेचर हमें कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं और उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्या हम उन सिग्नल्स को सीरियसली समझ रहे हैं या नहीं। तो आज का ट्रेंडिंग तड़का इसी पर कुछ खास होने वाला है। हमारे क्लाइमेट पर, ओशंस पर, हिमालयस पर, बहुत सारी चीज़ों पर बातें करेंगे जो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। जी हाँ, डे लाइफ से कैसे कनेक्टेड है इस पर भी बात करेंगे, जानेंगे इसके बारे में भी। पर उसके साथ मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बहुत ही प्यार प्यार से गाने भी। तो गाने भी सुनेंगे और साथ में करेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजों की बातें जो हम सबसे जुड़ी है। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। और अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, इसके बाद करेंगे बहुत सारी बातें। तो सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो देखने में माउंटेन्स और ओशन से रिलेटेड लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो हम सबकी लाइफ से कनेक्टेड है। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालयस की। जी हाँ दोस्तों, जब हम हिमालय का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है कि स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ब्यूटीफुल वैलीज, फ्रेश एयर, रिवर्स, ट्रैकिंग, स्नोफॉल्स और ऑब्वियसली एक परफेक्ट ट्रेवल डेस्टिनेशन। और ऑनेस्टली हिमालय की ब्यूटी ही कुछ ऐसी है कि हर साल बहुत सारे लोग वहां पर ट्रेवल करने जाते हैं। टूरिज्म पहाड़ी एरिया के लिए एम्प्लॉयमेंट और लोकल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, जैसे कि होटल्स हो गए, होम स्टे हो गए, रेस्टोरेंट्स हैं और टैक्सी हो गई, गाइडर्स हो गए या फिर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हो गए। बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड टूरिज्म से ही जुड़ी होती है वहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम टूरिज्म नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब टूरिज्म नेचर की कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने लगे। जी हाँ, सोचिए एक छोटा सा हिल स्टेशन, लिमिटेड रोड्स हैं वहाँ पर, लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड स्पेस है और डेलिकेट इकोसिस्टम है। अब अगर पीक सीजन में एकदम से बहुत ज्यादा टूरिज्म आ जाए तो नेचुरली प्रेशर बढ़ेगा ही ना, ट्रैफिक बढ़ेगा, व्हीकल्स बढ़ेंगे, वाटर कंजप्शन बढ़ेगा, वेस्ट जनरेट होगा और कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है वहाँ पर। और यहीं से आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है केयरिंग कैपेसिटी। जी हाँ, सिंपल वर्ड में अगर समझे तो केयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि नेचुरल एरिया कितना ह्यूमन प्रेशर सस्टेनेबिलिटी को हैंडल कर सकता है बिना अपने एनवायरनमेंट को सीरियसली डैमेज किए। मतलब कि किसी डेस्टिनेशन की कैपेसिटी है कि 10,000 विजिटर्स को कंफर्टेबली हैंडल करने की, तो उसे कई गुना ज्यादा क्राउड को बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के वहां पर ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करना प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि क्या इसका सॉल्यूशन है कि लोग हिमालय पे जाना ही बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं। ट्रैवलिंग और टूरिज्म इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की तरफ जाना होगा, जैसे कि वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करना, अननेसेसरी प्लास्टिक को अवॉइड करना, वाटर वेस्ट न करना, लोकल रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर शेयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना और नेचुरल एरिया में अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन से बचना, क्योंकि माउंटेन सिर्फ इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि वो वाटर, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट सिस्टम का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों, हिमालय पर बढ़ता प्रेशर सिर्फ हिमालय की प्रॉब्लम नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे एनवायरमेंट और फ्यूचर से भी है। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है कि हिमालय के बाद समुद्र की स्टोरी क्या कह रही है, उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे उसके बारे में भी, पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनी बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम ट्रेंडिंग तड़का, जहाँ पर हर बात होती है ट्रेंड वाली। और आज इस ट्रेंडिंग तड़का में हम बात कर रहे हैं हमारे हिमालयस की, हमारे टूरिज्म की, हमारे जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस चीज की कि समुद्र का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ पर क्या इससे इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब अभी हमने बात की हिमालय की, टूरिज्म की और नेचर पर बढ़ते प्रेशर की, लेकिन अब चलिए थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करते हैं, पहाड़ों से समुद्र की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक सिंपल सा सवाल है कि अगर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमने क्या किया है, हमें क्या इससे, हम तो समुद्र के अंदर रहते ही नहीं हैं। लेकिन यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है यार, समुद्र हमारी लाइफ से जितना दूर दिखाई देता है ना, एक्चुअली उतना दूर है नहीं। ओशंस अर्थ का क्लाइमेट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल कहते हैं उसे, वो प्ले करता है। ये एटमॉस्फेयर से हीट ऑब्जर्व करता है और ग्लोबल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओशंस भी उस एक्स्ट्रा हीट का एक बड़ा हिस्सा ऑब्जर्व कर रहा है। जी हाँ, और जब समुद्र का टेम्परेचर नॉर्मल पैटर्न से ज्यादा वार्म होता है तो इसका इफेक्ट सिर्फ पानी के टेम्परेचर तक ही लिमिटेड नहीं रहता है, बल्कि मरीन लाइफ अफेक्ट हो सकती है, जैसे कि वेदर पैटर्न चेंज हो सकता है उससे, और कोस्टल एरियाज में भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए कि हम अक्सर कहते हैं कि आज गर्मी कुछ ज्यादा है ना, और ये चीज हम हर साल देखते हैं कि हर साल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर देता है। कभी बारिश अनएक्सपेक्टेड टाइम पर हो जाती है और कभी तो इतना ज्यादा रेनफॉल हो जाता है और कभी हीट वेव अनयूजुअल लगती है। लेकिन हर सिग्नल वेदर इवेंट को डायरेक्टली क्लाइमेट से चेंज करना भी सही नहीं होगा ना, लेकिन जब साइंटिस्ट लॉन्ग टर्म पैटर्न को स्टडी करते हैं तो ओशंस वार्निंग जैसे चेंजेस को क्लाइमेट सिस्टम के इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल है, वो है कोरल रीफ्स। अपने कलरफुल कोरल्स की पिक्चर्स जरूर देखी होगी, ये अंडरवाटर इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत सारी मरीन स्पीसीज जो है वो उसको हैबिटेट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब सी वाटर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कोरल जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है और कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो कोरल अपने टिश्यूज में रहने वाले हेल्पफुल एगल को लूज कर देता है, जिसकी वजह से कोरल का कलर फेड हो जाता है या फिर वाइट हो सकता है। और दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर में कुछ भी कम्प्लीटली सेपरेट नहीं है। समुद्र वार्म होता है, मरीन इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, जिससे फूड चेन पर भी प्रेशर आ सकता है और इम्पैक्ट इवेंचुअली ह्यूमन कम्युनिटीज तक पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप समुद्र की टेम्परेचर की न्यूज सुने ना, तो उसे सिर्फ ये डिस्टेंट एनवायरनमेंट समझकर स्टोरी मत समझिएगा, क्योंकि समुद्र का टेम्परेचर अल्टीमेटली हमारे क्लाइमेट की स्टोरी भी बता रहा होता है। अब सवाल ये है कि अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो हमारी मरीन जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी इंटरेस्टिंग कनेक्शन को समझेंगे लेकिन अगले सेगमेंट पे। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेप वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये ना कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था।

उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1 करोड़ 3 साल 7 दिन पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1 करोड़ वर्ष 3 साल 7 दिन पुराना, उन्होंने कहा 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना हिसाब रखा है। उसने कहा कैसे पता चला ये 3 दिन और 7 दिन का, ये 3 साल और 7 दिन का? तो उसने कहा ऐसे पता चला कि आज से 3 साल 7 दिन पहले इस म्यूजियम का जो डायरेक्टर है उसने मुझे कहा था कि ये 1 करोड़ वर्ष पुराना, तब मैं उसमें जोड़ता जाता हूँ, क्योंकि 3 साल 7 दिन बीत चुके, अतीत अनंत है। तुम क्या सोचते हो कि हम बुद्ध के 2500 साल बाद हुए, 2500 साल बाद, तो क्या तुम सोचते हो अतीत की अनंतता में धन 2500 साल जुड़ गए? अतीत की अनंतता में क्या जोड़ोगे, क्या कटाओगे? अनंत अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 2500 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता, कितना ही जोड़ते चले जाओ। अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं है और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त हैं। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा, पहला आदमी हो ही नहीं सकता, और ना अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है, कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है, सोचो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो, प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 1,86,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है, या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसा ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे, मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है।
जहां कुछ खत्म होता है वहां तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी, चुंदी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना, यहाँ संसार खत्म, तो उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंदी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे। ऐसी कोई चुंदी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो, रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींच ही नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने, तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे? गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने, तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी, तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी। जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया, क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो, ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था, फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है, आखिर उनसे न रहा गया, और उन्होंने कहा ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों में, इसकी कोई जरूरत नहीं, साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाकर बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेचने लगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या? लेकर आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं, उल्टे लोग नाराज होते। जिसके पास हम गए उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरण में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो, देखो सिर झुका रहे हो। तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी इच्छा प्रकट की।
इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा झापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ। सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से। अब भूल जाओ सिर को, अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि सिर की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम्हारा मतलब ये है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, तुम उसे समझ भी ना सकोगे अभी। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे? गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा, लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती, तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा है कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं, तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए। बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई, तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो। इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए, और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा? मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा? तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी, उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गया, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाता। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छह
बिखर जाता कैसा राग।

जो प्यासे चातक की जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता है, वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता है, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता है। वो तो कहता, आओ जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला पाओ। धीरे धीरे गुरु की प्रभुध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है, मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया, ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौंके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाथे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्रधनुष है मगर वायु भी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विषभुजे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुक, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे। तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली, फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं। मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक। तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ जाएगा।

बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम है। तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब यह है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी यह है कि अभी झुके हो अब बिल्कुल मिट जाना। मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे। तुम जाओ तो ही परमात्मा आ। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूं तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है, लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा जितनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी। फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझ पर जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी, और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इससे अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण को तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पर श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई। मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी। तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा नहीं वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है। नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला है। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जैसे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता।
मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी। दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना, लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस्त या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ। उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं, सत्य एक है। जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक टूट गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारण का तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में ना रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सदी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पार। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों तो कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जच भी होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिस पे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरी उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी अशांत है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होगा, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर तो भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो,
इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं। तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते। तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो। धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा, मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाए, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया, क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे। तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा है, और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल, तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप कहता है तो पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे। यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तथस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होना पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात, तो सुकरात ने कहा मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा,
और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोल कर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले सूत्र, पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपद वासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई, वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे, उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तत्पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा

शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा पानी के कारण, पानी तो सदा से बहता है। लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो? पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साथियों और कोलियों के प्रधानों से पूछा महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले अल्प मात्र बनते ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सक्षम है और बोले अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे, और नदी ऐसी बहती रहे ऐसी ही बहती रहेगी, और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गमाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तुम सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया। कान ने कह दिया और कान पे भरोसा कर लिया। स्वाद ने कह दिया और स्वाद पे भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुके सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना। इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साक्य और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को।
और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जफा कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है। जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की नदी, उस पर दोनों दावेदार। छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है। बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है? झगड़े योग्य कारण कहां है? तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो? कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा ली, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है। हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है। पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े। इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए। जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया। खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े। यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है। प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते हैं। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है। प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है, और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं। इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला। क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इज़राइल इजिप्ट का झगड़ा
झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज।
4: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
3: एंड देन अगेन माइंडसेट्स हैं कि क्रिमिनल्स कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं दे नेवर चेंज, यू नो दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
4: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
3: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
4: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया।
3: Because I empathized with that victim.
4: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर clarity आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, now I only have to empower, reform नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से

0: देख सकते हो, क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
1: जैसे हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसी देखा, बट आई थिंक
0: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है. जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम. वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माय सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है. और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंटल हम बनने की कोशिश करते हैं ये हटा दें, और उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी, क्योंकि उस समय क्या हो गया है, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. तो वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो हम सबको देते हैं, वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी अगर हम उनको दें, अपने आप को वो एम्पावर कर देंगे, हमें नहीं करना. सोल कॉन्शियसनेस विल वर्क एवरीवेयर, एवरीवेयर. ये हम जो ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर देते हैं, वो ऐसा कहेंगे, वो ऐसा करेंगे, तो हम वो ऑलरेडी एनर्जी ट्रांसमिट कर देते हैं, एंड देन वो ऐसा ही करेंगे.
1: तो हर नेगोशिएशन पे एक एम्पावर होके हम खुद जा सकते हैं.
0: अभी क्या होता है, या तो हम सुपीरियर फील करते हैं या इन्फीरियर फील करते हैं, और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है, लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे तो उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी, और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है,
1: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
0: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला, ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा. तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है, दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
1: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे crime जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. You know, thought में नहीं, मतलब action में नहीं तो कहीं ना कहीं thought में तो है ही, लेकिन action में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति criminal नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम crime के scene से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं, तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
0: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं, तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड, बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
1: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा, लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं, तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं, बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ, तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. इट्स बिकम अ साइकिल एंड देन इट इज हाउ डू वी कम आउट ऑफ दिस साइकिल एंड देन वी से वी आर ऑल इन पेन. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
1: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं ज़िंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. Unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में.
0: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं ओ जी मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो एक करे, उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
1: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ, यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ.
0: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही,
1: और ये मेरे लिए जरूरी है.
0: वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के, हर्ट को पकड़ के, दैट वॉज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा, मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका, वो भूल चुके, अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए, बॉटम लाइन, आई क्रिएट माई ओन सफरिंग, टिल व्हेन?
1: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक,
0: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट्स सफरिंग फॉर मी, नोबडी कैन कॉज मी पेन, ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then, मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
1: मुश्किल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. सर शिवानी, आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है, लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का, उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू, समवेयर हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिपेक्ष क्या हो?
0: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो, बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना या क्षमा करना. जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
1: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो,
0: क्षमा कर दो, कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके. लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूं, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूं. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो, देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम, एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम, यू नो, आई एम द विक्टिम, यू नो, मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है. हमें इससे निकलना होगा, और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ. अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर? सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए. फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. I can only forgive if I'm filled with love, if I know the truth, if I'm at peace, then I can forgive. Agar main disturbed hu, mujhe mere andar nafrat hai aur pyar ka bilkul koi trace hi nahi, to forgiveness kahan? Wo possible nahi. To wo victim ki feeling se bahar nikal aaye ki jo hai wo maine create kiya hai, finish bhi
1: main karu,
0: mujhe karna. Agar kisi ne mujhe physically harm kar diya, यू नो, कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज़ है, या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो, जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी, या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो चोट किसको लगी? तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है? मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है? और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं? से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा? तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस. एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या?
1: बिल्कुल. और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली. और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं

0: गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है? दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है. आई हैव टू मूव ऑन, टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज़ कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहाँ वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
1: I can talk about myself, yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
0: Aapko pata hai, mere saath kya hua? And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua? Mere saath kya hua? We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते
1: रहते हैं. लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized, जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ that is now over. अब मुझे focus सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. जैसे कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट, कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल, जस्ट ट्रीट द पर्सन एज नॉर्मल. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, यू नो. तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, व्हाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी, बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
0: right? But we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin bar bar keh kar ke hai aap

0: आपके साथ ऐसा हुआ, बेचारे आप, अब आपका क्या होगा, या इवन ये कहना कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट टू हर्ट एनीवन, लेकिन कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक है, बट बाय सेइंग दैट वी आर सेइंग कि अभी सब गलत है, यू नो. तो जितना हम नॉर्मलसी को क्रिएट कर सके, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति.